मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 23वीं तिथि, तदनुसार 13 मई सन 2026 ईस्वी। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:52 होने ही वाले हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

0: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में 5:55 हुए हैं। प्रस्तुत है खेत खलिहान में वार्ता मिर्च की खेती। वार्ताकार हैं श्रीनिवास सहाय।
1: किसान भाइयों नमस्कार। हमारे दैनिक जीवन में मिर्च का काफी महत्व है। इसका अनेक रूपों में इस्तेमाल होता है। इसकी खेती के लिए उपयुक्त तापक्रम और आर्द्रता का ज्ञान आपको होना चाहिए। तो मिर्च की फसल अधिक तापक्रम और आर्द्रता पसंद करती है। यह प्रायः 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पसंद करती है। लेकिन सब्जी जाति वाली किस्में कुछ कम तापमान में भी अच्छी होती है। मिर्च की फसल की खेती के लिए कार्बनिक पदार्थ से भरपूर उचित जल निकास वाली दोमट या बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। क्षारीय भूमि में इसकी खेती नहीं की जा सकती है, परंतु चूने की अधिक मात्रा हो तो भी इसकी सफल खेती की जा सकती है। यह कुछ हद तक अम्लीयता बर्दाश्त कर सकती है। भूमि का पीएच 5.5 से 6.5 होना अच्छा होता है। अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए मिर्च की बुआई सही समय पर करनी चाहिए। बिहार में मुख्य फसल हेतु बीज की बुआई का उपयुक्त समय जून जुलाई का महीना है और रोपण का समय जुलाई अगस्त है। बीजों को बीज स्थली में बोएं, जिसका ठीक समय अभी चल रहा है। बीज की बुआई के पहले बीज का उपचार थीरम या कैप्टान नामक दवा से निश्चित रूप से आप कर लें। इसके लिए 1 किलोग्राम बीज में 2 ग्राम दवा मिलाकर उपचारित करें। 1 हेक्टेयर खेत में रोपाई के लिए 40 से 50 वर्ग मीटर भूमि पौधशाला के लिए पर्याप्त होगी। बीज बोने के लिए पौधशाला की ऊंचाई भूमि की सतह से 15 से 20 सेंटीमीटर रखें तथा उसमें पानी नहीं रुके इसकी भी व्यवस्था रखें। क्यारियों की चौड़ाई 1 मीटर तथा लंबाई आवश्यकता अनुसार रखें। बीज को उपचारित करना किसी भी हालत में नहीं भूलें, अन्यथा पौधे बीमारी से आक्रांत होकर मर जाएंगे और उपज में काफ़ी कमी होगी। अगर पौधे कमजोर हों तो यूरिया का उपरिवेशन कर तुरंत सिंचाई कर दें। पौधशाला में लगे पौधे को कम से कम 2 बार 10 से 12 दिनों के अंतराल पर डायथेन M45 नामक फफूंदनाशी दवा का छिड़काव करें ताकि रोग होने की आशंका नहीं रहे। कीट का आक्रमण दिखाई पड़े तो मेटास्टाक दवा के 0.1% घोल का छिड़काव भी 10 से 12 दिनों के अंतराल पर करें। हरी मिर्च के लिए फसल सारों भर उगाई जाती है। किसान भाई इसके लिए बुआई भी फसल लेने के समय के हिसाब से ही करें। सफल खेती के लिए स्वस्थ और रोग मुक्त बीज का उपयोग करें। बीज की दर उसके अंकुरण और शुद्धता प्रतिशत पर निर्भर करती है। यदि बीज का अंकुरण 90 से 95% है तो प्रति हेक्टेयर 700 से 900 ग्राम बीज की आवश्यकता होगी। प्रायः मिर्च के पौधे के रोपण शाम के समय ही आप करें। तेज धूप के समय यदि आप रोपाई करती हैं तो पौधे की वृद्धि कम होती है और पौधे मुरझाने लगते हैं, उन्हें सूखने का भी भय रहता है। मिर्च में रोपाई के लिए उचित दूरी किस्म एवं ऋतुओं के अनुसार कम या अधिक होती है। साधारण तौर पर मिर्च की रोपाई पंक्ति से पंक्ति 45 से 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखें। अगर खेत में उर्वरा शक्ति काफ़ी अधिक है तो दूरी कुछ और अधिक आप बढ़ा सकते हैं। किस्मों के बारे में आप जान लें। मसाला के लिए मिर्च की प्रमुख किस्में हैं पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, G1, G2, G4, G5, पंतसी 1, आंध्र ज्योति, भाग्यलक्ष्मी, K2, पंजाब लाल। संकर किस्मों के लिए सोल्जर, क्रांति, दशहरा, गोदावरी, प्रीति, हीरो, BSS 202, BSS 414, तेजस्विनी अच्छी जातियां हैं। इनकी आप बुआई कर सकते हैं। कुछ कम कड़वी किस्में भी हैं जिसमें अर्क वसंत, अर्क गौरव प्रमुख हैं। संकर किस्म में भारत और इंदिरा का प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके अलावा अब ध्यान देने वाली बात यह है कि खेत में खरपतवार नहीं होने चाहिए। इसके लिए आप निकाई गुड़ाई करते रहें। कृषि रसायनों का भी प्रयोग आप कर सकती हैं। बरसात के मौसम में सिंचाई की आवश्यकता

0: आवश्यकता कम होती है, लेकिन यदि वर्षा नहीं हो और धूप तेज हो, नमी की कमी हो जाए, तो उस समय आवश्यकता अनुसार आप सिंचाई भी कर सकते हैं।
1: खेत खलिहान में अभी आपने सुना वार्ता, मिर्च की खेती। वार्ताकार थे श्रीनिवास सहाय। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। 6 बजने ही वाले हैं, अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार भी शामिल था। राष्ट्रीय पात्र परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
3: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे, ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे, जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
2: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। इस बीच कल तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति में नाटकीय मोड़ आया, जब अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सरकार को समर्थन देने को लेकर 2 गुटों में बट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडापड्डी के पलानी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवीके सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने एसपी वेलुमणि को विधायक दल का नेता चुना है। अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम के इकलौते विधायक एस कामराज को टीवी के सरकार को समर्थन देने की घोषणा के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान के दौरे पर रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य भारत भूटान संबंधों को और मजबूत करना है। 51 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद और विदेश मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। कल राज्य में सबसे गर्म स्थान बाड़मेर रहा, जहां अधिकतम तापमान 48.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक ने बताया कि राज्य के पश्चिमी जिलों में अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम की यथास्थिति बनी रहेगी। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइज

0: रेंजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने अपने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स की टीम 15वें ओवर में 86 रन पर ही सिमट गई। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है चिंतन मनन।
2: एक बार महात्मा गांधी अपने आश्रम से निकल अपने सहयोगियों के साथ प्रातः भ्रमण में जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक जगह गंदगी देखी, किसी ने शौच कर दिया था। गांधी जी रुक गए, थोड़ी मिट्टी उठा कर ले आए और उस गंदगी पर डाल दिया। बाद में वे कहने लगे कि इस गंदगी पर जो मक्खी बैठेगी वह दूर दूर तक गंदगी फैलाएगी, किसी के मुंह पर बैठेगी इससे बीमारी फैलेगी। वे बड़े दुखी हुए। अपने सायंकालीन प्रार्थना सभा में भी उन्होंने इसकी चर्चा की और कहा कि हमें हर हालत में बाहर शौच का सिलसिला बंद करना चाहिए, खासकर महिलाओं को विद्रोह कर देना चाहिए कि वे उस घर में नहीं रहेंगी जहां उन्हें शौच के लिए बाहर जाना पड़ता है। गांधी जी की विशेषता थी कि वे जो कहते थे खुद उसे पहले अपने जीवन में उतारते थे। वे सदा कहते थे कि हम जहां रहते हैं उसके और आसपास की सफाई भी हमें करनी चाहिए, इसलिए वे खुद और आश्रमवासियों के साथ शारीरिक श्रम करते, झाड़ू देते थे और शौचालयों की सफाई भी करते थे। आज प्रायः देखा जाता है कि सफाई के मामले में हम में से बहुत लोग लापरवाह हैं। खुद अपने घर की सफाई हम नहीं करते और इसके लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। जहां परिवार का प्रत्येक सदस्य सफाई के मामले में जागरूक है वहां उसका घर साफ सुथरा रहता है और जहां सफाई रहती है वहां बीमारी भी जल्दी नहीं फटकती है। प्रायः यह देखा जाता है कि जो व्यक्ति या परिवार सफाई को लेकर लापरवाह है वहां स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं ज्यादा होती है। गांधी जी का कहना था कि हमारा घर ही हमारे विचारों का प्रतिबिंब है। जिस घर में सफाई रहती है वहां समृद्धि भी आती है। समृद्धि केवल धन ही नहीं है, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा विचार भी समृद्धि की पहचान है। इसलिए उनका यह कहना कि 24 घंटे में कुछ समय में अपने घर आसपास और अड़ोस पड़ोस की सफाई के लिए जरूर निकालना चाहिए। अगर सफाई अभियान सम्मिलित रूप से किया जाए तब वह ज्यादा असरदार होता है। गांधी जी जहां भी जाते थे अपने प्रवचन में जिन बातों की चर्चा करते थे उसमें सफाई भी शामिल होती थी। एक कार्यालय का बड़ा रंग रोगन किया गया। जब उस कार्यालय का निरीक्षण करने बड़े अधिकारी आए तो वह यह देखकर बड़े दुखी हो गए कि इस कार्यालय को रंग रोगन किए गए 2-3 महीने भी नहीं हुए हैं। सीढ़ी के कोने में पान खाने वालों ने पीक थूक कर गंदा कर दिया है। इतना ही नहीं, कई जगहों पर पान खाने के शौकीन बाथरूम में लगे हाथ धोने के बेसिन को भी नहीं छोड़ते, वहां भी पीक थूक दिया करते हैं। इस गंदी आदत से सारा माहौल गंदा हो जाता है। प्रायः देखा जाता है कि लोग घर में जमा कूड़े सड़क पर डाल देते हैं। थोड़ी दूर चलकर कूड़ेदान में कूड़ा डालने का कष्ट वे नहीं करते। नतीजा यह कि देखा देखी उनके आसपास के घरों में भी यही होने लगता है। परिणाम सारा मोहल्ला कूड़े की बदबू से परेशान हो जाता है। सड़क पर चलने में भी कठिनाई होने लगती है। अगर थोड़ा कष्ट उठाकर घर का कूड़ा कूड़ेदान में डाला जाए तो ना तो बदबू की समस्या रहेगी और ना गंदगी की। यह भी देखा जाता है कि राह चलते हम खाली डब्बे या पैकेट फेंक देते हैं, केले के छिलके केला खाकर सड़क पर छोड़ देते हैं। कभी कभी इसके परिणाम बड़े भयंकर होते हैं, बड़ी दुर्घटना हो जाती है। अगर हम साथ में छोटा झोला रखें जिसमें खाली पैकेट या छिलके डालते जाएं और बाद में उन्हें कूड़ेदान में डाल दें

0: तो ये समस्या आए ही नहीं। अब पॉलिथीन के इस्तेमाल से उत्पन्न दुष्परिणामों को ही ले लीजिए, इसके बाद भी हम इसका उपयोग करते जा रहे हैं। पॉलिथीन के उपयोग को रोकने के लिए सरकार कानून बना रही है, लेकिन कानून के पालन की सफलता इसी पर निर्भर है कि हम यह दृढ़ता के साथ फैसला ले लें कि हम किसी भी हालत में इसका उपयोग नहीं करेंगे। स्वच्छ भारत अभियान का भी यही उद्देश्य है कि सफाई के मामले में हम जागरूक हों।
1: अभी आपने सुना चिंतन मनन, आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए देश वंदना।

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। अब आइए आपको सुनवाते हैं उदित नारायण के स्वर में ये भजन।

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। अब आइए आपको सुनवाते हैं अनुराधा पौडवाल के स्वर में ये भजन।

श्रोताओं, कहते हैं कि माँ की ममता में वो शक्ति है जो पत्थर को भी मोम कर दे। माँ शब्द में ही पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, चाहे वह वैष्णो देवी की चढ़ाई हो या घर के मंदिर में जलती एक छोटी सी ज्योति।

0: अभी आपने सुना भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा में भेंट वार्ता। शिशुओं में फेफड़े का संक्रमण, भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर नवजीवन, भेंट करता है कुशमाकर दुबे।
1: डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। हम श्रोताओं के लिए आपसे जानना चाहें कि शिशुओं में कभी कभी फेफड़ों का संक्रमण हो जाया करता है कई तरह से, तो वो क्या है, कैसे होता है?
2: फेफड़ों का संक्रमण एक्चुअली हवा जनित रोग है
1: जी,
2: वायु जनित रोग कह सकते हैं
1: जी,
2: जिसके कारण कि जर्म जैसे वायरस या बैक्टीरिया
1: जी,
2: वो सांस के द्वारा फेफड़े में चले जाते हैं और वो वहाँ संक्रमण पैदा करते हैं।
1: तो इसमें क्या क्या होता है बच्चे को?
2: जैसे संक्रमण होता है तो दो तीन चीज़ हो सकता है। एक तो है कि सिर्फ सर्दी खांसी रह के रह गया
1: जी,
2: उससे उसके बाद हो सकता है कि उसके साथ जो है सांस लेने में दिक्कत होने लगी।
1: अच्छा।
2: तो माइल्ड या माइल्ड निमोनिया उसको बोलते हैं।
1: अच्छा।
2: सांस लेने में दिक्कत होने लगी
1: जी, जी।
2: उसके बाद हो सकता है कि सांस लेने में दिक्कत बढ़ती गई और पंजड़ा फेंकना, जिसको बाखा फेंकना कहते हैं, वो होने लगा, तब उसको कहते हैं हम लोग सीवियर निमोनिया।
1: अच्छा।
2: या फेफड़े का संक्रमण।
1: अच्छा,
2: उससे
1: जी, जी,
2: उससे भी ज़्यादा अगर हो, जैसे बच्चा निढाल हो जाए, सुस्त हो गया और कुछ बोल नहीं पा रहा, पी नहीं पा रहा है, तब उसको बोलते हैं वेरी सीवियर निमोनिया हो गया। इस सीवियर निमोनिया, वेरी सीवियर निमोनिया दोनों में बच्चे को भर्ती करना चाहिए तुरंत, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है।
1: अच्छा।
2: और एंटीबायोटिक्स स्टार्ट करना पड़ता है। लेकिन माइल्ड निमोनिया में जो है वेट कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा पी रहा है, दूध पी रहा है, दवा ले सकता है। उसके बाद जो है वो दवा भी नहीं ले सकता है, पानी भी नहीं पी सकता है और उल्टी होती है साथ में।
1: अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये किस उम्र के बच्चे को होता है?
2: हम लोग कहते हैं कि 0 से 5 साल में बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है, और जितने दुनिया भर में मौत होती है 0 से 5 साल में बच्चों में,
1: मैंने
2: 2 महीने से 5 महीने में, उसमें 13% मौत जो है वो निमोनिया से ही, फेफड़ों के संक्रमण से ही होती है।
1: अच्छा, कभी कभी ऐसा हो जाता है डॉक्टर साहब कि किसी बच्चे को यदि निमोनिया हुआ या जैसे कहें फेफड़ों का संक्रमण हुआ, तो उसकी सांस कुछ क्षण के लिए रुक जाती है, 10 सेकेंड 20 सेकेंड या कभी कभी आधा मिनट के लिए भी, 1 मिनट के आसपास रुक जाती है। अचानक घर में पूरा हल्ला होने लगता है, आ जाइए तो क्या, फिर अचानक उसकी सांस वापस आती है, ये सब क्या है?
2: ये उस समय एक्चुअली होता है कि ऑक्सीजन की इतनी कमी हो जाती है, ऑक्सीजन जिसके कारण की सांस, रेस्पिरेटरी सेंटर जो है ब्रेन में वो काम नहीं करता है, कुछ क्षण के लिए वो जो है सांस रुक जाता है। तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जमा होने लगा
1: जी,
2: तो वो जमा कार्बन डाइऑक्साइड फिर उसको स्टिमुलेट करता है, उत्तेजित करता है सेंटर को, फिर सांस वापस आ जाता है।
1: अच्छा,
2: तो जब भी इस तरह का है कि 20 सेकंड के लिए सांस रुक गया या चमकी आ गया, मैंने ब्रेन से रिलेटेड हो गया
1: जी,
2: तो इसका मैंने वेरी सीवियर निमोनिया में हो गया, तुरंत उसको भर्ती करना चाहिए।
1: अच्छा, और अगर कहीं किसी गांव में या कहीं जो किसी बच्चे को अगर ऐसा हो गया, निमोनिया था और तुरंत सांस रुक गई, तो दौड़ कर किसी जो नज़दीकी डॉक्टर मिले वहाँ जाना चाहिए।
2: उसमें कोशिश करना चाहिए हेल्थ सेंटर में नज़दीक में कि जो एक कोई भी एंटीबायोटिक हो वो इंजेक्शन लग जाए।
1: अच्छा।
2: और लगा के जो है, अगर ऑक्सीजन का प्रबंध है तो ऑक्सीजन के साथ

0: नहीं तो ऐसे भेज दे।
1: अच्छा, इस तरह से करें। तो इस तरह के जो संक्रमण के बाद जो बच्चा है जिसको ऐसा हुआ, वो इलाज के बाद पूरा ठीक हो जाता है
0: वो पूरा ठीक हो जाता है,
1: जी?
0: एकदम ठीक हो जाता
1: और भविष्य में किसी तरह की फिर आशंका रहती है क्या
0: है।
1: उसको?
0: जैसे इसके रोकथाम के उपाय के बारे में कह सकते हैं, तो हालांकि ये वायु जनित रोग है, लेकिन हैंड वॉश का प्रैक्टिस जो है ये बचाता है इससे।
1: अच्छा, इसको जरा
0: हाँ,
1: ठीक से समझा दिया जाए।
0: हैंड वॉश का प्रैक्टिस इस तरह से कि जैसे कहीं गया वहाँ पर
1: जी।
0: उसने जो है कहीं पर छींका है या
1: हाँ
0: खांसा
1: हाँ
0: है तो
1: हाँ
0: वायरस वहाँ मौजूद है,
1: जी।
0: आपने वहाँ हाथ रखा तो हाथ से में सट गया वायरस, फिर
1: अच्छा।
0: आप घर आए अपने बच्चे को लिया तो वो उसको पास हो सकता है।
1: अच्छा,
0: इसलिए
1: तो बड़ों को ये ध्यान रखना है।
0: बड़ों को ये ध्यान रखना है, हैंड वॉश की प्रैक्टिस।
1: जी।
0: और बच्चों में निमोनिया का दो तरह का टीका भी उपलब्ध है,
1: अच्छा
0: हाँ,
1: जी।
0: जो
1: तो
0: दिलवाना चाहिए, 0 से 5 साल में जो है ये टीका पड़ता है, जितना जल्दी दिला सके उतना अच्छा है।
1: जी, तो गांव देहात में जो लोग हैं वो कहाँ जाएंगे टीका दिलवाने के लिए, आमतौर पे बता दिया जाए?
0: जी, वो जो है नज़दीकी, ये एक्चुअली यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में अभी नहीं आया है
1: जी
0: निमोनिया का टीका, तो
1: जी
0: इसके लिए उनको किसी डॉक्टर के यहाँ ही जाना होगा।
1: तो डॉक्टर साहब, आपने फेफड़ों के संक्रमण पर इतनी अच्छी बातचीत की हमसे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: स्वास्थ्य चर्चा में अभी आपने सुना भेंटवार्ता। शिशुओं में फेफड़े का संक्रमण, भेंटवार्ताकार थे डॉक्टर नवजीवन, भेंटकर्ता थे कुसुमाकर दुबे। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है रामचरितमानस गान की अगली कड़ी।

चित्रकूट में एकत्रित साधुओं तथा गुरुजनों की सभा में भरत विविध प्रकार से श्री राम के प्रति अपनी भक्ति और निष्ठा प्रकट करते हैं। प्रेम के प्रण को निभाते हुए पिता की मृत्यु, माता कैकेयी की कुबुद्धि, अन्य माताओं की विकलता तथा अवध निवासियों के परिताप, इन सभी अनर्थों के मूल में भरत स्वयं को पाते हैं। तब मुनि वशिष्ठ ने अनेक कथाएं सुनाते हुए भरत जी के परिताप का समाधान किया। प्रभु श्री राम ने कहा, हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही ग्लानि करते हो। जीव की गति ईश्वर के अधीन होती है। तीनों काल तथा तीनों लोकों के सभी पुण्यात्माओं से तुम्हारा स्थान ऊंचा है। शिवजी साक्षी हैं कि ये पृथ्वी तुम जैसे पुण्यात्माओं के बल पर टिकी है। प्रेम और बैर छिपाए नहीं छिपते। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं। वे मुनियों के पास निशंक चले जाते हैं, किंतु बधिकों को देखते ही भाग खड़े होते हैं।

श्रोताओं, आपसे थोड़ी देर बाद यानी 7 बजे से लेकर 7:55 तक आप सुनेंगे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे रसरंग, मौसम सूचना, रेल सूचना, समाचार पत्रों की सुर्खियां, आज के दिन का इतिहास, काव्यांजलि एवं फिल्म संगीत। 9:06 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम नगमे नए पुराने। कार्यक्रम सुगम संगीत आप सुनेंगे 9:30 पर, कलाकार होंगी पायल चक्रवर्ती। 10 बजे से आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम पुरानी फिल्म से। 10:30 पर आप सुनेंगे लोकगीत, कलाकार होंगे चामालाल मंडल। समर्पित कार्यक्रम आओ साथ चलें आप सुनेंगे 10:45 पर हमारे आकाशवाणी के पटना केंद्र से। 11 बजे से आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम नई फिल्मों से। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता आप सुनेंगे 11:30 पर। दोपहर 12 बजे से नारी लोक कार्यक्रम का प्रसारण होगा। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता होंगे श्री पार्वती के। 12:30 पर आप सुनेंगे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंग आप सुनेंगे दोपहर 1 बजे से। गायक कलाकार होंगे विनय कुमार शुक्ला। घर आंगन कार्यक्रम का प्रसारण होगा 1:30 पर। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता होंगे अतुल कुमार प्रियदर्शन। फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से आप सुनेंगे 2:30 पर। 3 बजे से आप सुनेंगे रविंद्र संगीत। कलाकार होंगे हेमंत मुखोपाध्याय। 3:20 पर आप सुनेंगे समूह स्वर में देशभक्ति गीत। 3:25 से लेकर शाम 5 बजे तक विविध भारतीय राष्ट्र सेवा के कार्यक्रमों का प्रसारण होगा हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। शाम 5 बजे से आप सुनेंगे युवा वर्गों को संबोधित कार्यक्रम युववाणी। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता होंगे सौरभ कुमार। 5:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। शाम 6 बजे से आप सुनेंगे ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता होंगे अतुल कुमार प्रियदर्शन। 6:35 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम पारा मेडिकल है पारस। विशेष भेंट वार्ता आप सुनेंगे 7:10 पर। UPSC सिविल सेवा परीक्षा में सफलता के मूल मंत्र, भेंटवार्ताकार होंगे यश विशेन, भेंटकर्ता होंगे ब्रजकिशोर रजक। 7:52 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम सुरलहरी। गायक कलाकार होंगे अभिजीत आनंद। रात्रि 8 बजे से आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय है हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कंपेयरिंग आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फिल्म से आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे से। और 10:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से।

0: अभी आपने सुना हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। 6:55 होने ही वाले हैं। अब आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणेन अस्य वर्षस्य राष्ट्रिय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी इत्यस्याः आयोजने प्रश्नपत्रम् अनधिकृतरीत्या बहिरागमन विषयमालक्ष्य प्रकरणं पञ्जीकृतम्। शिक्षा मंत्रालयस्य उच्च शिक्षा विभागात् प्राप्तस्य लिखित परिवादस्य आधारे संस्थया एतत् प्रकरणं पञ्जीकृतम्। संस्थया संसूचितं यत् विशेषाणां केन्द्रीयावेषणाभिकरणदरानां निर्माणम्

गुड मॉर्निंग विक्रमशिला दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम में जिसे आप रोजाना सुनते हैं सुबह के 7 बजे से लेकर 7:55 तक। और श्रोताओं, आज मैं हूं आप सभी के साथ आपका रेडियो दोस्त केशव, और आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह प्रोग्राम जानकारियों से भरा है, जहां पर हम जानते हैं बहुत सी जानकारियों को, जैसे कि मौसम सूचना, रेल सूचना, समाचार पत्रों की सुर्खियां, आज के दिन का इतिहास एवं अन्य जानकारियां। और श्रोताओं, आप सभी को पता है कि हमारा कार्यक्रम 2 पड़ाव में आपके समक्ष प्रस्तुत होता है, जिसमें कि कार्यक्रम के पहले पड़ाव में हम आपको सुनवाते हैं रसरंग, और रसरंग में आज हमारे साथ गायक कलाकार हैं सुनील कुमार मिश्र। और साथ ही साथ 7:20 पर आज बुधवार के दिन हम आपको सुनवाते हैं काव्यांजलि, और कवि आज हमारे साथ काव्यांजलि में कवि हैं दिनेश प्रसाद चौधरी। और साथ ही साथ कार्यक्रम के दूसरे पड़ाव में हम आपको अन्य शेष जानकारियों के साथ सुनवाते हैं फिल्म संगीत। तो आइए श्रोताओं, बिना किसी देरी के अपने कार्यक्रम की करते हैं शुरुआत और सुनते हैं गायक कलाकार सुनील कुमार मिश्र के द्वारा गाया यह भजन।

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला, और मैं हूं आप सभी के साथ आपका रेडियो दोस्त केशव। और अब आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अपने जानकारियों की करते हैं शुरुआत और जानते हैं मौसम सूचना के बारे में। आपको बता दें, भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 13 से 17 मई के दौरान जिले में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी, 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने एवं हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75% तथा दोपहर में 30 से 40% रहने की संभावना है। पूर्वानुमान की अवधि में 10 से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूर्वा हवा चलने की भी संभावना है। तो श्रोताओं, ये थी मौसम सूचना के बारे में जानकारी, और अब आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए हम सुनते हैं गायक कलाकार सुनील कुमार मिश्र के द्वारा गाया यह भजन। लेकिन उससे पहले कुछ जानकारियों को सुनते हैं।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: ट्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रेश, ट्रेश और बाल्टी बॉय।
4: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
5: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
4: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
5: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
4: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
5: 8700001424।

0: रसरंग में अभी आपने सुना गायक कलाकार सुनील कुमार मिश्र को। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में 7:20 हुए हैं। प्रस्तुत है काव्यांजलि। कवि हैं दिनेश प्रसाद चौधरी।
1: पहली कविता है नारी तुम हो शक्ति राष्ट्र की। शक्ति साधना बिना न बनता कोई बिगड़ा काम। नारी तुम हो शक्ति राष्ट्र की, सत सत तुम्हें प्रणाम। महादेव शिव ने जगहित है आदि शक्ति को साधा।

देवों को जब जब असुरों ने छेड़ा और सताया, तब देवों को विपदा में ध्यान तुम्हारा आया। तब दुर्गा बनकर तुमने ही जीते थे संग्राम, नारी तुम हो शक्ति राष्ट्र की, सत सत तुम्हें प्रणाम। वीर शिवाजी तो माँ से प्रेरित होकर आए, रिपभू टिक न सके थे जिनकी प्राण शक्ति के आगे। झांसी की रानी बन तुमने जब तलवार चलाए, अंग्रेजों जैसे शासक की छाती थी थर्राई। है प्रभात उत्साह तुम्हारा उदासीनता शाम, नारी तुम हो शक्ति राष्ट्र की, सत सत तुम्हें प्रणाम। घर परिवार राष्ट्र की दुर्गति तुम्हें निहार रही है, युग युग से पीड़ित मानवता तुम्हें पुकार रही है। किंतु उपेक्षा उदासीनता देख तुम्हारी नारी, मानवता छटपटा उठी है मन में पीड़ा भारी। आधी आबादी की मूर्छा का यह है परिणाम, नारी तुम हो शक्ति राष्ट्र की, सत सत तुम्हें प्रणाम। शक्ति न जागी तो शिव कैसे दुष्ट अशिव को तोड़े, ध्वंस हुआ हावी मानव को कौन सृजन से जोड़े। रुका हुआ हर क्षेत्र प्रगति का लंगड़ाई सी गति है, बिना तुम्हारे रुकी रुकी सी नर की सभी प्रगति है। शक्ति न जागी अगर राष्ट्र की होगा क्या अंजाम, नारी तुम हो शक्ति राष्ट्र की, सत्सत तुम्हें प्रणाम। नारी तुम हो शक्ति राष्ट्र की, सत्सत तुम्हें प्रणाम। मेरी दूसरी कविता है, वह युग जल्दी ही आएगा।

मान बचाएगा, वह युग जल्दी ही आएगा, वह युग जल्दी ही आएगा। जब सज्जनता की ओर समय की धारा मोड़ी जाएगी, असफल होकर भी जीवन में जब नीति न छोड़ी जाएगी, विष वृक्ष असुरता का खुद ही निर्जीव पड़ा मुरझाएगा, वह युग जल्दी ही आएगा, वह युग जल्दी ही आएगा। नारी की गरिमा बढ़कर जब नर से ऊंची हो जाएगी, होगी वह भार स्वरूप नहीं, सबको सन्मार्ग दिखाएगी। स्वीकार करेगा जो दहेज को, वह महाभ्रष्ट कहलाएगा, वह युग जल्दी ही आएगा, वह युग जल्दी ही आएगा। आदर्श सभी का होगा जब सादा जीवन ऊंचा चिंतन, ओजस्वी होगा तरुण रक्त तज फैशन का दीवानापन। पशु की श्रेणी में होगा वह जो इंद्रिय सुख अपनाएगा, वह युग जल्दी ही आएगा, वह युग जल्दी ही आएगा। जब धर्म और विज्ञान यहाँ मिलकर पूरक बन जाएंगे, कर्तव्य परायण जन ही जब सच्चे आशिक कहलाएंगे, जब स्वर्ग स्वयं विह्वल होकर इस धरती की जय गाएगा, वह युग जल्दी ही आएगा, वह युग जल्दी ही आएगा। मेरी तीसरी कविता है नारी जागरण। देवियां देश की जाग जाए अगर युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा, देवियां देश की जाग जाए अगर युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा, शक्तियां जागरण गीत गाए अगर हर हृदय ही मचलता चला जाएगा, वीर संतान से कोख खाली नहीं, गोद में कौन सी शक्ति पाली नहीं, जननियां शक्ति को साध पाए अगर सौर्य शिशुओं का बढ़ता चला जाएगा, मूर्ति पुरुषार्थ में है सदाचार की, पूर्ति श्रम से सहज साध्य अधिकार की, पत्नियां सादगी साध पाए अगर पति स्वयं ही बदलता चला जाएगा, छोड़ दे नारियां यदि गलत रूढ़ियां, तोड़ दे अंधविश्वास की बेड़ियां, नारियां दुष्प्रथाएं मिटाए अगर दंभ का दम निकलता चला जाएगा।

देवियां देश की जाग जाए, अगर युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। धर्म का वास्तविक रूप हो सामने, धर्म गिरते हुओं को लगे थामने। शक्तियां भक्तियां भावना को जगा सजा ले, अगर ज्ञान का दीप जलता चला जाएगा। यह धरा फिर स्वर्ग सी समरने लगे, स्वर्ग की रूप सज्जा उभरने लगे। देवियां दिव्य चिंतन जगाए, अगर हर मनुज देव बनता चला जाएगा। शक्तियां देश की जाग जाए, अगर युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। कब तक कर रहा हूँ, युग परिवर्तन, बदलो अपनी चाल, नया युग आने वाला है। हुई दिशाएं लाल, अंधेरा जाने वाला है। अब तक था घन घोर अंधेरा छाया धरती पर, था आलस्य प्रमाद भरा कन कन इस धरती पर। कटाती मिर का जाल, उजाला छाने वाला है। बदलो अपनी चाल, नया युग आने वाला है। दसों दिशाएं जाग रही है लेकर अंगराए, मुर्गे बोले नव प्रभात की बेला है आई। पक्षी दल जग पड़ा, प्रभाती गाने वाला है। बदलो अपनी चाल, नया युग आने वाला है। जागें और जगाएं, अब भी सोना है नादानी। चलो करें नूतन प्रभात से युग की अगवानी। जिसने भरी उछाल, सफलता पाने वाला है। बदलो अपनी चाल, नया युग आने वाला है। जिसने कृष्ण बुद्ध गांधी का आना पहचाना, वे चल पड़े साथ में, उनको पड़ा नहीं पछताना। फिर हुए निढाल, कौन जुटलाने वाला है। बदलो अपनी चाल, नया युग आने वाला है। बदलो अपनी चाल, नया युग आने वाला है। अंतिम प्रेरणा गीत है ना।

0: आएगा। नारी की स्नेह सुधा पी कर तो सारा जग पलता है। शिशु बनकर मानव का मन गोदी में पड़ा मचलता है। निज रक्त पिला पोषण करती भरती है अपना मधुर प्राण। जग के दुख तापों से हंस हंस देती है सबको वही त्राण। नारी के इन अनुदानों का प्रतिदान चुकाया जाएगा। वह युग जल्दी ही आएगा, वह युग जल्दी ही आएगा। बस उसकी एक ही दृष्टि से ही जीवन अध्याय बदलते हैं। नारी की गरिमा महिमा से हम गौरव अनुभव करते हैं। जब थक कर हरा सा मनुष्य पथ बीच बीच रुक जाता है, तब साहस भरती है नारी। प्राण में प्रेरणा पाता है। सम्मान नारियों का करना सबको सिखलाया जाएगा। वह युग जल्दी ही आएगा, वह युग जल्दी ही आएगा। वह स्वयं कष्ट सह लेती है, देती है सबको सुविधाएं। यदि अंचल की छाया हो तो तृण बन जाती बाधाएं। देती है शक्ति अपरमित माँ की प्यार भरी मीठी वाणी। ये वह बनी पूर्णता जीवन की सदा सर्वदा कल्याणी। सब समझे नारी की महिमा, वह ज्ञान जगाया जाएगा। वह युग जल्दी ही आएगा, वह युग जल्दी ही आएगा।
1: काव्यांजलि में अभी आपने सुना कवि दिनेश प्रसाद चौधरी को। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। और अब आइए कार्यक्रम के दूसरे पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं और अब हम जानेंगे अन्य शेष जानकारियों को और आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत। और जानकारियों की सिलसिले को करते हैं शुरू और जानते हैं आज के दिन के इतिहास के बारे में। आज की तारीख है 13 मई और 13 मई को क्या कुछ प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं हैं इसके बारे में हम जानते हैं। श्रोताओं, आपको बता दें कि साल 1648 ईस्वी में आज ही के दिन दिल्ली में लाल किले का निर्माण कार्य पूरा हुआ था। साल 1830 में इक्वाडोर गणराज्य की स्थापना हुई। जुआन जोस फ्लोरेंस पहले राष्ट्रपति बने थे इक्वाडोर के। साल

1905 ईस्वी में भारत के पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद का जन्म आज ही के दिन हुआ था। साल 1952 में स्वतंत्र भारत की पहली संसद का पहला सत्र लोकसभा और राज्यसभा आहूत किया गया था। साल 1962 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में आज के दिन पदभार संभाला था। साल 1998 ईस्वी में भारत ने पोखरण में दो और परमाणु परीक्षण किए, जिसमें दुनिया चकित रह गई। साल 2000 ईस्वी में भारतीय सुंदरी लारा दत्ता ने मिस यूनिवर्स 2000 का खिताब जीता था। और साल 2001 ईस्वी में भारतीय साहित्य जगत के सबसे बड़े नामों में से एक आर के नारायण का निधन आज के दिन हुआ था। तो श्रोताओं, ये थी देश दुनिया में आज के तारीख में घटित ऐतिहासिक घटनाएं जिनके बारे में हमने जाना। और अब आइए आपको सुनवाते हैं ये फिल्मी गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म सत्यमेव जयते 2 से। इस गीत को आवाज़ दिया है वी प्राक ने।

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। और अब आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए सुनते हैं कुछ जानकारियों को।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: दीदी नौकरी लग गई।
2: अरे वाह बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
1: हाँ दी नया मोबाइल।
2: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
1: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
2: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
1: पर दीप
2: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
1: हाँ दी पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
2: अच्छा
3: आरबीआई कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: सुनो ना।
6: हाँ?
5: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
6: तो रोका किसने है? हाँ?
5: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
6: मुझसे।
5: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
6: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
5: पर उससे मेरा क्या फायदा?
6: देखो फायदा है जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
5: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूँ।
6: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
5: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
7: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। श्रोताओं आप सभी सुन रहे हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। आइए श्रोताओं अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए हम जानते हैं रेल सूचना के बारे में जानकारी। और आपको बता दें गाड़ी संख्या 15553 भागलपुर जयनगर एक्सप्रेस जो कि भागलपुर से चलकर जयनगर को जाती है। इस ट्रेन का सही समय है 7:50, लेकिन यह ट्रेन आज जयनगर तक नहीं जाएगी। यह ट्रेन भागलपुर से बरौनी तक ही जाने वाली है। तो अपनी यात्रा को देखते हुए आपको यह जानकारी हमने प्रदान कर दिया और अब आप देख सकते हैं कि आपको किस प्रकार अपने गंतव्य तक पहुंचना है। और आगे की जानकारी बताएं आपको तो गाड़ी संख्या 13016 हावड़ा कविगुरु एक्सप्रेस जो कि रोज़ाना चलती है और यह ट्रेन 7:55 पर भागलपुर जंक्शन से रवाना होगी। वहीं बात करें गाड़ी संख्या 12368 आनंद विहार भागलपुर विक्रमशिला एक्सप्रेस जिसका सही समय है सुबह आगमन का 8:15 पर और यह गाड़ी अपने समय से लगभग 1:10 की देरी से चल रही है। वहीं बात करें गाड़ी संख्या 15658 ब्रह्मपुत्र मेल जिसका सही समय है आगमन का 8:05 पर और यह गाड़ी अपने समय से लगभग 2 की देरी से चल रही है। वहीं बात करें गाड़ी संख्या 53416 हावड़ा साहिबगंज पैसेंजर जिसका सही समय है 8:37

और यह गाड़ी अपने सही समय पर भागलपुर जंक्शन पहुंचेगी। वहीं बात करें गाड़ी संख्या 15648 भागलपुर लोकमान तिलन माफ कीजिएगा भागलपुर लोकमान तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस जो कि बुधवार के दिन भागलपुर होते हुए गुजरती है। इस गाड़ी का सही समय है आगमन का 8:30 और यह गाड़ी अपने समय से लगभग 1:45 की देरी से चल रही है। वहीं बात करें गाड़ी संख्या 13403 रांची भागलपुर वनांचल एक्सप्रेस जिसका सही समय है आगमन का 9:00 और यह गाड़ी अपने समय से लगभग 30 की देरी से चल रही है। गाड़ी संख्या 13409 मालदा क्यूल इंटरसिटी जिसका सही समय है सुबह आगमन का 9:35 और यह गाड़ी अपने समय से लगभग 45 की देरी से चल रही है। वहीं बात करें गाड़ी संख्या 13241 बांका राजेंद्र नगर इंटरसिटी जिसका सही समय है 10:15 और यह गाड़ी अपने सही समय पर भागलपुर जंक्शन पहुंचेगी। और गाड़ी संख्या 12367 भागलपुर आनंद विहार विक्रमशिला एक्सप्रेस जो कि रोजाना चलती है और इस गाड़ी का सही समय है 11:55। और श्रोताओं आपको एक बार फिर से सूचित कर दूं कि गाड़ी संख्या 15553 भागलपुर जयनगर एक्सप्रेस जो कि भागलपुर से चलकर जयनगर को जाती है यह गाड़ी आज बरौनी तक ही जाएगी। तो श्रोताओं ये थी रेल सूचना के बारे में जानकारी और अब आइए आपको सुनवाते हैं यह फिल्मी गीत जिसे हमने लिया है फिल्म कमांडो से। इस गीत को आवाज़ दिया है राहत फतेह अली खान ने।

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। और अब आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए हम जानते हैं समाचार पत्रों की सुर्खियों के बारे में। श्रोताओं, सबसे पहली सुर्खी है कि नीट रद्द, 22 लाख अभ्यर्थियों से खिलवाड़। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA ने 3 मई को हुई नीट UG 2026 की परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद मंगलवार को रद्द कर दी गई है। सरकार ने मामले की व्यापक जांच CBI को सौंप दी है। CBI की एक टीम ने नासिक से मुख्य आरोपी शुभम खैरनार को अपनी हिरासत में ले लिया है। वहीं अगली सुर्खी के बारे में बात करें तो अगली सुर्खी है, ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट में 60% नंबर लाना जरूरी, कम आए तो फेल होंगे। विस्तार से बताएं तो 4-व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना अब आसान नहीं होगा। नई व्यवस्था में अब कोई जुगाड़ काम नहीं आएगा। आवेदकों को ड्राइविंग टेस्ट में फर्स्ट डिवीजन लाना होगा, तभी वे पास माने जाएंगे। यह ड्राइविंग टेस्ट कुल 100 अंकों का होने वाला है। इसमें पास होने के लिए कम से कम 60% अंक लाना अनिवार्य है। अगर एक अंक भी कम आए तो आवेदक को फेल कर दिया जाएगा। फेल होने के बाद उन्हें दोबारा टेस्ट देने के लिए 1 हफ्ते के बाद स्लॉट लेना होगा। यह कड़ा नियम राज्य में पहली बार 4-व्हीलर चलाने वालों चालकों के लिए बनाया गया है। वहीं अगली सुर्खी के बारे में बात करें तो अगली सुर्खी है, BRO की टीम पहुंची, आज से बेली ब्रिज का काम शुरू।

को देखते हुए सेतु पर आम लोगों की आवाजाही पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं अगली सुर्खी की बात करें तो अगली सुर्खी है कि स्टेशन पर नई स्टेबलिंग लाइन तैयार। भागलपुर रेलवे स्टेशन के सटिंग नेक के पास नई स्टेबलिंग लाइन विकसित की गई है। डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता के मार्गदर्शन में बनी इस सुविधा की परिचालन तत्परता परखने के लिए मंगलवार को लाइट इंजन का ट्रायल सफलतापूर्वक किया गया। रेलवे के अनुसार नई अवसंरचना के चालू होने से स्टेशन पर ट्रेनों के संचालन और प्रबंधन में सहूलियत होगी। तो श्रोताओं, ये थी समाचार पत्रों की सुर्खियां और अब आइए आपको सुनवाते हैं ये फिल्मी गीत जिसे हमने लिया है फिल्म क्रिएचर 3D से। इस गीत को आवाज़ दिया है अरिजीत सिंह ने।

श्रोताओं, अब वक्त हमें और इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस कार्यक्रम में आपके साथ और आगे बढ़ पाएं। तो जाते जाते बस यही कहूंगा कि आप सभी खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और यूं ही आकाशवाणी भागलपुर से जुड़े रहिए। मैं चला, नमस्कार।

0: अभी आपने सुना मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे अतुल कुमार प्रियदर्शन। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: ट्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
4: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
5: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
4: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
5: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
4: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
0: रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
2: तिलका मांझी तो बहुत।
0: बख्शी जगबंधु का नाम सुना है?
6: बख्शी जगबंधु तो
2: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
7: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। 8 बजने ही वाले हैं। अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज एवं उर्दू समाचार हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
8: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार का बहुमत परीक्षण आज। राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस प्रमुख एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और

0: दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए। केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। समय से पहले दस्तक देगा मानसून और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है।
1: मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ लगातार संपर्क में हैं। सहयोगियों के समर्थन के साथ साथ टीवी के सरकार को अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK से अलग हुए गुट का समर्थन प्राप्त है। इस बीच तमिलनाडु में AIADMK सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बंट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडपाड़ी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वरिष्ठ नेता एग्री कृष्णमूर्ति ने चेतावनी दी है कि पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने वाले किसी भी विधायक को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने SP वेलुमणि को AIADMK विधायक दल का नेता चुना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जसपाल कौर।
0: वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने राज्य सरकार में IAS अधिकारियों का तबादला किया है, जिनमें पूर्व मुख्य सचिव N मुरुगंदम और वित्त सचिव T उदय चंद्रन शामिल हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में ज्योतिषी रिकी राधान पंडित को विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त किए जाने पर गठबंधन सहयोग ने कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल और ज्योतिमणि ने इस नियुक्ति पर सवाल उठाए, जबकि CPIM के राज्य सचिव P शुनगमुगम ने कहा है कि कदम सरकार के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के खिलाफ है। अखिल भारतीय NR कांग्रेस के नेता N रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पुदुचेरी में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। N रंगासामी एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। क्षेत्रवासी N रंगासामी का मुख्यमंत्री के रूप में यह 5वां कार्यकाल होगा। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा पुदुचेरी प्रभारी निर्मल कुमार सुराना और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष VP रामलिंगम सहित कई प्रमुख नेताओं के शामिल होने की संभावना है। इससे पहले श्री नितिन नवीन ने पार्टी मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और विधायकों के साथ बैठक की। पुदुचेरी से विपिन S नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने कथित नीट पेपर लीक मामले में शुभम खैरनार को हिरासत में ले लिया है। राजस्थान पुलिस के अनुरोध पर नासिक पुलिस ने कल महाराष्ट्र के नासिक से शुभम को हिरासत में लिया था। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट UG परीक्षा कल पेपर लीक के आरोपों के बीच रद्द कर दी गई। नीट UG के एक उम्मीदवार के अभिभावक ने लातूर SP कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है और आरोप लगाया है कि एक निजी कोचिंग संस्थान ने परीक्षा से पहले एक मॉक टेस्ट आयोजित किया था, जिसमें कथित तौर पर 42 प्रश्न नीट परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों से मेल खाते थे। इससे पहले राजस्थान पुलिस के विशेष जांच दल ने संदिग्ध नेटवर्क और धन के लेनदेन की जांच के दौरान 15 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने कल जयपुर से कथित मास्टरमाइंड मनीष को भी गिरफ्तार किया। इसी महीने की 7 तारीख को सीकर के करियर काउंसिलर राकेश कुमार समेत 5 लोगों को देहरादून से गिरफ्तार किया गया था और अगले दिन 4 नीट उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया। इस बीच राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर राज्य भर के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न

0: पड़े आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मितव्ययिता के आह्वान पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया और साप्ताहिक वाहन मुक्त दिवस को प्रोत्साहित किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने और सोने की अनावश्यक खरीद से बचने का आग्रह किया। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री और अन्य लोगों के वाहनों के बेड़े को तत्काल 50% तक कम करने का निर्देश दिया। उन्होंने आधिकारिक काफिलों से अनावश्यक वाहनों को हटाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य में घर से काम करने की संस्कृति को प्राथमिकता देने की भी अपील की। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो सेवाओं और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों के उपयोग पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों को सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए। सप्ताह में एक बार वाहन निषेध दिवस यानी नो व्हीकल डे का भी आयोजन किया जाना चाहिए। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
2: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। मुख्यमंत्री के काफिले में अब केवल 8 वाहन होंगे और कोई भी वाहन रैली आयोजित नहीं की जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कहा है कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कार पूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो और बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लैटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इसके अलावा अनुपालन मानदंडों की पूर्ति के अंतर्गत कीमती धातु के प्रयुक्त उत्प्रेरक पर 4.35% आयात शुल्क निर्धारित किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के चलते लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की। सरकार द्वारा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के वार्षिक और चौथी तिमाही के अनुमानों की प्रकाशन तिथि को संशोधित करते हुए प्रत्येक वर्ष मई के अंतिम कार्य दिवस से बदलकर 7 जून कर दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि ये संशोधन आंकड़ों की गुणवत्ता को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसद का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान की यात्रा पर जाएगा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत भूटान के संबंधों को और मजबूत करना है। यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल भूटान और भारत के बीच संबंधों के विभिन्न पहलुओं तथा दोनों पड़ोसी देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेगा। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन की ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडल भाग लेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन की राजधानी पेकिंग पहुंचेंगे। वे चीन की 3 दिन की यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि व्यापार इस वार्ता का प्रमुख विषय रहेगा। युगांडा के राष्ट्रपति यूवेरी मुसवेनी ने जनवरी में हुए चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद अपने 7वें कार्यकाल की शपथ ली। राष्ट्रपति मुसवेनी पिछले 40 साल से राष्ट्रपति पद पर हैं। श्री मुसवेनी ने कल युगांडा की राजधानी कंपाला के कोलोलो इंडिपेंडेंस ग्राउंड्स में आयोजित समारोह में हजारों लोगों के बीच पद की शपथ ली। श्री मुसवेनी ने 71% से अधिक वोट हासिल किए। भारत में इस साल दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन इस सप्ताह हो सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मॉनसून आ सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र कल भी इसी क्षेत्र में था और इससे संबंधित चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 4.5 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ था। इस बीच राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
4: मौसम केंद्र ने सीमावर्ती बाड़मेर, जैसलमेर और फलोदी जिलों के लिए आज भीषण

0: गर्मी और लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 4 पश्चिमी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 6 दक्षिणी पूर्वी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिन के साथ रातें भी तप रही हैं और कई स्थानों पर रात का पारा 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा जा रहा है। गर्मी की इन परिस्थितियों से जनजीवन पर खासा असर हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिन तापमान के यही हालात रहने के आसार हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: महाराष्ट्र के सांगली जिले की जाट तहसील में कल एक धार्मिक सभा के दौरान दीवार गिरने से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और लगभग 15 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। जम्मू कश्मीर में सेना के कल पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास कृष्णा घाटी सेक्टर में एक आतंकवादी को मार गिराया गया। हमारे संवाददाता के अनुसार सेना को मिली सूचनाओं के बाद शाम करीब 4 बजे नियंत्रण रेखा के अंदर संदिग्ध गतिविधि देखी गई। इस पर सैनिकों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। खेलों में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं उज्बेकिस्तान में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में फोगाट ने कोरिया के सेंगुमिन ली को पराजित किया। वहीं 8 भारतीय लड़कियों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए फाइनल में जगह बनाई और 4 ने कांस्य पदक जीते। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद फरहत। नीट यूजी 2026 की परीक्षा निरस्त करने का समाचार आज सभी अखबारों की सुर्खी बनी है। अमर उजाला लिखता है सीबीआई को पेपर लीक की जांच, एक गिरफ्तार, 20 संदिग्ध हिरासत में। दैनिक भास्कर की खबर है 22 लाख अभ्यर्थियों से खिलवाड़, परीक्षा दोबारा होगी, नई तारीखों की घोषणा जल्द। कल से ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की समिट, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। पत्र लिखता है पीएम से भी संयुक्त मुलाकात, खाड़ी संकट के बीच दिल्ली पर दुनिया की निगाहें। तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक के 30 विधायकों का टीवीके को समर्थन का ऐलान, विजय आज बहुमत साबित करेंगे, जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। अमर उजाला ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है नया भारत और बदलती सियासी समझ, संपादक का कहना है कि हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे बताते हैं कि देश का मिजाज अब राजनीति में किसी तरह की संकीर्णता को बर्दाश्त नहीं करेगा। कोलकाता से लेकर चेन्नई और तिरुवनंतपुरम तक नए की उम्मीद और पुराने के प्रति गुस्से के चलते मौजूदा व्यवस्था बहती दिखी। दैनिक जागरण ने पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के शब्द प्रकाशित किए हैं, पेट्रोल उत्पादों की दिक्कत नहीं लेकिन कंपनियों का घाटा चिंताजनक। शेयर मार्केट में निवेशकों के 9 लाख करोड़ स्वाहा, आखिरी घंटे और बढ़ी गिरावट, सेंसेक्स 1500 पॉइंट टूटने से मचा हाहाकार। लोकसत्य ने कारोबार पन्ने पर यह खबर प्रकाशित की है। जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस बनी लोगों की पहली पसंद, 10 दिनों में करीब 45,000 यात्रियों ने किया सफर, देश बंधु की खबर है। नवभारत टाइम्स ने जनगणना 2027 पर खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है अब क्यूआर कोड से जनगणना कर्मियों की होगी पहचान, फर्जी मैसेजेस को लेकर किया फैसला, मेहनत के बिना जवाब, चैटबॉट खत्म कर रहा रचनात्मकता। राजस्थान पत्रिका ने डिजिटल एडिक्शन शीर्षक से खबर प्रकाशित की है।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार का बहुमत परीक्षण आज। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस प्रमुख एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए। केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। मौसम विभाग का अनुमान, समय से पहले दस्तक देगा मानसून। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Political activities in Tamil Nadu turn hectic ahead of C. Joseph Vijay-led TVK government's floor test today. All India NR Congress leader N. Rangasamy to take oath as Chief Minister of Puducherry today.

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खबरें। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय की कयादत वाली नवमुंतखबा टीवी के सरकार आज असेंबली में अपनी अक्सरियत साबित करेगी। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के रहनुमा एन रंगासामी आज पुदुचेरी के वजीर आला का हलफ लेंगे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई किफायत

0: जाए। वजीर आला ने रियासत में घर से काम करने के कल्चर को तरजीह देने की अपील की। उन्होंने पीएनबी मेट्रो सर्विस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के जरिए चलाई जा रही बसों के इस्तेमाल पर खास तौर से जोर दिया। वजीर आला ने कहा कि वजरा, एमपी, एमएलए और सरकारी नुमाइंदों को हफ्ते में कम से कम एक दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करना चाहिए। हर हफ्ते एक बार नो व्हीकल डे भी मनाना चाहिए। लखनऊ से सुशील चंद तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
1: मध्य प्रदेश के वजीर आला मोहन यादव ने मजीद अहकाम जारी होने तक अपने काफिले में गाड़ियों की तादाद कम कर दी है। पीर को एक काबीना मीटिंग में जनाब यादव ने वजीरों की कौंसिल के अरकान से अपील की है कि वो कौमी मफाद के तहत पेट्रोल और डीजल की खपत में कमी लाएं। उन्होंने सरकारी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। एक अफसर ने बताया कि उनके दौरे में जो रैलियां मुनक़िद की जाएंगी उनमें गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने भी वजीरों, अरकान असेंबली, अफसरान और सरकारी महकमों से कहा है कि वो सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल महदूद कर दें, कार पूलिंग यानी गाड़ियों को मुश्तरक तौर पर इस्तेमाल करें और मेट्रो और बस खिदमात को तरजीह दें। हुकूमत ने सोने और दीगर कीमती धातुओं पर दरामदी ड्यूटी में इजाफा किया है जो आज से नाफिजुल अमल होगी। एक बयान में वजारत खजाना ने कहा कि सोने और चांदी के जेवरात के हिस्सों पर 5% ड्यूटी और प्लेटिनम के हिस्सों पर 5.4% ड्यूटी लगेगी। मजीद बरां कीमती धातुओं के इस्तेमाल शुदा कैटलिस्ट की शरह 4.35% मुकर्रर की गई है जो कि तामील के मेयारात को पूरा करने से मशरूत है। इससे पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया में जारी बुहरान के मद्देनजर लोगों से सोना न खरीदने की अपील की थी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। तहकीकात के मरकजी ब्यूरो सीबीआई ने मुबैना नीट पेपर लीक के मामले में शुभम खैर नार को हिरासत में ले लिया है। शुभम को राजस्थान पुलिस की दरख्वास्त पर नासिक पुलिस के क्राइम ब्रांच यूनिट ने कल महाराष्ट्र के शहर नासिक से गिरफ्तार किया था। मेडिकल कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले के लिए नीट यूजी 2026 इम्तिहान इस महीने की 3 तारीख को कराया गया था जिसे कल पेपर लीक के इल्जाम के तहत मनसूख कर दिया गया। हुकूमत ने सीबीआई से कहा है कि वो बदउनवानी के खिलाफ मुकम्मल इंक्वायरी करे। एक और मुतालिका वाकये में नीट यूजी 2026 के एक उम्मीदवार के वालिदैन ने लातूर के एसपी ऑफिस में एक दरख्वास्त दाखिल की है जिसमें इल्जाम लगाया गया है कि एक प्राइवेट कोचिंग इदारे ने इम्तिहान से पहले एक मॉक टेस्ट लिया था जिसमें मुबैना तौर पर 42 सवालात उन सवालात से यकसानियत रखते थे जो असल नीट पेपर में पूछे गए थे। एसपी अमूल तांबे ने सब डिविजनल पुलिस अफसर को हिदायत दी है कि वो फौरी तौर पर इंक्वायरी शुरू करें और कसूरवारों के खिलाफ कानूनी कदम उठाएं। इससे पहले राजस्थान पुलिस के खसूसी ऑपरेशंस ग्रुप ने मुश्तबा नेटवर्क और पैसे के लेन देन की तफ्तीश के दौरान 15 लोगों को हिरासत में लिया था। इस ग्रुप ने कल एक मुबैना सरगना मनीष को जयपुर से गिरफ्तार किया है। हुकूमत ने सालाना मजमूई घरेलू पैदावार जीडीपी के आरजी तखमीने और चौथी सहमाही के लिए जीडीपी के सहमाही तखमीने के इजरा की तारीख दोबारा मुकर्रर की है। पहले यह तारीख मई का कामकाज का आखिरी दिन होता था लेकिन अब इसे हर साल जून की 7 तारीख कर दिया गया है। इजरा की तारीख में यह तब्दीली कौमी अकाउंट्स के आदादोशुमार से मुतालिक मुशावरती कमेटी के साथ सलाह मशवरे के बाद की गई है। वजारत ने कहा है कि इस तब्दीली का मकसद आदादोशुमार की क्वालिटी को मजीद मुस्तहकम बनाना है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला की क्यादत में एक आला सतही भारतीय पार्लियामानी वफद आज से भूटान का दौरा करेगा। इसका मकसद भारत भूटान रिश्तों को मजीद मुस्तहकम करना है। इस 51 रुकनी वफद में राज्यसभा और लोकसभा के अरकान पार्लियामान और वजारत खारजा के अहलकार शामिल हैं। महाराष्ट्र के जिला सांगली की जाट तहसील में कल एक मजहबी तकरीब के दौरान दीवार गिरने से 6 अकीदतमंद हलाक और तकरीबन 15 जख्मी हो गए। तकरीब में 300 से ज्यादा अकीदतमंद जमा थे जब इलाके में तेज हवाओं के साथ शदीद बारिश हुई। तकरीबन 30 अकीदतमंद एक दीवार के पास खड़े हो गए और इसी वक्त दीवार गिर गई जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। जख्मियों को इलाज के लिए जाट और सांगली सिविल अस्पतालों में दाखिल कराया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दीवार गिरने के हादसे

0: होने वाली अमवात पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। उन्होंने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की तमन्ना की। सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान की ताज़ातरीन अमन तजवीज़ को मुस्तरद किए जाने के बाद अमरीका और ईरान के दरमियान जंग बंदी में और भी कमजोरी पैदा हो गई है। जनाब ट्रंप ने ईरान की तरफ से की गई जवाबी पेशकश को कचरा बताया है। इस इल्ज़ाम तराशी के सबब मगरबी एशिया में तनाज़े को फैलने से रोकने की कोशिशों में गैर यकीनी पैदा हो गई है। जम्मू कश्मीर में फौज ने कल पुंछ जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब दरंदाजी की कोशिश नाकाम कर दी। कृष्णा घाटी सेक्टर में एक दहशतगर्द को हलाक कर दिया गया। भारत में इस हफ्ते जनूब मगरबी मानसून दस्तक दे सकता है। महकमे मौसमियात IMD के मुताबिक इस हफ्ते के इख्तिताम तक जनूब मगरबी मानसून के जनूबी खलीज बंगाल, अंडमान समुंदर और अंडमान और निकोबार जजायर के हिस्सों में आगे बढ़ने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक जनूब मगरबी खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव का हल्का कल उसी इलाके में बरकरार है। इसके साथ ही हवा का गिरदावी निजाम सतह समुंदर से 4.5 किलोमीटर की बुलंदी तक फैला हुआ है। भारत के महकमे मौसमियात ने राजस्थान में शदीद गर्मी और लू के पेश नजर रेड अलर्ट जारी किया है। रियासत के सरहदी अजला में इस वक्त सख्त गर्मी है। कई मुकामात पर दर्जे हरारत 45 से 47 डिग्री के दरमियान रिकॉर्ड किया जा रहा है। IPL क्रिकेट में कल रात अहमदाबाद में खेले गए मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से शिकस्त दी। आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईनी के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया कलीम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात ने आज अलग अलग खबरों को अपनी शहसुर्खी बनाया है। अखबार इंकलाब ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को अपनी शहसुर्खी बनाया है कि मगरबी बंगाल के अवाम की फलाह बहबूद हुकूमत की अवलीन तरजीह, रियासत के अवाम को आयुष्मान भारत सेहत बीमा स्कीम के फवायद हासिल होंगे। अखबार प्रताप ने भी इस खबर को अहमियत के साथ शाया किया है। इसी अखबार की एक और सुर्खी है, सदर जमहूरिया ने 15 नर्सिंग स्टाफ को नेशनल फ्लोरेंस नाइटेंगेल अवार्ड से नवाजा। अखबार हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने हेमंत बिस्व शर्मा के मुसलसल दूसरी बार आसाम के वजीर आला के तौर पर हलफ लेने की खबर को नुमाया तौर पर शाया किया है। अखबार इंकलाब ने वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल की इस बयान को अहमियत दी है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने पाकिस्तान की मदद की। हिंदुस्तान एक्सप्रेस लिखता है, छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से असलहा, धमाका खेज मवाद और 1 करोड़ नकद बरामद। इसी अखबार की एक और सुर्खी है, भारत नेपाल सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश, 4 अफराद गिरफ्तार। अखबारात की अहम बैनुल अक्वामी खबरें इस तरह हैं, मुजाकरात में हो रही नाकामी पर ट्रंप का ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का मंसूबा जेरे गौर, दोबारा हमला हुआ तो 90% यूरेनियम अफजूदगी शुरू हो सकती है, ईरान का बयान।
0: खास खास खबरें एक बार फिर, तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय की क्यादत वाली नौ मुंतखबा टीवी के सरकार आज असेंबली में अपनी अक्सरियत साबित करेगी। ऑल इंडिया NR कांग्रेस के रहनुमा N रंगासामी आज पुडुचेरी के वजीर आला का हलफ लेंगे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई किफायत शियारी की अपील के बाद ईंधन की खपत से मुतालिक इकदाम पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। मरकज ने सोने और दीगर कीमती धातुओं पर दरामदाती ड्यूटी में इजाफा कर दिया है। IMD ने इस साल मानसून जल्द शुरू हो जाने की पेशगोई की है। और IPL में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से शिकस्त दी। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाश।

0: आकाशवाणी इधर आइए इधर
1: इधर
0: हाँ विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
2: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
1: अच्छा ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
2: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
1: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222205042। हमारा ईमेल एड्रेस है patna@gmail.com।
2: शुभ वाणी,
1: लाभ वाणी,
2: आकाशवाणी।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की प्रदेशवासियों से अपील, ईंधन की बचत के लिए जरूरत पड़ने पर ही वाहनों का उपयोग करें। कहा, प्रदेश में ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता है। नई दिल्ली में आज 16वीं पेंशन अदालत का आयोजन। 37 मंत्रालयों और विभागों से संबंधित 985 लंबित पेंशन शिकायतों का मौके पर ही होगा समाधान। राज्यपाल सह कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के लिए टास्क फोर्स गठित करने के दिए निर्देश। और मौसम विभाग की आज जमुई, खगड़िया, बेगूसराय, दरभंगा और सहरसा सहित आसपास के कई जिलों में आंधी, बारिश और वज्रपात की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रदेशवासियों से ईंधन की बचत के लिए जरूरत पड़ने पर ही वाहनों का उपयोग करने की अपील की है। श्री चौधरी ने पटना में खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग की समीक्षात्मक बैठक में कहा कि राज्य में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता है, इसलिए लोगों को चिंता की जरूरत नहीं है, लेकिन ऊर्जा संकट को देखते हुए नागरिकों को ईंधन बचत करनी चाहिए। उन्होंने लोगों से इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद और इसके अधिक इस्तेमाल पर जोर देने को कहा है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और तेल कंपनियों को कॉलोनी और अपार्टमेंट में पीएनजी कनेक्शन शीघ्र उपलब्ध कराने पर तेजी से काम करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में विस्तारित मंत्रिमंडल की प्रथम बैठक आज सुबह 10 बजे से होगी। ये बैठक पटना स्थित मुख्य सचिवालय के सभागार में आयोजित की जाएगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगने की संभावना है। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 16वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस अदालत में 37 मंत्रालयों और विभागों से संबंधित 985 लंबित पेंशन शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया जाएगा। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने कहा कि 2017 में अपनी

0: टास्क फोर्स गठित करने के निर्देश दिए हैं। ये टास्क फोर्स अन्य प्रदेशों का भ्रमण कर वहां की सर्वोत्तम व्यवस्थाओं का अध्ययन करेगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। एजेंसी ने एक बयान में कहा कि नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के तहत अपराधों के लिए FIR दर्ज की गई है। एजेंसी ने बताया कि मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीम विभिन्न स्थानों पर भेजी गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 12वीं परीक्षा 2026 का परिणाम आज जारी किए जाने की संभावना है। अभ्यर्थी परीक्षा परिणाम बोर्ड की वेबसाइट results.cbse.nic या cbse.gov.in पर देख सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि वेबसाइट पर अत्यधिक लोड होने से विद्यार्थी डिजी लॉकर और उमंग ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गौरतलब है कि परीक्षा परिणाम कल जारी होना था, लेकिन तकनीकी कारणों से इसे जारी नहीं किया जा सका। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि राज्य सरकार हर गरीब बच्चे को स्कूल तक ले जाने का कार्य करेगी। गोपालगंज में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री तिवारी ने कहा कि विपक्ष को नकारात्मक राजनीति छोड़ इस काम में सहयोग करना चाहिए।
1: हमारी नजर बिहार के हर गरीब के झोपड़ी पर है, जहाँ से गरीब का बेटा बेटी को बिहार की सरकार के स्कूल में ले जाके हमें पढ़ाना है। हम उस काम में लगे हैं। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आप भी थोड़ा हमारा सहयोग करिए। लेकिन आप प्रथम दिन से ही आप गलत बयानी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और आप अफवाह फैला रहे हैं। आपको बिहार की जनता माफ नहीं करेगी।
0: केंद्र सरकार ने उस वीडियो को गलत बताया है जिसमें कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी नागरिकों को मुफ्त रिचार्ज, मुफ्त इलेक्ट्रिक स्कूटर, मुफ्त कार और वित्तीय सहायता देने का वादा करते दिख रहे हैं। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक यूनिट ने बताया कि यह दावा फर्जी है और वायरल वीडियो कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI द्वारा बनाया गया है। सरकार ने सभी नागरिकों को आधिकारिक सूचनाओं पर ही विश्वास करने की सलाह दी है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। मौसम विभाग ने आज जमुई, बांका, खगड़िया, बेगूसराय, दरभंगा, समस्तीपुर और सहरसा सहित कई जिलों में बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया है। इस दौरान धूल भरी आंधी चलने की भी चेतावनी जारी की गई है।
3: 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी, दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के एक या दो स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है, तथा 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: पिछले 24 घंटों के दौरान पटना, जहानाबाद, नालंदा, बेगूसराय, बांका, गया और अरवल समेत प्रदेश के कई जिलों में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हुई है। इस दौरान कई जगहों पर ओलावृष्टि की भी खबर है। खान और भूतत्व विभाग ने जब्त बालू की नीलामी मानसून से पहले करने के निर्देश दिए हैं। विभाग के निदेशक मनीष कुमार मीणा ने कहा कि मानसून को ध्यान में रखते हुए बालू घाटों की जल्द बंदोबस्ती की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पटना में विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक में उन्होंने यह जानकारी दी है।

सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। न्यायिक अवसंरचना सलाहकार समिति न्यायालयों में अवसंरचना संबंधी कमियों को दूर करेगी। यह समिति 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत निष्कर्ष और आवश्यक निधि का विवरण प्रस्तुत करेगी। शिक्षा विभाग ने जनगणना कार्य में कार्यरत शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों का पूरा डेटा ऑनलाइन दर्ज करने का निर्णय लिया है। विभाग के अपर सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों और जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि जनगणना कार्य में प्रतिनियुक्त शिक्षकों की जानकारी 48 घंटे के अंदर ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड कराई जाएगी। श्री राजेंद्र ने बताया कि भारत की जनगणना 2027 के तहत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना के कार्य के लिए जिला, अनुमंडल और प्रखंड स्तर पर शिक्षकों को प्रगणक और पर्यवेक्षक बनाया गया है, लेकिन विभाग के पास इस कार्य के लिए प्रतिनियुक्त कुल शिक्षकों की जानकारी उपलब्ध नहीं है। अग्निवीर भर्ती 2026 के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CET 1 जून से 15 जून के बीच आयोजित किया जाएगा। गया सेना भर्ती कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह परीक्षा निर्धारित तिथियों पर गया जी में आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए गया, औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई समेत 11 जिलों से 38,040 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। राजधानी पटना में कल मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। जिलाधिकारी त्यागराजन SM ने बताया कि कल शाम 7 बजे से 7:15 बजे के बीच पूर्व निर्धारित नागरिक सुरक्षा अभ्यास के तहत ब्लैकआउट किया जाएगा। जिलाधिकारी ने नागरिकों से इस दौरान अपने घर, दुकान और औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सभी लाइटें बंद रखने की अपील की है। वहीं अररिया जिले में भी कल मॉक ड्रिल का आयोजन होगा। पूर्व मध्य रेलवे ने यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए 16 मई से रक्सौल और नरकटियागंज के बीच विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन सप्ताह में 2 दिन शनिवार और गुरुवार को चलेगी। इधर अमृतसर न्यू जलपाईगुड़ी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन फारबिसगंज, निर्मली और सरायगढ़ के रास्ते करने का फैसला किया गया है। रेलवे ने एक अन्य निर्णय के तहत पटना हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का जमुई स्टेशन पर ठहराव प्रदान किया है। यह ट्रेन 15 मई से जमुई स्टेशन पर रुकेगी। सुपौल जिले के भपटियाही स्थित राजकीय विद्यालय में सशस्त्र सीमा बल की ओर से सुरक्षा तथा स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। SSB प्रशिक्षण केंद्र के उप महानिरीक्षक विजय सिंह के मार्गदर्शन में छात्रों को सुरक्षा, भूकंप से बचाव, रक्त श्राव नियंत्रण तथा CPR की जानकारी दी गई। अररिया जिले के महलगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत करियात पुलिस कैंप के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक चार पहिया वाहन से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की है। इस मामले में 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया। किशनगंज जिले के टेढ़ागांज थाना क्षेत्र में पुलिस ने पशु तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 12 मवेशियों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। IPL क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। यह मैच रायपुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, दोबारा देना होगा नीट, प्रश्न पत्र लीक होने के बाद परीक्षा निरस्त। निजी विद्यालयों की मनमानी पर दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हवाले से लिखा है, निजी विद्यालयों को फीस की पूरी जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, 9 लाख राज्य कर्मियों का वेतन बढ़ेगा, पेंशनरों को भी लाभ होगा। अखबार लिखता है, कैबिनेट को भेजा प्रस्ताव। प्रभात खबर लिखता है, प्रदेश में 16 मई तक जारी रहेगा आंधी पानी का दौर। आज अखबार की सुर्खी है, पुलिस निदेशक विनय कुमार ने कहा, दारोगा बनने पर पहली पत्नी को छोड़ दूसरी शादी की तो नौकरी जाएगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की प्रदेशवासियों से अपील।

0: ईंधन की बचत के लिए जरूरत पड़ने पर ही वाहनों का उपयोग करें, कहा प्रदेश में ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता है। नई दिल्ली में आज 16वीं पेंशन अदालत का आयोजन, 37 मंत्रालयों और विभागों से संबंधित 985 लंबित पेंशन शिकायतों का मौके पर ही होगा समाधान। राज्यपाल सह कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के लिए टास्क फोर्स गठित करने के निर्देश दिए। और मौसम विभाग की आज जमुई, खगड़िया, बेगूसराय, दरभंगा और सहरसा सहित आसपास के कई जिलों में आंधी, बारिश और वज्रपात की चेतावनी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी। इधर आइए, इधर।
2: इधर?
1: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
3: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
2: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
3: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
2: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294, हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222205042, हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
3: शुभ वाणी,
2: लाभ वाणी,
3: आकाशवाणी।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 9:06 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम नगमे नए पुराने। कार्यक्रम का पहला गीत जो हमने लिया है वो लिया है फिल्म कांटे से। इस गीत को आवाज दिया है ऋचा शर्मा एवं सुखविंदर सिंह ने। गीतकार हैं देव कोहली और संगीत है आनंद राज आनंद का।

0: श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम नगमे नई पुरानी। अब जो हम गीत आपको सुनवा रहे हैं उसे हमने लिया है फिल्म एक दीवाना था से। इस गीत को आवाज दिया है लियोन डिसूजा एवं सुजैन डिमेलो ने। गीतकार हैं जावेद अख्तर और संगीत है A.R. रहमान का। लेकिन इस गीत से पहले कुछ संदेशों को सुनते हैं।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आकाशवाणी भागलपुर केंद्र से सुने NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार दिन के 12:30 बजे से।

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम नगमे नए पुराने। अब जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं उसे हमने लिया है फिल्म राज द मिस्ट्री कंटिन्यूस से। इस गीत को आवाज दिया है तोशी ने, गीतकार हैं सैयद कादरी और संगीत है शरीफ तोशी का।

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम नगमे नए पुराने। अब जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं उसे हमने लिया है फिल्म करम से। इस गीत को आवाज़ दिया है अलीशा चेन्नई ने। गीतकार हैं इरशाद कामिल एवं विशाल ददलानी। संगीत है विशाल शिखर का।

श्रोताओं, कार्यक्रम का जो आखिरी गीत हमने लिया है वो लिया है फिल्म गुंडे से। इस गीत को आवाज़ दिया है बप्पी लहरी एवं नेहा बहसीन ने। गीतकार हैं इरशाद कामिल और संगीत है सोहेल सेन का।

अभी आपने सुना फिल्म संगीत का कार्यक्रम नगमे नहीं पुराने। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। गायक कलाकार हैं पायल चक्रवर्ती। आइए इनके स्वर में सुनते हैं ये भजन।

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। गायक कलाकार हैं पायल चक्रवर्ती। अब आइए इनके स्वर में सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। गायक कलाकार हैं पायल चक्रवर्ती। अब आइए इनके स्वर में सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। गायक कलाकार हैं पायल चक्रवर्ती। अब आइए इनके स्वर में सुनते हैं ये भजन।

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। गायक कलाकार हैं पायल चक्रवर्ती। अब आइए इनके स्वर में सुनते हैं ये आखिरी गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। गायक कलाकार थी पायल चक्रवर्ती। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 10 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। कार्यक्रम का पहला गीत जो हमने लिया है वो है फिल्म वारिस से। इस गीत को आवाज दिया है लता मंगेशकर एवं मनमोहन सिंह ने। गीतकार हैं वर्मा मलिक और संगीत है उत्तम सिंह का।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत जो लिया है हमने वो है फिल्म कलाकार से। इस गीत को आवाज़ दिया है किशोर कुमार ने। गीतकार हैं इंदिवर और संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। अब जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं उसे हमने लिया है फिल्म कभी कभी से। इस गीत को आवाज़ दिया है मुकेश एवं लता मंगेशकर ने। गीतकार हैं साहिर और संगीत है खयाम का।

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। अब जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं उसे हमने लिया है फिल्म सिलसिला से। इस गीत को आवाज दिया है लता मंगेशकर, किशोर कुमार एवं साथी ने। गीतकार हैं जावेद अख्तर और संगीत है शिव हरी का।

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। अब जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं उसे हमने लिया है फिल्म लव स्टोरी से। इस गीत को आवाज़ दिया है लता मंगेशकर एवं अमित कुमार ने। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीत है आर डी बर्मन का।

अभी आपने सुना फिल्म संगीत का कार्यक्रम पुरानी फिल्म से। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है लोकगीत। गायक कलाकार हैं चामालाल मंडल। आइए श्रोताओं, इनके स्वर में सुनते हैं ये लोक भजन।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700001424।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700001424।
2: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं लोकगीत। गायक कलाकार हैं चामालाल मंडल।

अभी आप सुन रहे थे लोकगीत, गायक कलाकार थे चामालाल मंडल। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। 10:45 होने ही वाले हैं। अब आप सुनेंगे समन्वित कार्यक्रम आओ साथ चलें, हमारे आकाशवाणी के पटना केंद्र से।

0: सशक्त करने में अपना सहयोग करेंगे।
1: परिवार कल्याण कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे, नवजात शिशुओं में टीकाकरण एवं खान पान का ख्याल कैसे रखें, इस विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर विवेक रंजन। इनसे बातचीत कर रहे थे रुपेश कुमार रूप। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम आओ साथ चलें। कार्यक्रम में प्रस्तुत है हमारे बिहार की विरासत, स्वर सहयोग है संजय किशोर का और प्रस्तुति है मोहम्मद शाहिद सबा की।
2: श्रोताओं, जब हम विरासत शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान पुरानी इमारतों की ओर जाता है, लेकिन आज हम जिस विरासत की बात करेंगे वह सिर्फ ईंट पत्थरों की नहीं बल्कि ज्ञान, संस्कृति और संस्कारों की है। आज के आओ साथ चले प्रोग्राम में हम बात करेंगे हमारी बिहार की विरासत की, वह धरती जहां इतिहास खुद करवटें लेता है। श्रोताओं, बिहार की विरासत का जिक्र हो और नालंदा की बात ना हो यह मुमकिन नहीं। वह दौर जब दुनिया के कोने कोने से लोग यहां पढ़ने आते थे। नालंदा और विक्रमशिला सिर्फ विश्वविद्यालय नहीं थे, वे इस बात के गवाह थे कि हमारी विरासत कलम और किताब की रही है। वैशाली की धरती को देखिए, जिसने दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया, और मगध का वो साम्राज्य जिसकी सीमाओं ने सुदूर देशों को छुआ।

विरासत में सम्राट अशोक का धम भी है और शेरशाह सूरी की प्रशासनिक सूझबूझ भी। ये वो मिट्टी है जिसने बुद्ध को ज्ञान दिया और महावीर को निर्वाण। लेकिन विरासत सिर्फ किताबों में नहीं, यहाँ की हवाओं में घुले गीतों में भी है। चलिए बिहार की लोक संस्कृति के मिठास के लिए एक गीत सुनते हैं।

श्रोताओं, अभी हम बात कर रहे थे बिहार के गौरवशाली इतिहास की, लेकिन हमारी असली विरासत तो हमारे आंगनों में बसती है, मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग को ले लीजिए, मिथिला की महिलाओं ने अपनी कला से आज पूरी दुनिया के म्यूजियम्स में जगह बना ली है। और हमारी भाषाएं, मैथिली की कोमलता, मगही का अपनापन और भोजपुरी की वो मिठास। जब हम का हाल बा कहते हैं तो उसमें सदियों का भाईचारा झलकता है। हमारी विरासत हमारे स्वाद में भी है, लिट्टी चोखा का वो सोंधापन, गया का तिलकुट और मनेर के लड्डू, ये सब मिलकर बिहार की एक अलग पहचान बनाते हैं। विरासत वो नहीं जो हमें मिलता है, बल्कि वो है जिसे हम संजोकर अपनी अगली पीढ़ी को सौंप देते हैं।

श्रोताओं, समय कम पड़ जाता है जब बिहार जैसी महान विरासत की बात हम करते हैं। सासाराम का मकबरा हो, बोधगया का मंदिर या पटना साहिब का गुरुद्वारा, ये सब हमें याद दिलाते हैं कि हम एक महान परंपरा के वारिस हैं। आज जरूरत है कि हम अपनी इन धरोहरों का सम्मान करें, अपनी जबान, अपनी लोक कला और अपने स्मारकों को सहेजें, क्योंकि जिस समाज के पास अपनी विरासत की समझ होती है उसका भविष्य हमेशा उज्जवल होता है। आज के लिए बस इतना ही, अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।

मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम नई फिल्मों से।

मेट्रो इन दिनों, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना विशाल मिश्रा की आवाज में। गीतकार नीलेश मिश्रा, संगीतकार थे प्रीतम। विशाल मिश्रा और हंसिका पारेख को आइए सुनते हैं फिल्म सैयारा में। राजशेखर का गीत है, संगीत दिया है विशाल मिश्रा ने।

धड़क टू फिल्म का गीत अभी आपने सुना रोचक कोहली की आवाज में। गीतकार गुरप्रीत सैनी, संगीतकार थे रोचक कोहली। और अब आइए सुनते हैं श्रेया घोषाल को, फिल्म है दे दे प्यार दे टू। गीतकार कुमार, संगीतकार हैं पायल देव, आदित्य देव।

0: नई फिल्म से कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा, लेकिन इस बीच लेते हैं एक छोटा सा अंतराल और सुनते हैं कुछ खास संदेश।
1: आकाशवाणी भागलपुर केंद्र से सुने NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार दिन के 12:30 बजे से। उमंग।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: It's raining offers on the new age Baleno this season. Upgrade to the bold and techie new age Baleno and get amazing benefits, easy finance options and incredible exchange deals. Rush to your nearest Nexa showroom today and take home the new age Baleno with amazing offers and a 1 lakh kilometer or 3-year warranty. TNC apply.
2: Nexa.
3: While some just go through the day, you could live the grand life with the Grand Vitara. As you move from city streets to open escapes, the strong hybrid keeps up seamlessly. No matter where the road takes you, you're always breathing in freshness with auto purify and PM2.5 display. And when every moment feels this grand, safety comes standard with 6 airbags. Visit your nearest Nexa showroom to live the grand life with the Grand Vitara Strong Hybrid.
2: Nexa. अंतराल के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नई फिल्मों से। अब हम आपको सुनवा रहे हैं गदर 2 फिल्म का ये नगमा। आवाज़ें हैं नीति मोहन, विशाल मिश्रा, शहनाज अख्तर, साहिल अख्तर और मिथुन की। सईद कादरी के बोल हैं, धुन बनाई है मिथुन ने।

जरा हटके जरा बचके इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। वरुण जैन, सचिन जिगर, शादा फरीदी, अल्तमश फरीदी और साथियों की आवाजों में। गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य, संगीतकार थे सचिन जिगर। और इसके साथ ही नई फिल्मों से कार्यक्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता।

श्रोताओं, आकाश में कभी कभी कुछ ऐसे सितारे जन्म लेते हैं जो सिर्फ चमकते नहीं बल्कि पूरी दुनिया की रातों को रोशन कर देते हैं। भारतीय फिल्म संगीत के आकाश में एक ऐसा ही सितारा था राहुल देव वर्मन, जिन्हें दुनिया प्यार से पंचम दा कहती है। एक ऐसा संगीतकार दोस्तों, जिन्होंने धुनों को सिर्फ बनाया नहीं बल्कि उन्हें सांस दी, दिल दिया, धड़कन दी। तो दोस्तों, आज का ये गुलदस्ता समर्पित है उस जादूगर को, जिनकी उंगलियां जब हारमोनियम पर चलती थीं तो वक्त ठहर जाता था। तो दोस्तों, आज के गुलदस्ता में हम पंचम दा के गीतों को सजाएंगे, सुनेंगे और बातें करेंगे उन्हीं के गीतों के बारे में। लेकिन इस बीच सुन लेते हैं ये पहला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म यादों की बारात से। आवाज़ें आशा भोंसले, मोहम्मद रफ़ी की, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार तो आप जानते ही हैं राहुल देव वर्मन।

आज का गुलदस्ता हमने समर्पित किया है पंचमदा यानी राहुल देव वर्मन को, बहुत बड़े संगीतकार। तो आज हम उन्हीं के बारे में बातें कर रहे हैं और उन्हीं के गीत सुन रहे हैं। तो दोस्तों, 27 जून 1939 कोलकाता में जन्मे राहुल देव वर्मन, संगीत जैसे उनके खून में बहता था। पिता थे महान संगीतकार सचिन देव वर्मन और माँ थी मीरा देव वर्मन। कहते हैं बचपन में जब राहुल रोते थे तो वो म्यूजिक लग नहीं निकलता था मानो उनके रोने में, और तभी महान कलाकार अशोक कुमार ने उनका नाम पंचम रख दिया और तभी से उनका नाम पंचम ही पड़ गया। लेकिन पता है, किसी महान पिता का पुत्र होना जितना गर्व की बात है, उतनी ही बड़ी चुनौती भी। हर कदम पर तुलना, हर धुन पर सवाल, और इन्हीं सवालों के बीच एक लड़का धीरे धीरे खुद को गढ़ रहा था। जब हिंदी फिल्म संगीत एक तय रास्ते पर चल रहा था दोस्तों, तब पंचम दा ने उस रास्ते को एक अलग मोड़ दिया। उन्होंने बोतलों से आवाज निकाली, कंघी से धुन बनाई, टेबल, ग्लास, सांसों और सीटी तक को संगीत बना दिया। बाद के वर्षों में जो फ्यूजन कहलाया ना, वो पंचमदा बहुत पहले कर चुके थे। रॉक, जैज, लैटिन, इंडियन क्लासिकल, हर शैली को उन्होंने इस तरह मिलाया जैसे रंगों से इंद्रधनुष बनता है। 1966 में आई थी फिल्म तीसरी मंजिल, और इस फिल्म ने जैसे पूरे देश को हिला दिया। पूरा देश इसकी सुर लहरी में डूब गया। ओ हसीना जुल्फों वाली, आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, ओ मेरे सोना रे, तो इन गीतों ने बता दिया कि एक नया तूफान आ चुका है। और फिर संगीत का वो सफ़र शुरू हुआ पंचमदा के लिए जो कभी रुका ही नहीं। अमर प्रेम, हरे रामा हरे कृष्णा, यादों की बारात और ढेर सारी और भी फिल्में, जिन फिल्मों को राहुल देव वर्मन ने सिर्फ सजाया नहीं गीतों से, बल्कि उसे एक नई आत्मा दी। तो इसी बीच क्यों ना एक और गीत सुन लें, जिस फिल्म की चर्चा हमने अभी की, तीसरी मंजिल। इसी फिल्म का गीत हम आपको सुनवाते हैं। आवाज़ें आशा भोंसले, मोहम्मद रफ़ी की, गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार राहुल देव वर्मन। आइए सुनते हैं

दोस्तों, पंचमदा यानी राहुल देव वर्मन के धुनों की जब भी बातें होती हैं तो कई नाम खुद ब खुद आपके मन में आने लगते हैं, जैसे आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी, साथ ही लता मंगेशकर और किशोर कुमार। इन सब के बिना, पंचमदा कहते थे कि आप सभी के बिना मेरा संगीत अधूरा है, मेरी धुनें कुछ भी नहीं हैं। किशोरदा के साथ उनका एक अलग रिश्ता था और लता जी के साथ भी उन्होंने इतने अच्छे अच्छे गीत बनाए। कभी उन्हें कहा जाता था, बर्मनदा का एक इंटरव्यू मैंने देखा था, उसमें वो कह रहे थे कि आशा जी अक्सर उनसे शिकायत करती थी कि पत्नी तो मैं आपकी हूँ, लेकिन जो भी अच्छी धुनें होती हैं, जो भी अच्छे गीत होते हैं, आप लता जी से गवाते हैं। तो ये आपस की बातें थी, लेकिन पंचमदा हमेशा कहते थे कि मेरा और लता दीदी का जो रिश्ता है ना, वो धुन का रिश्ता है, संवेदनाओं का रिश्ता है, भरोसे का रिश्ता है। और ये रिश्ता सिर्फ एक संगीत कार और गायिका का नहीं है, ये हमारे भरोसे का रिश्ता है, जहाँ एक धुन जन्म लेती है और लता जी उसे अपनी आवाज़ से अमर कर देती हैं। इसी तरह किशोर कुमार के बारे में भी कहते थे, जो उनका खिलंदड़ स्वभाव था और उनके गीतों में भी झलकता था, राहुल देव वर्मन के धुनों में वो बखूबी बात आ जाती थी और किशोरदा उसे ढाल देते थे, या फिर जब कभी भी बहुत संजीदा धुनें बनाई आर डी बर्मन ने तो किशोरदा को उन्होंने लिया। रहना बीती जाए लता जी की आवाज़ में सुनिए, अमर प्रेम के गीत सुनिए किशोरदा की आवाज़ में। हर गीत में आपको एक अलग सा एहसास होता है, अलग कुछ धुन महसूस होती है। तो इस बीच एक और गीत सुन लेते हैं। हमने बातें की ना अभी लता जी और किशोर कुमार जी की, क्योंकि पता है पंचमदा जानते थे कि अगर किसी गीत में मासूमियत चाहिए, कोमल भाव चाहिए या दिल की सबसे गहरी टीस को आवाज़ देनी हो तो लता जी और किशोर जी से बेहतर कोई नहीं। और शायद यही वजह रही दोस्तों कि इनकी जोड़ी ने हिंदी फिल्म संगीत को कुछ ऐसे गीत दिए जो सिर्फ गाने नहीं बल्कि यादों की तरह हमारे भीतर बस गए। तो इसी बीच सुन लेते हैं गुलजार का लिखा गीत, संगीतकार तो हैं ही आर डी वर्मन, फिल्म है घर और आवाज़ें किशोर कुमार लता मंगेशकर की।

आज हम जब पंचमदा के बारे में बातें कर रहे हैं तो याद आता है कि आरडी वर्मन यानी राहुल देव वर्मन साहब ने ऐसी ऐसी धुनें बनाई जैसे कोई चुपचाप अपने दर्द से बातें कर रहा हो, और हर गायक या गायिका ने उसे ऐसे गाया मानो हर शब्द उनकी आत्मा से निकल रहा हो। आज भी जब उनके गीत बजते हैं ना तो लगता है मानो वक्त ठहर सा गया हो। पता है दोस्तों, पंचमदा आधुनिक संगीत के बादशाह थे। वेस्टर्न बीट्स, जैज रॉक सब उनके संगीत में था। लेकिन हैरानी की बात देखिए, उसी संगीतकार ने बीती ना बिताई रहना जैसा शास्त्रीय गहराई वाला गीत भी रचा। परिचय फिल्म का ये गीत लता जी और भूपिंदर सिंह की आवाज़ में आज भी संगीत प्रेमियों के लिए एक खजाना है। इस गीत में पंचमदा ने सिर्फ धुन नहीं बनाई, उन्होंने अकेलेपन को सुर दे दिया। और फिर वो गीत याद है उनका जिसे सुनते ही जैसे बारिश की बूंदे याद आने लगती हैं खुद ब खुद, रिमझिम गिरे सावन। जी हाँ, मंजिल फिल्म का ये गीत लता जी की आवाज़ में इतना सहज, इतना सच्चा लगता है कि जैसे कोई गा नहीं रहा हो, मानो मौसम मानो खुद गुनगुना रहा हो। और भी सारे संगीतकार, जितने भी गायक थे, उनके साथ पंचमदा की जो जोड़ी होती थी ना, वो उस जोड़ी की सबसे खूबसूरत बात होती थी संवेदना की। पंचमदा जब कोई धुन बनाते थे तो चाहे वो कैसा भी हो, जैज हो उसमें या वेस्टर्न म्यूजिक हो, ये गीत बहुत शोर नहीं करते हैं, ये सारे गीत आपके दिलों तक पहुंचते हैं।

पंचमदा को पता था कि अगर वो जो भी धुन रच रहे हैं, अगर उसमें वो एक पवित्रता डालेंगे ना, तो कोई भी गायक उस कठिन भावना को भी

पंचमदा की धुनें आज भी हमें बहुत सारी बातें सिखाती हैं। जब हम उनके गीत सुनते हैं तो लगता है कि हम किसी और ही दुनिया में हों, क्योंकि ये सारी धुनें उन्होंने उस समय बनाई थी जब कोई ऐसी धुनों के बारे में सोचता ही नहीं था, और बहुत हिट हुए पंचमदा अपनी इन धुनों के साथ। लेकिन दोस्तों, हर चमकते सितारे की तरह राहुल देव वर्मन दा की ज़िंदगी में भी अंधेरे आए। एक दौर ऐसा भी आया जब लोगों ने कहना शुरू किया कि पंचमदा का समय ख़त्म हो गया। नई पीढ़ी के संगीतकार आ गए थे, फिल्मों का स्वाद बदल रहा था, और जो इंसान कभी सफलता की बुलंदियों पर था वो भीतर से टूटने लगा। लेकिन पता है, कलाकार कभी हारता नहीं। साल आया 1994 और फिर लौटी धुनों की रोशनी। 1942 अ लव स्टोरी फिल्म रिलीज़ हुई, और जब लोगों ने कुछ ना कहो या एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, या रिमझिम ये सारे गीत सुने तो सबने महसूस किया कि पंचमदा का दौर वापस आ गया। लेकिन अफसोस, वो इस सफलता को पूरी तरह देख नहीं पाए। 4 जनवरी 1994 को ये जादूगर दुनिया से चला गया, दुनिया को उन्होंने अलविदा कह दिया। पर क्या सचमुच कलाकार कभी जाते हैं? बिल्कुल नहीं। जब भी रात में रेडियो पर कोई पुराना गीत बजता है, जब भी कोई अकेला इंसान तेरे बिना जिंदगी से सुनकर मुस्कुराता है, या कोई युवा गिटार पर दम मारो दम छेड़ता है, तब कहीं ना कहीं पंचमदा फिर से जीवित हो उठते हैं। दोस्तों, संगीत सिर्फ सुर नहीं होता, वो समय की खुशबू होता है, और राहुल देव वर्मन ने हमें ऐसी खुशबू दी जो पीढ़ियों तक महकती रहेंगी। उन्होंने हमें सिखाया कि संगीत सीमाओं में कैद नहीं होता, वो तो खुला आसमान है। तो आइए आज इस महान संगीतकार को दिल से याद करें और उनकी धुनों में खो जाएं। और इसके साथ ही आप इस गीत को सुनिए, 1942 फिल्म लव स्टोरी फिल्म का ये गीत, और दीजिए अपनी रेडियो दोस्त अनिमा को विदा। इस गीत को सुनते हुए मेरा नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। आकाशवाणी का यह भागलपुर केंद्र है। आरंभ होता है महिलाओं के लिए हमारा कार्यक्रम नारी लोक। प्रस्तुत करता है श्री पार्वती के।

नारी लोक सुन रही सभी बहनों को भारती का नमस्कार। बहनों, आज के नारी लोक को आरंभ करने से पहले बता दें कि आज क्या खास है। बहनों, आज हम सुनेंगे वार्ता, विषय होगा किचन में स्वच्छता का पालन अनिवार्य क्यों। वार्ताकार होंगी श्रुति, इसके अलावा फिल्म संगीत भी सुनेंगे। बहनों, अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बहनों, बच्चों की गर्मी की छुट्टियां शुरू ही होने वाली हैं। इसका इंतजार बच्चों को बेसब्री से रहता है। यूं कहिए कि हम माता पिता भी इसके इंतजार में होते हैं। थोड़ा सुकून कहीं ना कहीं हम भी खोजते हैं, क्योंकि बच्चे स्कूल तो जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम माता पिता का भी एक अनुशासित रूटीन हो जाता है। समय से उठना, टिफिन बनाना, खाने की तैयारी करना, उनके स्कूल ड्रेस को धोना आदि। तो बहनों, इन दिनों हम पर यह दबाव नहीं होता और थोड़ी मस्ती से हम भी तनाव मुक्त होकर रहते हैं, और बच्चों को स्कूल भेजने से लेकर लौटने तक कहीं ना कहीं हम फिक्रमंद भी होते हैं, और इस समय हमें पूरी मुक्ति होती है तरह तरह की चिंताओं से। तो बहनों, इस सुंदर वक्त का इस्तेमाल हम कैसे करें और बच्चों में हम क्या कुछ सिखा दें जो अन्य दिनों में नहीं सिखा पाते हैं। बहनों, स्कूल के दिनों में हम बच्चों को उसके तयशुदा रूटीन के अलावा अलग से कुछ सिखा नहीं पाते। सारा वक्त स्कूल आने जाने और होमवर्क पूरा करने में ही निकल जाता है। बच्चे की ज़िंदगी मशीनी होकर रह जाती है। हम भी अक्सर चिंतित रहते हैं कि पढ़ने के अलावा हम कुछ और कैसे सिखाएं। तो बहनों, आप इस गर्मी की छुट्टी का इस्तेमाल उसके हॉबी क्लासेस में एडमिशन करवा कर सकती हैं। ड्राइंग, योगा, पेंटिंग, डांस क्लासेस, म्यूजिक क्लास आदि में भेजकर बहनों हम अपने बच्चों को अलग से कुछ वैसी चीज़ सिखा सकते हैं जिसकी प्रतिभा वो रखते हों। इससे उनका वक्त भी अच्छा बीतेगा और उनमें सीखने की क्षमता भी विकसित होगी, साथ ही वे पढ़ाई के बोझ से थोड़ा इतर कुछ सीख सकेंगे। तो आइए बहनों, अब सुनते हैं एक प्यारा सा गीत, फिर होंगी बातें।

0: बहनों, बात बच्चों की गर्मी की छुट्टियों की हो रही है तो बहनों, इस समय बच्चे घर में ही होते हैं और इस दौरान वे अक्सर अच्छे और ज़्यादा खाने की मांग करते हैं। और यह बात भी सच है कि बच्चों को भूख ज़्यादा लगती है, तो हम माएँ अक्सर उनकी फरमाइश पूरी करने में लगी रहती हैं। और इस दौरान किचन गंदा भी बहुत होता है और इस समय साफ़ सफाई की आवश्यकता हमारे किचन को ज़्यादा से ज़्यादा होती है। या यूं कहिए कि किचन तो यूं भी साफ रहना चाहिए, लेकिन जब हम तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं तो उसकी सफाई अनिवार्य होती है। आइए बहनों, आज हम इसी विषय में जानकारी इस वार्ता के माध्यम से प्राप्त करते हैं। आज की वार्ता का विषय है किचन में स्वच्छता का पालन अनिवार्य क्यों। वार्ताकार हैं श्रुति, आइए इनसे इस विषय में उनके विचारों को जानते हैं।
1: एक मनुष्य के जीवन में चार चीज़ें अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है, रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा। रोटी यानी मनुष्य का भोजन, जो जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण है, और यह रोटी घर के जिस स्थान में बनाई जाती है उसे रसोई घर यानी किचन कहते हैं। रसोई घर का महत्व घर के पूजा स्थल के जितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान का भोग भी रसोई घर में ही तैयार किया जाता है। किचन को घर का हृदय माना जाता है, या वैसी जगह है जहाँ पूरे घर के सेहत का राज छुपा होता है। घर के प्रत्येक सदस्य के सेहत की जिम्मेदारी घर की महिला के ऊपर होती है, क्योंकि ज्यादातर घरों में रसोई पकाने का काम घर की महिला ही करती है, परंतु कुछ परिवार में यह जिम्मेदारी घर के पुरुष भी निभाते हैं। सदियों से किचन की महत्ता को स्वीकार किया गया है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में किचन साफ सुथरा रहता है, उस घर के लोग स्वस्थ और खुशहाल रहते हैं। पहले जमाने में तो बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान भी किचन में रखी चीजों से ही हो जाती थी। ये माना जाता है कि घर के किचन को देखकर घर के लोगों के व्यवहार के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है। घर के किचन में स्वच्छता अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह वही जगह है जहाँ हमारा खाना बनता है। अगर किचन साफ ना हो तो जर्म्स और बैक्टीरिया खाने में पहुँच सकते हैं, जो हमारे बीमारी का कारण बन सकते हैं। कभी कभी किचन में सफाई ना होने के कारण कीड़े मकौड़े पनप जाते हैं, जो किचन में रखी चीज़ों को खराब कर देते हैं। इसलिए किचन को हमेशा साफ और सुव्यवस्थित रखना चाहिए। अगर किचन स्वच्छ होगा तो किचन में काम करने में भी मन लगेगा तथा खाना भी शुद्ध और स्वादिष्ट बनेगा। कहा भी जाता है, क्लीन किचन, हेल्दी लाइफ एंड हैप्पी लाइफ, अर्थात एक साफ सुथरा रसोई घर एक खुशहाल जीवन और एक खुशहाल परिवार का निर्माण करता है। रसोई घर का स्वच्छ होना बहुत सारे फायदे देता है, जैसे बीमारियों से बच

गंदे किचन में बैक्टीरिया तथा जर्म्स जल्दी बढ़ते हैं। ये खाने को दूषित कर देते हैं और फूड पॉइजनिंग, पेट दर्द तथा उल्टी जैसी बीमारियों को जन्म देते हैं। साफ किचन में स्वच्छ और स्वादिष्ट खाने को बनाया जाता है जो परिवार को बीमारियों से दूर रखता है। ताज़ा खाना तथा स्वच्छता का ध्यान, साफ बर्तन, साफ पानी तथा तरीके से खाने के सामान को संरक्षित रखने से खाना ताज़ा रहता है और अगर किचन साफ हो तो खाने का स्वाद और क्वालिटी भी अच्छी रहती है। कीड़े मकोड़े की रोकथाम, किचन में कचरे पड़े रहने से मक्खी, चींटी, चूहे और कॉकरोच आदि आ जाते हैं। ये जर्म्स फैलाते हैं और खाने को खराब करते हैं। रोजमर्रा की सफाई से ये सब किचन से दूर रहते हैं। एक स्वच्छ वातावरण का निर्माण, साफ किचन देखने में सुंदर लगता है और वहाँ काम करने में अच्छा महसूस होता है। इससे खाना बनाने में भी खुशी होती है और प्रसन्न मन से बनाया गया खाना हमेशा स्वादिष्ट होता है। सुरक्षा की गारंटी, अगर किचन का फर्श गीला या तेलीय हो तो कोई फिसल सकता है। गैस स्टोव के पास गंदगी रहने से आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। साफ किचन ऐसे खतरों को कम करता है। समय और पैसे की बचत, जब किचन सुव्यवस्थित तथा साफ होता है तो चीज़ें आसानी से मिल जाती है, खाना खराब नहीं होता, इसलिए वेस्टेज कम होता है और पैसे भी बचते हैं। किचन की सफाई सिर्फ सफाई नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन शैली की निशानी है। एक साफ किचन, स्वस्थ परिवार, सुरक्षित वातावरण तथा अच्छी जीवन शैली को बढ़ावा देता है, जबकि एक गंदगी भरी किचन गंदी मानसिकता की द्योतक है। किचन की गंदगी सिर्फ किचन को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार की सेहत को प्रभावित करती है, इसलिए किचन को हमेशा साफ और सुंदर रखना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो किचन गंदी बदबू से भर जाएगा और किचन में खाना बनाने में परेशानी होगी। परिवार के सदस्यों को स्वच्छ खाना नहीं मिलने से उनकी रोग निरोधक क्षमता कम हो जाएगी तथा वो बार बार बीमार पड़ेंगे। बिखरा और गंदा किचन काम को ज़्यादा मुश्किल बना देता है। किचन में काम करने का मन नहीं होता है तथा परिवार के सदस्यों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अतः एक खुशहाल परिवार के लिए एक स्वच्छ किचन का होना आवश्यक है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। किचन का सुव्यवस्थित होना घर की समृद्धि का प्रतीक है। किचन की सफाई करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जो इस प्रकार है। रोज सफाई करना, किचन की सफाई प्रत्येक दिन तथा सही तरीके से होनी चाहिए। किचन की सतह, स्लेब और सिंक को हर समय साफ रखना चाहिए क्योंकि इनकी गंदगी से ही किचन में कीड़े पनपते हैं। विभिन्न प्रकार की सफाई में प्रयुक्त होने वाली चीज़ें बाजार में उपलब्ध हैं जिससे किचन को साफ रखने में मदद मिलती है। बर्तन तुरंत धोना, खाना बनाने में प्रयोग होने वाले बर्तन तथा जूठे बर्तन को हमेशा धोकर रखना चाहिए। इनको ज़्यादा देर तक बेसिन में छोड़ देने से इनसे एक अजीब सी गंध आती है जो घर के वातावरण को प्रदूषित कर देती है। कचरा को डस्टबिन में रखना चाहिए। घर के गीले तथा सूखे कचरे को अलग अलग जमा करके डस्टबिन में डालना चाहिए तथा डस्टबिन को हमेशा खाली करते रहना चाहिए ताकि कचरे का जमाव नहीं हो पाए। डस्टबिन को भी साफ रखना चाहिए। खाना को ढककर रखना, तैयार खाना को हमेशा ढककर रखना चाहिए ताकि धूल कण या कीड़े उसमें ना आ पाए। फ्रिज और सेल्स को साफ रखना, फ्रिज से सभी बेकार चीज़ों को निकालकर फ्रिज को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। फ्रिज में सामान को सुव्यवस्थित तरीके से रखना चाहिए ताकि ज़रूरत की सामान को आसानी से निकाला जा सके। फ्रिज को बहुत ज़्यादा भरा हुआ नहीं रखना चाहिए। किचन के सेल्फ्स को भी हमेशा साफ रखना चाहिए। अगर फ्रिज में कोई एक्सपायर्ड चीज़ें रखी हो तो उसे भी निकाल देना चाहिए। ताज़ा खाना का सेवन, किचन में खाना बनने के बाद उसे साफ जगह पर ढक कर रखना चाहिए। जितनी ज़रूरत हो उतना ही खाना बनाना चाहिए ताकि खाना बासी होकर बर्बाद ना हो। हमेशा ताज़ा खाने का ही सेवन करना चाहिए जिससे स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। अगर कुछ खाने को थोड़े दिनों के लिए रखना है तो फ्रिज में अच्छी तरह ढक कर रखना चाहिए। हाथ साफ रखें, खाना बनाते समय अपने हाथ को साफ रखना चाहिए। खाना बनाने में प्रयुक्त होने वाले बर्तन, कपड़े आदि को साफ रखना चाहिए। किचन में जितनी सफाई होगी घर के सदस्यों को उतना ही अच्छा सेहत मिलेगा। कहा भी गया है, साफ किचन सेहत को सुरक्षित रखता है। एक साफ सुथरा किचन अच्छी आदत और अनुशासन की मिसाल है। पेस्ट से बचाओ, अगर किसी कारणवश किचन में कीड़े हो जाते हैं तो विभिन्न तरह के पेस्ट का प्रयोग कर इन्हें खत्म कर सकते हैं। पर्याप्त वेंटिलेशन रखें,

0: किचन ऐसी जगह हो जहाँ पर्याप्त रोशनी तथा वेंटिलेशन हो। एग्जॉस्ट फैन आदि का प्रयोग किचन को वेंटिलेशन में मदद करता है। चिमनी आदि का भी प्रयोग अनिवार्य है। एक साफ किचन एक खुशहाल घर का हृदय होता है। उसकी सफाई हमारे स्वास्थ्य को सुरक्षित रखता है, खाने की गुणवत्ता को बढ़ाता है और एक खुशनुमा वातावरण का निर्माण करता है जहाँ परिवार के सदस्य खुश और स्वस्थ रहते हैं। किचन की गंदगी कभी कभी मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए भारी पड़ जाती है। विभिन्न तरह की संक्रामक बीमारियों का सामना करना पड़ता है जिससे मानसिक, आर्थिक और शारीरिक पीड़ा होती है। इसलिए स्वच्छ किचन ही स्वस्थ जीवन का आधार है। अतः हमें हमेशा किचन में स्वच्छता का पालन करना चाहिए। ऐसा करके अपने तथा के सदस्यों के सेहत को हम बचा सकते हैं। हमें किचन को हमेशा स्वच्छ तथा सुव्यवस्थित रखना चाहिए। अगर किचन में धूप आती हो तो छोटे छोटे गमलों में छोटे छोटे पौधे जैसे पुदीना, धनिया, मिर्च या कुछ सजावटी पौधे भी लगा सकते हैं जो किचन की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। इसलिए हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारा किचन साफ और बीमारियों से सुरक्षित हो।
1: बहनों, अभी हम सुन रहे थे वार्ता। आज की इस वार्ता का विषय था किचन में स्वच्छता का पालन अनिवार्य क्यों। वार्ताकार थी श्रुति। इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए हम इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और बहनों, इस वार्ता के बाद आइए सुनते हैं गीत। बहनों, हंसना और हंसाना हमारे जीवन और अच्छे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। इससे तन और मन दोनों ही स्वस्थ रहता है और हमारे खुश रहने में संगीत की भूमिका काफ़ी अहम है। तो आइए सुनते हैं कुछ ऐसा ही गीत। उम्मीद है बहनों, इसे सुनकर आप भी खुशी से खिल उठेंगी।

बहनों, संगीत सुनना एक अच्छा एहसास है और हम इसमें इतने डूब जाते हैं कि आसपास की खबर ही नहीं होती। यह हमें खुश तो रखता ही है, मानसिक तनाव को भी दूर भगाता है। बहनों, चलते चलते सुनते हैं ये मनमोहक गीत। उम्मीद है यह हमें गुनगुनाने पर मजबूर कर देगा।

ये था महिलाओं के लिए हमारा कार्यक्रम नारी लोक। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। अब आप सुनेंगे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी मिलव दास जयदास देवेश दास धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं
2: जल संरक्षण के सारे काम सुख समृद्धि के रचे आयाम।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गर्मी के इस मौसम में आपके विचार की प्रासंगिकता और भी अधिक बढ़ जाती है। जी हाँ श्रोताओ, जल अमूल्य है, इसे बूंद बूंद बचाना हमारी जिम्मेदारी है। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
2: छत्तीसगढ़ रायपुर से नरेंद्र कुमार जाटव, संदीप जाटव, अनीता जाटव और राधिका रानी जयपुरिया जी ने लिखा है, मिठाइयों का सम्मेलन कहानी बहुत पसंद आई, आपको बधाई।
1: आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू।
2: ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सतेंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में।
2: तो श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी गर्मी से बचने के कुछ उपायों पर
1: जी,
2: और ये भी जाना था कि 12 बजे से 4 बजे तक खास तौर से हमें गर्मी के मौसम में बाहर क्यों नहीं निकलना चाहिए। तो अजीत जी, जरा श्रोताओं को ये भी जानकारी दे दें कि आज की चर्चा किस विषय पर होगी।
1: विमलेश जी, आज हम ये चर्चा करेंगे कि गर्मी के मौसम में हमारा खान पान कैसा होना चाहिए
2: जी।
1: लेकिन श्रोताओं, इससे पहले कि हमारी चर्चा आगे बढ़े, एक रोचक लेकिन महत्वपूर्ण बात आपको हम बताना चाहते हैं, और वो ये कि परंपरागत धारणाओं के अनुसार गर्मी के मौसम में सबसे कठिन दिन कब आते हैं।
2: जी अजीत जी, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि वो समय अब आने ही वाला है। आज 13 मई हो गई, बस कुछ दिन और। जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं नवतपा की। उत्तर और मध्य भारत में इसका प्रभाव विशेष रूप से दिखाई पड़ता है। इन दिनों हमें अपना बहुत ही खास ध्यान रखना चाहिए। अजीत जी, नवतपा किसे कहते हैं ये तो बताइए जरा।
1: जी विमलेश जी, नवतपा का अर्थ है 9 दिनों तक तपना, यानी 9 दिनों तक भयंकर ताप।
2: जी,
1: ये वो अवधि है जब हमारे परंपरागत खगोल ज्ञान और मान्यता के अनुसार सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है, और इन दिनों में लगभग 9 दिनों तक प्रचंड गर्मी पड़ती है।
2: तो श्रोताओं, आइए अब जानते हैं कि सामान्यतः ये समय कब आता है। आमतौर पर मई महीने के अंत यानी लगभग 25 मई से जून महीने की शुरुआती यानी 2 जून तक। जलवायु परिवर्तन के कारण ये समय थोड़ा इधर उधर हो सकता है। इस समय विशेषकर उत्तर भारत में लू चलती है और आसमान साफ होता है, इसलिए छाया की भी गुंजाइश नहीं होती है।
1: जी बता दें श्रोताओं कि यह प्राचीन

0: भावों के आधार पर परंपरागत मान्यता है।
1: जी
0: वैसे नवतपे में गर्मी बड़ी खतरनाक हो जाती है, लेकिन इसे वरदान भी माना गया है। क्यों?
1: नवतपे में जितनी गर्मी पड़ेगी, माना जाता है कि मानसून उतना ही अच्छा आएगा।
0: जी
1: आइए अब करते हैं चर्चा गर्मी के मौसम में खान पान की।
0: तो बिमलेश जी, आपसे ही शुरुआत करें।
1: जी अजीत जी, श्रोताओं, गर्मी के मौसम में खास ध्यान ये रखना चाहिए कि हमारा आहार पौष्टिक लेकिन हल्का हो।
0: और हाँ, इस मौसम में नींबू पानी, छाछ, दही जैसे प्राकृतिक उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करें।
1: सबसे जरूरी बात तो ये है श्रोताओं कि खाली पेट घर से न निकलें।
0: जी
1: अब बात करते हैं मौसमी फलों के बारे में। अजीत जी, मुझे लगता है कि प्रकृति को सचमुच हमारी बहुत चिंता रहती है।
0: जी बिल्कुल, इसलिए तो प्रकृति को माँ भी कहा गया है।
1: जी सही कहा, जैसे माता को हमारी चिंता रहती है, वैसे ही प्रकृति भी हमारी चिंता करती है। श्रोताओं जरा सोचिए ना, गर्मी के मौसम में ही खरबूजे, तरबूज जैसे फल प्रकृति क्यों उगाती है, खीरे और ककड़ियाँ क्यों उगाती है, आम और दूसरे मौसमी फल क्यों होते हैं, ये फल सर्दियों में क्यों नहीं उगते?
0: विमलेश जी, आमतौर पर लोग कहेंगे कि इसमें भला सोचने की क्या बात है, ये गर्मी के फल हैं तो गर्मी में तो होंगे ही।
1: जी अजीत जी, आम लोग ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ फल जैसे खरबूज, तरबूज, ककड़ी और खीरे में 80-90% तक पानी होता है।
0: जी
1: इन्हें खाने से हमारे शरीर में पानी की मात्रा बनी रहती है। इतनी अधिक पानी की मात्रा होने के कारण ये पचने में भी आसान होते हैं।
0: जी विमलेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा, प्रकृति को सचमुच हमारी चिंता रहती है, तभी तो वो ऐसे फल उगाती है जिनसे कि हम स्वस्थ रहें। हमें प्रकृति माता को जरूर धन्यवाद देना चाहिए।
1: जी।
0: लेकिन दुखद है कि प्रकृति हमारे स्वास्थ्य की जितनी चिंता करती है ना, उतनी प्रकृति के स्वास्थ्य की चिंता हम नहीं करते।
1: तो श्रोताओं, कैसी लगी हमारी ये जानकारी, जरूर बताइएगा। और अब सुनते हैं आज का प्रश्न।
0: तो आज का प्रश्न है, प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है?
0: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800-44-0559 पर, जो हमारा IBRS नंबर है, और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, शीर्षक है गर्मी।
1: ये कार्यक्रम गर्मी के मौसम की जानकारी देते हुए बताता है कि गर्मी के मौसम में हमें अपना ध्यान किस तरह से रखना चाहिए, और गर्मी के मौसम में पैदा होने वाली साग सब्जियाँ और फल कौन कौन से होते हैं जिनका हमें भरपूर सेवन करना चाहिए।
2: बहुत पुरानी बात है, दो बहनें थीं, सोना और रूपा। दोनों अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहती थी। गर्मी का मौसम था, दोनों बाग में खेल रही थी।
3: अक्कर बक्कर बम्बी बो, 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा।
4: अब तेरी बारी है, तेरी
5: तुम्हारी बारी, तुम सुना, तुम सुना।
4: अच्छा ठीक है, मुझे तो कहानी आती है,
5: तो कहानी सुना दो भाई।
4: अच्छा ठीक है। गर्मी का दिन था, एक कौआ प्यासा था, घड़े में पानी थोड़ा था। कौआ लाया कंकर, घड़े में डाले कंकर, पानी आया ऊपर, कौए ने पिया पानी, खत्म हुई कहानी।
5: अच्छी कहानी थी भाई, कौए ने तो पानी पी लिया, पर अब मुझे बहुत प्यास लग रही है।
4: हाँ, प्यास तो मुझे भी लग रही है। वो सामने घड़ा रखा है, चलो वहाँ चलकर देखते हैं।
5: हाँ चलो चलो, वहाँ चलो, पे पानी होगा।
4: चलते हैं।
2: सोना और रूपा ने घड़े का ढक्कन हटाकर देखा तो उसमें पानी था। दोनों बहुत खुश हुई। रूपा पीने के लिए पानी निकाल ही रही थी कि तभी एक आवाज आई।
6: कौन है?
5: दीदी,
6: कौन है?
5: दीदी।
4: अम्मा जी, मैं हूँ सोना और ये है मेरी बहन रूपा।
5: अम्मा जी, हमें बहुत प्यास लगी है,
4: हम थोड़ा पानी पी लें?
7: हाँ हाँ, क्यों नहीं, पी लो पानी। बच्चों पानी पी लो, ढक्कन ठीक से लगा देना। पी लिया पानी? प्यास बुझी?
5: हाँ, ठंडा पानी था।

0: अम्मा आप कौन है?
1: मैं एक मौसम हूँ। मेरे आने से तुम्हें बहुत प्यास लगती है और बहुत गर्मी भी लगती है, पर मैं अपने साथ तरह तरह के फल भी लाती हूँ, जैसे खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी और भी बहुत सारी चीजें। अच्छा भला बताओ तो मैं कौन हूँ?
2: कौन है आप?
1: नहीं समझे?
2: नहीं।
1: अच्छा तो फिर ये पहेली सुनो।

0: पंखा जलते हैं
1: और सारा दिन पानी भी पीते हैं।
0: ऐसा मौसम
1: अब
2: गर्मी अम्मा है।
3: बिल्कुल ठीक समझी। मैं गर्मी यानी गर्मी का मौसम ही तो हूँ।
1: गर्मी अम्मा आप कब आती हैं? पता ही नहीं चलता।
3: सीधी सी बात है, सर्दी जब जाने की तैयारी करती है गर्म कपड़ों में तुम्हें गर्मी लगती है, तो बस समझ लो कि मेरा मौसम शुरू यानी यानी
1: हाँ, जब होली आती है तो गर्मी भी तो लगनी शुरू हो जाती है।
3: हाँ
1: अम्मा मुझे तो धूप में बहुत गर्मी लग रही है।
3: भाई मेरे मौसम में गर्मी तो लगती है। चलो ऐसा करते हैं, उस पेड़ की छाया में बैठते हैं, ठीक है?
1: हाँ चलो अम्मा चलते हैं।
4: चलो।
5: सोना और रूपा गर्मी अम्मा के साथ जाकर पेड़ की छाया में बैठ गईं। इतने में पेड़ से दो आम गिरे।
1: अरे ये क्या गिरा?
3: मैं देखती हूँ, तुम लोग यहीं बैठो।
5: वहां दो आम गिरे थे, बच्चे भी दो और आम भी दो, लेकिन अम्मा ने वो आम छिपा लिए।
1: अम्मा आप क्या छुपा रही हैं?
6: अम्मा ये आपके हाथ में क्या है?
3: मेरे ही मौसम का एक फल है।
1: दिखाओ ना।
3: दूंगी तुम्हें, दूंगी, पर पहले तुम्हें इसका नाम बताना पड़ेगा।
1: इसका नाम
3: सोचो। मेरे मौसम का सबसे स्वादिष्ट फल जो बच्चों को बड़ों को सबको बहुत पसंद है, खट्टा मीठा रसदार फल। सोचो।
1: स्वाद है,
0: पसंद है,
1: सबसे अच्छा भी है।
0: कौन सा फल है?
1: कौन सा फल?
3: नहीं समझी?
1: नहीं।
3: अच्छा तो फिर सुनो।

0: झट से तुम बोलो ये क्या है, बोलो ना।
1: आ, आ, तुम तो बड़ी समझदार हो।
2: आइसक्रीम ले लो आइसक्रीम, कुल्फी वाला।

0: बर्फ का गोला ले लो, चुस्की ले लो, आइसक्रीम।
1: बच्चों, मेरे मौसम में तुम लोग खूब आइसक्रीम खाते हो, बर्फ के गोले
2: बड़ी
1: खाते हो, है ना? कुल्फी भी खाते हो ना? अरे, तुम्हारा बस चले तो तुम दिन भर आइसक्रीम ही खाते रहो, है
2: अरे कोई
1: ना?
2: खाने को दे तब ना।
1: अरे, लगता है बहुत तेज आंधी आने वाली है। तुम लोग जल्दी से घर चले जाओ। और हाँ, ये आम तो लेती जाओ। लाओ अम्मा, लो।
2: गर्मी अम्मा
1: हाँ,
2: आप बहुत अच्छी हैं।
1: तुम्हें मीठे मीठे आम जो खिलाती हूँ।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम गर्मी, और श्रोताओं आइए अब चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। और हमारा अगला कार्यक्रम है कारगिल की शौर्य गाथा।
1: ये कार्यक्रम कारगिल युद्ध से ठीक पहले की परिस्थितियों की जानकारी देता है और वर्णन करता है कि कारगिल युद्ध के दौरान विपरीत और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के होते हुए भी किस प्रकार से भारतीय सेना ने अपार धैर्य और शौर्य का प्रदर्शन करते हुए विजय की पताका फहराई।
2: मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। सुप्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां कितनी जीवंतता से उन पराक्रमी युद्ध सैन्य महानायकों के प्रति असीम श्रद्धा की भावनाओं को जगाती है।
3: विजयश्री उन्हीं के लिए निर्धारित होती है जो कठिन और विपरीत परिस्थितियों में भी अदम्य साहस और दृढ़ निश्चय के साथ अविचलित और अडिग खड़े रहते हैं। आज का कार्यक्रम हम श्रद्धा सहित समर्पित करते हैं उन पराक्रमी योद्धाओं को जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी।
2: जी हाँ, आज हम बात करेंगे कारगिल युद्ध की, जो नियंत्रण रेखा के पास जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह ऐसी पहली लड़ाई थी जिसे संचार माध्यमों के द्वारा निरंतर प्रसारित किया गया, और परिणाम स्वरूप इस युद्ध का आंखों देखा हाल भारत की जनता के घर घर तक पहुंचाया गया।
4: What you heard right behind you was the sound of Bofors gun directly targeting the top of Tiger Hill, the prelude to the final assault.
5: We just had a shell land very close to us. I doubt if you were able to see anything.
3: देश के विभिन्न मीडिया चैनलों के माध्यम से पत्रकारों ने इस युद्ध का जीवंत रिपोर्टाज प्रस्तुत किया, जिसके कारण जनता द्वारा सेना को अपार समर्थन मिला और फलस्वरूप भारतीय सेना का मनोबल और अधिक बढ़ा, जिसने इतिहास रच दिया। एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय जिसे आने वाली पीढ़ियां गर्व के साथ याद करेंगी। कारगिल का युद्ध 3 मई से 26 जुलाई 1999 तक लड़ा गया।

0: इस युद्ध को ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है, जो मुख्य रूप से स्थल और वायु सेना द्वारा लड़ा गया। उल्लेखनीय है कि इस दौरान भारत की समुद्री सीमाओं पर भी भारतीय नौसेना ने शत्रुओं पर कड़ी निगरानी रखी।
1: दिन था 6 मई 1999 का। समुद्र तल से 16,000 फीट की ऊंचाई पर दुर्गम बर्फीले पर्वतों के बीच एक भारतीय चौकी पर सैनिक मुस्तैदी से पहरा दे रहे थे।
2: बहुत ठंडी आज तो। वैसे भी ये एक ऐसी जगह है जहां लगता है कि हम दुनिया के किसी और ही कोने में हैं, है ना?
3: ठीक कहते हो तुम। अभी मई महीने में इतनी ठंड है तो पता नहीं सर्दियों में क्या हल होता होगा।

0: वैसे तुम्हारी पोस्टिंग तो अभी हाल ही में हुई है ना? अरे मैंने तो यहाँ की दो सर्दियां देख ली हैं।
1: जरा उधर देखो।
0: अब किधर?
1: वहां लगता है कोई इधर ही आ रहा है।
0: हाँ? कोहरा काफी घना है, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है।
1: हाँ।
0: लेकिन हाँ, इतना कह सकता हूं मैं कि कोई सैनिक नहीं है। उसका पहनावा तो देखो।
1: हाँ हाँ, पहनावे से तो कोई कबाइली लगता है।
0: हाँ।
1: लेकिन इधर क्यों आ रहा है?
0: हाँ।
1: कोई जासूस तो नहीं? वार्निंग दो इसे।
0: हाँ, आने दो आने दो। ए, कौन हो तुम? रुको रुको, जाओ वहीं रुक जाओ, रुको।
2: कौन हो तुम?
3: साहब मैं एक चरवाहा हूँ साहब, मुझे एक बहुत जरूरी सूचना देनी है। अपने बड़े साहब से मुझे मिलवाओ।
2: क्या सूचना?
3: साहब साहब, दुश्मनों के बारे में।
2: अच्छा, यहीं रुको, चलो, कमांडेंट साहब ने बुलाया तुम्हें।
3: नमस्कार सर, मेरा नाम ताशी नामग्याल है।
4: नमस्कार, कहो क्या कहना चाहते हो?
3: सर हम एक चरवाया हैं।
4: आगे बताओ।
3: सर ये 3 मई की बात है, कुछ दिनों पहले मेरा याक खो गया था। उसे खोजते हुए मैं पहाड़ों पर काफी ऊंचाई में चला गया था। एक ऊंची चट्टान पर खड़े होकर मैंने दूरबीन से नीचे देखा तो एक बड़ा अजीब सा नजारा मुझे दिखाई पड़ा।
4: क्या देखा तुमने?
3: साहब मैंने देखा कि पठानी कपड़ों में बहुत से लोग एक जगह पर जमा हैं।
4: क्या?
3: उनमें बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिक भी हैं। वे बंकर खोद रहे थे और उनके पास बहुत सारे हथियार भी थे। हाँ।
4: कितने लोग रहे होंगे?
3: साहब पूरी गिनती तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ इतना पक्का है कि वो बॉर्डर के उस पार से आए हैं और बहुत ही बड़ी संख्या में जमा हो रहे हैं।
4: ये तो बड़ी जरूरी बात बताई तुमने। हो सकता है कि हमें तुम्हारी फिर से जरूरत पड़े। तुम्हारा घर कहाँ है?
3: साहब मेरा गांव है घरकोन, ये कारगिल शहर से 60 किलोमीटर दूर बटालिक शहर के पास है।
5: तो साथियों, इस स्थानीय सजग चरवाहे की सूचना से सेना सतर्क हो गई। जब सेना ने इस बात की छानबीन की तो बात सच निकली। उन्हें पता चला कि सीमा पार से बहुत बड़ी घुसपैठ हुई है।
6: सही स्थिति का अंदाजा लगाने के लिए भारतीय सेना ने मेजर सौरभ कालिया के नेतृत्व में एक गश्ती दल भेजा, लेकिन वो दल कभी वापस ही नहीं आया। 10 जून को पाकिस्तानी सेना ने उनके बुरी तरह से क्षत विक्षत शव वापस भेजे।
5: अब इस बात में कोई संदेह नहीं था कि पाकिस्तान द्वारा बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुई थी। सेना द्वारा गहन जांच में पता चला कि मई 1999 की शुरुआत में ही पाकिस्तानी सेना नियंत्रण रेखा पार करके मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक क्षेत्रों में लगभग 4 से 8 किलोमीटर अंदर तक घुस आई थी और पाकिस्तानी सेना के लगभग 2000 से अधिक पैदल सैनिकों और कमांडो ने यहां अपनी चौकियां बना ली थी।
6: यद्यपि पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा कहा गया कि ये घुसपैठिए कश्मीरी स्वतंत्रता सेनानी हैं, लेकिन छापेमारी में पकड़े गए लोगों और हल्की गोलाबारी में मारे गए सैनिकों के पास मिले सारे दस्तावेजों ने साबित कर दिया कि ये काम पाकिस्तान के अलावा किसी और का नहीं था।

0: नाम से जाना जाता है। इस सैन्य अभियान का नाम था ऑपरेशन विजय। भारतीय सेना समझ चुकी थी कि विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों में शत्रुओं से युद्ध करना एक बेहद कठिन और दुष्कर कार्य होगा। भारत सरकार द्वारा नियंत्रण रेखा को पार न करने के निर्णय ने भारतीय सेना के कई सामरिक विकल्पों पर अंकुश लगा दिया।
1: भारतीय सीमा में घुसे हुए पाकिस्तानी पूरी तरह से सुरक्षित और अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे। उन्हें पहाड़ों की ऊंचाइयों पर होने का प्राकृतिक लाभ था, जबकि भारतीय सेना घाटी में खुले होने के कारण बेहद असुरक्षित थी। लेकिन युद्ध अवश्यंभावी था और भारतीय सेना ने युद्ध छेड़ दिया।
0: दिन में किए गए हमले खतरनाक हो सकते थे क्योंकि देख लिए जाने का जोखिम था, इसलिए भारतीय सेना द्वारा आक्रमण मुख्य रूप से रात को 0 डिग्री से भी कम तापमान में किए गए। सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी समुद्र तल से 18,000 फीट की खड़ी चढ़ाई को चढ़ना।
2: साथियों, हमारे सामने जो सबसे बड़ी कठिनाई है वो है इन पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई पर चढ़ना।
3: लेकिन सर, एक और बहुत बड़ा खतरा है और वो है दुश्मनों द्वारा देख लिए जाने का।
2: ठीक कहते हो, अगर हम चढ़ने की कोशिश भी करें तो वो बड़ी आसानी से हमें अपने निशाने पर ले सकते हैं।
4: जी सर, इसलिए दिन की रोशनी में आक्रमण करना बिल्कुल संभव नहीं है। हमारे पास मात्र रात को ही आक्रमण करने का विकल्प बचता है।
2: सही बात। सुनो, सब इधर आओ।
5: जी, यस सर।
2: ये मेज के चारों ओर।
5: जी सर।
3: उधर से। हाँ।
2: जी, तुम्हें याद होगा कि अभी 3 दिन पहले हमारी वायुसेना के विमान इस क्षेत्र में आक्रमण करने आए थे।
5: जी सर।
2: वायुसेना ने हमले के दौरान इस क्षेत्र के चित्र भी खींचे हैं और उन्हें हमारे पास भेजा है।
5: जी सर।
2: इन चित्रों के आधार पर मैंने ये नक्शा बनाया है।
5: जी सर।
2: इस नक्शे के अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि दुश्मनों की चौकी जहां है उसकी विपरीत दिशा से हमें पर्वत पर चढ़ना होगा, यानी दाहिनी ओर से।
3: जी सर, आप ठीक कहते हैं सर। इस तरफ से सर, यहां से पहाड़ की दाहिनी ढाल भी ज्यादा कठिन है सर। दुश्मन सोच भी नहीं सकता कि हम इस तरफ से चढ़ भी सकते हैं।
2: बिल्कुल ठीक। तो साथियों,
6: यस सर।
2: अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मेरा अंदाजा है कि इस चढ़ाई में हमें कम से कम 5 घंटे तो लगेंगे, तो क्यों ना रात 11 बजे से इस अभियान को शुरू किया जाए।
5: जी जी सर।
2: चढ़ाई करने वाली हल्की रस्सियां तैयार कर ली जाएं। हथियारों में राइफल्स, हल्की मशीन गन और हथगोले होंगे।
5: सर, जी सर।
2: कोई शक?
5: नो सर। सर,
2: बी प्रिपेयर्ड फॉर द मिशन।
6: यस सर।
3: सर, अब हम चोटी के बिल्कुल पास आ गए।
7: धीमे बोलो, धीमे।
3: जी,
7: उन्हें पता ना चल जाए।
3: जी सर।
7: चोटी पर पहुंचते ही हम सभी रेंगते हुए उनके तंबुओं की ओर बढ़ेंगे।
3: जी।
7: और हथियारों के साथ अपनी अपनी पोजीशन ले लेंगे।
3: ठीक है सर।
7: और फिर तुम विपरीत दिशा में एक हथगोला फेंकना।
3: जी सर। जी सर।
7: बम के फटने की आवाज सुनकर अपने तंबुओं से कुछ सैनिक बाहर जरूर निकलेंगे और तुम्हें उन पर फौरन फायरिंग करनी होगी।
3: जी सर।
7: ठीक है, आगे बढ़ो। बहुत धीरे, आवाज नहीं निकलनी चाहिए। धीरे, बहुत धीरे,
3: धीरे।
7: दबे बहुत, दबे। बस अब हम चोटी पर आ गए हैं, तो अब रेंगना शुरू करो।
3: रेंगेंगे। जी सर।
7: कोई भी उठ कर नहीं छोड़ेगा, सब रेंगेंगे। आवाज नहीं, आवाज नहीं, आवाज नहीं। हर कोई अपनी पोजीशन ले ले।
3: हाँ सर।
7: एवरीबॉडी रेडी?
5: यस सर।
3: यस सर।
7: अब हथगोला फेंको।
2: गुड, वो अपने बंकरों से बाहर आ रहे हैं।

0: इस मिशन में भारतीय सेना को भारी सफलता मिली। दुश्मन के अधिकांश लोग मारे गए और कारगिल की इस चोटी पर भारतीय सेना ने अपना परचम लहरा दिया। ऑपरेशन विजय में भारतीय वायुसेना की बहुत ही अहम भूमिका रही। इस युद्ध में सामरिक महत्व के मुख्य क्षेत्र थे मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक।
1: भारतीय सेना ने एक अपूर्व गरिमामय इतिहास रच दिया था।
0: 3 मई से 26 जुलाई 1999 के बीच लड़ी गई इस लड़ाई में 25 सैनिक अधिकारियों और 436 जवानों की शहादत हुई। इसके अलावा 54 सैनिक अधिकारी और 629 जवान घायल हुए।
1: इस युद्ध में 2 सैनिक अधिकारियों और 2 जवानों को परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। ये पराक्रमी योद्धा हैं कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, राइफलमैन संजय कुमार और ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव।
0: देश इन रणवीरों को उनके असीम शौर्य हेतु श्रद्धा से नमन करता है। कारगिल युद्ध की गौरवशाली विजय की स्मृति में 26 जुलाई को अब देश भर में विजय दिवस मनाया जाता है।
2: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और श्रोताओं, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम लोक रंग। आज कलाकार हैं विनय कुमार शुक्ला। इनके स्वर में आरंभ में सुनिए देवी गीत।

श्रोताओं, लोकरंग कार्यक्रम आप पुनः सुन पाएंगे 1:20 पर। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। 1:10 होने वाले हैं। अब प्रादेशिक समाचार होंगे रांची केंद्र से।

0: समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री ने घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार किया छोटा, ईंधन की बचत और आर्थिक मजबूती के लिए उठाया कदम। झारखंड कांग्रेस की नई कमेटी पर विवाद और गहराया। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के बाद सांसद सुखदेव भगत ने भी प्रदेश नेतृत्व के फैसलों पर उठाए गंभीर सवाल। राज्य में श्रमिकों के लिए साल भर चलने वाला मुफ्त स्वास्थ्य जांच अभियान शुरू। रांची के ईएसआईसी अस्पतालों में होगी 40 से अधिक उम्र के कामगारों की जांच। राज्य के पूर्व मंत्री और गोमिया से 4 बार विधायक रहे माधवलाल सिंह का निधन। सादगी और जनसेवा के लिए मशहूर माधव बाबू के जाने से राज्य भर में शोक। और रेल यात्रियों की सुविधा को लेकर रांची और टाटानगर से दिल्ली के लिए 23 मई को चलेंगी जनजाति दिवस स्पेशल ट्रेनें, 25 मई को होगी वापसी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह SPG प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी हैं। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री के काफिले में वाहनों की संख्या में कमी गुजरात और असम की उनकी हालिया यात्राओं के दौरान लागू की गई थी। यह कदम पश्चिम एशिया के संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। प्रधानमंत्री ने बिना नई खरीद के काफिले में इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने के निर्देश दिए हैं। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के गठन पर विवाद गहरा गया है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के बाद लोहरदगा सांसद सुखदेव भगत ने प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश पर निशाना साधते हुए कहा कि कमेटी बनाने से पहले पूर्व अध्यक्षों को भरोसे में नहीं लिया गया। उन्होंने डिलिमिटेशन कमेटी में किसी भी आदिवासी नेता को जगह न मिलने पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
1: केशव महतो कमलेश जी वो पार्टी के अध्यक्ष है ना, कोई व्यक्तिगत नहीं है और उसमें लाइकिंग्स डिसलाइकिंग नहीं चलता। आदिवासियों को सीटें घटी और हमें एक को रखा नहीं है। ये क्या कमेटी आपने बनाया है? और आपने SIR कमेटी रखा लेकिन डिलिमिटेशन में सुखदेव भगत नहीं, बालमुचू जी नहीं, रामेश्वर जी नहीं, बंधु त्रिकी जी नहीं, उनका प्रतिनिधित्व आपने नहीं दिया।
0: झारखंड में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के निर्देश पर श्रमिकों के लिए वर्ष भर चलने वाला निशुल्क स्वास्थ्य जांच अभियान शुरू हुआ है। इसके तहत नामकुम और आदित्यपुर ESIC अस्पतालों में 40 वर्ष से अधिक उम्र के श्रमिकों की जांच की जाएगी। बीमा आयुक्त प्रायण सिन्हा ने नामकुम अस्पताल का निरीक्षण कर अभियान को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं। धनबाद नगर निगम बोर्ड की बैठक में राज्य सरकार द्वारा होल्डिंग टैक्स में की गई 10% बढ़ोतरी का सर्वसम्मति से विरोध किया गया। मेयर संजीव सिंह की अगुवाई में बोर्ड ने टैक्स वृद्धि वापस लेने का प्रस्ताव पारित किया। बैठक में पेयजल संकट दूर करने के लिए पानी टंकी स्थापित करने की मंजूरी

0: भी दी गई।
1: बोर्ड में इस चीज का निर्णय लिया गया कि यह प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा कि जो टैक्स बढ़ोतरी किया गया 10% वो उसको पुनः पहले ही की तरह रखा जाए, उसको बढ़ोतरी ना किया जाए। और चूंकि धनबाद नगर निगम क्षेत्र के लोगों के हित में है, इसके लिए ये बोर्ड पूरा एक निर्णय लिया है।
0: राज्य के पूर्व मंत्री और गोमिया से 4 बार विधायक रहे माधवलाल सिंह का आज रांची के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार थे। हमारे बोकारो संवाददाता ने बताया कि उनके निधन की खबर फैलते ही पूरे राज्य में शोक व्याप्त है।
2: माधवलाल सिंह गोमिया विधानसभा से वर्ष 1985, 1990, वर्ष 2000 और 2009 में विधायक चुने गए। उन्होंने वर्ष 2000 में बिहार सरकार और झारखंड गठन के बाद 2003 में मंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली। सरल स्वभाव और स्पष्टवादी व्यक्तित्व के कारण वे बोकारो में काफी लोकप्रिय थे। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो।
0: कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे आज धनबाद पहुंच रहे हैं। वे जिला प्रशासन, BCCL और JRDA के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। इसके अलावा वे बेलगढ़िया टाउनशिप का दौरा कर विकास योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और परिसंपत्ति वितरण करेंगे। केंद्र सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लैटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इसके अलावा अनुपालन मानदंडों की पूर्ति के अंतर्गत कीमती धातु के प्रयुक्त उत्प्रेरक पर 4.35% आयात शुल्क निर्धारित किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के चलते लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। दक्षिण पूर्व रेलवे ने यात्रियों की भीड़ के मद्देनजर रांची और टाटानगर से दिल्ली के लिए जनजातीय दिवस स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। रांची दिल्ली स्पेशल 23 मई को और टाटानगर आनंद विहार स्पेशल भी इसी दिन रवाना होगी। दोनों ट्रेनें 25 मई को दिल्ली से वापस लौटेंगी। रांची पुलिस ने हिंदपीढ़ी इलाके में बड़े नशा कारोबार का भंडाफोड़ करते हुए एक महिला सहित 6 तस्करों को गिरफ्तार किया है। कोतवाली ASP निखिल राय के नेतृत्व में 4 थानों की पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में ब्राउन शुगर, गांजा, नशीले इंजेक्शन और 8,74,200 रुपए नकद बरामद किए हैं। ASP ने बताया कि जांच में यह भी सामने आया है कि नशे के सौदागरों ने इलाकों में अलग अलग स्पॉट बना रखे थे, जहाँ प्लास्टिक के टेंट लगाकर ड्रग्स का सेवन कराया जाता था।
3: हमें सूचना मिली थी कि खेत मोहल्ला हिंडपीरी में कुछ लोग हैं जो नशे का अवैध कारोबार कर रहे हैं। हमने तुरंत छापा मारा और 5 से 6 लोग को हमने अरेस्ट किया, तो हमें उसके अंदर टोटल लगभग 300 ग्राम गांजा, टेजोविन इंजेक्शन के 20 कैप्सूल, नाइट्रोजन 10 टैबलेट्स 40 की मात्रा में और लगभग 5 ग्राम ब्राउन शुगर और 8.74 लाख कैश बरामद किया।
0: घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों ने शुरुआती नुकसान की भरपाई करते हुए आज सुबह के सत्र में मामूली बढ़त दर्ज की। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सेंसेक्स 261 अंक बढ़कर 74,820 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 97 अंक बढ़कर 223,476 पर पहुंच गया। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,41,500 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,78,000 रुपए प्रति किलो है। और अब मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आज पलामू प्रमंडल और कुछ अन्य जिलों को छोड़ रांची सहित अधिकांश झारखंड में येलो अलर्ट जारी किया है, जहां 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं और बारिश हो सकती है। वहीं 15 मई को रांची, धनबाद और संताल परगना सहित कई जिलों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारत में इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन इस सप्ताह हो सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून के

आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मॉनसून आ जाएगा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित होने वाली अंडर 17 राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए कलकत्ता पब्लिक स्कूल ओरमांझी के 9 खिलाड़ियों का चयन झारखंड टीम में हुआ है। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले इन खिलाड़ियों में अनुष्का, शिवानी, सृजल, आकांक्षा और रिया सहित कुल 9 छात्र छात्राएं राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री ने घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार किया छोटा, ईंधन की बचत और आर्थिक मजबूती के लिए उठाया कदम। झारखंड कांग्रेस की नई कमेटी पर विवाद और गहराया वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर के बाद सांसद सुखदेव भगत ने भी प्रदेश नेतृत्व के फैसलों पर उठाए गंभीर सवाल। राज्य में श्रमिकों के लिए साल भर चलने वाला मुफ्त स्वास्थ्य जांच अभियान शुरू। रांची के ईएसआईसी अस्पतालों में होगी 40 से अधिक उम्र के कामगारों की जांच। राज्य के पूर्व मंत्री और गोमिया से 4 बार विधायक रहे माधवलाल सिंह का निधन। सादगी और जनसेवा के लिए मशहूर माधव बाबू के जाने से राज्य भर में शोक। और रेल यात्रियों की सुविधा को लेकर रांची और टाटानगर से दिल्ली के लिए 23 मई को चलेंगी जनजाति दिवस स्पेशल ट्रेनें, 25 मई को होगी वापसी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। एक बार फिर स्वागत है कार्यक्रम लोकरंग में। आज कलाकार हैं अरविंद कुमार यादव।

अरविंद कुमार यादव के गाए इस लोक भजन के साथ ही लोकरंग कार्यक्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। आरंभ होता है ग्रामीण महिलाओं के लिए हमारा कार्यक्रम घर आंगन।

घर आंगन कार्यक्रम सुनने वाली सभी बहन का दीपा के नमस्कार। बहन, कितना उमस वाला मौसम हो गलो छे। ज्यादा धूप नहीं रहता हुआ भी हालत खराब हो रहा छे बाहर में। यही सब बहन, एहनो गर्मी के दिनों में सेहत के ध्यान रखना बहुत जरूरी छे। कुछ बात के ध्यान तो एहनो दिन में जरूर रखना चाहिए, जेना कि दिन भर 3 से 4 लीटर पानी पीता रहना चाहिए। प्यास नहीं लगा तब्बो नींबू पानी, केतारी के रस, छाछ, नारियल पानी जरूर से पीना चाहिए। चाय कॉफी सिनी कम में थोड़ा पिलो जाए तो ज़्यादा बढ़िया बात बहन। एहनो दिनों में 12 से 4 बजे तक घर से बाहर निकले से बचना चाहिए, जब तक बहुत जरूरी नहीं हुआ। और जब भी बाहर निकला छो तो छाता, टोपी, गमछा तो जरूर से अपनो सिर पर ढकी लेना चाहिए। साथों में सूती वस्त्र पहनना चाहिए। खाना बासी तो एहनो गर्मी में नहीं खाना चाहिए, नहीं तो होकरो कारण तबियत खराब हो सके छे। तो यही सिनी कुछ छोटो छोटो सावधानी जरूर।

0: रखना चाहिए बहन। बहन बिहार सरकार द्वारा बेटी के शिक्षा का बढ़ावा दे वास्ता बहुत तरह के योजना चलेलो जा रहलो छे, जेकरा में सबसे महत्वपूर्ण योजना छे मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। ई योजना के तहत स्नातक, मैट्रिक आरु इंटर पास करे वाली छात्रा का आर्थिक सहायता देलो जाय छे, जेकरा से कि उ उच्च शिक्षा प्राप्त कर सका आरु आत्मनिर्भर बना सका। साल 2025 में भी ई योजना के लाभ बहुत ज्यादा संख्या में छात्रा का देलो गेलो छले आरु उम्मीद छे कि ई साल भी छात्रा सिनी ई योजना के लाभ बढ़ी चढ़ी का उठेते। तो जाने छे कि ई योजना छेके की हेकरा में आवेदन केना करना छे आरु स्टेटस चेक करे के की प्रक्रिया छेके। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के मुख्य उद्देश्य बिहार के बालिका का शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन देना और आर्थिक तंगी के कारण होकरोसनी के पढ़ाई बाधित नहीं हुआ इस सुनिश्चित करना छे। बहिन सरकार चाहे छे कि सभ्य बेटी पढ़ा आगू बढ़ा और समाज में सम्मान के साथ अपनों पहचान बनावा। ई योजना के अंतर्गत सरकार विभिन्न स्तर पर छात्रा का प्रोत्साहन राशि प्रदान करी छे, जेना कि मैट्रिक पास छात्र छात्रा का 10,000 के आर्थिक सहायता, इंटरमीडिएट पास छात्रा का 25,000 रुपया के आर्थिक सहायता, स्नातक पास छात्रा का 50,000 के प्रोत्साहन राशि देलो जाए छे। ई राशि सीधा लाभार्थी छात्रा के बैंक खाता में DBT यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजलो जाए छे। ई योजना के लाभ खाली ओहनो छात्र के मिलते जे कि बिहार के मूल निवासी छे। सरकारी या मान्यता प्राप्त विद्यालय या फिनु विश्वविद्यालय से पढ़ाई पूरा करलो हुआ अविवाहित या विवाहित दोनों ही छात्रा आवेदन कर सके छे। हुनको पास सक्रिय बैंक खाता आरु आधार कार्ड होना जरूरी छे। मान लो जाए कि छात्रा ना आवेदन करी देला छे आरु जाने ला चाहे छे कि अपनो नाम सूची में ऐलो छे कि नहीं, तब पता करे वास्ता आधिकारिक पोर्टल पर जाना छे, फेनु व्यू एप्लीकेशन स्टेटस वाला सेक्शन पर क्लिक करना छे। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर आरु जन्मतिथि पूछलो जेते, जेने जानकारी भरी देलो जेते तो अपनो स्टेटस स्क्रीन पर दिखा लगते। अगर अपनो नाम लिस्ट में छे तो अप्रूव्ड दिखते, राशि गेला पर पेमेंट डन लिखलो दिखते। जोन छात्रा के नाम अभी लिस्ट में नहीं एलो छे होकरा थोड़ा इंतजार करेल होते, कहना कि भुगतान किस्त में करलो जाए छे। आधार कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र जेना कि मैट्रिक, इंटर, स्नातक के मार्कशीट और सर्टिफिकेट, मोबाइल नंबर, निवास प्रमाण पत्र, रजिस्ट्रेशन कार्ड होना चाहिए। बहिन हेकरो फायदा गरीब आरु मध्यम वर्ग के परिवार के बेटी का शिक्षा जारी रखे के अवसर, लड़की में आत्मनिर्भरता आरु आत्मविश्वास के विकास, समाज में लैंगिक समानता का बढ़ावा, उच्च शिक्षा प्राप्त करे वाली बालिका के संख्या में वृद्धि करना छे। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना स्नातक, मैट्रिक और इंटर बिहार सरकार के एक ऐतिहासिक पहल छे, जे कि बेटी वास्ता शिक्षा के राह आसान बनाए छे। यदि अपना सिनी परीक्षा उत्तीर्ण करी लेला छो तो ई योजना के लाभ जरूर उठावो। आवेदन करला के बाद स्टेटस आरु नाम चेक करना नहीं भूलना छे भाई, जेकरा सा समय पर प्रोत्साहन राशि मिला सका। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना खाली आर्थिक सहयोग नहीं बल्कि बेटी के सपना का उड़ान दे के माध्यम भी छे बहन। तो बातचीत तभी आरु होते हम असनी एक ठो बढ़िया जनो झूमर सुनबे बहन, लेकिन होकरा से पहला ले छे एक छोटो जनो अंतराल।
1: सुनो ना,
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है, हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब

0: भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं।
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424
0: ओ 8700001424 लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।

0: जरूर बहिनी स्निका, अच्छा लगलो होते। बहिन, कोई भी परंपरा के निर्माण एक दिन या एक साल में नहीं हो जाए छे, जेकरा बनाए में सालों साल लगी जाए छे। परंपरा ही समाज का जोड़े छे। परंपरा होकरा कहे छे जे कि बहुत समय से होता हुआ आ भी रहलो छे। हम असिनी अपनो परंपरा के सम्मान करे छे, लेकिन साक्षर हुला से बहुत कुछ बदलाव भी होलो छे जे कि पहला नए छले। तो यही विषय परंपराओं के निर्वहन में साक्षरता की भूमिका पर आरो विस्तार से जानकारी प्राप्त करी छे एकठो पूर्व प्रसारित वार्ता के माध्यम से, जेकरो वार्ताकार छे के सुषमा गुप्ता।
1: परंपराओं के निर्वहन में साक्षरता की भूमिका। हमारा भारत देश एक ग्राम प्रधान देश है। यहाँ की संस्कृति विभिन्न प्रकार की सही और गलत परंपराओं के निर्वहन से जुड़ी है। सही और गलत परंपराओं से जुड़ने का अर्थ यह है कि आज साक्षरता बढ़ने के कारण बहुत सारी चली आ रही परंपराओं का निर्वहन खतरे में पड़ गया है। उनका महत्व कम हो गया है या उनका पालन जरूरी नहीं रह गया है। उदाहरण के लिए, पहले हमारा संयुक्त परिवार हुआ करता था। परिवार के हर सदस्य के भविष्य की सुरक्षा थी, आपस में प्रेम था, परंतु आज परिस्थिति विपरीत है। बिरले ही कहीं कोई संयुक्त परिवार का उदाहरण मिलता है। हम दो और हमारे दो के नारे का गलत अर्थ निकाला जा रहा है। माँ बाप अपनी खून की कमाई से बच्चों को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाते हैं और वे परंपरा के विरुद्ध प्रेम विवाह कर लेते हैं। माँ बाप भाई बहन सबको भूल जाते हैं। क्या उच्च शिक्षा अथवा साक्षरता उन्हें यही शिक्षा देती है कि हमारे पूर्वज जिस परंपरा का निर्वहन करते आ रहे हैं उसकी मर्यादा को तार तार कर दें? शायद कदापि नहीं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि सही परंपराओं के निर्वहन के लिए साक्षरता को वरदान के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, ना कि अभिशाप के रूप में। अब हम आज के समय के आलोक में अभी भी चली आ रही कुछ गलत परंपराओं पर बात करें, जैसे कि महिलाओं, खासकर पर्दे में रहने वाली महिलाओं का घर से बाहर निकलने पर रोक, उनका प्रसव घर में ही करवाना, घर की कच्ची शौचालय का उपयोग करना भयंकर बीमारियों का आमंत्रण देना है। आज के साक्षर युग में इस पर रोक लगनी चाहिए। आज भी सुदूर

गांवों में यह परंपरा है कि दूल्हे की उंगली को विवाह करने जाने से पहले घायल कर उससे खून निकाल कर उस खून से उसका तिलक किया जाता है। अगर टेटनस हो गया तो यह कैसी शादी होगी? यह परंपरा गलत है। साक्षरता बढ़ने के साथ इस पर रोक लगनी चाहिए। आज भी महिलाओं के बीच ओझा, गुनी, साधु, फकीर काफ़ी मशहूर हैं, जबकि ये उन्हें सिर्फ ठगते हैं। आज के वैज्ञानिक साक्षर युग में बांझपन और कई लाइलाज बीमारियों का इलाज संभव है, लेकिन महिलाओं के अंदर यह विश्वास बैठा हुआ है कि सिर्फ साधु बाबा औघड़ फकीर ही उनकी बांझपन दूर कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल गलत परंपरा है। आज शिक्षा के विकास के साथ साथ देश बहुत आगे बढ़ चुका है। इस गलत परंपरा को हमें मिटाने में काफ़ी सफलता हासिल हुई है, लेकिन अभी और प्रयास की आवश्यकता है। गाँवों में आज भी सैकड़ों लोग सांप बिच्छू एवं अन्य जहरीले जीव जंतुओं के काटने से मर जाते हैं। बाद में पता चलता है कि ओझा जी उनका झाड़ फूँक कर रहे थे। अस्पताल ले जाने पर ठीक नहीं होगा, ओझा जी ही विष पी जाएंगे और पीड़ित व्यक्ति जिंदा हो जाएगा। काहे को पीड़ित व्यक्ति जिंदा होगा? पता चला कि ओझा जी ही भाग गए। आज हमें बढ़ती साक्षरता के मद्देनज़र इस ओझा गुनी वाली हानिकारक एवं विनाशकारी परंपरा को समाप्त करना होगा। विज्ञान के महत्व को समझना और समझाना होगा। अब हम फिर कुछ अच्छी परंपराओं के निर्वहन के लिए साक्षरता की क्या भूमिका हो सकती है, इस पर गौर करें। आज हम विदेशों में कारगर सोशल सिक्योरिटी एवं हेल्थ कार्ड योजना परंपरा इत्यादि के विषय में पढ़ने और सुनने को मिलता है। अपने भारत देश में भी अब लगभग मिलती जुलती स्वास्थ्य योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना कारगर है। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे कुछ प्रगतिशील देश अपने नागरिकों को बेहतर सुविधा देने की परंपरा का मिसाल पेश कर रहे हैं, आज हम भी शिक्षित नागरिक होने के नाते अपने विवेक से उचित अनुचित परंपराओं के निर्वहन के लिए आगे आ सकते हैं, बाल विवाह रोक सकते हैं, विधवा विवाह को बढ़ावा दे सकते हैं, सती प्रथा बंद कर सकते हैं, महिलाओं को भी माँ बाप की मृत्यु पर उन्हें मुखाग्नि देने की अनुमति प्रदान कर सकते हैं, नारी शिक्षा को और अधिक बढ़ावा दे सकते हैं, बाल श्रमिक पर रोक लगा सकते हैं। साक्षरता स्वास्थ्य के पहलू पर भी जोरदार असर कर रही है। आज इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि गौमूत्र की महत्ता कम है, लेकिन आज इसका उपयोग करना खतरे से खाली नहीं है। पूरा वातावरण और वायुमंडल इतना प्रदूषित हो चुका है कि क्या शुद्ध है और क्या शुद्ध अंतर कर पाना मुश्किल है, लेकिन दूसरी तरफ हमारी मृत्यु दर घट रही है, औसत आयु बढ़ रही है। इसका कारण है गलत परंपराओं के निर्वहन से दूर रहना। पुराने जमाने में पुरुष खेतीबाड़ी का काम निपटाने के बाद दोपहर में जब लौटते थे तो नहा धोकर भोजन करते थे। औरतें सभी पुरुषों के खा लेने के बाद ही भोजन करती थीं। अधिकतर महिलाएं तो रोज की नियमित पूजा पाठ के कारण सुबह से ही भूखे पेट रहती थीं और विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाया करती थीं। आज डॉक्टर भूखे पेट रहने की कदापि सलाह नहीं देते हैं। यह साक्षरता का ही प्रभाव है। हम अधिक दिनों तक स्वस्थ रह पाते हैं और जिंदा रहते हैं, तो क्या किया जाए? पहले भगवान की पूजा की जाए या पहले जलपान किया जाए? शिक्षा हमें यह बताती है कि जब स्वस्थ रहेंगे तभी तो भगवान की पूजा कर पाएंगे। शायद ठीक ही कहा गया है, भूखे भजन न होई गोपाला। पुरानी परंपरा के अनुसार साधु महात्मा सिद्ध पुरुष सिद्ध संत इत्यादि लोग इतना अधिक कंदमूल मेवा दूध फल ग्रहण कर आत्म ऊर्जा प्राप्त कर लेते थे कि कई दिनों तक वे बिना खाए पिए रह सकते थे, किंतु आज ऐसा संभव नहीं है। सामने अर्थी तैयार करके हम पहले रख लें, फिर इस परंपरा के निर्वहन के बारे में सोचें। साक्षरता सही परंपराओं के निर्वहन में कभी बाधक नहीं है, बल्कि उनके निर्वहन में हमें बढ़ावा देती है। हमारे समाज में आज भी पिछड़ापन, कुरीतियों का अनुपालन, विश्वास की कमी, ढोंगपन, छलावा, दिखावटीपन, संकीर्णता इत्यादि का बोलबाला है। आज हम साक्षर हैं, हमें इसे दूर करना होगा। अच्छी परंपराओं को लागू करने के लिए और मजबूती से सक्रिय होना पड़ेगा। छिछली आधुनिक परंपराएं मोबाइल, इंटरनेट, गूगल, वाईफाई के अंधकार में

0: पहलू को विराम देना होगा एवं दूसरी तरफ इसके स्वर्णमयी पहलू को और अधिक विकसित करते हुए इसको बढ़ावा देना होगा। अब मैं क्या कहूँ, मैं खुद कभी कभी उधेड़ बुन में पड़ जाती हूँ कि किस परंपरा को जारी रखूँ और किसे निरस्त करूँ। पुराने जमाने में लोग अतिथि का चीनी के शरबत से स्वागत करते थे, मीठा गुड़ के साथ पानी देते थे, तब डायबिटीज कहाँ थी, लेकिन आज तो हर खाने में डायबिटीज है। क्या खाएं और क्या नहीं खाएं? पुरानी परंपरा के अनुसार आज घर में आए अतिथि को अगर चीनी के शरबत से अथवा एक ढेला गुड़ के साथ पानी दिया जाए तो वह उस प्रारंभिक अतिथिपनी को कभी स्वीकार नहीं करेगा। अर्थात चीनी अथवा गुड़ के साथ पानी पिलाने की परंपरा को साक्षरता के मद्देनजर विराम देना होगा।
1: कितना उपयोगी जानकारी पहले बहन, इतना अच्छा जानकारी दे वास्ता बहन सुषमा गुप्ता का बहुत बहुत धन्यवाद। अब कुछ जरूरी विषय

अब पहलो गेलो छे कि रात में 6 से 8 घंटा के नींद पूरा करना सभ्य लोग वास्ते जरूरी छे। एकरो कारण न खाली मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहे छे, साथों में ब्लड प्रेशर, हृदय गति भी नियंत्रण में रहे छे। अच्छा आरु आरामदायक नींद वास्ते मेलाटोनिन जरूरी छे। ई नींद का लाने में सहायक हार्मोन होय छे। अपनो शरीर प्राकृतिक रूप से ई हार्मोन के उत्पादन करे छे। जब बाहर अंधेरा हुआ लगे छे तो शरीर में मेलाटोनिन के उत्पादन हुआ लगे छे। रात में अच्छा नींद पहला के साथ मेलाटोनिन हमरो सनी वास्ते जल्दी सुती जाना आरु रात में अच्छा नींद लेना भी आसान बनाए छे। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहे छे कि एक रात भी अगर ठीक से नींद पूरा नहीं हुआ तो अगला दिन थकान, गुस्सा, चिड़चिड़ापन महसूस कर सके छे। यही स्थिति एक हफ्ता तक लगातार रह तो नींद के समस्या पूरा स्वास्थ्य का प्रभावित करे छे। कुछ उपाय करला से हमसनी प्राकृतिक रूप से शरीर में मेलाटोनिन के स्तर का ठीक कर सके छे। जना कि धूप में रोज कुछ देर रहला से न खाली विटामिन डी के उत्पादन का बढ़ावा दे में सहायक करे छे, साथों में ई मेलाटोनिन का बढ़ाए में सहायक होय छे। सुबह में कम से कम 15 मिनट धूप में जरूर रहो। एकरा से रात में अच्छा नींद आवे छे। धूप के संपर्क 3 पोषक तत्व के स्तर का बढ़ाए छे, जे अच्छा नींद लाने में मदद करे छे। तो याद रखियो बहिन, नींद कितना जरूरी छे अपनो शरीर वास्ता। तो आवा एक ठो बढ़िया जेहनो देवी गीत सुन लो जाए बहिन। तो सुनिछिए।

इतना अच्छा देवी गीत के साथे बहिन आज को साथ बस यहीं तक। अगला दिन और भी कुछ नया जानकारी के साथ उपस्थित होवे। आपनों सिनी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बहिन दीपा के नमस्कार।

घर आंगन कार्यक्रम संपन्न होता है। आकाशवाणी का यह भागलपुर केंद्र है। 2 बजने वाले हैं। अब प्रादेशिक समाचार होंगे पटना केंद्र से।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: स्वयं ही घट पड़े।
1: भारतीय सेना।
2: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। 2:15 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार। इसे हम दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड पांचवी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। सीबीएसई ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने और चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवगठित सरकार ने 144 विधायकों का बहुमत साबित कर विश्वास मत हासिल कर लिया है। एडप्पाडी पलनीसामी के नेतृत्व में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। एक रिपोर्ट।
1: लोक निवास में आयोजित एक सादे समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने मुख्यमंत्री और आज शपथ लेने वाले दो मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले मुख्य सचिव शरद चौहान ने केंद्र सरकार की उस अधिसूचना को पढ़कर सुनाया जिसमें मुख्यमंत्री और दो मंत्रियों की नियुक्ति की गई थी। समारोह के बाद श्री रंगासामी पुदुचेरी विधानसभा भवन स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय गए और अपना कार्यभार संभाला। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार पुदुचेरी को सिंगापुर की तर्ज पर विकसित करने की दिशा में काम करेगी। श्री रंगासामी के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार प्रदेश में एनडीए की सरकार बनी है। अन्य मंत्रियों, विभागों और विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सरकारी सचेतक की नियुक्ति को लेकर एनडीए में विचार विमर्श जारी है। बिबिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड पांचवीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पश्चिम बंगाल में कोलकाता में 18वीं विधानसभा के नव निर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट से विधायक के रूप में शपथ ली जबकि नंदीग्राम सीट रिक्त रखी गई है। इसके बाद मंत्रिमंडल के 5 अन्य सदस्यों ने भी शपथ ग्रहण की। वहीं नौदा सीट से विजय आम जनता उन्नयन पार्टी के विधायक हुमायूं कबीर ने भी शपथ ली। कबीर ने रजीनगर सीट से भी जीत हासिल की है। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस राय ने सभी विधायकों को शपथ दिलाई। राज्य में फालता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को पुनर्मतदान होना है। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज कर दिए हैं। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। एक रिपोर्ट।
2: ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। सूत्रों के अनुसार काफिले का आकार कम करने के बावजूद प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाएं यथावत बनी रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां भी संभव हो बिना कोई नई खरीद किए उनके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किया जाए। अंकित की रिपोर्ट के साथ अमीषा।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करके और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को अपनाकर आर्थिक स्थिरता में योगदान देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नागरिकों से की गई 7 अपीलों के अनुरूप है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। एक रिपोर्ट।
3: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों, अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया है और सरकारी काफिले से अनावश्यक वाहनों को हटाने का निर्देश दिया है। उन्होंने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने, अनावश्यक सोने की खरीद से बचने और घर से काम करने को बढ़ावा देने की अपील भी की। राज्य सरकार ने मेट्रो सेवाओं और सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग पर बल दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। श्री यादव ने मंत्रिपरिषद के सदस्यों से राष्ट्रीय हित में पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मंत्री विधायक अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कार पूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो तथा बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी राज्य में पेट्रोल और डीजल की बचत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने जनता से वाहनों का अनावश्यक उपयोग न करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम करने का निर्णय लिया है और मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को वाहनों के उपयोग में संयम बरतने के निर्देश दिए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। इस वर्ष सीबीएसई की कक्षा 12वीं की विज्ञान, वाणिज्य और मानविकीय विषयों की परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक आयोजित की गई थी। सीबीएसई ने एक बयान में बताया कि 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से 15,07,000 से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इस वर्ष का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20% है। छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.86% है, जबकि छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 82.13% है। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन की ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। विदेश मंत्री ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेज मैककेना से मुलाकात की। एक रिपोर्ट।
4: श्री फ्रांसिस्को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल प्रमुख भाग लेंगे। श्री फ्रांसिस्को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी करेंगे। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के लेख को साझा किया है, जिसमें बताया गया है कि पंजाब में आधुनिक रेलवे स्टेशन और बेहतर रेलवे नेटवर्क से प्रगति के नए द्वार खुल रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह परिवर्तन क्षेत्र के लोगों के लिए अनेक अवसर लेकर आ रहा है। उन्होंने कहा कि यह लेख दर्शाता है कि पंजाब में किस प्रकार बदलाव आ रहा है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 16वीं पेंशन अदालत का शुभारंभ किया। देश भर के पेंशन भोगियों ने इसमें हाइब्रिड मोड के माध्यम से भाग लिया। इन अदालतों का उद्देश्य पेंशन संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए मौके पर भी निर्णायक समाधान प्रदान करना है, जिसमें पेंशन भोगियों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता न पड़े, उनका समय और धन दोनों की बचत हो और उन्हें एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र प्राप्त हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने वांछित भगोड़े प्रदीप सिंह को अजरबैजान से सफलतापूर्वक भारत प्रत्यर्पित करा लिया है। सीबीआई ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के समन्वय से यह कार्य किया। सीबीआई ने बताया कि नई दिल्ली के विशेष प्रकोष्ठ पुलिस स्टेशन में मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ

एनडीपीएस अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज एक मामले में प्रभदीत वांछित था। इस मामले में बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए गए और कई सह आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम ने केवल नीति निर्माण के बजाय अंतर्राज्यीय समन्वय, सुगम सामाजिक सुरक्षा और श्रम कानूनों के सुदृढ़ कार्यान्वयन जैसे प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। वे प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा, सरकार और निजी क्षेत्र की साझा जिम्मेदारी विषय पर आयोजित आयोग की बैठक को संबोधित कर रहे थे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित वाइब्रेंट ग्राम प्रोग्राम 2026 के लिए माई भारत प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। मंत्रालय ने बताया कि इस महीने की 20 तारीख तक आयोजित होने वाली ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में देश भर के युवा भाग ले सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के वायदा बाजार में जून अनुबंध के अंतर्गत सोना लगभग 6% बढ़कर 1,62,597 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि जुलाई अनुबंध के अंतर्गत चांदी लगभग 6.4% बढ़कर 2,96,821 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दिन के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में 8% तक की वृद्धि दर्ज की गई। सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% बढ़ाकर 15% कर दिया है। घरेलू शेयर बाजार के आज दोपहर के कारोबार में 0.5% की वृद्धि देखने को मिली। सेंसेक्स 403 अंक बढ़कर 74,962 जबकि निफ्टी 146 अंक की वृद्धि के साथ 23,526 पर था। भारत में इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन जल्दी हो सकता है। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मॉनसून आ जाएगा। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून आमतौर पर हर साल 1 जून के आसपास केरल में शुरू होता है। विभाग ने देश के पूर्वोत्तर तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि हो सकती है। दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पंजाब में भी आज बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों ने देश के अडिग संकल्प को प्रदर्शित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री फखरुद्दीन अली अहमद देश के 5वें राष्ट्रपति थे। उन्होंने 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक पदभार संभाला। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। उधर बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और किदांबी श्रीकांत प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने चीनी ताइपे की तुंग स्यू टोंग को सीधे सेट में 21-9, 21-12 से सिर्फ 33 मिनट में हरा दिया। छठी वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु का क्वार्टर फाइनल में मुकाबला डेनमार्क के अमाली शुल से होगा। वहीं पूर्व विश्व चैंपियन किदांबी श्रीकांत ने सिंगापुर के लो केन यू को आसानी से 21-14, 21-15 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। अगले दौर में उनका सामना चीनी ताइपे की सू ली योंग से होगा। हालांकि भारत के आयुष शेट्टी जापान के कोदाई नाराउका से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में कोरिया की सेंगमिन ली को 5-0 से हराकर लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। अन्य 4 मुक्केबाजों को कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जॉस

विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड पांचवी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। CBSE ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने या चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और IPL क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर दिन के 2:30 हो रहे हैं और ये वक्त है कार्यक्रम एक ही कलाकार का। तो स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त राखी बैनर्जी का नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आज के संगीतमय सफर में।

0: श्रोताओं, बात उन दिनों की है जब हिंदी सिनेमा के संगीत का गोल्डन पीरियड चल रहा था। हर तरफ लता मंगेशकर और आशा भोसले की।
1: हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट से।

रोटी कपड़ा और मकान। इस फिल्म का गीत आपने सुना मुकेश, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में। गीतकार संतोष आनंद, संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। कार्यक्रम का अगला गीत हमने फिल्म शोर से लिया है। आवाजें लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों की। संतोष आनंद का गीत है, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

आनंद बख्शी का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में। आवाजें मुकेश लता मंगेशकर की और फिल्म है गोरा और काला।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट से।

संगम फिल्म का गीत अभी आपने सुना मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार थे शंकर जयकिशन। और कार्यक्रम के अंत में सुनिए मिलन फिल्म का ये नगमा लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में। आनंद बख्शी का गीत है, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

इस गीत के साथ ही समाप्त होता है कार्यक्रम चित्रपट से। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम रविंद्र संगीत। आज कलाकार हैं हेमंत मुखोपाध्याय है।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
1: 8700001424।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: ट्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
4: आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से आप इस समय सुन रहे हैं रविंद्र संगीत। आज कलाकार हैं हेमंत मुखोपाध्याय।

रविंद्र संगीत कार्यक्रम में आप सुन रहे थे हेमंत मुखोपाध्याय को। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है देशभक्ति गीत।

संवेद स्वर में आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। अपराह्न के 3:25 हुए हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा का प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से। इसे आप सुन पाएंगे संध्या 5 बजे तक और फिर 5 बजे से आनंद लें आकाशवाणी भागलपुर के कार्यक्रमों का।

0: मंजरी थी इस गाने है ना, जब हाँ। अच्छा अच्छा खाना सामने हो ना तो हाँ। हमारी पायल थिरकने लगती है, हमारी पायल बजने लगती है। तो देखो मेरे एक साथी लिखते हैं कि मैं सूरत का रहने वाला हूँ और सूरत का खाना और काशी का डैश डैश फेमस है, सो तो मैं खुले पेट से सबको कहता हूँ कि हाँ मैं चटोरा हूँ, खाने के लिए जीता हूँ। स्वर्ग या नरक में ना जाने खाने को मिले या ना मिले, भगवान को भी लगना चाहिए कि मेरा भेजा बंदा खा पी कर धरती से लौटा है। बहुत इन्होंने हंसने वाले स्माइलीज लगाए हैं। और अगला संदेश क्या है?
1: बहुत सारे हमारे साथियों,
0: अच्छा एक साथी और लिखते हैं, सुना ली हम पढ़ लेते हैं कि पहली बात तो खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे, इसलिए खाने के लिए जीना चाहिए, उससे अच्छी सेहत होती रहती है और जब तक स्वस्थ है तब तक जी भरकर खाना चाहिए, लेकिन योग और वॉक करना चाहिए।
1: और अब लेते हैं एक अंतराल।

0: तो सोनाली, क्या कमेंट तुम देख रही थी बड़ी देर से? बहुत सुंदर, हमारे साथियों ने हमारे कमेंट्स लिखकर भेजे। एक लिखते हैं कि भाई खाने के लिए जीते हैं, जीने के लिए खाते हैं, जो भी हम खाते हैं हमारा जीवन बन जाता है, इसलिए भोजन कृतज्ञता के भाव के साथ खाना चाहिए। कहते हैं कि भोजन के द्वारा हम किसी के दिल तक पहुंच सकते हैं, मतलब भोजन जीवन है। जीने के लिए खाना जीवन का संतुलन सिखाता है, जबकि खाने के लिए जीना अक्सर स्वाद की आदत बन जाता है। भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि शरीर को ऊर्जा, मन को संतोष और रिश्तों को मिठास देने वाला माध्यम है। स्वाद जीवन का आनंद है, लेकिन स्वास्थ्य उसकी असली पूंजी है। इसलिए शायद सही बात यही है कि हम ऐसा खाएं जो जीवन को स्वस्थ, खुशहाल और संतुलित बनाए, क्योंकि अच्छा जीवन केवल स्वाद से नहीं, अच्छे स्वास्थ्य और सुकून से भी बनता है।
1: क्या बात है,
0: बहुत सुंदर बात।
1: हमारे साथी लिखते हैं कि दुनिया में बहुत सारे लोग खाने के लिए जीते हैं, और जब समझ में आता है कि जीने के लिए समतौल खाना जरूरी, तब तक वक्त निकल चुका होता है। इसलिए जीवन करी जीविता, अन्न हे पूर्ण ब्रह्म, उदर भरण नोहे, जाणिजे यज्ञ कर्म। ये बात सही समय पर जान लो। अर्थ है इसका कि शरीर का यज्ञ शुरू रहने की समाधि यानी खाना होता है, ये बात पहचान लो। बहुत सुंदर सी बात आपने लिखकर भेजी है। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि जीने के लिए खाना एक जैविक और तार्किक आवश्यकता है, जबकि खाने के लिए जीना जीवन के रंगों और खुशियों का आनंद लेने का तरीका है। एक स्वस्थ और सुखी जीवन के लिए अनिवार्य है कि हम जीने के लिए खाएं, लेकिन कभी कभी खाने का आनंद इस तरह से ले मानो हम उसी के लिए जी रहे हैं। सोनाली, किस्सा मुझे याद आ गया कि जिम में हमने देखा कि सीढ़ी पे चढ़ के खिड़की थी, तो वहां खिड़की के पास स्पेस था, तो एक लड़की है काफी हैवी थी, वो चढ़ी वहां बैठ गई और बैग से निकाल के उसने बर्गर लेके आई थी और अंकल चिप्स थे उसके और ठंडा कोल्ड ड्रिंक थी, तो बस वो उसके साथ बैठ के खा पी रही थी। तो मैं चढ़ रही थी, मैंने पूछा उसको कि तुम यहाँ क्या करने आई हो? कहती भूख बहुत लगी, पहले खा लूं फिर जाके कर लूंगी। तो उसका ये कि वो खाने के लिए जी रही थी।
0: देखिए, खाने के लिए जीना जरूरी है, पर अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो जी पाएंगे ना अच्छे से। तो ऐसा नहीं है कि हम जंक फूड खा के ही जी सकते हैं, उसमें भी बहुत सारे ऑप्शन है। अब देखिए, जैसे हमने भेलपूरी और दाबेली का ऑप्शन दिया है, तो मैं एक उसमें पौष्टिक भेल की भी रेसिपी बताऊं। ऐसा नहीं है कि हमेशा जंक फूड खा के ही, उसमें भी हम बहुत उसमें हेल्दी ऑप्शन ले सकते हैं। एक हमारे साथी लिखते हैं मंजरी, जो शरीर के लिए फायदेमंद है वो भोजन नियमित तरीके से खाना चाहिए, सीजनल सब्जी।

0: और फल का सेवन करना चाहिए। डब्बा बंद और गैर मौसमी फल, सब्जी और अनाज से बचना चाहिए। अपने रहने के एक लिमिटेड दायरे में उगने वाली फसल का उपयोग अधिक करना चाहिए। यानी हम जहां रहते हैं वहां उगने वाली जो सब्जियां होती है, वो फल होते हैं ना, उसे हमें प्राथमिकता देना चाहिए। ऐसा होता है कि हम विदेशी फलों को, विदेशी सब्जियों को बहुत ज्यादा प्राथमिकता देने लग गए हैं। वो भी अच्छे हैं, पर जो हमारे हैं, जैसे अब हम बचपन में कितने है ना जाम अमरूद खाते थे, बेर खाते थे, गन्ना खाते थे, तो अब वो बच्चे भूलते जा रहे हैं, पर उनमें भी बहुत ज्यादा विटामिन्स मिनरल्स मौजूद होते हैं।
1: बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता है कि गन्ने को कैसे मतलब
0: खाया जाता है,
1: खाया जाता है, चूसा जाता है, क्या किया जाता है, तो उन्हें बताना पड़ता है कि भाई गन्ने को चूसना पड़ता है। उन्हें चने के साग का स्वाद नहीं पता है, उन्हें झरबेरी का स्वाद नहीं पता है,
0: तो उन्हें कैसे मालूम होगा, हमने ही नहीं बताया।
1: हाँ, हम नहीं बता रहे उनको, हम उन जगह लेके नहीं जा रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी गलती अपने लोगों की कही जा सकती है। चलो फिर एक संदेश पढ़ लेते हैं। एक साथी लिखते हैं कि शरीर को चलाने के लिए भोजन से जितनी एनर्जी चाहिए उतना भोजन चाहिए ही। कभी कभार भोजन स्वादिष्ट होने के साथ होने के कारण कुछ ज्यादा खा लिया जाता है तो पेट में तकलीफ हो जाती है, इसलिए भोजन को एक लिमिट में ही करना चाहिए। और एक हमारा संदेश है सोनाली, उन्होंने थोड़ा इंग्लिश में लिखा है कि ज्यादातर तो सभी जीने के लिए ही खाते हैं, वैसे भी आजकल तो नाप तौल का खाना होता है, ये मत खाओ वो नुकसान करेगा, इस तरह की बातें नहीं लिखी है। और हम अपने साथी से कहेंगे कि हिंदी में ही संदेश लिखे तो ज्यादा अच्छा रहता है,
0: पढ़ने में दिक्कत नहीं आती।
1: हाँ, वो इजिली सी आंखों में अटैक कर जाता है, हालांकि मैंने इनका संदेश पढ़ लिया है।
0: एक हमारे साथी लिखते हैं मंजरी, खाने के लिए जीना है दृष्टिकोण भोजन को केवल पेट भरने का साधन नहीं बल्कि जीवन के परम आनंद और उत्सव के रूप में देखता है। भोजन के स्वाद, विविधता और उससे मिलने वाली मानसिक संतुष्टि को प्राथमिकता देना, नई संस्कृतियों, व्यंजनों और स्वादों को खोजना एक कला है। यह सामाजिक मेलजोल को बढ़ाता है। अच्छा खाना मस्तिष्क में डोपामाइन रिलीज करता है जो तनाव कम करने और खुशी देने में मदद करता है। अत्यधिक स्वाद लोलुपता से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है, जैसे अपच या वजन बढ़ सकता है।
1: बिल्कुल। और हमारे एक साथी और लिखते हैं कि आज का पहला विषय बहुत ही रोचक है। मेरा मानना है कि हमें जीने के लिए खाना चाहिए क्योंकि सादा और पौष्टिक भोजन ही हमें स्वस्थ ऊर्जावान रखता है, लेकिन कभी कभी स्वाद के लिए पसंद का खाना खाने में भी एक अलग ही खुशी है। और अक्सर लोग स्वाद के पीछे भागते हैं, लेकिन लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए जीने के लिए खाना ही सही मंत्र है। अगर हम खाने पर नियंत्रण रखेंगे तो शरीर हमारा जो है हमेशा साथ देगा। और सोनाली, एक साथी ने हमारे और इंग्लिश में कमेंट लिखकर भेजा है, जब हम खाना खाते हैं तभी तो हम जीते हैं, अगर खाना नहीं खाएंगे तो हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा, इसलिए खाना भी जरूरी है और जीना भी जरूरी है। जब तक है जीना जब तक खाएंगे खाना। तो ये बात आपने अच्छी लिखी है, लेकिन हम चाहेंगे कि अगली बार आपका संदेश हिंदी के शब्दों में आए, है ना। और क्या करें, सुने गीत,
0: सुन लेते हैं गीत।

0: तो सोनाली कौन सा कमेंट तुम पढ़ने वाली हो?
1: एक हमारे साथी ने लिखा है कि सही मायने में भोजन वही है जो शरीर को ताकत दे और मन को संतुलन। जिस प्रकार दीपक को जलने के लिए तेल चाहिए, उसी प्रकार शरीर को जलने के लिए भोजन चाहिए। परंतु दीपक का उद्देश्य केवल तेल खत्म करना नहीं बल्कि रोशनी फैलाना होता है। ठीक वैसे ही जीवन का उद्देश्य केवल खाना नहीं बल्कि अच्छे कर्मों और खुशियों से जीवन को सुंदर बनाना है। इसलिए हमें भोजन का सम्मान करते हुए संयम और संतुलन के साथ जीवन जीना चाहिए।
0: क्या बात है। और हमारे साथी जो है उन्होंने छोटा सा संदेश लिखा है, खाने पीने क्या शर्मा, कम खाओ गम खाओ, सेहत जोरदार शरीर कभी शानदार। और एक साथी लिखते हैं, एक प्रसिद्ध कहावत का अंग्रेजी अनुवाद है, ईट गो लाइव, ईट टू लाइव और लाइव टू ईट होता है, खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खाते हैं। इस विषय पर कॉलेज में इंग्लिश में निबंध आता था। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है।
1: और एक हमारे साथी ने भी लिखा है कि हिलियर्ड कहते हैं कि जीने के लिए खाना खाने का मतलब है भोजन को शरीर के लिए ईंधन की तरह मानना। अक्सर इसके विपरीत खाने के लिए जीना वाला दृष्टिकोण यह दर्शाता है कि आनंद का एक बड़ा हिस्सा मुख्य रूप से या पूरी तरह से खाने के अनुभव में ही निहित हो जाता है, जो हिलियर्ड के अनुसार आमतौर पर अस्वास्थ्यकर विकल्पों को जन्म देता है।
0: और एक हमारे साथी लिखते हैं, जीने के लिए खाना खाते हैं वो भी घर का बना हुआ स्वादिष्ट वेजिटेरियन फूड, प्राकृतिक सब्जियां, फल और फ्रूट्स। बहुत अच्छी सी बात है, आप बिल्कुल संभाल करके अपने भोजन को ग्रहण करते हैं। और हमारे सभी साथी भी बहुत अच्छी तरह से खाते हैं। लेकिन हमारे एक साथी और लिखते हैं कि सही मायने में भोजन वही है जो शरीर को ताकत दे और मन को संतुलन। जिस प्रकार दीपक को जलने के लिए तेल चाहिए, उसी प्रकार शरीर को जलने के लिए भोजन चाहिए। परंतु दीपक का उद्देश्य केवल तेल खत्म करना नहीं बल्कि रोशनी फैलाना है। ठीक वैसे ही जैसे लगता, तुमने ये पढ़ा है क्या?
1: ये पढ़ दिया।
0: अच्छा, तभी तुम इशारे कर रही थी। चलो अच्छी बात है, उनको थोड़ा अच्छा लगा होगा। तो देख, दूसरा कमेंट हम ले लेते हैं सोनाली। खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खाते हैं, भाई बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इससे हर एक का ही स्वास्थ्य प्रभावित हुआ करता है। जो लोग स्वाद के लिए भोजन करते हैं वे ही खाने के लिए जीते हैं, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि वे अपनी जीवा पर लोलुपता पर नियंत्रण नहीं रख सकते। इसलिए विपरीत, जो लोग खाने के लिए जीते हैं खाते हैं, वे सुस्वाद भोजन के साथ ही षडश युक्त संतुलित भोजन के लिए सेहतमंद और आनंद में रहते हैं। मैं तुम्हारी आंखों में देखती जा रही थी पढ़ते पढ़ते कि कहीं तुमने इसको भी तो नहीं पढ़ लिया है। कभी कभी ऐसा हो जाता है श्रोता भाइयों कि लगता है कि हाँ ये नहीं पढ़ा है, तो पता चलता है दूसरा इशारा कर रहा होता है ना।
1: ये टेक्नोलॉजी में ऐसे ना थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो सकती है,
0: लेकिन इसमें मजा आता है, जिसको लगा मैंने दोबारा पढ़ लिया।
1: और अगर हमने गलती को है ना, अपनी गलती को भी आत्मविश्वास के साथ बोल दिया कि हाँ हमने गलती कर ली, तो कोई वो आत्मविश्वास भी अच्छा लगता है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: आज ये शब्द हमारा विचार आपके इस विषय में, हमारा विषय है आत्मविश्वास। हमारे साथियों ने भी बहुत भर भर के कमेंट्स लिखे हैं आत्मविश्वास। और सचमुच मंजरी, आत्मविश्वास जो ऐसा शब्द है ना, अगर हम उसे अपना ले, यानी कि अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास आ जाता है, तो कितने भी कठिन से कठिन काम हम बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। फिर वो कोई कला है, उसके बाद में कोई भी प्रस्तुति है, अगर वो प्रस्तुति में थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो भी चलेगा, पर उसमें अगर आत्मविश्वास होगा तो वो कला दिल को छू जाती है।
0: बिल्कुल, हमारे साथी लिखते हैं इसी बात पर कि आत्मविश्वास शब्द में ही इसका अर्थ शामिल है। आत्म यानी खुद पर, विश्वास मतलब भरोसा, अंग्रेजी में सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं। इसे अगर परिभाषित किया जाए तो जिन्हें हम अपनी क्षमताओं, कौशलों और निर्णय लेने की क्षमता पर अटूट भरोसा हो, वो आत्मविश्वासी कहा जा सकता है। जो बिना डर हर चुनौतियों का सामना कर सकता है, बस एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इस बात पर गुजराती मुहावरा है, मन होए तो मालवे जवाए, मतलब मन करे तो हम कोई भी जगह जा सकते हैं, कोई भी कठिन कार्य कर सकते हैं। बहुत सुंदर सी बात लिखी आपने।
1: एक हमारे सखी ने लिखा है कि अपनी असफलताओं पर ना डरते हुए अपने काम पर भरोसा, सही मायने यही आत्मविश्वास होता है। अपनी योग्यताओं, क्षमताओं और निर्णयों पर अटूट भरोसा है, ना कि केवल अहंकार। ये अपनी खूबियों और कमियों को स्वीकार करते हुए जीवन की चुनौतियों का सामना करने की सकारात्मक मानसिक स्थिति है। ये डर को दूर कर सत्य और आंतरिक शक्ति पर विश्वास करने का नाम है। मन में विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन।
0: बात है। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि आत्मविश्वास से विवेक बुद्धि को बल मिलता है, वो मैं पूर्ण आत्मविश्वास से भर कर कार्य करता हूँ, जहाँ मुझे सफलता

0: मिलती है, बस कोई काम में आत्मसात से करे। यानी कि आप कोई भी काम करें तो ये मत सोचे कि हमें इस काम से सफलता मिलेगी, पहले तो ईमानदारी से काम करें, आप आत्मविश्वास से भरें और धैर्य के साथ करें तो आप हमेशा अपने काम को आगे ले जा सकते हैं। और हमारे साथी लिखते हैं कि आत्मविश्वास के बारे में मेरा मानना है कि ये हमारे काम और मेहनत से पैदा होता है। जब हम दिन भर कठिन परिश्रम करते हैं और अपने काम में माहिर होते जाते हैं तो वही भरोसा हमारे व्यक्तित्व में आत्मविश्वास बनकर छलकता है। आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो हमारे हर सुबह एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। मेरा मानना है कि आत्मविश्वास कठिन परिश्रम से आता है। जब हम अपनी कमियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारते हैं तो हमारा आत्मविश्वास अपने आप बढ़ सकता है।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं कि आत्मविश्वास के बारे में मेरा मानना है कि हमारे काम और मेहनत से पैदा होता है। जब हम दिन भर, अच्छा आपने पढ़ चुका है ये भी कमेंट्स आप पढ़ चुके हैं और हमारे बहुत सारे साथियों ने इस विषय पर और भी कमेंट्स लिखे हैं, तो उससे पहले गाना सुनिए, तो सुनवाते हैं गीत।

0: एक हमारे साथी लिखते हैं मंजरी कि व्यक्ति के जीवन में आत्मविश्वास सफलता की वो सीढ़ी है जिस पर चलकर व्यक्ति आसमान की ऊंचाइयों को छू सकता है। जब स्वयं पर भरोसा होता है तो हर मुश्किल आसान लगती है, लेकिन आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं कि मुझे सब पता है, इसका मतलब पता ना होने पर भी सीख लूंगा। आत्मविश्वास कभी शोर नहीं करता, वो शांति और धैर्य के साथ अपना काम करता है। सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि आत्मविश्वास कोई जादू नहीं जो एक दिन में प्राप्त किया जा सकता है, ये हर रोज खुद से छोटे छोटे वादे करके उन्हें निभाने से ही आता है। क्या बात है, बहुत सुंदर विचार।
1: इतनी सारी बातें करने के बाद तो अब चलते हैं व्यंजन की ओर जिसमें मुझे मिल गई है कच्ची दाबेली की रेसिपी।
0: तो
1: हमारे साथियों

0: भेजे तो हम इसको पढ़ते हैं कि पहले मसाला तैयार कर लीजिए। तावेली मसाला घर पर बनाने के लिए धनिया, जीरा, सौंफ, लौंग, दालचीनी, तेज पत्ता और सूखे नारियल को भूनकर पीसकर तैयार कर लीजिए, मतलब अपने अंदाज से लीजिए सामग्री। सामग्री आगे लिखी इन्होंने कि जो आलू का मसाला 4-5 उबले और मैश किए हुए आलू, दाबेली का मसाला जो स्पेशली लिया जाता है जो पहले से तैयार किया था वो 2-3 बड़े चम्मच लेना है, जो हमने पहले बताया था वो दाबेली का मसाला था। अब चटनी, इसके लिए आपको इमली की खट्टी मीठी चटनी और लहसुन लाल मिर्च की तीखी चटनी। स्टफिंग के लिए बारीक कटा प्याज, अनार के दाने, मसाला वाली मूंगफली, बारीक सेव और अन्य में लिखा है 6-8 पाव मक्खन या घी, हरा धनिया। और इसकी विधि लिखी है कि स्टफिंग तैयार करें, एक कढ़ाई में तेल गर्म करें, इसमें दाबेली मसाला, थोड़ा सा पानी और इमली की चटनी डालकर मिलाएं। अब मैश किए हुए आलू और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाइए। मिश्रण को गीला और मसालेदार रखना है। प्लेटिंग के लिए तैयार आलू के मिश्रण को एक थाली में फैलाएं, ऊपर से बारीक कटा प्याज, अनार के दाने, मसाला मूंगफली, हरा धनिया और ढेर सारी बारीक सेव डालें। दाबेली असेंबल करें, पाव को बीच में काटें और पूरी तरह से अलग न करें, एक तरफ से तीखी चटनी, दूसरी तरफ से मीठी चटनी लगाएं और भरें। बीच में एक बड़े चम्मच तैयार आलू का मसाला भरें, ऊपर से थोड़ा सा अनार, प्याज और मूंगफली डालें और एक तवे पर मक्खन या घी गर्म करें और दाबेली को दोनों तरफ से कुरकुरा होने तक सेक लें। गर्मा गर्म दाबेली आप खाएं, हमको खिलाएं, सबको खिलाएं।
1: और अभी छुट्टियों का मौसम है तो बच्चों को इस तरह का कुछ चटपटा बना के खिलाते हैं, बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं और उन्हें उन्हें उनकी हेल्प भी ले सकते हैं, क्योंकि बनाना जो आसानी होता है, बस तवे में सेकते वक्त हम अपने एक साथ खड़े रहे, वरना बच्चों को साथ में लेके हम उन्हें सिखा भी सकते हैं, बना भी सकते हैं। वैसे एक भेलपूरी जो है एक चटपटा भारतीय नाश्ता और चाट का प्रकार है, इसकी जड़ें गुजराती व्यंजनों में से है, लेकिन मुख्य रूप से मुंबई की पहचान है। मुंबई के चौपाटी, गिरगांव, जुहू बीच की भेलपूरी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इसकी सामग्री इन्होंने बताया है कि मुरमुरा, तली हुई सेव, पापड़ी, कटे हुए उबले आलू, प्याज और काटी हुई हरी मिर्च से बनाया जाता है। इसमें खट्टी मीठी इमली की चटनी और तीखी हरी चटनी मिलाई जाती है। इसका स्वाद बेहद चटपटा होता है और कलकत्ता में से झालमुरी और कर्नाटक में मसाला पूरी है चुरमुरी के नाम से जाना जाता है। वैसे एक मैं पौष्टिक भेल की मैं आपको रेसिपी बताने वाली थी, तो उसके लिए हमें क्या करना है, 2-3 मुट्ठे मखाना लेना है, उसे घी में अच्छी तरह सेक लेना है, उसमें उबला हुआ शकरकंद जो है उसके छिलके निकाल के बारीक बारीक छोटे छोटे टुकड़ों में डाल देना, फिर उसमें उबली हुई मूंगफली डालना है और उसमें फिर प्याज, टमाटर और फिर उसमें हरी चटनी, मीठी मीठी चटनी, फिर उसमें बारीक कटी हुई ककड़ी भी डाल सकते हैं, उसमें अनारदाना डाल सकते हैं, उसमें चाट मसाला डाल दीजिए और फिर उसमें रागी की सेव डाल दीजिए।
0: क्या बात
1: और
0: है?
1: ये पौष्टिक भेल सर्व कीजिए, है ना?
0: हमें खास बात है, आपने बताई कि शकरकंद के टुकड़े,
1: हाँ, आलू के बदले हम शकरकंद का इस्तेमाल कर सकते हैं और बेसन की सेव के बदले हम उसमें रागी की सेव यूज कर सकते, या फिर खाकरा जो होता है उसको चूरा करके वो डाल दे। तो ये ना ऐसा जरूरी नहीं है कि हम जंक फूड खाके ही खुश रह सकते हैं, इस तरह हमें पौष्टिक खाने खाके भी हम खुश रह सकते हैं,
0: बिल्कुल रह सकते हैं। और साथ में गीत सुने कि कमेंट्स पढ़ोगे?
1: एक कमेंट्स पढ़ दीजिए।
0: ठीक है, एक हमारे लिखते हैं कि भारत दावेली, कच्ची दावेली भारत का एक लोकप्रिय नाश्ता है जिसकी उत्पत्ति गुजरात के कच्छ क्षेत्र के मांडवी में हुई थी। ये एक मसालेदार और मीठा नाश्ता है जिसे उबले हुए आलू को एक विशेष मसाले के साथ मिलाकर बनाया जाता है। बहुत सुंदर सी जानकारी दी है। और हमारे साथी लिखते हैं कि देखा तुम्हें मिला
1: दाबेली, कच्ची दाबेली है डबल रोटी, देवनागरी दाबेली भारत का एक लोकप्रिय नाश्ता है, गुजरात के मांडवी से हुई एक मसालेदार मीठा नाश्ता है और ये जो है उबले हुए आलू को विशेष मसाले के साथ मिलाकर बनाया जाता है। इसमें हम पाव की जगह पर हम रोटी का इस्तेमाल करें ना और पैकेट बना के बना सकते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा लगता
0: है।
1: और आप गीत सुन ले, सुनते हैं गीत।

0: सचमुच नाना करते प्यार कर ही बैठते हैं हम खाने की चीजों से, भले ही डॉक्टर कितना भी मना कर दे कि ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है।
1: अरे आजकल तो देखो ना हमारे सोशल मीडिया पे कितनी सारी रेसिपी बताई जाती है, उसी में डूबे रहते हैं कि अच्छा ये भी बना ले वो भी बना ले और सब ले लेकर अपने पास स्टोर करते जाते हैं।
0: और फिर क्या होता है जब हम मॉल में जाते हैं ना तो उस वक्त हमें आ जाता है अच्छा हाँ हमने वो ना नेट पे ये रेसिपी देखी थी उसमें ये डालना है ये पाउडर डालना है ये सब डालना है और लेकर आते हैं
1: शॉपिंग कर लेते हैं फ्रिज पूरा भर लेते हैं चीज
0: कभी कभी बनाते भी नहीं है वो पैकेट वैसा ही पड़े पड़े एक्सपायर हो जाता है।
1: देखो हमारे साथी लिखकर बैठते हैं रेसिपी सुनकर नाना करते दावेली बनाकर खा भी बैठे हैं और एक लिख रहे हैं कि मैं तो रस्ते से जा रहा था भेलपुरी खा रहा था तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, और एक लिखते हैं खाने के लिए जीते या जीने के लिए खाते हैं इस बारे में इंदौरियों से पूछे, हर इंदौरी खाने के लिए जीता है, किसी भी कोने में चले जाइए खाने पर भीड़ लगी होती, क्यों ना हो भाई यहाँ नाश्ते खाने की इतनी विविधता जो है वाकई में सही बात है।
0: इंदौर बार बार जाने को जी करता है।
1: और देखो हमारे हर शहर में हमारे देश में कई सारे शहर हैं, सबके अलग खान पान है, सबका अलग स्वाद है, तो जब जहाँ कहीं जाते हैं तो वहाँ का स्वाद खाते हैं। आप चाहे इंदौर चले जाइए, चाहे आप लखनऊ चले जाइए, चाहे आप गुजरात आ जाइए, चाहे महाराष्ट्र आ जाइए, राजस्थान चले जाइए और जिसका नाम हमने नहीं लिया उन सभी शहरों में जाइए, वहाँ का बढ़िया बढ़िया पंजाब वगैरह सब जगह खा के आइए
0: और खूब खाइए और है ना खूब सारा व्यायाम कीजिए ताकि है ना ये जो खाना जो हमने खाया है वो पच जाएगा और हम स्वस्थ रहेंगे।
1: फिलहाल तो हमारी बातों की जो हमने गप्पे मारी है उनसे लेते हैं विराम, तो सभी से लेते हैं विदा
0: और आप सभी को सोनाली पाठक
1: और वंशी वर्मा का नमस्कार।

0: नमस्कार श्रोताओं, आज के मेहमान आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं सुप्रसिद्ध शायर और विविध भारती के भूतपूर्व केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है यूनुस खान। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
1: राजेश रेड्डी एक जाने माने शायर जिनकी गजलों का हर शेर खरा होता है। वो लिखते हैं, शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूं मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूं मैं। राजेश रेड्डी अपने समय और समाज की आवाज भी बन जाते हैं। जुबां खामोश है डर बोलते हैं, अब इस बस्ती में खंजर बोलते हैं। राजेश रेड्डी की शायरी में जिंदगी का फलसफा छलक छलक पड़ता है। वो लिखते हैं, ये जो जिंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है, कहीं एक हसीन सा ख्वाब है, कहीं जानलेवा अजाब है। जिंदगी के डर, जिंदगी की उदासी और जुल्मतों को वो अपनी लेखनी में पिरो देते हैं। घर से निकले थे हौसला करके, लौट आए खुदा खुदा करके। जिंदगी की नाकामियां, उदासियां और विडंबनाएं भी राजेश रेड्डी की लेखनी में नजर आती हैं। जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं, तेरे दामन में मेरे वास्ते क्या कुछ भी नहीं। राजेश रेड्डी वो शायर हैं जिन्होंने बड़ी ही मशहूर गजल लिखी जिसे पंकज उधास ने गाया, यहां हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। कई वर्षों तक राजेश रेड्डी विविध भारती के हेड रहे। उन्होंने विविध भारती को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जाने माने शायर और विविध भारती के हमारे पुराने साथी राजेश रेड्डी विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं और मैं उनका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं।
2: बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस और विविध भारती पूरे परिवार को। इस पूरे परिवार से बरसों बाद 13-14 साल बाद एक मुलाकात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और विविध भारती के श्रोताओं से भी इस बहाने मिलना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस विविध भारती परिवार को।
1: मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी वो जमाना लौट आया जब आप विविध भारती के मुखिया हुआ करते थे और ढेर सारे काम हम लोग मिलकर एक साथ किया करते थे।
2: जी, वो बहुत प्यारा जमाना था। और एकदम तुमसे मिलके और विविध भारती में आने के बाद वो जमाना फिर एकदम तरोताजा हो गया। और वो ऊर्जा, वो उत्साह, वो उमंग और श्रोता

0: के साथ वो लगाव एकदम आंखों के सामने आ गया, जी खुश हुआ जी।
1: क्या बात है। अच्छा, आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की यात्रा की तरफ अग्रसर है। एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक सामाजिक योगदान रहा है, चेतना का योगदान रहा है आकाशवाणी का। तो 90 बरस की इस यात्रा के बारे में जानकर आपकी क्या कैफियत है और आप क्या कहना चाहते हैं?
0: इस यात्रा का तो कोई भारत में खास तौर से पूरे भारत को सांस्कृतिक रूप से और भाषा के तौर पर जोड़े रखने का इससे अच्छा माध्यम, क्योंकि बाकी जो संचार माध्यम है उनमें भाषा, अखबार की बात करें या किताबों की बात करें, टीवी तो खैर बहुत बाद में आया, तो ये आकाशवाणी था जो देश के कोने कोने में, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो मैदान हो, गांव हो, बसा हुआ शहर हो, सब जगह अगर पहुंचती तो आकाशवाणी की ही थी। और एक से दूसरे से जोड़ने का जो काम आकाशवाणी ने किया उसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती कि कितने अच्छे ढंग से ये काम हुआ और हो रहा है।
1: बिल्कुल। अपने बचपन की तरफ अगर लौटें तो रेडियो को आप किस तरह से अपने बचपन में देखते हैं, किस तरह से प्लेस्ड था रेडियो और कितनी सुनहरी यादें आकाशवाणी से जुड़ी हैं?
0: यूनुस, कमाल की बात यह है कि अब सारा बचपन जो है वो उस जमाने में, और आज के जमाने में तो सोशल मीडिया और जाने क्या कुछ हो गया है, हम लोगों का बचपन रेडियो सुन सुनकर ही बढ़ा। उसमें जो कुछ भी संस्कार आए, सुनने के भी, सीखने के भी, बोलने के भी, समझने के भी, ये सब संस्कार आकाशवाणी ने दिए। और जिसको सुनते सुनते कि ये आवाजें कानों को इतनी अच्छी लगती है, फिर वो फिल्म म्यूजिक की तो मैं बाद में बात करूंगा,
1: जी
0: जिनको हम सुनते थे, चाहे रेडियो ड्रामा हो, अनाउंसर हो, अनाउंसर उस वक्त जो है वो पूरे शहर में एक सुपरस्टार हुआ करते थे,
1: जी
0: उनकी
1: जी
0: आवाज सुना, आम अनाउंसर, न्यूज रीडर्स, ये सब जो है। तो अगर किसी से कहा जाए कि आप रेडियो में काम करते हैं, अच्छा अनाउंसर है आप, ये अनाउंसर का वो
1: दर्जा होता
0: दर्जा
1: था
0: था मतलब, और
1: जी।
0: वो पॉपुलरिटी थी, तो मतलब आप स्टेशन डायरेक्टर हो तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई
1: हाँ
0: जानता ही नहीं आपको,
1: जी
0: लेकिन अगर अनाउंसर है आप, अच्छा, तो ये मतलब बड़ी पहचान हुआ करती थी कि आप रेडियो में अनाउंसर है। फिर रेडियो सिंगर होना,
1: जी
0: रेडियो आर्टिस्ट होना, ये बड़ी बातें थी। तो हम जब बचपन में सुना करते थे, तो जयपुर में मेरा सारा बचपन बीता, तो ये सब हुआ। और फिर उसी केंद्र को सुनते सुनते युवाणी इंद्र शुरू शुरू हुआ था,
1: जी जी
0: तो जयपुर के जो पहले युवाणी वाला बैच था उसमें हमें सौभाग्य मिला कि हम पार्टिसिपेंट के तौर पर एक
1: क्या
0: फिल्म के रूप
1: बात
0: में,
1: है
0: एक
1: जी।
0: ड्रामा आर्टिस्ट के रूप में ऑडिशन दिया, क्लियर हुए और फिर उसका हिस्सा बने। तो वही युवाणी कार्यक्रम जिसकी शुरुआत ही हम कलाकार थे, पार्टिसिपेंट थे, फिर उसी को हमने एज अ प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव
1: जी
0: उसको प्रोग्राम को संभाला आकाशवाणी ज्वाइन करने के बाद। और फिर जो मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ ये कि आज
1: हाँ
0: मैं विविध भारती में बैठ के ये बात बड़े गर्व से कहना चाह रहा हूँ कि बचपन में फिल्म म्यूजिक, और उस जमाने का फिल्म म्यूजिक तो अगर कहना ही क्या,
1: जी
0: तो जिनको जिस चैनल को सुन सुन के, वो संगीत सरिता, वो सारे कार्यक्रम और बड़ी बड़ी आवाजें, बड़े बड़े संगीतकार, फिल्म म्यूजिक, तो जिन जिनको सुन के हम लोग बड़े हुए, विविध भारती चैनल को मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि मैं उसी चैनल में आऊंगा,
1: जी
0: और न सिर्फ आऊंगा
1: बल्कि हेड करेंगे
0: उसका कार्यक्रम का मतलब मुझे संचालन करने का मौका मिलेगा, उसको निर्धारित करने का मुझे मौका मिलेगा, प्लान करने का मौका मिलेगा, और पूरे चैनल को मैं अपने ढंग से चला पाऊंगा, देख पाऊंगा। तो ये मेरा सौभाग्य था कि जिस चैनल को सुनते सुनते मैं बड़ा हुआ,
1: वाह वाह वाह
0: उसी चैनल से मैं रिटायर हुआ, और अच्छे ढंग से रिटायर हुआ कि मेरी एक अच्छी टीम थी जिसमें यूनुस, एक से एक टेबल मैं क्या नाम लूं, और पूरी अच्छी टीम, और उनकी वजह से हम अच्छे अच्छे प्रोग्राम शुरू कर सके, चला सके, और आज भी वो चैनल बहुत पॉपुलर है दुनिया
1: क्या
0: भर
1: बात
0: का।
1: है, क्या बात है। मुझे याद आता है आपके साथ काम करने का वो पूरा दौर। कितनी प्यारी आपने बात कही है, युववाणी से आपकी शुरुआत हुई और जयपुर के पहले युववाणी के बैच में आप रहे हैं। न जाने कितने लोगों की यादें ताजा हो गई होंगी। मेरी अपनी खुद की याद इसलिए ताजा हो गई कि मैंने भी अपनी रेडियो की शुरुआत युववाणी से ही की है, तो वो जो जहन में युववाणी की सिग्नेचर ट्यून बजने लगी जिस तरह की वो होती थी। पर क्या ये रेडियो तक का रास्ता आसान था या वो रास्ता बहुत सारे डिबेट्स और कल्चरल एक्टिविटीज से होता हुआ पहुंचा है?
0: हाँ, नेचुरली ये आप एकदम अचानक आकाशवाणी में नहीं जा सकते, एक सांस्कृतिक लिटरेरी बैकग्राउंड तो आप में होना ही पड़ेगा,
1: बिल्कुल
0: उसके बगैर आप आकाशवाणी में एंटर नहीं कर सकते, कम से कम आर्टिस्ट के तौर पर या पार्टिसिपेंट के तौर पर। और उस वक्त तो शर्तें और भी ज्यादा, वो आकाशवाणी का एक तरह से जयपुर का आकाशवाणी ड्रामे के मामले में नंबर वन था,
1: बिल्कुल बिल्कुल। बड़े
0: है?
1: दिग्गज
0: बड़े
1: लोग वहां
0: दिग्गज
1: से आते
0: लोग,
1: हैं
0: नंदलाल शर्मा जी,
1: जी,
0: फिर ओम शिवपुरी, ये सब लोग वहां पे काम
1: गंगा
0: कर,
1: प्रसाद जी
0: हाँ, तो ये सब जो उसका मेयार था वो ऐसा था कि पूछे मत। जब हम आकाशवाणी में एंटर, उससे पहले हम लोग रंगमंच, कवि सम्मेलन, साहित्य, ये

0: सब कर चुके थे
1: जी
0: और
1: जी
0: कर रहे थे, है ना। तो उसके साथ ये हम ऑडिशन देने गए, उत्तर से सेलेक्ट हुए और पार्टिसिपेंट के तौर पे उसमें हिस्सा लिया। तो ये सफर जो है आकाशवाणी का सफर, पहले मेरा अपना रचनात्मक सफर शुरू हुआ और वो फिर आकाशवाणी के जरिए आगे बढ़ा। ये
1: बहुत ही शानदार बात है। जयपुर में जब आप पढ़ रहे थे तो आपने कहा कि रंगमंच और बाकी कल्चरल एक्टिविटीज में आप शामिल थे, तो रंगमंच की अपनी एक्टिविटीज के बारे में बताइए।
0: रंगमंच का यूं था कि मैं थोड़ा अपना पारिवारिक पहले बैकग्राउंड बताऊं कि मैं, हमारे परिवार में संगीत का परिवार रहा है। हमारे पिताजी बाकायदा गायक रहे और आकाशवाणी जयपुर के उस वक्त ए ग्रेड आर्टिस्ट में से वो सुगम संगीत के गीत गजल ये सब गाना उनका रहा। और न सिर्फ वो गायक थे बल्कि उन्होंने जयपुर में एक राष्ट्रीय तरुण कलाकार परिषद और श्रुति मंडल, ये दो सांस्कृतिक मतलब कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कौशल भार्गव साहब के साथ मिलकर खड़ी की, जिसने साल भर में बड़े बड़े कंसर्ट, म्यूजिकल कंसर्ट और बड़े बड़े उस्ताद, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े गुरु, तो इन सबको हमने बचपन से उनको आमने सामने बैठ के सुना, उनके आसपास घूमे, कई लोग हमारे घर भी आए। तो वो माहौल जो था बचपन का, वो सांस्कृतिक माहौल हमें बचपन से मिला।
1: हम यहाँ एक पल के लिए रुकना चाहता हूँ कि जिस किसी को भी आपके बारे में बताएं तो लोग सोचते हैं कि आपका ताल्लुक तो कहीं आंध्रा से होना चाहिए, तो जयपुर से होते हुए लोगों को थोड़ा ताज्जुब होता है इसके बारे में।
0: बिल्कुल सही है, वो नाम से भी बिल्कुल है कि, और ये सही है कि हम लोग मूल रूप से आंध्रा के ही हैं, तेलंगाना के हैं, हमारे पिताजी माताजी सब वहीं के रहे, लेकिन मेरा ननिहाल नागपुर और मेरी पिताजी जो पोस्टल टेलीग्राफ्स में डिपार्टमेंट में काम करते थे उनकी पहली पोस्टिंग भी नागपुर में थी, तो मेरा जन्म भी नागपुर में हुआ। लेकिन आंध्रा में हमारा संपर्क लगातार हम लोग नहीं रहे कभी भी, माताजी पिताजी कभी रहे थे, हम लोग बचपन में कभी शादी ब्याह में गए, साल में एक आध बार घूमने गए, तो आंध्रा उससे पहले हमारे पिताजी माताजी वहां से निकल चुके थे नागपुर, और नागपुर के बाद एक पूरा डिपार्टमेंट पिताजी के सेक्शन का वो जयपुर शिफ्ट हुआ, तो पिताजी जयपुर शिफ्ट हुए, तो हम बहुत बचपन में ही हम बच्चे लोग जो थे वो जयपुर शिफ्ट हो गए उनके साथ, और फिर मेरी सारी परवरिश पढ़ाई लिखाई सब जयपुर हुई। तो ये है आंध्रा और जयपुर का।
1: तो बिल्कुल, ये मुझे लगा कि ये जरूर इस बात के बारे में बात कर लेनी चाहिए। तो गुलाबी नगरी एक तरह से आपके बनने का एक बुनियाद का शहर रहा है और आज भी बहुत सशक्त परंपरा रंगमंच और संगीत की जयपुर में रही है। तो आपके जमाने में वो कौन से कलाकार थे जो रंगमंच में बहुत जबरदस्त तरीके से सक्रिय थे? मुझे लगता है कि ओम शिवपुरी वाला दौर था।
0: ओम शिवपुरी उस वक्त एनएसजी जा चुके थे।
1: ओके
0: हाँ, और हम उस वक्त छोटे थे और हम लोग रंगमंच में एक्टिव हुए हुए थे, देख ही रहे थे, सुन ही रहे थे और एक सीखने का प्रोसेस जारी था
1: जी।
0: तो जो हमारी बचपन की यादें हैं, मतलब शुरुआती दिनों की यादें हैं, उस वक्त ओम शिवपुरी और सुधा शिवपुरी का तुगलक,
1: क्या बात,
0: इब्राहिम अलकाजी का डायरेक्ट किया हुआ, वो क्लासिक प्ले था, क्लासिक प्ले, और इन दोनों का जो रोल था, मतलब ये मैं इन्हें कह सकता हूँ कि ये ओम शिवपुरी, उनको फिल्मों में वो जगह नहीं मिली, उनको वो क्रेडिट नहीं मिला, उनको वो काम नहीं मिला जिसके हकदार थे, वो दिलीप कुमार थे, वो
1: बिल्कुल
0: रंगमंच के दिलीप कुमार थे, वो क्रेज था उनका और वो जो अदायगी, उनका प्रेजेंटेशन, उनकी डायलॉग डिलीवरी सब कुछ। तो बचपन से ये ओम शिवपुरी, सिद्धार्थ शिवपुरी, मोहन महर्षि, ये सब लोग, और दिल्ली से प्लेस बराबर आते रहते थे, हम लोग देखते थे अंधायुग
1: जी,
0: ये सब देखे हमने, और एवं इंद्रजीत, ये सब नाटक जो बादल सरकार के सारे। तो रंगमंच की एक अच्छी खासी परंपरा जिसमें जयपुर के लोग तो करते ही थे, दिल्ली से भी बड़े बड़े थिएटर ग्रुप, दिल्ली और कलकत्ता के लोग आते थे, थिएटर फेस्टिवल भी होते थे और क्लासिकल म्यूजिक कंसर्ट्स भी होते थे।
1: बिल्कुल, आज जयरंगम जैसी चीजें चल रही हैं तो कैसा लगता है आपको?
0: नहीं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मैं गया हूँ उनके एक फेस्टिवल में, और जहाँ से मकरंद देशपांडे वगैरह हर साल जाते हैं वहाँ पे टीम लेकर के और प्लेज लेके, तो वो एक तरह से थिएटर का माहौल जो है वो रिवाइव कर रहे हैं और अच्छी ऑडियंस भी आती है वहाँ पे और अच्छा चल रहा है मुझे
1: जी। और बातें करेंगे आपके बचपन की, हम यहीं इसी वक्त में थोड़ा ठहरना चाहेंगे। मुझे लगता है कि जिस दौर की हम बात करें उस दौर की याद के नाम एक गाना होना चाहिए, तो हाय रे वो दिन क्यों ना आए,
0: हाँ,
1: अनुराधा,
0: बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा
1: है ना, ये गाना सुन,
0: मेरा पसंदीदा गाना है
1: बिल्कुल।

0: हमने ये गाना सुना, हाय रे वो दिन क्यों ना आए, शैलेंद्र का लिखा, पंडित रविशंकर का स्वरबद्ध किया ये गाना, अनुराधा फिल्म का, ऋषिकेश मुखर्जी की ये फिल्म थी। उस दौर में फिल्म म्यूजिक और फिल्मों से किस तरह का ताल्लुक था? जयपुर में फिल्में देखने की और टॉकीजों की भी एक बड़ी शानदार सी परंपरा रही है।
1: जयपुर में एक से एक थिएटर थे
0: जी,
1: और उस वक्त ये राज मंदिर, कभी नाम सुना हो?
0: बिल्कुल
1: हाँ। तो राज मंदिर मेरे ख्याल से भारत का अकेला ऐसा थिएटर था जो बिल्कुल राज मंदिर, और उसमें राज वाला वो भी था
0: जी,
1: शाही अंदाज उसका, तो वो लोग देखने आते थे। फिल्म तो बाद में, थिएटर पहले देखते
0: हाँ,
1: थे।
0: वो टूरिस्ट मैप पर था
1: वो थिएटर का अपना क्रेज था उसका
0: जी।
1: तो राज मंदिर, जैम, पोलो विक्ट्री, ये सब उस वक्त फिल्में भी, मतलब आज कहीं नहीं इतने करोड़ उतने करोड़, मतलब 100 दिन चली, ये बड़ी बात होती थी।
0: बिल्कुल
1: है ना, इसने 100 दिन पूरे किए हैं। तो उस वक्त वो जमाना था जब हम लोग फिल्में देखते थे, तो ये सब बड़े बड़े थिएटर थे। और फिल्मों का तो खैर दोहरिया लगता, हम कभी कभी स्कूल से भी भाग के देखा करते थे ये सब भी होता था
0: जी, ये तो हुआ है, लेकिन स्कूल से भाग के देखना भी हुआ है।
1: उपकार जैसी फिल्म हमने देखी थी,
0: वाह वाह,
1: और कई फिल्में थी, और लंबी लंबी लाइनें
0: जी,
1: और आपको टिकट मिल जाए बड़ी बात, तो ये वो दौर देखा है हमने, जबकि थिएटर में जाकर फिल्म देखना और स्कूल से भाग के भी देखना और टिकट के लिए धक्का मुक्की होना, ये सब दौर देखा है। और फिल्म म्यूजिक का तो ये था कि सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट वही था, घर में रेडियो चल रहा है, विविध भारती चल रहा है, फिल्म भी गा रहे हैं, कहीं लता जी हैं, कहीं आशा जी हैं, कहीं रफी जी हैं, कहीं मुकेश हैं, कहीं मन्ना डे हैं, तो ये सब चलता था। और हमारे क्योंकि संस्कार में म्यूजिक भी था और म्यूजिक ही था
0: जी,
1: मैं अपने घर में नहाने में सबसे ज्यादा टाइम लेता था।
0: अच्छा, क्योंकि गाना चलता था?
1: गाना चलता नहीं था
0: जी,
1: मैं गाता रहता
0: खुद गाते था।
1: तो वो घर वाले भी बार बार तो मुझे फिल्मी गानों का शौक
0: जी,
1: गुनगुनाने का शौक बचपन से था। फिर वो संस्कार में ऐसा है कि फिर धुने भी बनाने लगा और बाकायदा परफॉर्म भी करने लगा, वही का अलग दौर। फिल्मी गानों का ये असर फिल्म म्यूजिक का मेरी जिंदगी बहुत पड़ा रहा।
0: क्या बात है, और तब से ही ये गायकी वाला मामला आपका?
1: हाँ, मेरे ख्याल गायकी तो हमारे परिवार में, पिताजी और बड़े भाई सब आज भी गायक हैं, वो सिखाते भी हैं, तो संगीत और गायकी का एक वो जो अंग है वो हमारे संस्कार में है। लिखना पढ़ना साहित्य में मैं बाद में आया उस तरह से
0: जी। रंगमंच वाली आपकी एक्टिविटीज में वो कौन

0: से नाटक याद आते हैं जिनका यहाँ जिक्र हो जाए?
1: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया
0: जी।
1: एक लड़कपन का दौर था हमारा, मतलब बीए का दौर ही था। हम उम्र लोगों ने हमने एक टीम बनाई और मैंने उसका नाम दिया ग्रुप का विकल्प
0: जी।
1: वो अभी भी चल रहा है, वो हमारे जो दोस्त है वो चला रहा है, हरि नारायण उसका नाम है। तो हम चार लोगों ने मिलकर एक विकल्प नाम की संस्था बनाई और उसके साथ मैं लिखता था और डायरेक्ट करता था।
0: वाह वाह।
1: और एक आध कभी कभी छोटा मोटा रोल की जरूरत पड़ी तो कर लिया। तो उससे हमने एकांकी से शुरुआत की और उस वक्त मैं ज्यादातर राजनीतिक व्यंग और पॉलिटिकल सटायर और ह्यूमर यही मेरा विषय रहा, तो उस पर ज्यादा काम हुआ और उस तरह के नाटक मैंने लिखे भी। नाम से ही समझ जाओगे कि होशियार समाजवाद आ रहा है,
0: वाह वाह,
1: नेता कुर्सी प्रसाद सिंह,
0: क्या बात है।
1: और एक नाटक जिसको बहुत ज्यादा जिसके हमने शोज किए, भूमिका, जिसको उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी का ड्रामा कॉम्पिटिशन में बेस्ट ड्रामा का अवार्ड भी मिला। और एक नाटक मराठी, क्योंकि हम जिस कॉलोनी में रहते थे तो बहुवर्षीय कॉलोनी थी, मतलब एक छोटा भारत था वो।
0: हाँ हाँ हाँ हाँ।
1: उसमें गुजराती, मराठी, सिंधी, पंजाबी, सिख, मुस्लिम, सब, मतलब कोई भेदभाव ही नहीं था। मतलब आज इस घर में घुस गए, कल उस घर में घुस गए, सब मिलजुल के खेल रहे हैं। होली हो, ईद हो और गणेशोत्सव हो, तो गणेशोत्सव यहाँ के बाद कई लोगों को पता लगता है गणेशोत्सव क्या है, ये हमने जयपुर में देख चुके हैं।
0: वाह वाह।
1: तो उनकी एक्टिविटीज में शामिल होना, सब कुछ करना, तो मराठी लोगों के साथ उठना बैठना बचपन से रहा, तो मराठी नाटकों का मैंने अनुवाद भी किया।
0: गजब।
1: तो एक नाटक था शाम फड़के का, कॉमेडी, काका की शाचा, जिस पर मराठी में फिल्म भी बनी।
0: हाँ हाँ।
1: तो उसका मैंने कौआ चले हंस की चाल,
0: क्या बात है,
1: इस नाम से किया। और वो जयपुर का पहला नाटक था जो टिकटेड हाउसफुल रहा।
0: वाह।
1: रविंद्र मंच पर टिकटेड हाउसफुल, वो पहला नाटक था जो विकल्प ने किया, हमने किया और खूब प्रसन्न किया और उसके बहुत शोज हुए।
0: हम जब असरानी साहब के बारे में सुनते हैं तो वो भी काफी रंगमंच पर सक्रिय थे और जयपुर में थे, जयपुर की एक बड़ी शख्सियत रहे, कभी उनसे आमना सामना हुआ उस दौरान?
1: नहीं, मेरा ये रहा कि वो असरानी साहब से बहुत अरसे बाद एक किसी फंक्शन में यहाँ पे मिलना हुआ।
0: अच्छा।
1: लेकिन उस दौरान में नहीं, वो जयपुर से
0: जा चुके थे उस दौर में जब आप
1: तो वो तो हमसे काफी से, तो लेकिन उनकी एमआर रोड से 5 बत्ती के पास में ही सब बताते थे कि ये असरानी साहब के भाई की दुकान है
0: जी,
1: वो उनकी एक कपड़ों की दुकान थी।
0: बिल्कुल।
1: फिर हमारे जो पिंचू कपूर, आपने नाम सुना होगा।
0: जी जी बिल्कुल।
1: पिंचू कपूर, ओम शिवपुरी, ये सब ये हमारे सीनियर लोग, मतलब जो निकल चुके थे हमारे जमाने से पहले ही।
0: हाँ हाँ।
1: तो लेकिन इनको सुन सुन के, मतलब ये हमारे लिए वो सार थे कि जयपुर के ये लोग हैं जिन्होंने नाम कमाया, बड़े लोग थे ये।
0: क्या प्यारी बात है। अच्छा, जब आप आकाशवाणी से जुड़े और युववाणी करने लगे उस समय भी तो जयपुर आकाशवाणी जो है वो एक बहुत ही बुलंद संगठन था और बहुत बड़े बड़े लोग आकाशवाणी से जुड़े थे, किन हस्तियों के सानिध्य में सीखने को मिला आपको?
1: बहुत बड़े नाम थे और बहुत जयपुर, मैंने कहा ना, जब नाटक में तो नंबर वन हुआ करता था, हवा महल में मैक्सिमम उसके प्लेस हुआ करते थे और उसके अलावा वहां पे जो आधा आधा घंटे के या एक एक घंटे के नाटक हुआ करते थे वो कमाल थे। मतलब उसमें नंदलाल शर्मा, आपके नाम सुनाऊंगा,
0: बिल्कुल,
1: गणपत लाल डांगी,
0: हाँ,
1: इनका हवा महल में
0: आज भी हवा महल में उनके नाटक ब्रॉडकास्ट होते हैं,
1: रंजना चौधरी, तो ये एक से एक नाम थे और एक से एक आर्टिस्ट थे और जिनके प्लेज लोग बहुत पसंद करते और इंतजार करते थे ये
0: जी। और आकाशवाणी जयपुर जो है वो जयपुर अजमेर था तब भी,
1: हाँ, क्योंकि अजमेर इंडिपेंडेंट स्टेशन नहीं था
0: जी,
1: वो सिर्फ रेलवे सेंटर था, तो जयपुर अजमेर ही बोला जाता था उसको।
0: अच्छा।
1: और आज भी शायद वही होगा कि अजमेर सिर्फ रेलवे सेंटर है, वहां पे कोई रिकॉर्डिंग या उस तरह का इंडिपेंडेंट ब्रॉडकास्ट नहीं होता है, अजमेर को लिंक किया हुआ है यह है
0: जी। तो आकाशवाणी में नौकरी का रास्ता किस तरह से खुला?
1: हाँ, मैं उस वक्त एक और पहलू भी था मेरा कि मैं एमए मैंने किया ही किया था
0: जी,
1: और मैं उस वक्त ये राजस्थान पत्रिका,
0: बहुत ही मशहूर
1: हिंदुस्तान का, उस वक्त राजस्थान का नंबर वन अखबार था हिंदी का, और उसका एक संडे एडिशन शुरू हुआ था
0: जी,
1: वो राजस्थान में पहली बार ही हुआ था, पता नहीं दिल्ली और जगह होगा, उसका नाम ही इतवारी पत्रिका था, हर इतवार को आता था, उसका नाम रखा था इतवारी पत्रिका। कर्पूर चंद कुलेश साहब राजस्थान पत्रिका के मालिक भी थे और बड़े पत्रकार थे, तो उन्होंने शुरू किया था, उसमें उन्होंने श्री गोपाल पुरोहित उसके संपादक थे और मैं उनके साथ सहायक संपादक के तौर पर लगा। 3 साल मैंने वहां काम किया और वो हर इतवार उसमें कॉलम भी लिखता था, इंटरव्यू भी करता था, ये सब होता रहा। उसी दौरान ये आकाशवाणी की ये वैकेंसी निकली थी यूपीएससी की, तो मैंने भी अप्लाई कर दिया और संयोग से सेलेक्ट हुआ, यूपीएससी में इंटरव्यू दिया, सब हो गया और पहली पोस्टिंग मेरी आई जलंधर।
0: अच्छा,
1: ये 1980 की बात है।
0: क्या बात है।
1: 19 नवंबर, हाँ 1980 में

0: तो पहली पोस्टिंग मेरे जलंधर हुई, मैंने वहां ज्वाइन किया, एक साल वहां काम किया।
1: तो वहां तब पता चला था कि ये वो स्टेशन है जहां जगजीत सिंह गाया करते थे।
0: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सब, और जगजीत सिंह, सुदर्शन फाकीर
1: जी,
0: इन लोगों के नाम से वो
1: ऐतिहासिक स्टेशन है जलंधर।
0: और वहां पे पंजाबी के बड़े बड़े लोग थे, मतलब
1: बिल्कुल
0: पंजाबी राइटर्स, सोहन सिंह मीशा
1: जी,
0: और मतलब ऐसे नाम जो बाद में साहित्य अकेडमी अवार्ड जिनको मिला, सुरजीत पात्र, ये सब लोग वहां पे मतलब एक्टिव लोग थे, पार्टिसिपेंट के तौर पर आते थे, सुरजीत पात्र लुधियाना से, सब कुछ। तो जलंधर भी उस वक्त पंजाब का जयपुर था एक तरह से,
1: बिल्कुल
0: पंजाब का जयपुर था वो। वहां बड़े अच्छे नाटक, बड़े अच्छे आर्टिस्ट और बहुत एक्टिव शहर था
1: जी।
0: तो मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजरा, और मेरे जो सीनियर थे वो सारे पंजाबी लोग थे, मतलब हिंदी वाला मैं अकेला था वहाँ पे।
1: हाँ।
0: हिंदी का प्रोग्राम मैं ही संभालता था वहाँ पे, हिंदी का प्रैक्टिस था वहाँ पे मैं, लेकिन एक से एक प्रोग्राम, और पंजाबी ऐसी भाषा थी कि जो समझने में उतनी मुश्किल नहीं थी,
1: मतलब जी।
0: तो मेरा अच्छा वक्त गुजरा जी।
1: कितने वक्त तक आप जलंधर में रहे?
0: एक साल
1: जी। और किन हस्तियों से आपका बहुत करीबी ताल्लुक रहा लिटरेचर की?
0: मैंने बताया ना, सोहन सिंह मिश्रा
1: जी,
0: और फिर उर्दू के भी कई लोग थे वहाँ पे
1: जी,
0: जो सुरजीत पात्र, वो उस जमाने में उनसे मिलना हो गया था, जो बाद में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिले, में सब
1: बिल्कुल
0: मिश्रा साहब को मिला।
1: तब तक आपका लिखना शुरू हो चुका था?
0: हाँ, लिखना तो मेरा जयपुर में शुरू हो चुका था
1: जी,
0: लेकिन मैं उस वक्त मैं गीत लिखता था, शुरुआत मेरी मंच से हुई, गीत लिखता भी था, छपते भी थे सब कुछ। और गीतकार के तौर पर मैं राजस्थान में जगह जगह कवि सम्मेलनों में भी जाया करता था। उदयपुर में जब कवि सम्मेलन हुआ तो पहला जो मेरा बड़ा ब्रेक था, या पहचान या आत्मविश्वास जिसे मिला, तो नीरज जी का तो बोलबाला था उस वक्त, गीतों के राजकुमार,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: उनके नाम से पूरा क्राउड इकट्ठा होता था, हजारों लोग इकट्ठा हो जाते थे,
1: सुबह तो, तक लोग सुनते हाँ, थे, और सबसे तो, लास्ट में उन्हें पढ़वाया जाता
0: जी। और मेरा वो शुरुआती दौर था
1: जी,
0: तो नीरज जी थे वहां पे, वो मुख्य कवि तो थे ही थे। तो मैंने जब वो गीत पढ़ा अपना, तो ये नीरज जी ने आशीर्वाद देने का उनका तरीका था, उन्होंने बहुत प्यार दिया, पहचान, और अपने गले की माला मेरे गले में जब मैं पढ़ रहा हूँ तभी आके डाल दी।
1: अरे
0: तो ये एक आशीर्वाद था जो मुझे,
1: क्या बात है। क्या वो गीत याद है आपको?
0: हाँ, जो वो मेरे काफी पढ़ाई दरदर
1: जी,
0: तो रेडूम में सुना उसको।
1: जरूर सर, जरूर, बिल्कुल स्वागत है।
0: जिंदगी की बस्ती में

0: जी
1: आशीर्वाद मिलना और प्रोत्साहन मिलना, तो वो एकदम यादगार और बहुत आत्मविश्वास देने वाला लम्हा था, एक सफर को आगे बढ़ाने वाला होता था।
0: जब आप घर लौटे इस कवि सम्मेलन के बाद, तो क्या पिताजी की कैफियत थी, उन्हें क्या बताया?
1: वो बहुत खुश हुए, लेकिन मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि हमारे पिताजी, मैंने कहा वो गायक थे और संस्था चलाते सब कुछ, लेकिन एक अलग तरह के पिता थे वो, बिल्कुल
0: हाँ,
1: बहुत कम बोलना, मतलब उनसे हमारा संवाद जो है ना, हमारे
0: मिनिमम
1: नाटक भी देखते थे, आते थे देखते थे, लोग खुश हो रहे हैं तालियां बजा रहे हैं या सब कुछ, या कभी सलून में भी आते थे कभी, तो वो आके देखा और चले आए घर पे। अखबार में भी कॉलम लिखता था, हर वक्त संडे आता था,
0: हाँ
1: पढ़ते थे सब कुछ था, लेकिन वो खुद अपनी तरफ से, कभी वो दौर था तो हो सकता है कि आज तो अगर हम अपने बच्चों से दोस्त की तरह से बात करते हैं,
0: जी,
1: पिताजी का एक एक डिस्टेंस हमेशा रखते थे
0: तो
1: या
0: आपके
1: था।
0: जहन में हमेशा ये सवाल रहता होगा कि अच्छा लगा
1: हाँ
0: है कि नहीं, क्या
1: हाँ
0: चल रहा है मन
1: तो
0: में।
1: बस वो उनको सूचना जरूर, वो और हमारे संवाद माँ से होता था,
0: जी
1: उनसे खूब मतलब हंसी मजाक बोलना चलना साहब, नाराजगी या गुस्सा या सब कुछ पिताजी से घर पे जो था, लेकिन वो खुश तो होते थे, बहुत खुश
0: जी जी
1: होते थे,
0: जी
1: लेकिन वो डायरेक्ट इस तरह से बोलते नहीं थे,
0: वो
1: बताते नहीं
0: दौर
1: थे।
0: भी ऐसा था कि पिताओं से संवाद बहुत कम हुआ करता था। माँ की स्मृतियां हमारे साथ बांटिए कि उनसे क्या कुछ आपने सीखा है, और आपकी शख्सियत में उनका क्या योगदान है, और आपकी कामयाबी उन्हें कितना खुशी दी दे
1: नहीं
0: देकर
1: बिल्कुल, ये
0: गई।
1: पारिवारिक रूप से अगर देखें तो पिता ने माहौल दिया,
0: जी
1: पिता ने माहौल दिया, मतलब अगर मैं कलाकार बना हूं या कलाकार कला के क्षेत्र में हूं तो वो पिता के संस्कार हैं, पिता ने जो माहौल दिया बचपन से, अगर आप देखें तो कुमार गंधर्व, भीमसेन जोशी, रविशंकर, बुद्धदेव मुखर्जी, राजन साजन मिश्र, अमजद अली खां, बड़ा
0: बाप
1: कोई
0: रे,
1: नाम लीजिए, कोई नाम लीजिए जिनको हमने बचपन में आगे बैठ के
0: आमने
1: सुना
0: सामने
1: है,
0: देखा। जी
1: आमने सामने देखा, उनके आसपास घूमे बैठे, गिरिजा देवी, बेगम अख्तर,
0: बाप रे,
1: कोई नाम लीजिए, तो वो सब हमने देखा है और उनके साथ उठे बैठे हैं, कई लोग हमारे घर आए है ना, तो ये माहौल पिताजी ने दिया, उसके बगैर हमारे संभव नहीं था कि हम उस दुनिया को देख सकते, इन बड़े लोगों को देख सकते, इन हस्तियों, तो वो उनको सुन सुन के भी संस्कार हुए, संगीत जो है वो इस तरह से भी संस्कार में आता है, एक तो बाकायदा आप गुरु से सीखते हैं और एक सुन के भी सीखते हैं, तो वो हमने उस तरह से सीखा, तो पिताजी ने माहौल दिया, संस्कार दिया, माँ ने जो है वो एक पूरा प्रोटेक्शन कहना चाहिए। मैं बात करूं तो हमारी कॉलोनी में जो मैंने कहा ना, वो एक मिनी भारत था वो,
0: जी,
1: लेकिन मेरा बचपन बिल्कुल विपरीत था, मैं अपनी कॉलोनी के चंद शैतान बच्चों में से
0: ये तो नया खुलासा है हमारे
1: एक
0: लिए।
1: था, मतलब खेलना कूदना ही तो सही है ही, सभी बच्चे करते हैं सब कुछ, लेकिन छेड़ने की आदत जो है ना,
0: हाँ,
1: किसी के साथ भी मजाक कर लेना, किसी को
0: तंग
1: आते
0: कर
1: जाते तो
0: लेना।
1: तंग करना या मस्ती करना,
0: जी,
1: तो कहीं ना कहीं एक या दूसरे दिन में कोई
0: शिकायत आती
1: शिकायत माँ के पास आती थी कि
0: थी।
1: आज इसने ये क्या, और मेरा बचपन का नाम छोटू था।
0: अच्छा,
1: हाँ
0: क्योंकि आप छोटे थे इसलिए।
1: हाँ मेरे बड़े भाई साहब थे,
0: हाँ
1: मैं
0: जी
1: नंबर दो था, तो
0: जी
1: पहले नाम ऐसे ही रखे जा रहे घरेलू
0: बिल्कुल
1: नाम,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: बड़े भाई साहब श्याम और मेरा नाम छोटू,
0: जी,
1: खैर तो वो छोटू की शिकायत
0: रोज आ रही
1: जो
0: है।
1: है मतलब हर दूसरे दिन या हर दिन जो है, आज इसने ये किया, आज इसने वो किया, ये सब चलता रहता था, तो वो माँ थी जो
0: प्रोटेक्शन,
1: संभालती थी, और कभी कभी वो पिता तक पहुंच जाती थी बात, और
0: हाँ।
1: पिताजी जिस ढंग से पेश आते थे वो मैं भूल नहीं सकता।
0: उसका जिक्र ना ही करें तो
1: तो ये एक
0: अच्छा।
1: अच्छा बचपन बीता,
0: जी
1: और माँ ने जो है वो, क्योंकि पिताजी का यही था कि दिन में नौकरी करना, आना फ्रेश होना, चाय पीना और कपड़े वपड़े बदल के सीधा रविंद्र मंच,
0: अरे
1: मतलब घर में
0: गजब।
1: वो पारिवारिक रिश्ते के पिता नहीं थे वो, हम
0: हाँ, वो अपनी दुनिया
1: वो
0: उनकी।
1: अपनी दुनिया थी उनके, बस आए सुबह ऑफिस चले गए, शाम को आए और फ्रेश हुए, चाय वाय पी और फिर सीधा रविंद्र मंच, फिर वहां से लौटे, खाना वाना खाए, सो गए, मतलब
0: हाँ,
1: बच्चों से भी उनका उस तरह संवाद नहीं होता था, क्योंकि वो माँ थी जिनसे मैंने कहा ना कि वो तो परिवार में पारिवारिक माहौल का जो, और पारिवारिक मजबूती जो है, खुलापन भी छूट भी, वो सब माँ से मिली।
0: क्या बात है। और क्या आपकी रचनाओं में मां झलकती हैं?
1: उस तरह से तो डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन कहीं कहीं जैसा बचपन हमने गुजरा, तो वो एक लोअर मिडिल क्लास का जो मिडिल क्लास मतलब सरकारी कर्मचारी जो है उनकी
0: बिल्कुल,
1: कॉलोनी थी, तो हम उसी में, तो लेकिन बहुत खुशहाल, मतलब मैं अपने आप को अगर आप देखूं तो हो सकता है आर्थिक रूप से हम लोग बहुत लोअर मिडिल क्लास ही कहना चाहिए उस वक्त, लेकिन एक बहुत ही सांस्कृतिक रूप से समृद्ध, खुशहाल परिवार थे और मुझे अपने बचपन की बहुत अच्छी यादें हैं, मैं खुशहाल हूँ जी।
0: क्या बात है, इतनी सुंदर बातें हो रही हैं और इतनी जज्बाती बातें, तो मुझे लगता है कि यहाँ

0: बचपन की बातें हमने की रेड्डी साहब, और ये वो बातें हैं जो इसलिए जरूरी थी कि वो कौन से तत्व थे जिन्होंने आपको बनाया। लेखक की दुनिया में उस समय में जब आप धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे थे, तो आपके आदर्श कौन थे और क्या कोई था जो आपकी रचनाओं को सुधारे या जो आपको मार्गदर्शन दे वहां पर जयपुर में?
1: जी, जयपुर में जैसे मैंने कहा कि मैं गीत से शुरू हुआ था, तो मेरे दो बड़े लोग थे जो मेरे काव्य गुरु भी मैं जिन्हें मान सकता था और जो मुझे मार्गदर्शन भी देते थे, आशीर्वाद भी देते थे। एक थे तारा प्रकाश जोशी
0: जी,
1: और एक हरिराम आचार्य। हरिराम आचार्य फिल्मों में भी लिखा
0: जी जी, जी।
1: मेहंदी रंग लाई,
0: डांसिंग जी के साथ उनके गाने हैं बहुत सारी फिल्मों के।
1: और तारा प्रकाश जोशी जी आईएएस ऑफिसर थे।
0: अच्छा।
1: लेकिन गीत में उनका कोई जवाब नहीं था, मतलब इतने बड़े गीतकार थे वो राजस्थान के। मतलब एक पंक्ति यूनुस में बताऊंगा उनकी, ब्रेक गुरु तो वह एक तरह से, मेरा वेतन ऐसे रानी, मेरा वेतन ऐसे रानी जैसे गर्म तवे पर पानी।
0: ओ हो, क्या अद्भुत है। हाँ? क्या अद्भुत है,
1: जैसे गर्म तवे पर पानी,
0: क्या बात है।
1: ऐसी पंक्ति मतलब मैंने नहीं सुनी।
0: क्या बात है, क्या बात
1: नहीं
0: है?
1: सुनी। तो ऐसे लोग मेरे आदर्श थे, मेरे गुरु थे, जिनके साथ बैठता था।
0: गजब, ये जीवन में कभी भूलेगा नहीं, इतनी अद्भुत है।
1: मेरा वेतन ऐसे रानी जैसे गर्म तवे पर पानी,
0: तुरंत खत्म। वाह वाह।
1: तो और हरिराम आचार्य जी के तो
0: बिल्कुल मेरी भी मुलाकात रही होगी।
1: तो ये लोग थे जिनसे सीखा। लेकिन मेरे साथ अच्छी बात रही आप संस्कारों में, जिसने मुझे आगे थोड़ा गंभीर लेखन की तरफ रखा, सिर्फ मंची ये नहीं बनाया, वो ये कि मैं बाकी विधाएं भी पढ़ता था। मेरे निर्मल वर्मा, भीष्म साहनी, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, ये सब मतलब फिक्शन भी, उपन्यास भी, आलोचना भी, नवर सिंह जी भी, मतलब हिंदी में तो एमए किया था, तो हिंदी साहित्य से बराबर जुड़ाव। और फिर बचपन से ही वो हमारे कॉलोनी में, हमारे अखबार परिवार में सिर्फ अखबार था, मतलब किताबों को वो नहीं था उतना। तो एक कॉलोनी के आगे डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी हुआ करती थी,
0: उसमें
1: तो सारे अखबार आते थे, मतलब अखबार तो थे ही थे,
0: पत्रिकाएं
1: भी, दिनमान, साप्ताहिक हिंदुस्तान, कादम्बिनी, तो ये मैं इन सबको चार्ट जाया करता था वहां जाकर के, घंटों घंटों वही बैठता था। तो और बाकी लोग जो आके चले गए, और मैं अपने अभी इसको पढ़ रहा हूँ, फिर उसको पढ़ रहा हूँ, फिर उसको, मतलब तीन चार टेबल पे मैं, मेरे दो तीन घंटे निकल जाते थे
0: जी।
1: तो बचपन से वो पढ़ने का भी शौक था, संगीत का भी शौक था, तो ये सब चीजें जो है संस्कार में। और फिर जैसे होता है कि ये तो मेरे आदर्श थे ही और बड़े थे, बाकी फिर उर्दू शायरी की तरफ यूं हुआ कि गीत करते करते फिर हम उम्र लोगों के साथ उठना बैठना है ना, सुनना सुनाना, और फिर मुशायरे भी वहाँ हुआ करते थे जयपुर में, तो बड़े बड़े मुशायरों को सुनता, तो हम उम्र लोगों की टोली में यंग शायर भी थे जिनके साथ उठते बैठते थे। तो जब मुशायरे सुने और उसमें जो शेर का जो दो मिसरों में, दो पंक्तियों में जो
0: सारी बात
1: कह देने का जो जादू वो मुशायरों में देखा, तो फिर वो उस विधा ने मुझे आकर्षित किया, मैं उस तरफ झुका और फिर गजलें कहने लगा। हम उम्र लोगों को हमारे जो साथ में थे, अरशद अब्दुल हबीब, इनाम शरर, मजा साहब, तो ये सब लोग सुनते थे, वो सराहते थे, और कि ये

0: अच्छा अच्छा है। और फिर मैंने बाकायदा गज़ल के लिए उर्दू स्क्रिप्ट सीखी, मौलवी साहब आते थे मुझे पढ़ाते थे सिखाते थे, और फिर मैं बाकायदा गीत से गज़ल में शामिल हो गया। गज़ल को मैंने अपनाया और शायद फिर गज़ल ने मुझे भी अपना लिया।
1: क्या प्यारी बात है। तो शुरुआती गज़लों में से कोई एक हमें सुनाइए।
0: मेरा सौभाग्य यूनुस की ये जो गज़ल पंकज दास साहब ने गाई और पूरे दुनिया में पहुंची,
1: जो आपकी पहचान के साथ चिपकी हुई है,
0: वो जयपुर की गजल है।
1: वाह,
0: वो शुरुआत
1: कमाल।
0: हाँ,
1: ये मुझे नहीं पता था। और ये मेरे लिए हैरत की बात है कि वो आपकी शुरुआती गजल है।
0: नहीं, यूनुस इसलिए आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए वो, कि गीत से मेरी यात्रा शुरू हो चुकी थी
1: जी।
0: गजल की विधा को मैंने
1: अपने शिफ्ट किया है।
0: हाँ, गजल में शिफ्ट किया और उसको अपना लिया। मैंने कहा ना, हम उम्र लोगों के साथ उठते बैठते सुनते सुनाते उनसे आश्वस्ति मिली। और एक हमारे बुजुर्ग होते थे, कहना चाहिए टोंक में रहते थे वो, तो वो भी आया करते थे और शाम को बैठे और एक दूसरे को सुनना सुनाना। तो उन्होंने जब ये पहली बार सुनी गजल तो वो भी चौंक गए, मतलब क्योंकि ये ट्रेडिशनल ढंग की गजल नहीं है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: है ना?
1: बिल्कुल।
0: तो बोले ये, और ये जो जिसको कि गजल की जबान में या उर्दू में टेक्निकली रदीफ कहते हैं, है ना, जो गजल के पंक्ति के आखिर में आती है और वो रिपीट होती है हर शेर में, से डरता है। अब ये रदीफ जो है वो अनसुनी सी थी, मतलब
1: और कभी इससे पहले मैंने सुना नहीं है।
0: तो खुद मैंने
1: मुश्किल भी है।
0: हाँ,
1: मुश्किल भी है,
0: मुश्किल भी है। तो उसको निभा ले जाना और उसको, तो वो भी हैरान हुए कि ये यार तुम ये रदीफ ले आए और उसको तुमने शेर भी कह दिए और अच्छे शेर कह दिए सब कुछ है। और फिर वो शेर उसने तो मुझे मतलब सबसे ज्यादा प्यार दिया, पहचान दी। तो वो गजल मैं अगर कहें तो
1: जरूर सर, अरे स्वागत है बिल्कुल।
0: जो पंकज जी ने गाई उसकी धुन अलग है,
1: आपकी धुन अलग है।
0: जो मैं सुनाता हूँ और जिसने मुझे मुशायरों में पहचान दी वो ये गजल।
1: स्वागत है।
0: यहाँ हर शख्स हर

0: का फना होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है, यहाँ हर शख्स। और ये खास शेर है वो।
1: स्वागत है।

0: दुनिया बड़ा होने से डरता है, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है। खिलौना है जो मिट्टी का फना। यूनुस, इसकी एक शेर और सुनाता हूँ।
1: जरूर सर,
0: ये
1: स्वागत
0: बच्चे वाला जो शेर है उसको सबसे ज्यादा प्यार मिला।
1: जी,
0: ये शेर भी उतना ही सच्चा है।
1: बिल्कुल
0: हम देखते हैं कि हर जिंदगी में हर इंसान की कभी न कभी वो पल आता है कि वो ऊपर वाले से पनाह मांगता है कि बहुत
1: बिल्कुल
0: बहुत हो गया, अब नहीं रहा,
1: जी
0: अब नहीं, बहुत हो
1: जी
0: गया, है
1: जी
0: ना। ये
1: जी
0: आता है, फिर
1: सबके
0: करते हैं
1: साथ, सबके साथ
0: अरापति खरापति भी खुदकुशी करते हैं, उनके पास क्या नहीं होता,
1: जी।
0: लेकिन वो जिंदगी ऐसे मोड़ पे ले आते हैं कि वो बस बहुत हो गया।
1: हाँ,
0: लेकिन जब ऐसा पल आता है
1: तो आप कहते हैं अजब ये जिंदगी
0: ये,
1: की
0: तो फिर
1: काहली।
0: हमारे क्या रिएक्शन होते हैं।
1: वाह
0: और कोरोना में तो हमने देखा ही कैसे
1: जी,
0: जान बचाते फिर रहते हम
1: बिल्कुल
0: लोग। तो ये शेर है जो सबका सच है,
1: वाह
0: अमीर हो गरीब सबका। यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, अजब ये जिंदगी की कैद है, दुनिया का हर इंसान, अजब ये जिंदगी की कैद है, दुनिया का हर इंसान, रिहाई मांगता है और रिहा

0: है और रिहा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है।
1: क्या बात है सर, हम बहुत खुश नसीब है कि विविध भारती की स्टूडियो में आप मौजूद हैं और
0: आप
1: से ये सुन रहे हैं।
0: और मेरी खुशनसीबी, थैंक यू।
1: ये अद्भुत गजल है और हजारों बार तो हमने पंकज जी की आवाज में सुनी होगी, पर जब आपके साथ काम करते थे तब तो हिम्मत नहीं होती थी ये कहने की कि आपसे ये गजल सुननी है। आज ये मौका आया है, बहुत अच्छा लगा, ये बहुत ही अनमोल पल है। रेडियो की तरफ वापस लौटते हैं और जलंधर में एक साल बिताने के बाद आप कहाँ गए?
0: उसके बाद मैं अपने होम टाउन जयपुर।
1: जी जी,
0: मेरे साथ ये भी रहा और अभी भी होता है ये कि मैं शुरू से होम सिक रहा, मतलब
1: जी जी बिल्कुल,
0: जलंधर मुझे कोई कमी नहीं थी। बहुत हाँ। अच्छा शहर था, बहुत प्यारे लोग थे,
1: अच्छा खान पान था,
0: अच्छा खान पान था, अच्छा मौसम था
1: जी,
0: सब कुछ अच्छा था, बहुत अच्छा था, केंद्र भी बहुत अच्छा था, लोग भी अच्छे थे, मैं खुश था, सब भी था। लेकिन एक होम सिकनेस होती कि वो मुझे अपने शहर जाना है वापिस, तो मतलब मैंने रिक्वेस्ट की और सुन ली गई, मान ली गई और मैं वापस अपने शहर में आ गया जयपुर।
1: वाह वाह,
0: मैं वहां फिर वापस शायद 5 साल जयपुर रहा।
1: तो ये बहुत ही अनमोल पल रहे होंगे कि जिस स्टेशन में आप बतौर कैजुअल आया करते थे, युवाणी करते थे, वहां आपकी वापसी होती है और अब आप प्रोड्यूसर बनते हैं।
0: और ये भी कमाल थी कि जिस केंद्र में मैं कैजुअल के लिए ऑडिशन देने गया हूँ
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
0: वही मैं एक प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव तौर पर एंटर हो रहा हूँ और ज्वाइनिंग के लिए सब कुछ है
1: जी।
0: तो और क्या टीम थी वो वहाँ पे,
1: बिल्कुल
0: करीब बड़े लोग, अच्छे लोग, तो उनके साथ मिलना जुलना हुआ और वो एक अलग अनुभव था। और मुझे जयपुर मेरा क्रिएटिव जैसा विविध भारती मेरा बाद में हुआ
1: जी जी, जी।
0: और इसमें मैंने प्रोडक्शन कम किए लेकिन प्रोग्राम में उनकी परिकल्पना, उनको संवारना या उनको इम्प्लीमेंट करना, ये सब रहा। मेरा क्रिएटिव जो बेस्ट था
1: जी
0: वो जयपुर में था
1: जी जी जी,
0: नाटक लिखना, कंपोज करना,
1: बिल्कुल
0: प्रोड्यूस करना, इंटरव्यूज करना, वो सब जयपुर हुआ। मतलब वो मेरी जो पूरी जलंधर में मुझे आकाशवाणी की जानकारी सब हुई, सब कुछ हुआ। एक लिमिटेड काम था, हिंदी का कार्यक्रम अधिकारी था, हिंदी का लिमिटेड उसमें सब कुछ था। जयपुर मेरे लिए पूरा खुला मंच था
1: बिल्कुल। और फिर आप उस शहर में पले बड़े थे,
0: पला
1: तो आप
0: बड़ा
1: सब
0: था
1: जानते थे
0: और फिर उसने मुझे, मैंने कहा ना कि मेरे क्रिएटिविटी के सारे पहलू उसमें खुले
1: जी,
0: मेरा लेखक भी खुला, मेरा संगीतकार भी खुला, मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव भी तो तब था ही था, सब कुछ नाटक लिखे, निर्देशित किए, संगीतबद्ध किए, हाँ म्यूजिकल शो पूरा उसमें हुआ, अभी तो नहीं हो रहा है। उस वक्त जयपुर में और जयपुर के पूरे आकाशवाणी के एक दौर था कि वो आमंत्रित श्रोताओं के सामने कॉन्सर्ट होते थे
1: जी,
0: तो उसके लिए भी मतलब तैयार करना, उसके लिए प्लेज लिखना, तैयार करना, गाने लिखना, ये सब जयपुर में हुआ।
1: वाह क्या बात है। तो उस दौर में कौन से नाटक आपने रेडियो के लिए बनाए, उनको कुछ याद कीजिए थोड़ा सा।
0: उसमें एक महत्वपूर्ण नाटक है, राजेंद्र यादव की कहानी थी टूटना,
1: जी जी,
0: उसका मैंने रेडियो नाटक रूपांतर किया।
1: वाह,
0: और उसका प्ले किया और बहुत पसंद किया गया है लोगों द्वारा। और ये तो हुआ टूटना, एक ज्ञान प्रकाश विवेक की कहानी थी अंधा सूरज,
1: क्या बात है,
0: उसका किया।
1: वाह,
0: और इसके अलावा गीत गोविंद,
1: अरे गजब,
0: ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात उपलब्धि थी। यूनुस, उसके आश्चर्य की बात यह थी कि गीत गोविंद का आपने ड्रामेटिक नाट्य रूपांतर किया, वो नाट्य रूपांतर तो हिंदी में हुआ, मतलब उसका कैरेक्टर जो राधा कृष्ण सखी ये सब कुछ है, गीत गोविंद मूल रूप से संस्कृत में है,
1: बिल्कुल
0: जयदेव जी का
1: जी,
0: हाँ उसके जो गाने हैं, उसके जो गीत हैं वो मूल संस्कृत में, मूल संस्कृत में मैंने कंपोज किया, रिकॉर्ड किए, गाए
1: संस्कृत में,
0: संस्कृत में,
1: अरे बाप,
0: तो गाने संस्कृत में हैं
1: जी,
0: और उनके इंटरप्रिटेशन करते हुए उनको एक तरह से समझाने के लिए मेरे कैरेक्टराइजेशन किया कि लोग आम लोग समझ चुके इस गाने का क्या मतलब है, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कौन कैरेक्टर है, ये राधा का दुख है, ये कृष्ण की पुकार है,
1: हाँ,
0: है ये
1: तो बहुत मुश्किल काम है,
0: हम बहुत मुश्किल, तो वो एक मेरे लिए वो मील का पत्थर जैसा हुआ और लोगों को भी हैरानी हुई कि लोगों ने उसका आनंद भी लिया और समझे भी, मतलब गीत गोविंद को ओरिजिनल, क्योंकि मैं ये समझता था कि उससे पहले गीत गोविंद रघुनाथ पाणिग्रही उड़ीसा में
1: जी जी
0: वो करते रहे और वो बहुत मशहूर है, बहुत पॉपुलर है, सब कुछ है, लोग गायक के रूप में वो पॉपुलर है वो वहाँ पे, लेकिन मैंने उनका सुना है और वो तो कमाल है, मतलब वो भी, लेकिन मुझे ये लगा कि उनमें वो लोक तत्व ज्यादा है, मतलब कि बंगाल या उड़िया का उनके कंपोजिशंस में भी, उनके गाने में भी, तो

0: मैंने उसको बाकायदा एक कोई फिल्म का तो था ही था, तो सुगम संगीत के तौर पर मैंने उसको कंपोज किया और गाने वाले भी बहुत अच्छे थे, तो उस तरह से वो एक लोगों को लगे कि ये गाना है।
1: क्या बात है, ये तो बहुत मुश्किल है
0: क्योंकि तो वो गाने के तौर पर वो हुआ और लोगों ने सुना और पसंद किया।
1: वाह वाह वाह, तो ये पूरा जयपुर का दौर था।
0: अभिज्ञान शाकुंतल
1: जी
0: कालिदास का, तो वो मैंने रेडियो एडॉप्टेशन किया, वो किया, तो ये दो बड़ी थे कहना चाहिए।
1: क्या शानदार बातें हैं, ये तो बहुत मुश्किल वाले काम आपने वहां किए। इसके अलावा वहां विकल्प भी चलता रहा आपका? हाँ, नाट्य समूह
0: नहीं विकल्प, ये दौर मेरा पहला था, मतलब रेडियो आने से पहले का था।
1: हाँ,
0: विकल्प अपने ढंग से चलता रहा, वो बीच बीच हम लोग करते भी रहे, लेकिन वो सक्रियता नहीं रही
1: जी, क्योंकि रेडियो में आप पूरी तरह से अपने अपने अपने आप को झोंक दिया था।
0: मतलब बीच बीच में हम करते रहे नाटक, लेकिन वो जो 10 साल लगातार जो किया वो रेडियो में आने से पहले किया
1: जी, और बाद में फिर आप पूरी तरह से रेडियो में व्यस्त हो गए।
0: हाँ, उसके बाद भी एक नाटक जो आला अफसर मुद्रा राक्षस का
1: जी जी,
0: तो गोगोल का उन्होंने
1: इंस्पेक्टर जनरल का,
0: नौटंकी की शैली में उन्होंने किया, तो उसका भी मैंने कंपोजिशन भी किया, डायरेक्शन भी किया और वो भी किया।
1: तो संगीत जो है वो एक तो घर से मिला था, लेकिन ये एक लगातार चलता रहा कि कंपोजिशंस भी करनी है आपको लगातार।
0: हाँ, इसमें करनी ही वाला बात नहीं था,
1: जरूरत
0: अंदर से होता था
1: जी जी,
0: अंदर से होता था कि ये मैं करूं, मतलब मेरी कोई मजबूरी नहीं थी कि,
1: बिल्कुल
0: हाँ, कि कोई और भी कर सकता था, लेकिन अंदर से कहीं होता था कि ये
1: मैं करता
0: हूं। इसको जैसे लिखने का जो है वो अंदर से ही होता है।
1: बिल्कुल,
0: आप तो उसी तरह से वो चाहे वो गीत गोविंद हो, जयपुर में उस वक्त 5 बड़े संगीतकार थे
1: जी
0: जो स्टाफ में थे, म्यूजिक डायरेक्टर म्यूजिक कंपोजर भी एक पोस्ट होती है,
1: बिल्कुल होती है ना, है,
0: जानते हो, और विविध भारती में नहीं है वो, लेकिन मेन सेंटर्स में बॉम्बे में हो या किसी भी सेंटर में कंपोजर की भी पोस्ट होती है
1: जी जी,
0: उस वक्त 4 मौजूद थे और वो 4 लोग भी परेशान होते थे कि हम हैं और ये आदमी कंपोज कर रहा है। तो उसमें मेरे उस वक्त स्टेशन डायरेक्टर थे गिरीश चतुर्वेदी
1: जी जी,
0: तो उन्होंने मुझे छूट दी
1: कि नहीं नहीं आप करो।
0: हाँ, मतलब वरना ये होता नहीं है ये।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो 4 कंपोजर हैं स्टाफ में मौजूद हैं,
1: तो आप उनको
0: और उस वक्त आप अपना काम खुद कर रहे हैं
1: जी जी,
0: तो उन्होंने छूट दी और उसकी वजह से वो एज ए कंपोजर भी रेडियो पर, मतलब फिर गाने भी हुए, सब कुछ हुआ।
1: हाँ,
0: एक बार बताऊं कि जब महादेव वर्मा का गीत,
1: हाँ,
0: मैं नीर भरी दुख की बदली,
1: हाँ हाँ,
0: और ये सब, मतलब ये सब हमने किए, मतलब जो एक वो जैसे यहाँ मंथन शुरू हुआ था ना
1: जी,
0: हमने 10 मिनट का प्रोग्राम होता था
1: जी,
0: एक अच्छा गीत या अच्छी कविता,
1: हाँ,
0: किसी के लेके उसको कोई पढ़ता था और गीत होता था कोई गाता था,
1: वाह,
0: तो उस तरह का एक प्रोग्राम तो वो मैं करता था, तो उसमें महादेव वर्मा का और भारती जी का, फिर बाद में गालिब की गजलें कंपोज की,
1: क्या बात है,
0: कबीर को कंपोज किया,
1: वाह,
0: स्टेज किया, स्टेज शो किया, तो ये सब मेरे संगीतकार के रूप में मेरे
1: ये चीजें चलती रही लगातार। ये बहुत अद्भुत बात है, ये एक अलग पूरा एक पक्ष है। हमारे सुनने वालों को ये जानकर अच्छा लगेगा कि आप मंच पर तो गाते ही हैं, लेकिन आप अपने निजी जीवन में भी कुछ फिल्मी गीतों से आपका बड़ा लगाव है जो आप गुनगुनाते हैं, तो हमारे लिए कुछ गुनगुनाइए।
0: चलिए मैं गुनगुना देता हूं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है,
1: वाह वाह,
0: कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि

रात्रि 8 बजे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा रजनीगंधा। रात 9:30 पर चर्चा का विषय है ये कार्यक्रम, आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और 10:30 पर फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम होगा पुरानी फिल्मों से। और अब कुछ जानकारियां कल के कार्यक्रमों के बारे में। कल हमारी सभा आरंभ होगी प्रातः 5:50 पर। 5:55 पर आप सुनते हैं खेत खलिहान कार्यक्रम। प्रातः 6:05 पर आप सुनेंगे चिंतन मनन। 6:10 पर भक्ति संगीत का आनंद लेंगे कार्यक्रम वंदना में। प्रातः 6:35 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में प्रोफेसर डॉक्टर केडी मंडल की वार्ता सुनेंगे अस्थमा या दमा कारण और निदान। 6:40 पर आप सुनेंगे रामचरित मानस गान। 7 बजे हमारा दैनिक कार्यक्रम होगा मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। इसके अंतर्गत कल आप सुनेंगे रसरंग, कलाकार होंगी डेजी प्रियदर्शनी, साथ ही मौसम का मिजाज जानेंगे, रेल सूचनाओं से अवगत होंगे, समाचार पत्रों की सुर्खियों से भी रूबरू होंगे और जानेंगे आज का इतिहास। इसी के अंतर्गत आप सुनेंगे राम किशोर की कहानी टूटती बेड़ी। प्रसारण समय होगा 7:20। 7:30 पर आप फिल्म संगीत सुनेंगे। फिल्म संगीत आप आगे भी सुनेंगे 9:06 पर नगमे नए पुराने, 10 बजे पुरानी फिल्मों से, 11 बजे नई फिल्मों से, 11:30 पर कंपेयरिंग आधारित कार्यक्रम होगा गुलदस्ता। 12 बजे शहरी महिलाओं का कार्यक्रम होगा नारी लोक, प्रस्तुतकर्ता होंगी श्री पार्वती की। 12:30 पर NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम सुनेंगे उमंग। 1 बजे लोकरंग कार्यक्रम में आप रेखा देवी के गाए लोक गीत सुनेंगे। 1:30 पर आप सुनेंगे धारावाहिक पोषण नींव पर स्वास्थ्य महल, इसकी 7वीं कड़ी का प्रसारण आप सुनेंगे। लेखिका होंगी डॉक्टर आरती स्मिथ, प्रस्तुतकर्ता होंगी नौमी शांति हेम्ब्रम। 2:30 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा चित्रपट से। 3 बजे तरंग के कलाकार होंगे हरिहरन। 3:20 पर आप देशभक्ति गीत सुनेंगे और 3:25 से शाम 5 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। शाम 5 बजे हम उपस्थित होंगे युवा वर्ग के कार्यक्रम युववाणी के साथ। 5:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। शाम 6 बजे आप सुनेंगे ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम, इसमें कल आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम। 7:10 पर लोकगीत कार्यक्रम में आप अमृता झा को सुनेंगे। 7:52 पर सुलहरी कार्यक्रम के कलाकार होंगे गोपाल कृष्ण मिश्र। रात्रि 9:30 पर आप फिल्म संगीत सुनेंगे। 10 बजे शास्त्रीय संगीत में शाहिद परवेज का सितार वादन सुनेंगे राग झिंझोटी में, और 10:30 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा सुहाना सफर। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण के तहत आज की इस सभा के शेष एवं कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है, प्रस्तुत है ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम।

0: ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को अन्नो का नमस्कार।
1: आज सभ्य श्रोता भाई बहन का दीपा के भी नमस्कार। आपनो का नमस्कार अन्नो भाई।
0: नमस्कार दीपा बहन। तब सुनाइए हाल समाचार, सब ठीक ठाक है ना?
1: हाल समाचार तो सब ठीक ठाक छे। अपनो सुनाओ गांव घरों के की हाल समाचार।
0: हाल समाचार तो ठीक ही है दीपा बहन, लेकिन मौसम में लगातार बदलाव होने से जो है ना, थोड़ी जुकाम हो गई है।
1: अच्छा।
0: और इस कारण से जो है थोड़ी परेशानी भी हम लोगों को हो जाती
1: एकदम
0: है।
1: हो जाए।
0: अब देखिए होता क्या है ना दीपा बहन, कि कभी धूप फिर कभी वर्षा होने के कारण जो है लगातार मौसम में जो परिवर्तन हो रहा है, इससे हमारे शरीर में जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता भी जो है थोड़ी वो बदलती
1: कमजोर
0: जाती
1: हो
0: है, कमजोर हो जाती है, और इस कारण से हमें संक्रामक रोग जो है ग्रसित हो जाता है।
1: अब बच्चा और बुजुर्ग में थोड़ा ज्यादा हो जाए।
0: बिल्कुल। और दीपा बहन देखिए, हमारा स्वास्थ्य जो है उस पर तो हमें विशेष रूप से ध्यान देना ही चाहिए,
1: देना चाहिए।
0: और इसके साथ साथ हमारी जो धरोहर होती है उसे भी हम अपने जो है इतिहास और अपने भूगोल के माध्यम से पढ़ते हैं।

0: और समझते भी हैं।
1: एकदम
0: तो दीपा बहन आज हमारे देश के एक पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद जी का जयंती भी है।
1: हाँ सही बोल रहे
0: हमारे देश के पांचवें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद का जन्म जो है वो आज ही के दिन यानी 13 मई को 1905 ईस्वी में हुआ था, और इनके पिता का नाम कर्नल जनलूर अली अहमद थे।
1: हाँ
0: फखरुद्दीन अली अहमद जो है वो
1: हाँ हाँ
0: भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़े हुए थे और वे गांधी जी के विचारों से प्रभावित भी थे। दीपा बहन
1: हाँ
0: स्वतंत्रता संग्राम के दौरान फखरुद्दीन अली अहमद जी जो है वो जेल भी गए थे,
1: हाँ
0: और असम की राजनीति में जो है उनका विशेष रूप से महत्वपूर्ण योगदान रहा था।
1: नन्नो भाई, अब फखरुद्दीन अली अहमद 24 अगस्त 1974 का भारत के पांचवा राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाल लगे नन्नो भाई।
0: बिल्कुल
1: और उनको व्यक्तित्व सरल सौम्य स्वभाव के छले
0: जी,
1: संविधान और कानून के उन्हें अच्छा समझ रखे छले, और राष्ट्रीय एकता के समर्थन शिक्षा और सामाजिक सद्भाव पर हमेशा उन्हें ना जोर दिला छले।
0: बिल्कुल दीपा बहन।
1: हाँ।
0: और फखरुद्दीन अली अहमद की जो जयंती जो है दीपा
1: हाँ,
0: बहन, वो हमें लोकतंत्र की महत्ता, संवैधानिक पदों की जिम्मेदारी
1: एकदम
0: और स्वतंत्रता आंदोलन के योगदान कार्यकर्ताओं को, योगदान के कर्ताओं को जो है वो याद करने का अवसर भी देती है।
1: एकदम।
0: और दीपा बहन आज प्रसिद्ध भारतीय लेखक डॉक्टर आर के नारायण की भी पुण्यतिथि है।
1: हाँ
0: आज ही के दिन जो है यानी कि 13 मई को उनका निधन वर्ष 2001 में हुआ था। आर के नारायण भारतीय अंग्रेजी साहित्य के सबसे महान लेखकों में गिने जाते हैं।
1: हाँ।
0: उनकी रचनाओं में भारतीय समाज, सामान्य लोगों का जीवन और हास्य, मानवीय भावनाओं का बहुत सुंदर सा चित्रण हमें देखने को मिलता है। और दीपा बहन आर के नारायण का जो है वो पूरा नाम रासीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी है।
1: अच्छा।
0: इनका जन्म जो है वो 10 अक्टूबर 1906 ईस्वी को चेन्नई में हुआ था। आर के नारायण जो है वो अंग्रेजी भाषा में लेखन वे किया करते थे, लेकिन इनकी कहानियों में जो है
1: हाँ।
0: भारतीय जीवन की पूरी तरह से जो है झलक हमें देखने को मिलती है।
1: तो देखला भी हो वो मालगुड़ी डेज,
0: बिल्कुल
1: देखला जो
0: बिल्कुल।
1: हाँ उनको सबसे प्रसिद्ध कृति में से एक छे
0: जी,
1: हुनी ना मालगुड़ी डेज नामक एक काल्पनिक नगर बनेल के, जहाँ उनको अधिकतर कहानी आधारित छले। मालगुड़ी के कहानी में साधारण लोग के जीवन, बच्चा सिनी के शरारत, पारिवारिक संबंध, भारतीय संस्कृति और सामाजिक समस्या दिखाई दे छे।
0: बिल्कुल दीपा बहन।
1: हाँ।
0: और इसके साथ साथ दीपा बहन आर के नारायण की कई उपन्यास भी जो है वो काफी चर्चित रही है।
1: हाँ।
0: उनमें से एक उपन्यास जो है वो द गाइड था, और द गाइड विश्व भर में काफी प्रसिद्ध भी हुआ
1: था।
0: और इस उपन्यास पर जो है वो बाद में फिल्म भी बनी।
1: हाँ,
0: जिसमें देवानंद जो है
1: हाँ,
0: वो उन्होंने अभिनय इसमें भूमिका निभाई।
1: हाँ, आर के नारायण जी का साहित्य के क्षेत्र में बहुत सम्मान मिले अनुभव। अब पद्म भूषण, पद्म विभूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार से हुनी सम्मानित कर लो गेलो छले।
0: बिल्कुल। और साथ ही साथ दीपा बहन
1: हाँ?
0: आर के नारायण जी के लेखन की जो शैली थी उनकी मुख्य विशेषताएं सरल और सहज भाषा, इसके साथ साथ हल्का उसमें जो है वे हास्य की जो है भूमिका को भी अपने चरित्र में जो है जो भी उनका किरदार वे स्पेशल लिखते थे उन्हें
1: हाँ?
0: वो उसमें डालते थे।
1: हाँ?
0: और भारतीय समाज का जो है वास्तविक चित्रण वो भली भांति अपने लेखनों के जरिए से करते थे, और मानवीय भावनाओं की गहरी समझ भी उन्हें थी। वे छोटी छोटी समस्याओं को भी बहुत रोचक ढंग से प्रस्तुत करते थे। तो आर के नारायण की पुण्यतिथि में जो है
1: हाँ,
0: हमें भारतीय साहित्य की परंपरा,
1: हाँ,
0: सरल लेखन की शक्ति और भारतीय जीवन की जो है सुंदरता को भी हमें याद दिलाती है दीपा बहन।
1: हाँ।
0: तो डॉक्टर आर के नारायण शब्दों की चित्रकार, इस विषय पर हम लोग विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लेते हैं वार्ताकार डॉक्टर पुष्पा कुमारी जी से।
1: हाँ।

स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व देश में व्याप्त आर्थिक, वर्गीय और सामाजिक असमानताओं को लेकर एक भारतीय लेखक अंग्रेजी भाषा को लेखन का माध्यम बनाता है और उसकी की

पूरे भारत में फैल जाती है। यह लेखक एक काल्पनिक शहर मालगुडी की कल्पना करता है और इसके इर्द गिर्द ही कहानियों का ताना बाना बुनता है। बाद में मालगुडी की इन्हीं कहानियों पर मालगुडी डेज नाम से एक धारावाहिक दूरदर्शन में प्रसारित होता है, जो अपने प्रसार एवं प्रभाव के स्तर पर इतिहास रच देता है। यह रचनाकार है रासीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी, जिन्हें हम आर के नारायण नाम से जानते हैं। 10 अक्टूबर 1906 को आर के नारायण का जन्म मद्रास आधुनिक चेन्नई में हुआ, किंतु इनका पालन पोषण अपनी नानी के यहाँ मैसूर में होता है। दरअसल इनके पिता एक सरकारी अध्यापक थे, इस कारण उनका अलग अलग शहरों में तबादला होता था, इसलिए आर के नारायण का बचपन अपनी नानी के घर में बीता। बचपन में उनकी नानी उन्हें बहुत कहानियाँ सुनाती थी। इन्हीं कहानियों ने उनमें कहानी की सृजनात्मकता का विकास किया। उनके बड़े भाई आर के लक्ष्मण भारत के प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थे, जिनके व्यंग चित्र भारतीय राजनीति और व्यवस्था पर तीखा प्रहार करते थे। दोनों भाइयों ने अपनी कला में उत्कृष्टता प्राप्त की, एक साहित्य में और दूसरा व्यंग चित्र कला में। राशिपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी आर के नारायण एक प्रसिद्ध भारतीय लेखक थे, जिन्होंने 200 से अधिक उपन्यासों, कहानियों एवं अकाल्पनिक गद्य वृत्त को अपनी लेखन कला से सृजनात्मकता प्रदान किया। मुख्यतः उपन्यास एवं कहानी विधा को अपनाते हुए उन्होंने विभिन्न स्तरों तथा रूपों में मानवीय उत्थान पतन की गाथा को अभिव्यक्त करते हुए अपने गंभीर यथार्थवाद के माध्यम से रचनात्मक कीर्तिमान स्थापित किया। आर के नारायण अंग्रेजी के सबसे अधिक पढ़े जाने वाले भारतीय लेखकों में से एक है। आर के नारायण अंग्रेजी उपन्यासकारों के उस बृहत त्रयी का भी हिस्सा है, जिसके अन्य सदस्य महान उपन्यासकार मुल्क राजानंद और राजा राव हैं। मैसूर के यादवगिरी में करीब 2 दशक रहने के उपरांत वे चेन्नई रहने लगे। यहीं पर 13 मई 2001 को 94 वर्ष की आयु में उनका देहावसान हो गया, किंतु उनकी कहानियां आज भी जीवित हैं और पाठकों को प्रेरित करती हैं। आर के नारायण का रचनात्मक परिचय। अपने लंबे साहित्यिक जीवन में अपनी लेखन यात्रा का प्रारंभ द हिंदू में प्रकाशित लघु कथाओं से किया। उन्होंने अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को साहित्यिक कृतियों में ढाला। उनके 14 उपन्यास, 200 से अधिक लघु कथाएं, एक संस्मरण, 2 यात्रा पुस्तकें, असंख्य निबंध और 2 नाटक प्रकाशित हुए। आर के नारायण की लेखन कला की वास्तविक शुरुआत 1935 में प्रकाशित उनके पहले उपन्यास स्वामी एंड फ्रेंड्स से हुई। स्वामी एंड फ्रेंड्स उपन्यास में एक स्कूली बच्चे स्वामीनाथन की कहानी है, जो अपने दोस्तों के साथ मस्ती करता है और अपनी जिंदगी के छोटे बड़े मुद्दों से जूझता है। यह कहानी हास्य और व्यंग से भरपूर है और इसमें बचपन की मासूमियत को बड़ी खूबसूरती से दर्शाया गया है। यह उनके पहले उपन्यास के रूप में आज भी अत्यधिक लोकप्रिय है। इस उपन्यास ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई। उनके प्रमुख उपन्यासों में द गाइड 1958 ईस्वी, द इंग्लिश टीचर 1945 ईस्वी, मालगुडी का आदमखोर 1961 ईस्वी और द बैचलर ऑफ आर्ट्स 1937 ईस्वी प्रमुख हैं। आर के नारायण का उपन्यास द गाइड उनकी रचनात्मकता का शिखर माना जाता है। इस उपन्यास के लिए उन्हें 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। मालगुडी का आदमखोर में उन्होंने आधुनिक समाज के स्वार्थी तत्वों और उनकी नैतिक विफलताओं को बड़े सूक्ष्म ढंग से उकेरा है। द डार्क रूम में भी दैनंदिन जीवन की छोटी छोटी बातों और घटनाओं के विवरण से बुनी कहानी है। स्वतंत्रता के पहले का अंतिम उपन्यास द इंग्लिश टीचर 1945 में प्रकाशित हुआ। यह उपन्यास अमेरिका में ग्रेटफुल टू लाइफ एंड डेथ शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। यह उनके उस क्षोभ की कहानी है, जो उनकी पत्नी राजम के असामयिक निधन से उत्पन्न हुआ था। इस दुख को उन्होंने द इंग्लिश टीचर में भरने की कोशिश की है। स्वर्णयुग। वस्तुतः आर के नारायण की रचनात्मकता के 3 स्तर हैं। उनकी रचनात्मक श्रेष्ठता का स्वर्ण युग भारतीय स्वतंत्रता के बाद आया। 1952

0: ईस्वी से 1962 ईस्वी तक के एक दशक से कुछ अधिक वर्षों का समय उनकी रचनात्मकता का स्वर्ण युग था। रचनात्मक प्रौढ़ता के इस श्रेष्ठ समय में लेखक के उपन्यासों की त्रयी आई। ये तीन उपन्यास थे, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, द गाइड तथा द मैन ईटर ऑफ मालगुडी। औपन्यासिक बृहत्त्रयी के बीच प्रकाशित वेटिंग फॉर द महात्मा 1955 ईस्वी में अस्पष्ट रूप से तथा बाद में प्रकाशित द वेंड्स ऑफ स्वीट्स 1967 ईस्वी की पृष्ठभूमि में गांधीवादी दर्शन है। इस रचना में उन्होंने महात्मा गांधी को न तो एक संत के रूप में चित्रित किया है और न ही उन्हें नायक दिखाया है, बल्कि उन्होंने महात्मा गांधी का चित्रण एक बुद्धिमान रणनीतिकार के रूप में किया है। द वेंडर ऑफ स्वीट्स के 9 साल बाद 1976 ईस्वी में द पेंटर ऑफ साइंस का प्रकाशन हुआ। इन उपन्यासों को पढ़ते हुए लेखकीय क्षमता के प्रदर्शन के बावजूद लगता है कि लेखक का गाइड एवं मालगुडी का आदमखोर वाला स्वर्ण युग अब उतार पर आ गया है। हालांकि नारायण के सृजन यात्रा जारी रही और विषय वैविध्य से भरी कृतियाँ आती रहीं। साहित्यिक विशेषताएँ। उनकी अधिकतर रचनाएं सामान्य ग्रामीण जीवन और मानवता की पृष्ठभूमि पर आधारित थी। एक कहानीकार के रूप में नारायण का प्रमुख स्वर कोमल व्यंग का है। व्यंग विपर्यय द्वारा लेखक मानवीय मनोविज्ञान पर प्रकाश डालते हैं। नारायण की कहानियों के पात्र भारतीय कस्बों और गांवों के होते थे, जो अपने सामान्य जीवन से बड़ी गहराई और सरलता से जूझते थे। उनकी रचनाएं हास्य एवं त्रासदी का अद्भुत मिश्रण थी, जो पाठकों को न केवल हंसाती थी बल्कि महत्वपूर्ण संदेश भी देती थी। आर के नारायण ने भारतीय अंग्रेजी साहित्य को एक नई दिशा प्रदान की। उनके द्वारा रचित उपन्यास और कहानियां भारतीय जीवन के विभिन्न स्तरों और रूपों को बहुत ही प्रासंगिक ढंग से प्रस्तुत करती है। उनका साहित्य मानवीय उत्थान और पतन की गाथा को बड़े सरल परंतु गहरे रूप में प्रस्तुत करता है। उनकी रचनाओं में मानवीय संवेदनाओं और अनुभवों का बेहद संवेदनशील चित्रण हुआ है। प्रमुख उपन्यास और धारावाहिक। आर के नारायण के उपन्यासों में गाइड पर अभिनेता देवानंद ने हिंदी और अंग्रेजी में एक फिल्म बनाई, जो अत्यधिक लोकप्रिय हुई। उनकी कहानियों पर आधारित धारावाहिक मालगुडी डेज वर्ष 1986 में दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ, जो भारतीय टेलीविजन के सबसे सफल कार्यक्रमों में से एक था। इस धारावाहिक ने नारायण को कालजयी बना दिया। साहित्यिक पुरस्कार और सम्मान। आर के नारायण ने अपने साहित्यिक जीवन के दौरान अनेक पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त किए। उन्हें अपना पहला पुरस्कार 1960 ईस्वी में उनकी पुस्तक द गाइड के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के रूप में मिला। जब इस पुस्तक पर फिल्म बनी तो उन्हें सर्वश्रेष्ठ कहानी के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। इसके अलावा उन्हें वर्ष 1964 में पद्म भूषण और वर्ष 2000 में पद्म विभूषण जैसे राष्ट्रीय सम्मान भी मिले। 1986 में उन्हें कर्नाटक सरकार द्वारा राज्योत्सव प्रशस्ति से सम्मानित किया गया। 1989 ईस्वी में उन्हें राज्यसभा का मानद सदस्य चुना गया। उनकी साहित्यिक प्रतिभा को मैसूर विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय और यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स में डॉक्टरेट की मानद उपाधियां प्रदान की। 1980 में उन्हें रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर द्वारा एसी बेंसन मेडल से सम्मानित किया गया तथा 1982 में उन्हें अमेरिकन एकेडमी एंड इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स का मानद सदस्य बनाया गया। इस प्रकार आर के नारायण ने अपने साहित्य के माध्यम से भारतीय समाज और जीवन को बड़ी गहराई से प्रस्तुत किया। उनकी कहानियों के पात्र आज भी प्रासंगिक हैं और उनके द्वारा रचित साहित्य आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा। नारायण का साहित्यिक योगदान भारतीय साहित्य में अद्वितीय है और वे सदैव एक महान साहित्यकार के रूप में याद किए जाते रहेंगे।
1: जी,
2: कितना अच्छा जानकारी मिली है मसीनी।
1: बिल्कुल।
2: हाँ।
1: तो आज डॉक्टर आर के नारायण जी के पुण्यतिथि पर इतनी अच्छी जानकारी के लिए डॉक्टर पुष्पा कुमारी को बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हाँ।
1: और अब लगे हाथों कुछ महत्वपूर्ण संदेशों को सुन लेते हैं।
2: जरूर।

0: season. Upgrade to the bold and techie, new age Baleno, and get amazing benefits, easy finance options, and incredible exchange deals. Rush to your nearest Nexa showroom today and take home the new age Baleno with amazing offers and a 1 lakh kilometer or 3-year warranty. TNC apply.
1: Nexa.
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोता स्नेह के एक बार फिर से स्वागत छे कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी में। दानो भाई हमसनी एक ठो देवी गीत सुन लो जाए।
4: बिल्कुल, सुबह शाम का समय भी है।
3: हाँ।
4: और इस समय जो है हमारे माता बहने जो है वो सांध ध्यान देती है।
3: हाँ।
4: तो क्यों ना हम लोग भी एक देवी गीत सुनकर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। हाँ।

0: खूब बढ़िया लगलो अन्नो भाई।
1: बिल्कुल दीपावान, हाँ, पूरा माहौल भक्तिमय हो गया और मन बिल्कुल आह्लादित हो गया दीपावान।
0: सही बोल लो। हाँ
1: और दीपा बहन,
0: हाँ,
1: आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में अपने स्वास्थ्य का ध्यान लोग उतने नहीं रख पाते हैं
0: एकदम
1: जितने रखने चाहिए।
0: हाँ
1: पर इस लापरवाही के कारण जो है उन्हें कई प्रकार की समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है।
0: हाँ।
1: और कई प्रकार के उन्हें रोग से भी वो ग्रसित हो जाते हैं।
0: एकदम हो जाए छे।
1: तो इन्हीं समस्याओं में से जो है एक समस्या है अवसाद। अवसाद यानी कि डिप्रेशन जिसे कहा जाता है। तो अवसाद केवल उदासी नहीं होता है बल्कि एक ऐसी मानसिक स्थिति होती है दीपा बहन,
0: हाँ,
1: जिसमें व्यक्ति लंबे समय तक निराशा, थकान, रुचि की कमी और नकारात्मक सोच को महसूस करता है। इसका असर जो है वो पढ़ाई, काम, नींद और हमारे जो भी आसपास के लोग होते हैं उनके साथ रिश्तों में कड़वाहट के रूप में भी हमें
0: दिखाई। बहुत आदमी जाने छोड़ो भाई, आदमी समझियो नहीं पा रहे
1: जी, वो ये समझ ही नहीं पाते कि वो किस रोग से ग्रसित
0: हो गलो छे।
1: जी
0: लगे छे कि अच्छा मतलब कुछ हेने छे।
1: जी जी। और देखिए इसके साथ साथ फिर होता क्या है कि वो जो है कोई भी काम जब करते हैं तो उन्हें काम करने में उतना मन नहीं लगता है, साथ ही साथ उन्हें ज्यादा नींद आने लगता है, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि उन्हें नींद नहीं भी आने लगता है और वे कुछ बेवजह किसी कारण से जो है
0: रात रात भर जगी जाए आदमी,
1: और बेवजह किसी कारण से उन्हें ज्यादा गुस्सा भी आ जाता है, कभी गुस्सा कम आ जाता है। इस तरह से तमाम प्रकार की चीजें जो है ये मुख्य रूप से अवसाद के जो है वे लक्षण होते हैं। तो अवसाद का कारण, बचाव, इस विषय पर हम लोग जो है और भी विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त कर लेंगे। और देखिए अवसाद मुख्य रूप से होता यह है कि जैसे हम किसी भी प्रकार की लोग जो इस बीमारी से ग्रसित होते हैं,
0: हाँ हाँ।
1: तो उनमें क्या होता है कि इसका शुरुआती लक्षण उन्हें उस समय नहीं पता चलता है, जिस कारण से वो डॉक्टर के पास जाने से भी हिचकिचाते हैं
0: तब तक,
1: और अगर डॉक्टर के पास वो नहीं जाते हैं तो इस प्रकार की बीमारी जो है वो बढ़ती चली जाती है और इसके बाद उन्हें जो है गंभीर परिणाम देखने को मिलते हैं। इसलिए कोशिश तो यही होनी चाहिए कि अगर हम सही समय पर इसका इलाज कर लें तो वो ज्यादा कारगर होगा। तो अवसाद क्या है और इसका क्या कारण है और इसका बचाव क्या है, इस विषय पर हम लोग और विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लेते हैं वार्ताकार अशोक कुमार भगत जी से।
2: हाँ। इस्तेमाल करते हैं जो कि वस्तुतः सत्य नहीं है। मन का उदास हो जाना तनावपूर्ण एवं उदास वातावरण की सामान्य प्रतिक्रिया है जो कि विभिन्न दैनिक जीवन में आने वाले परिस्थितियों के कारण

उत्पन्न होता है। ज़्यादातर व्यक्ति मन की उदासी एवं चिंता पर समय रहते विजय प्राप्त कर लेते हैं और व्यवहारिक तौर पर अपने जीवन शैली में अपेक्षित सुधार कर लेते हैं। जो व्यक्ति ऐसे उदासी भरे जीवन पर पर्याप्त नियंत्रण नहीं कर पाते हैं वे अवसाद के शिकार हो जाते हैं, जिन्हें चिकित्सा की आवश्यकता पड़ती है। अवसाद एक सामान्य मानसिक रोग है जो कि लगभग 7.9 से 8.9 प्रति हजार व्यक्ति को ग्रसित करता है। अवसाद 10 से 20 प्रतिशत लोग सारे जीवन काल में इस बीमारी से प्रभावित रहते हैं। पुरुष के मुकाबले महिलाओं को अवसाद करीब दुगने रूप से प्रभावित करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO सबसे ज़्यादा बीमारी से ग्रसित रहने के कारण परेशानी उत्पन्न करने की सूची में 2010 में इसे चौथे स्थान पर रखा था। WHO के हालिया रिपोर्ट में 2020 तक अवसाद को दूसरे स्थान पर आने की संभावना जताई गई है। इससे अवसाद का हमारे समाज में तेजी से विस्तार होने का पता चलता है। अवसाद के लक्षण, इसे समझने के लिए हम इसे दो श्रेणी में बांट सकते हैं। पहला, उदास मन या डिप्रेस्ड मूड, सामान्य से काफ़ी ज़्यादा उदासी महसूस करना, अपने को छोटा समझना, बार बार अकारण रोने की इच्छा होना एवं रोना, अपने आप में खोया रहना, आत्मग्लानी एवं अपने आप को कोसना एवं जिम्मेदार मानना, अपराध बोध से ग्रसित रहना, असहाय एवं अक्षम महसूस करना, अपने जीवन को समाप्त करने की इच्छा। कुछ व्यक्ति इतने ज़्यादा अवसाद से ग्रसित हो जाते हैं कि अपने आप को में खो जाते हैं, इसे व्यक्त नहीं कर पाते हैं, जिसे हम डिप्रेसिव स्टूपर कहते हैं। इनके लक्षण के दूसरे कारण हैं दैनिक सामान्य क्रियाकलाप में असंतुलन। अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण माहौल में भी खुशी नहीं महसूस करना, बल्कि भीड़ में भी अकेलापन का एहसास होना एवं जीवन में खालीपन का आभास होना, अपने शारीरिक शक्ति में कमी एवं कमजोरी महसूस करना, किसी भी कार्य को करने में जल्दी थकान महसूस करना, अपने को अक्षम एवं असहाय समझना। अवसादग्रस्त व्यक्ति की दैनिक गतिविधि काफ़ी धीमी हो जाती है, जैसे चलना, बैठना, बोलने में बदलाव, धीमी गति से रुक रुक कर असहज तरीके से बातचीत करना, किसी सवाल का जवाब देने में ज़रूरत से ज़्यादा वक्त लेना, नींद में कमी, नींद के समय और अवधि में काफ़ी बदलाव आ जाता है। अवसादग्रस्त व्यक्तियों में एकाग्रता एवं याददाश्त में कमी जैसा आभास होता है, जैसे वे सभी कुछ भूल गए हैं, कुछ याद नहीं है। इन व्यक्तियों में इच्छा शक्ति का अभाव, जिस कार्य को पूर्व में काफ़ी आसानी से कर लेते थे अब उसे नहीं कर पाना, यहाँ तक कि अपने शरीर एवं कपड़ों का भी उचित रखरखाव नहीं कर पाते हैं, जिससे अवसादग्रस्त व्यक्ति का पूरा व्यक्तित्व ही बदल जाता है। अवसादग्रस्त व्यक्ति में कुछ शारीरिक लक्षण भी आते हैं, जैसे भूख में कमी, नींद में कमी, कब्ज की शिकायत, यौन इच्छा में कमी की शिकायत करते हैं, आप ग्लानी या आत्महत्या के विचार इन्हें परेशान करता रहता है। अवसादग्रस्त व्यक्तियों में इस बीमारी के होने के कुछ कारण हैं, जैसे अनुवांशिक, मनोवैज्ञानिक एवं वातावरण जन्य कारणों के सम्मिलित प्रभाव से अवसाद होता है। मस्तिष्क में शारीरिक रसायन एवं हार्मोन का संतुलन के प्रभाव के कारण अवसाद की स्थिति आती है। हमारा मस्तिष्क ही अप्रत्यक्ष रूप से हमारे सारे कार्यकलाप एवं व्यवहार को नियंत्रित करता है। इसके फलस्वरूप ही सोचने, समझने, याद रखने, अपने भावनाओं को दूसरों को व्यक्त करने, दूसरे के भावनाओं को महसूस करने की क्षमता हम में रहती है। अनुवांशिक कारणों के चलते पीढ़ी दर पीढ़ी अवसाद की बीमारी परिवारों में चली आती है। वातावरण जन्य कारणों में, जैसे सामाजिक कारण, पढ़ाई लिखाई, जीवन शैली, जात पात में अनावश्यक प्रतिस्पर्धा, आर्थिक कारण जैसे बेरोजगारी, नौकरी का छूट जाना, कार्य में असंतोष, व्यापार में नुकसान, जीवन के मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहना इत्यादि। पारिवारिक कारणों में, जैसे परिवार का अंतःकलह, परिवार का

0: टूटना, परिवार के सदस्य की असामयिक मौत, प्यार के रिश्ते में अलगाव इत्यादि। नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति में अवसाद का खतरा ज़्यादा रहता है। अन्य बीमारियों में भी अवसाद के लक्षण पाए जाते हैं। शारीरिक बीमारियां में 12 से 36% लोगों में यह बीमारी होती है, जैसे उच्च रक्तचाप, हाइपोथायराइड, जिगर, गुर्दा, आँत से संबंधित बीमारियों में अवसाद के लक्षण आते हैं। प्रसव के बाद सामान्यतः 30 से 40% महिलाएं उदासी की शिकार हो जाती हैं, अपना में अपने बच्चों का ख्याल नहीं रख पाती हैं। हार्ट अटैक के बाद लगभग 65% लोग अवसाद ग्रसित हो जाते हैं, जिन्हें इलाज की आवश्यकता होती है। कैंसर से प्रभावित 25% लोगों को अवसाद हो जाता है। एड्स पीड़ित 33% लोगों को अवसाद पाया जाता है। ब्लड शुगर के 15% मरीजों में अवसाद की चिकित्सा की ज़रूरत पड़ती है। सेरेब्रल स्ट्रोक के बाद 30% लोग अवसादग्रस्त हो जाते हैं। न्यूरोलॉजिकल रोग जैसे पार्किंसंस रोग, मल्टीपल माइलोमा, हेड इंजरी के मरीजों में अवसाद पाया जाता है, जिन्हें भी इलाज की आवश्यकता पड़ती है। चिंता एवं अवसाद से बचाव करने के कुछ सामान्य उपाय हैं। जानकारी ही बचाव है। अपने बीमारी को छिपाएं नहीं, इसे इलाज कराएं। जिंदगी से हार ना माने, बल्कि इस पर अपनी जीत दर्ज करें, क्योंकि ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। हमेशा वर्तमान में जिए एवं ईश्वर पर विश्वास रखें। अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाएं। छोटी छोटी बातों पर अनावश्यक ध्यान न दें। नियमित एवं संतुलित दैनिक कार्यक्रम रखें एवं इसका यथासंभव पालन करें। पारिवारिक माहौल को सौहार्दपूर्ण बनाएं। दूसरे के व्यवहार का अनुसरण या नकल करने से बचें। जीवन के प्रति सकारात्मक सोच रखें। अपनी व्यस्तता जीवन के सभी क्षेत्र में बनाए रखें। अनावश्यक अपने प्रतिनिधि के बारे में सोचकर समय बर्बाद ना करें, बल्कि अपने को यथासंभव फलदायक कार्य में व्यस्त रखें। आप अपने शुभचिंतक या करीबी व्यक्ति जिसे आप अपनी बातों को शेयर करते हों, उससे बातें करें। अपने शरीर एवं मन को तनाव से बचाने के लिए सुबह की सैर, व्यायाम, योग आसन, प्राणायाम एवं ध्यान लगाएं, जिससे कि मन एवं शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। इलाज अवसाद ग्रस्त व्यक्ति के इलाज बिना अस्पताल में भर्ती किए दवाओं एवं अन्य साइकोलॉजिकल थेरापी एवं काउंसलिंग के द्वारा किया जा सकता है। लेकिन वैसे मरीज जिनमें जीने की इच्छा खत्म हो गई हो, आत्महत्या की प्रबल
1: तो अब समय हो रहा है प्रायोजित कार्यक्रम के। तो अब हम सुने छे प्रायोजित कार्यक्रम पारा मेडिकल है पारस।
2: बिल्कुल
1: हाँ।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट।
4: नमस्कार, राजेश बोल रहा हूँ। एक बार फिर से आज बुधवार का दिन है और आज के दिन आप सुनते हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम पैरामेडिकल है पारस। पैरामेडिकल है पारस लेकर आते हुए एक दशक 10 साल से ज्यादा हो गए और लगातार हम बुधवार के दिन आपके इसी रेडियो स्टेशन से इसी समय आपके घर आंगन में पहुंचते हैं और युवा साथियों से बातें करते हैं कि अगर हेल्थ के सेक्टर में जाना है तो आपको क्या करना चाहिए। सिर्फ हम बातों को रख देते हैं, मानना न मानना आपकी मर्जी होती है। बड़े बुजुर्गों से भी हम अपील करते हैं कि आप भी अपनी बात नहीं थोपिए। युवाओं को, अपने बच्चों को निर्णय लेने दीजिए, क्योंकि हर बच्चा अलग अलग प्रकृति का होता है और अलग अलग एम्बिशन लेकर आगे बढ़ना चाहता है। ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की तरफ से। ये जो कार्यक्रम हम लेकर आते हैं, इसको सुनते सुनते न जाने कितने युवा साथी आज अपने करियर में आगे बढ़ गए और अपने लिए एक मुकाम बना लिए हैं। हमें अच्छा

0: लगता है जब वो कहते हैं कि पैरामेडिकल की वजह से ही हमने पैरामेडिकल के करियर को चुना और आज हम यहाँ नौकरी कर रहे हैं या यहाँ अपना व्यवसाय कर रहे हैं। श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट पटना में है, पुराना बस स्टैंड जो है उसके जक्कनपुर पुलिस स्टेशन के ठीक सामने में है। हम ये कभी नहीं कहते कि आप आइए यहाँ एडमिशन ले लीजिए, ना ना ना, कभी नहीं। आपको संतुष्ट होना जरूरी है। हम ये जरूर कहते हैं कि संस्थानों को देखिए, समझिए, जानिए, परखिए, जाइए तो देखिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, कहाँ के फैकल्टी हैं, ये संस्थान कहाँ से एफिलिएटेड है, रहने की क्या व्यवस्था है, सारी चीजों को। और सबसे बड़ी बात जो है दो चीजें, लाइब्रेरी, क्योंकि हेल्थ सेक्टर की किताबें बहुत महंगी होती हैं, इसलिए एक रिच लाइब्रेरी का होना बहुत जरूरी है। और दूसरा प्रैक्टिकल, हाँ, की क्या व्यवस्था है हेल्थ सेक्टर में। अगर जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर फिजियोथेरेपी है, पैरामेडिकल के और भी जो रेडियोलॉजी है, पैथोलॉजी है, नर्सिंग है, अगर आप जो पढ़ाई कर रहे हैं तो इसमें प्रैक्टिकल की बहुत अहम भूमिका होती है। अगर आपको ऐसा लगे कि आप श्रीराज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट आना चाहते हैं या कोई सवाल है तो नंबर हम दे रहे हैं 9162413233, 9162413233, और दूसरा नंबर है 9155558888। हमने कहा 9155558888 ये नंबर है, इस पर आप सवाल पूछ सकते हैं। आज भी हमारे साथ विशेषज्ञ बैठे हैं, चार कोर्स के बारे में हम इनसे बात करेंगे। एक ऐसा कोर्स भी है जो मैट्रिक पास करने के बाद किया जा सकता है और महज एक साल का कोर्स है, करके आप अपने लिए एक अच्छा मुकाम बना सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, सामाजिक सेवा दे सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। और हमारे साथ हैं डॉक्टर रंजन कुमार, ये हैं प्राचार्य, प्रिंसिपल हैं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में हैं, प्रोफेशन से ये MBBS और MS भी हैं, है ना। आज इनसे बात करेंगे, युवा साथियों आपके लिए छोटे छोटे कोर्सेज जो हैं, जैसे एक्सरे टेक्नोलॉजी है, OT टेक्नोलॉजी है, या फिर इसी तरीके से लैब टेक्नोलॉजी है, या फिर ड्रेसर का कोर्स है। इस सिलसिले में आज हम डॉक्टर रंजन से जानना चाहेंगे आपके लिए। तो सबसे पहले डॉक्टर रंजन, आपका स्वागत है हमारे आज के इस एपिसोड में।
1: नमस्ते राजेश बाबू, नमस्ते बच्चों।
0: सर, जैसा कि आपने सुना कि हम बच्चों के लिए आज आपसे छोटे छोटे कोर्स के बारे में एक एक करके जानकारियां लेंगे, सबसे पहले हम ड्रेसर से शुरुआत करते हैं कि ड्रेसर कोर्स के बारे में लोगों को बताइए थोड़ा।
1: ड्रेसर कोर्स एक वर्ष का यहाँ हो रहा है हम लोगों के संस्थान में, और इसमें है कि मरीज की प्रारंभिक में जो ड्रेसिंग की जो कार्यक्रम किया जाता है, ड्रेसिंग जो किया जाता है वो कैसे किया जाए, इसकी शिक्षा दी जाती है। और इसमें कोई सुई लगाने की बात है या मरहम पट्टी करने की बात है उसके विषय में बताया जाता है। ये भी एक अच्छा कोर्स है, और ख़ास करके जहाँ चिकित्सक नहीं है देहात में, वहाँ तो खास करके इन लोगों की पूरी आवश्यकता है। इसमें सर्विस भी लगती है और व्यक्तिगत रूप से भी चाहें तो अपना कार्यक्रम कर सकते हैं।
0: एक साल का कोर्स है ये?
1: जी हाँ, ये कोर्स एक साल का है।
0: कौन लोग कर सकते हैं इस कोर्स को?
1: मैट्रिक पास कम से कम होना चाहिए, अगर ऊपर की शिक्षा प्राप्त कर लिए हों तो वो भी आ सकते हैं। जैसे इंटर की कोई परीक्षा पास कर लिए हों तो उनके लिए भी बेहतर है, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं कि मैट्रिक में रुकते नहीं, इंटर तक चले ही जाते हैं, तो फिर लौट के आकर के भी ये कार्यक्रम वो कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं।
0: डॉक्टर रंजन कुमार ने बहुत अच्छे तरीके से ड्रेसर कोर्स के बारे में बताया। आपके तरफ से लगातार ये फोन कॉल आते रहे हैं कि कोई छोटा कोर्स है, कम अवधि का, कम खर्च का अगर कोर्स है और जिससे हम कमाई अच्छी कर सकें, लोगों के बीच पहचान बन सके। तो डॉक्टर साहब ने देखिए आज आप लोगों को ड्रेसर कोर्स के बारे में जानकारी दी है, और जो लोग मैट्रिक पास हैं, सिर्फ मैट्रिक पास हैं, वो भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और जो कहीं इस तरीके से काम भी कर रहे हैं लेकिन डिग्री नहीं है उनके पास तो ये कोर्स कर लें, और सरकारी क्षेत्र में जब भी रोजगार की संभावना हुई, वैकेंसी आई, तो आपको ज़रूर मौका मिलेगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, कार्यक्रम चल रहा है पैरामेडिकल है पारस, जिसे हम लेकर आ रहे हैं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट से। एक बार नंबर बता दें आप सबों को फिर से, नंबर है 9155558888।

0: 8888 और दूसरा नंबर है 9162413233। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं एक बार फिर से डॉक्टर रंजन कुमार साहब के पास, जो प्राचार्य हैं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के। सर आपसे हम जानना चाहेंगे कि एक्सरे टेक्नीशियन के बारे में जानकारी दें।
1: एक्सरे टेक्नीशियन का कोर्स 2 वर्ष का है
0: जी,
1: और इसमें कहीं एक्सरे का कार्यक्रम चल रहा होगा, वही डॉक्टर अगर एक्सरे संस्थान अगर स्थापित किए हुए हैं तो वहाँ भी इनकी आवश्यकता रहती है, और सरकार के यहाँ भी सरकारी संस्थान में भी जहाँ एक्सरे की व्यवस्था है वहाँ भी एक्सरे टेक्नीशियन की नियुक्ति होती है, और ये कक्षा में 2 वर्ष का एक कोर्स है तो इसमें नामांकन लिया जा सकता है, अभी नामांकन जारी है।
0: डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सरे टेक्नीशियन के बारे में जानकारी दी। ये छोटे छोटे कोर्स हैं जो आपके जीवन को बहुत ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं, आप इससे शुरुआत करके फिर आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। डॉक्टर साहब डॉक्टर एनबी प्रियदर्शी जब आए थे उन्होंने बताया भी था कि बहुत सारे ऐसे ऐसे कोर्सेज हैं जो डिप्लोमा से डिग्री में ब्रिज कोर्स करके आप जा सकते हैं और अपने करियर को आगे बना सकते हैं। बहरहाल एक बार फिर से नंबर हम बता रहे हैं 9155558888 और 9162413233। ढेर सारे फोन कॉल आए थे कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी और फिजियोथेरेपी के बारे में, उसके बारे में भी आने वाले एपिसोड में जानकारी दी जाएगी। इसी नंबर पर डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी से बात करके और जानकारियां आप ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, आप MBBS MS हैं, आपका एक इतना लंबा अनुभव है हेल्थ सेक्टर में और आप अभी अनुभव को साझा कर रहे हैं आज के युवाओं के साथ श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट जैसे एक प्रतिष्ठित संस्थान में आप प्राचार्य हैं। हाँ, हमारे सुनने वालों को OT असिस्टेंट के बारे में जानकारी दीजिए।
1: ऑपरेशन थिएटर में जो डॉक्टर काम करते हैं उनके सहयोग के लिए स्टाफ की आवश्यकता होती है
0: जी।
1: जो ट्रेंड स्टाफ होंगे तभी डॉक्टर को मदद कर सकते हैं
0: जी।
1: ये बहुत ही महत्वपूर्ण है काम, तो उनके लिए जब तक ट्रेनिंग नहीं होगी अच्छे ढंग से तो फिर डॉक्टर को सहयोग नहीं कर पाएंगे।
0: हाँ,
1: इसलिए उनकी ट्रेनिंग लेना आवश्यकता है। तो यहाँ पर डिप्लोमा का भी कोर्स है 2 वर्ष का, और इसे आगे बढ़ करके बैचलर की भी डिग्री लिया जा सकता है, इसलिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और इसको करना चाहिए।
0: OT असिस्टेंट को करना चाहिए, आप रिकमेंड करते हैं
1: जी?
0: आप रिकमेंड करते हैं
1: जी? जी
0: जी रिकमेंड करते हैं। जब डॉक्टर साहब का रिकमेंडेशन हो गया और ये प्रिंसिपल भी हैं तो सोचिए कि ये कोर्स अपने आप में बहुत ही संपूर्ण कोर्स है, आप जरूर इसको आजमा सकते हैं अपने लाइफ में अपने एक बेहतर करियर के लिए। सर एक कोर्स और है जिसकी जानकारी हम चाहेंगे आपसे, लैब टेक्नीशियन की जानकारी हम चाहेंगे सर।
1: राजेश बाबू
0: जी सर,
1: ये लैब टेक्नीशियन की बात आप पूछ रहे हैं।
0: हाँ,
1: तो जितना भी जांच होता है पैथोलॉजी का,
0: हाँ हाँ,
1: तो वो लैब टेक्नीशियन ही करते हैं डॉक्टर के सहयोग से। डॉक्टर तो करते ही हैं, ज्यादा महत्वपूर्ण लैब टेक्नीशियन में जो काम सहयोगी रहते हैं टेक्नीशियन,
0: हाँ,
1: उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है और इन्हीं पर निर्भर रहता है पूरा कि आखिर काम कैसे हो। लेबोरेटरी का पूरा चीज उनको जानकारी में होना चाहिए, क्या क्या जाँच किया जाता है, कैसे जाँच किया जाता है, क्यों जाँच कराया जाता है पैथोलॉजी में, उसकी जानकारी यहाँ पर लेने के लिए आपको लैब टेक्नीशियन का कोर्स करना पड़ेगा, और ये बहुत अच्छा कोर्स है। अगर 2 वर्ष का करना चाहते हैं तो वो भी है, उसके अलावा अगर चाहें कि बैचलर की डिग्री अगर लेना चाहते हैं तो बैचलर की भी डिग्री बाद में आगे प्राप्त कर सकते हैं।
0: रोजगार, ये तो
1: रोजगार परक है, ये रोजगार परक है। कहीं भी लेबोरेटरी चल रहा होगा, प्राइवेट में भी बहुत सारा लेबोरेटरी है, वहाँ लैब टेक्नीशियन की जरूरत वहाँ भी रहती है। वैसे सरकारी संस्थान में भी जहाँ लेबोरेटरी चालू है वहाँ लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति के लिए वैकेंसी भी निकलती है और सभी लड़के जाते हैं जिनको अच्छा डिग्री मिला हुआ है, तो उनको तो नौकरी निश्चित है।
0: अच्छा, डिप्लोमा और डिग्री जो किए हुए हैं बच्चे वो तो अपना लैब भी खोल सकते हैं।
1: जी हाँ, अपने भी लैब खोल सकते हैं, लेकिन उसमें एक शर्त है कि कोई डॉक्टर के साथ उसका संबंध होना चाहिए, दिखाना पड़ेगा।
0: अच्छा,
1: कि हाँ डॉक्टर
0: अच्छा,
1: वहाँ रह रहे हैं, उनके गाइडेंस में काम मात्र इतना ही रहता है। वैसे वो अपना प्राइवेट भी काम शुरू कर सकते हैं, अपना लैब खोल सकते हैं, मात्र इतना ही रहता है कोई डॉक्टर का उसमें उनका सहयोग होना चाहिए, उनका गाइडेंस होना चाहिए, मिलना चाहिए, वैसे अपना चला सकते हैं बिल्कुल।
0: डॉक्टर रंजन कुमार, ये चारों कोर्स जिसकी हमने अभी चर्चा की आपके साथ मिलकर आपने बताया, अगर इन चारों कोर्स में से किसी भी को ऑप्ट किया जाए तो युवा आगे बढ़ सकता है अपने करियर में।
1: जी जी जी जी, राय साहब
0: आगे बढ़ सकता है।
1: जी जी जी,
0: थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: धन्यवाद
1: धन्यवाद राजेश बाबू,
2: धन्यवाद हो गया अपने विशेषज्ञ का। और अब चलने की बारी आ गई है, चले इससे पहले हम पूछना चाहते हैं इस रेडियो कार्यक्रम पैरामेडिकल है पारस के माध्यम से, कैसा लगा आज का ये कार्यक्रम जो चार कोर्स बताए गए आपको, और खास करके ड्रेसर का, ओटी असिस्टेंट का, इसके अलावा एक्सरे का, इसके अलावा पैथोलॉजी का, ये सारे कोर्सेज जो है ना बहुत वाइब्रेंट है। अगर जो आप इसको कर लेते हैं ना तो कहीं से भी रोजगार की समस्या नहीं होगी। और एक बात बताएं, सरकारी सेवा में जाने के लिए एक डिग्री का होना, चाहे वो सर्टिफिकेट कोर्स हो, चाहे डिप्लोमा हो या बैचलर की डिग्री हो, इसका होना बहुत जरूरी है। हाँ, तो वैकेंसी आ ही रही है, लगातार वैकेंसियां आ रही हैं। आपके पास अगर डिग्री रहेगा तो आप भर सकते हैं और सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए एक डिग्री का होना बहुत जरूरी है। हमारे एक्सपर्ट ने भी बहुत अच्छे से बताया, खुद इनका एक लंबा अनुभव है, MBBS और MS है, और अभी प्राचार्य हैं, हाँ प्रिंसिपल हैं श्री राज, हाँ नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में। तो सब कुछ सही सही हम करना चाहते हैं, एक भरोसा है, आप भी कहते हैं कि आप पर एक भरोसा है, हम भी कहते हैं कि आप हमारे अपने हैं, आपके लिए एकदम सब कुछ सत्य सत्य आपको बताया जाएगा। और ये भी कहते हैं कि हम कोई बात नहीं करेंगे, डिसीजन आपको लेना होगा। हाँ, डिसीजन आपको लेना होगा, अपनी मर्जी के अनुसार से लेना होगा कि आप ANM कीजिएगा, GNM कीजिएगा, फिजियोथेरेपी कीजिएगा या ऑक्यूपेशनल थेरेपी कीजिएगा, आप पैथोलॉजी में जाइएगा या आप एक्सरे में जाइएगा। लेकिन अगर हम इतना कहते हैं कि अगर जो टेक्निकल पढ़ाई हेल्थ सेक्टर में आपने कर लिया ना, तो रोजगार मिलना बहुत आसान हो जाएगा, स्वरोजगार भी कर सकते हैं। चलते चलते हम एक बार नंबर फिर से बताए देते हैं, 9162413233, 9162413233, और दूसरा नंबर 9155558888। तो बस आज हम थैंक यू कहते हैं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, जो पटना के जक्कनपुर इलाके में है, पुलिस स्टेशन के ठीक सामने है, कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम राजेश को लेकर आने का वर्षों से मौका दिया है और लोग इस पर अमल भी कर रहे हैं। तो मुलाकात होगी अब अगले बुधवार को आप सबों से, तब तक के लिए नमस्कार।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट।
4: While some just go through the day, you could live the grand life with the Grand Vitara. As you move from city streets to open escapes, the strong hybrid keeps up seamlessly. No matter where the road takes you, you're always breathing in freshness with auto purify and PM2.5 display. And when every moment feels this grand, safety comes standard with 6 airbags. Visit your nearest Nexa showroom to live the grand life with the Grand Vitara Strong Hybrid. Nexa.
5: Ji, ab kuch mahatvapurna sandeshon ko sun lete hain.
6: रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
7: तिलका मांझी तो बहुत,
6: बख्शी जगबंधु का नाम सुना है?
8: बख्शी जगबंधु तो
7: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
9: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे, क्रिश ट्रिश और बाल्टी बॉय।
10: Some cars are designed to blend in, others are designed to be remembered. Meet the Maruti Suzuki Fronx with powerful 1.0-liter turbo booster engine. Fronx delivers performance that matches its bold SUV-inspired design, already trusted by more than 4 lakh proud owners across India. Fronx is now available starting at just Rs. 6.85 lakh with exciting offers available at your nearest Nexa showroom. So, why follow the road when you can lead it? Visit your nearest Nexa showroom and experience the Maruti Suzuki Fronx right now. Nexa.
5: जी, महत्वपूर्ण संदेशों के बाद एक बार फिर से हम अपने श्रोताओं का स्वागत करते हैं। अब कुछ मौसम सूचना हम अपने श्रोताओं को दे देते हैं। आगामी दिनों के दौरान जिले में 1 से 2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी के साथ 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के साथ साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। इस दौरान अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 30 से 40 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान की अवधि में इस दौरान 10 से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूर्वा हवा चलने की भी संभावना है। सामान्य सलाह हमारे किसान भाइयों के लिए यह है कि आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें, खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित कर दें और खाद कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें तो ज्यादा कारगर होगा। और दीपा बहन, जिस प्रकार हमें अपने स्वास्थ्य की देखरेख करनी चाहिए, ठीक उसी प्रकार हमें अपने पशुधन की भी देखभाल करनी चाहिए। पशुओं में भी कई प्रकार की व्याधियां, संक्रामक रोग उत्पन्न हो जाती है। उन्हीं बीमारियों में से एक बीमारी जो है वो है अफरा रोग। खासकर गाय भैंस में होने वाली यह बीमारी जो है वो गंभीर स्थिति हो जाती है, जिसमें पेट में अत्यधिक गैस भर जाती है। अच्छा। और गैस बाहर नहीं निकल पाने की वजह से जो है पेट फूल जाता है और पशु को जो है सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है। तो पशुओं में अफरा रोग के बारे में हम विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं वार्ताकार डॉक्टर राम किंकर जी से।
0: पशुओं में अफरा रोग पाचन तंत्र की सामान्य किंतु जानलेवा बीमारी है। इससे बड़े और छोटे पशु दोनों ही प्रभावित होते हैं, जैसे गाय, भैंस, भेड़ तथा बकरी। पाचन तंत्र की बीमारी पशुओं में 80% तक देखा जाता है। पशुपालक बंधु भी पशुओं के अफरा रोग से भली भांति परिचित रहते हैं। चूँकि पशु एक मूक प्राणी है, वह अपनी बीमारी या व्यथा के बारे में किसी को बता नहीं सकता, लेकिन पशुपालक भाई जब गौर करेंगे तो पशुओं के आवभाव, व्याकुलता, छटपटाहट से साफ पता चलेगा कि पशु में कहीं न कहीं गड़बड़ी है, यानी पशु बीमार हो गया है। वैसे पागुड़ या जुगाली करने वाले पशुओं में सबसे बड़ी खासियत होती है कि बीमार पड़ते ही पशु पागुड़ या जुगाली करना बंद कर देता है। यह पशुओं पर ईश्वरीय कृपा है, वरना पशु इलाज या चिकित्सा के अभाव में दम तोड़ देता। पशु एवं मनुष्य की तुलना की जाए तो मनुष्य को बीमारी अवस्था में भूख में कमी हो जाती है, लेकिन पशु खाना पीना सब त्याग देता है, मानो वह रूठ गया हो और संकेत देता हो कि हमें चिकित्सा की आवश्यकता है। पशु तेज बुखार अथवा अफरा यानी पेट फूलने के कारण प्रायः जुगाली बंद कर देता है। दोनों ही स्थिति को पशुपालक बंधु भली भांति जांच परख सकते हैं। जैसे जब पशुओं में तेज बुखार होगा तो उसका थूथना यानी नॉस्ट्रिल सूखा रहेगा तथा कान का जर स्पर्श करने पर ज़्यादा गर्म महसूस होगा। गाय, भैंस, भेड़, बकरियों में समान तापक्रम मनुष्य से 3 से 4 डिग्री फ़ारेनहाइट ज़्यादा रहता है, यानी 100 से 101 डिग्री फ़ारेनहाइट पशुओं का सामान्य तापक्रम होता है। अफरा रोग पागुर करने वाले पशुओं में प्रायः देखा जाता है। यह वाइल्ड एनिमल में भी, हिरण में भी यह रोग होता है। पागुर करने वाले पशुओं का पेट 4 चैम्बर में बटा रहता है, जिसे रूमेन, रेटिकुलम, वोमेजम, एबोमेजम कहते हैं। एबोमेजम को ट्रू स्टोमेक कहा जाता है, यानी मनुष्य की भांति पेट को एबोमेजम कहा जाता है। पागुर करने वाले पशु शाकाहारी प्रवृत्ति के होते हैं। इनका मुख्य भोजन हरा चारा, सूखा चारा, दाना यानी गेहूं या मक्का का दलिया, चुन्नी, चोकर, खल्ली इत्यादि होता है। हरा चारा उगाने का प्रचलन धीरे धीरे हमारे यहाँ भी पंजाब हरियाणा की तर्ज पर हो रहा है। बीच बीच में राज्य सरकार की ओर से भी चारा बीज का मुफ्त वितरण किया जाता है, जिसे गेहूँ की तरह अक्टूबर नवम्बर माह में खेतों में लगाया जाता है। हरा चारा में बरसीम तथा जय का वितरण गत वर्षों में पशुपालन विभाग द्वारा भी निकटवर्ती प्रखंड स्थित पशु चिकित्सालयों द्वारा वितरण किया गया है। बरसीम नमी वाले खेतों में लगाना ज़्यादा लाभकारी होता है, जहां पटवन की समुचित सुविधा हो। बरसीम एक दलहनी फसल है, जबकि जय कार्बोहाइड्रेट स्टार्च वाला फसल है। दोनों प्रकार के चारा खिलाने से दुधारू पशुओं में दूध देने की पर्याप्त क्षमता बनी रहती है, लेकिन हरा चारा के साथ साथ सूखा चारा का मिश्रण आवश्यक है। इसका अनुपात 1:3 यानी

आधा से कम हरा चारा तथा आधा से अधिक सूखा चारा का मिश्रण आवश्यक है। कभी कभी अत्यधिक मात्रा में हरा चारा खा लेने से अफरा रोग से पशु ग्रस्त हो जाता हो

0: पशुओं को गिराना नहीं चाहिए, अन्यथा रेस्पिरेटरी फेल्योर हो सकता है, यानी सांस नहीं लेने की वजह से पशु का तत्काल मौत हो जाएगा। रूमेन की संरचना एक ब्लैडर की तरह होता है, जिसमें गैस बनने से अत्यधिक फूल जाता है, फलतः डायफ्राम पर अधिक दबाव पड़ने से फेफड़ा को फैलने तथा सिकुड़ने में दिक्कत होती है, परिणाम स्वरूप सांस रुकने की वजह से मौत हो सकता है। अतः भेट या पारा भेट का पहला दायित्व है कि जहाँ तक संभव हो पशु को खड़े अवस्था में ही चिकित्सा की जाए। ट्रॉकर कैनुला के द्वारा अथवा 14 नंबर की 4 इंच यानी 10 सेंटीमीटर की निडिल से पेट का तिकोना भाग, जिसे पारा लंबर फोसा कहते हैं, के केंद्र में छेद कर देना चाहिए, जिससे तेजी से गैस पेट से बाहर निकलेगा और पशु राहत महसूस करेगा। तत्पश्चात लक्षण के हिसाब से चिकित्सा करनी चाहिए। एंटीहिस्टामिनिक दवा तथा बी कॉम्प्लेक्स लीवर एक्सट्रैक्ट टॉनिक सुई के माध्यम से निकट के पशु चिकित्सक के निर्देशानुसार निर्दिष्ट मात्रा में देना चाहिए। चूंकि पेट में दर्द रहता है, अतः एंटी स्पाजमोटिक यानी डायसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड या पिटोफिनोन ग्रुप की सुई लगाना लाभप्रद होता है। इस रोग में घरेलू औषधि जैसे काला नमक, अजवाइन, काली मिर्च, जीरा, हींग की निर्दिष्ट मात्रा देना लाभप्रद होता है। तारपिन का तेल 30 ml तथा तीसी यानी अलसी का तेल 0.5 लीटर पिलाना लाभप्रद होता है।
1: श्रोताओं, अब आपसे विदा लेने का समय आ गया है। कल फिर ढेर सारी जानकारी मनोरंजन के साथ कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी में हम उपस्थित होंगे। अभी विदा दें, सबको अन्नों का नमस्कार,
2: सभी का दीपा के भी नमस्कार।

आप सुन रहे थे ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम, आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 खरीफ फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी को दी मंजूरी। कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए 37,500 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना भी मंजूर। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल प्रबंधन योजना के तहत 5 मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के लिए मंजूर किए 25 करोड़ रुपए। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर लोकभवन के कारकेड के वाहनों की संख्या घटाकर 4 कर दी है। खूंटी पुलिस ने पीएलएफआई के हार्डकोर उग्रवादी राजेश महतो को किया गिरफ्तार, हथियार और पर्चा बरामद। और रांची में कल होगा झारखंड टी20 लीग 2026 ट्रॉफी लॉन्च समारोह, ईशान किशन होंगे शामिल। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी बीज के एमएसपी में सबसे अधिक 622 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। इसके बाद कपास में 557 रुपए और तिल में 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। नई दरों के अनुसार ग्रेड ए धान का एमएसपी 2,461 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। सरकार ने खरीफ सीजन में किसानों को लगभग 2,60,000 करोड़ रुपए के भुगतान का अनुमान जताया है। वहीं मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए 37,500 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है।

0: इसके तहत लगभग 7,50,00,000 टन कोयला और लिग्नाइट के गैसीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल प्रबंधन तथा अनुरक्षण योजना के तहत 5 मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के लिए 25 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज हजारीबाग, शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज धनबाद और मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज पलामू को 5-5 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस राशि का उपयोग अस्पतालों में मरम्मत, पेयजल, बिजली, साफ सफाई, दवाइयों और चिकित्सा उपकरणों की व्यवस्था बेहतर करने में किया जाएगा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर ईंधन संरक्षण और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा दिया है। राज्यपाल ने लोक भवन में कारकेड के वाहनों की संख्या घटाकर केवल 4 गाड़ियां रखने का निर्णय लिया है। झारखंड के पूर्व मंत्री माधवलाल सिंह का आज रांची के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार थे। उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए विधानसभा लाया गया। मंत्री दीपिका पांडे ने कहा कि श्री सिंह का योगदान राजनीति के क्षेत्र में हमेशा यादगार रहेगा।
1: वो बहुत ही अच्छे इंसान थे, दिल इंसान जिंदा दिल इंसान रहे। उनके क्षेत्र के लोग वो एक अच्छे इंसान के रूप में याद करते रहेंगे और पूरे इलाके के लोग बहुत दुखी। कांग्रेस में सभी वरीय नेता उनके अंतिम यात्रा में भी सम्मिलित होंगे। इस वक्त उनके परिजन को इस की घड़ी में सांत्वना देना चाहते हैं।
0: हमारे बोकारो संवाददाता ने बताया है कि गोमिया में पूर्व मंत्री माधवलाल सिंह के निधन पर शोक की लहर है। गुमला जिला भाजपा ने आज समाहरणालय के समक्ष बिजली और पेयजल संकट को लेकर आक्रोशपूर्ण धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर अर्जुन मुंडा ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था, बिजली और पेयजल व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है।
2: सुविधाओं को लेकर गुमला में धरना प्रदर्शन हुआ क्योंकि राज्य में पानी, बिजली, विधि व्यवस्था सारी चीजें चौपट है। आम नागरिक त्राही माम कर रहे हैं। जिन योजनाओं के लिए पैसा खर्च की जा चुकी है लेकिन उसका पानी नहीं मिल रहा है। पेयजल पर भारी घोटाला हुआ है। इन सारे चीजों की जांच भी होनी चाहिए और अभी जिला प्रशासन को राज्य से मिल करके आम आदमी तक राहत पहुँचाना चाहिए।
0: रांची नगर निगम में नक्शा पास करने की प्रक्रिया को लेकर दायर अवमानना याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सवाल किया कि राज्य में असिस्टेंट टाउन प्लानर कार्यरत होने के बावजूद रांची नगर निगम में उनसे नक्शा पास कराने का काम क्यों नहीं लिया जा रहा है। अदालत ने नगर आयुक्त को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNewsRanchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड की पारंपरिक कला, हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने की दिशा में आज कोलकाता के थिएटर रोड में झारक्राफ्ट के नए एम्पोरियम का उद्घाटन किया गया। उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव ने इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर उद्योग सचिव अरवा राजकमल भी उपस्थित रहे। खूंटी पुलिस ने पीएलएफआई के हार्डकोर उग्रवादी राजेश महतो उर्फ राजेश यादव को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक देसी पिस्टल, 2 गोलियां और 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने बताया कि आरोपी लेवी वसूली, फायरिंग और आगजनी समेत कई मामलों में वांछित था और पिछले एक दशक से प्रतिबंधित संगठन पीएलएफआई के लिए सक्रिय था।
3: हम लोगों ने चेकिंग लगाई थी और पुलिस के द्वारा राजेश यादव पकड़ा गया। इसने अपना अपराध स्वीकारा कि जहां जहां इसने इन्वॉल्वमेंट रहा है पास्ट में, फिर इसकी निशानदेही पे हम लोगों को करा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक स्थान से एक 9mm का पिस्टल देसी मेड बरामद हुआ और इसके पास से हम लोग को रिकवरी हुई है एक उसका मोबाइल, जिस मोबाइल के माध्यम से यह अपने टारगेट को भी कॉल करते थे और संगठन में भी जो है ये लोग आपस में उससे बात करते थे। बड़ा अचीवमेंट है खूंटी पुलिस के लिए।
0: इधर गिरिडीह में साइबर पुलिस ने 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरिडीह एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि इनकी गिरफ्तारी बेंगाबाद थाना क्षेत्र से हुई है। इनके पास से करीब 1 दर्जन मोबाइल और सिम बरामद किया गया है। ये अपराधी फर्जी लिंक भेजकर लोगों को ठगते थे।
4: सूचना प्राप्त हुई है कि बसनबाड़ी और कोलरिया जंगल में कुछ साइबर अपराधी एक्टिवेट हैं और इनके द्वारा ठगी की जा रही है। डीएसपी साइबर के नेतृत्व में टीम बनाया गया था और 6 साइबर अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 11 मोबाइल, 13 सिम कार्ड और 5 बाइक ये भी बरामद किया गया है। ये लोग कई तरह का गैस से रिलेटेड या ई चालान से रिलेटेड भेजते थे और ठगी करते थे।
0: साहिबगंज जिले में हर घर सुरक्षा अभियान के दूसरे चरण के तहत सभी प्रखंडों में ग्राम संगठनों के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। अभियान के दौरान ग्रामीण परिवारों और सखी मंडलों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की जानकारी दी गई। साथ ही बीमा नवीनीकरण, क्लेम प्रक्रिया और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़ने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया। झारखंड राज्य क्रिकेट संघ कल रांची में झारखंड टी20 लीग 2026 के आधिकारिक ट्रॉफी लॉन्च समारोह का आयोजन करेगा। इस कार्यक्रम में झारखंड क्रिकेट के भविष्य और राज्य में विश्व स्तरीय क्रिकेट मंच विकसित करने की रूपरेखा प्रस्तुत की जाएगी। समारोह में भारतीय क्रिकेटर और झारखंड के खिलाड़ी ईशान किशन विशेष रूप से शामिल होंगे। पेंटाथलॉन। सरायकेला खरसावां जिले के 3 खिलाड़ी 17 मई को धनबाद में होने वाली राज्य स्तरीय मॉडर्न पेंटाथलॉन चयन प्रतियोगिता में भाग लेंगे। जिला संघ के सचिव सिकंदर महतो ने बताया कि शोभा महतो, रसिक चंद्र हसा और मिलन सोए जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। चयनित खिलाड़ियों को गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 खरीफ फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी को दी मंजूरी। कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए 37,500 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना भी मंजूर। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल प्रबंधन योजना के तहत 5 मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के लिए मंजूर किए 25 करोड़ रुपए। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर लोक भवन के कारकेड के वाहनों की संख्या घटाकर 4 कर दी है। खूंटी पुलिस ने पीएलएफआई के हार्डकोर उग्रवादी राजेश महतो को किया गिरफ्तार, हथियार और पर्चा बरामद। और रांची में कल होगा झारखंड टी20 लीग 2026 ट्रॉफी लॉन्च समारोह, ईशान किशन होंगे शामिल। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
5: मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ एवं एफएम बैंड 101.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है विशेष भेंट वार्ता कार्यक्रम। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर सरा नसरीन से ली गई भेंट वार्ता। विषय है दुरस्त शिक्षा और इग्नू। इनसे बातचीत कर रही हैं नौमी शांति हेम्ब्रम।
6: नमस्कार। विशेष भेंटवार्ता में आज हमारे साथ हैं इग्नू रीजनल सेंटर भागलपुर की रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर सारा नसरीन। आपका बहुत बहुत स्वागत है महोदया हमारे स्टूडियो में।
7: धन्यवाद मैनू।
6: वैसे इग्नू आज परिचय का मोहताज नहीं है, कमोबेश हर छात्र या छात्र के अभिभावक भी जानते हैं कि इग्नू क्या है और अब उसकी काफ़ी उपयोगिता भी साबित हो रही है। हम फिर भी प्रारंभ में आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि ये किस तरह का यूनिवर्सिटी है या किस तरह की शिक्षण प्रणाली है इसमें।
7: इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जिसे हम लोग इग्नू अगर शॉर्ट फॉर्म में लिए जाए तो वो बोलते हैं, वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से 1985 में इसको शुरू किया गया था और विधिवत हमारे जो प्रोग्राम थे, दो प्रोग्राम

0: से शुरू हुआ था 1987 में, डिप्लोमा इन मैनेजमेंट एंड डिप्लोमा इन डिस्टेंस एजुकेशन, और जिसमें हमारे पास अगर शुरुआत में देखा जाए तो सिर्फ 4,528 स्टूडेंट्स थे, मगर आज के दिन में 2.7 मिलियन स्टूडेंट्स हमारे पास हैं
1: जी।
0: और उसको अगर बढ़ोतरी हुई है तो जो यहाँ से दो प्रोग्राम थे वहाँ आज के दिन में हमारे पास 228 सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री, डॉक्टोरल प्रोग्राम्स हैं
1: जी।
0: और इन्हों अगर देखा जाए तो वह दूरस्थ शिक्षा से हम जब काम करते हैं तो दूरस्थ शिक्षा में हम स्टूडेंट्स जो हमारे लर्नर्स जैसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई उम्र की बाध्यता नहीं है
1: जी।
0: और कोई भी बच्चा हमारे पास जो आता है अगर इग्नू के अंदर, तो चाहे वो जॉब में हो, हाउसवाइफ्स हो जो अपने घर के कामों में व्यस्त हों, वो अगर आगे पढ़ना चाहें, जो बच्चे विधिवत जो फॉर्मल एजुकेशन छोड़ चुके हैं वो हमारे साथ अगर शिक्षा से जुड़ना चाहें, इग्नू से एडमिशन्स ले सकते हैं। इस तरह के काफी हर फील्ड से
1: जी।
0: हम लोगों को अपने इग्नू केटर करती है और उसको शिक्षा देती है, और बहुत सारे प्रोग्राम्स है। जैसे अगर हम बात कर रहे थे कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन से जिसने मैट्रिक दिया उसके बाद आगे पढ़ाई नहीं कर पाए
1: जी।
0: या वैसे बच्चे भी जो आगे के लिए नहीं कर पाए, किसी जॉब में लग गए, इस तरह से
1: है कि अनौपचारिक
0: शिक्षा से अगर जुड़े हो तो सिर्फ अगर वो 18 साल का अगर अपना एज प्रूफ देते हैं तो हमारे यहाँ एक 6 महीने का कोर्स है, बैचलर प्रिपरेटरी प्रोग्राम, वो करेंगे। अगर वो कंप्लीट कर लेते हैं तो वो इग्नू से बीए, बीकॉम, बीटीएस और फिर अलग से जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रोग्राम करने के लिए वो एलिजिबल हो जाते हैं। तो देखिए, जो बच्चा छूट चुका है फॉर्मल एजुकेशन से वो कभी भी अपने आप को इग्नू के द्वारा जोड़ सकता है और फिर एक ग्रेजुएट होने का सुख हो सकता है, पा सकता है
1: जी। तो औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा तो हम पा ही रहे हैं इग्नू के माध्यम से, क्या इसके अलावा और भी कुछ ऐसी नई चीजें शामिल की जा रही हैं, विशेष रूप से अगर हम तकनीकी शिक्षा की बात कहें तो?
0: तकनीकी शिक्षा में हमारे यहाँ MBA, आज का अगर प्रोफेशनल एजुकेशन में देखा जाए तो MBAs की काफी डिमांड्स रही हैं, तो MBA इग्नू कराती है। कंप्यूटर इसमें जाए तो BCA MCA हमारे यहाँ है। इवन प्रोफेशनल रूप में अगर जाए तो एग्रीकल्चर के बहुत सारे कोर्सेज हैं हमारे यहाँ, चाहे वो सर्टिफिकेट में हो या डिप्लोमा में, यानी सर्टिफिकेट प्रोग्राम जो 6 महीने के हैं प्रोग्राम्स एग्रीकल्चर के, जैसे सेरीकल्चर में है, बी कीपिंग में है, इस तरह के ऑर्गेनिक फार्मिंग के, इस तरह के अगर आप देखेंगे हमारे जो भी एडमिशंस के हैं आजकल तो ऑनलाइन हो रहे हैं। और हमारे यहाँ अगर आपको बताना चाहेंगे कि सेशंस जो हमारे यहाँ दो हैं, एक जनवरी एकेडमिक सेशन है और एक जुलाई एकेडमिक सेशन है, जिसके लिए बच्चे ऑनलाइन हमारे इग्नू का जो वेबसाइट है www.ignu.ac.in उस पर जाएं और उसको उस साइट को विजिट करें।
1: साइट को एक बार और दोहरा दें।
0: हाँ, www.ignou.ac.in, उसको उस पर जाएंगे आप, ऑनलाइन एडमिशन्स में जाएं, वहाँ पर सारे डिटेल्स हैं आपके एलिजिबिलिटी के हिसाब से, आप उस पर फॉर्म भर सकते हैं। क्योंकि हमारे जो जुलाई सेशंस का जैसे अभी आएगा 18 में, जनवरी सेशंस के तो एग्जाम का एडमिशन ख़त्म हो गया, जुलाई सेशंस के लिए अभी हमारे शुरू होंगे, तो जून से आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन एडमिशन्स के लिए, क्योंकि वो जुलाई सेशन से शुरू होंगे और आप जा करके सारे कुछ अपना ऑनलाइन ही भर सकते हैं, जो भी आपकी एलिजिबिलिटी है, जो भी आपकी इच्छा है। तो बहुत सारी विधिवत आपको बताया कि 228 सर्टिफिकेट, डिप्लोमा एंड PG और UG प्रोग्राम्स है हमारे यहाँ, जिससे
1: तो
0: बच्चे
1: जैसे
0: आ सकते
1: आपने कृषि से संबंधित जो तकनीकी शिक्षा की बात बताई एग्रीकल्चर से रिलेटेड, इसके फ्यूचर स्कोप क्या है थोड़ा बता दें?
0: खास करके हम जिस छोटे शहर से आते, अगर भागलपुर की बात किया जाए, यहाँ पर ज्यादातर रूरल एरिया से लोग बिलोंग करते हैं, कहें कि सेल्फ स्किल्ड की बात हो रही है, स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है। मान लीजिए कि हमारे यहाँ सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, अगर कोई करता है बी कीपिंग में, ऑर्गेनिक फार्मिंग में, सेरीकल्चर, सिल्क का, भागलपुर तो खासकर खादी और सिल्क के लिए जाना जाता है, तो अगर ये 6 महीने का कोर्स अगर कोई करता है सेरीकल्चर में, ऑर्गेनिक फार्मिंग में, वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट में, पोल्ट्री फार्मिंग, ये बी कीपिंग है, इस तरह के जो प्रोग्राम्स अगर करेगा तो नेचुरल है कि वो उस अपनी आमदनी को भी बढ़ा सकता है। और ये अगर कोई बी कीपिंग कर रहा है, मधुपालन करने की इच्छा जिसे है, अगर वो ट्रेंड भी हो जाए, कुछ उसको थ्योरेटिकल नॉलेज भी हो जाए, तो शायद वो उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने में भी उसको आसानी होगी। इसलिए एग्रीकल्चर क्षेत्र में खास करके टीचर्स, अगर वुमेन के ऊपर जाएं हम, तो बहुत सारी कोशिश है,
1: हम आ ही रहे थे कि वुमेन एम्पावरमेंट की अगर हम बात
0: तो
1: करें, महिला सशक्तिकरण,
0: महिला
1: सशक्तिकरण कि हाउसवाइफ्स अगर घर पर हैं तो घर बैठे वो तरह तरह के कोर्सेज कर सकती हैं, पाठ्यक्रम कर सकते हैं।
0: तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारी हैं औरतें जो शायद मैट्रिक करके आगे ना पढ़ पाई हो, तो BPP के थ्रू डायरेक्ट BA में जाएंगी, MA करेंगी, ये सारे कोर्सेज। उसके अलावा भी बहुत सारी

0: हमारी औरतें जो टीचिंग्स में जाती हैं
1: जी.
0: या उनके जैसे उसमें सर्टिफिकेट इन गाइडेंस है, न्यूट्रिशन पे हमारे यहाँ बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे CNCC है न्यूट्रिशन पे है, बच्चों के अर्ली चाइल्डहुड केयर पे है हमारे यहाँ कोर्सेज. इवन अगर आप देखें तो जो टीचिंग में हैं ऑलरेडी बीएड हैं या नहीं भी हैं और स्कूलों में पढ़ा रही हैं, तो सर्टिफिकेट इन गाइडेंस है, प्राइमरी सर्टिफिकेट टीचिंग इन प्राइमरी मैथ्स है, सर्टिफिकेट इन टीचिंग इन इंग्लिश है. इस तरह से वो अपने स्किल को डेवलप कर सकती हैं. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो जर्नलिज्म कोई करना चाहेगा या पत्रकारिता की ओर जाएगा, दूरदर्शन पे, आकाशवाणी में, या हमारे यहाँ इतने सारे प्राइवेट चैनल्स आ गए हैं उनमें से जुड़ना चाहेगा, उस तरह के भी प्रोग्राम्स हमारे यहाँ है. यानी अगर वो PGDA PP है, ऑडियो प्रोडक्शन पे है, क्रिएटिव राइटिंग पे है, जो अगर कोई चाहे कि जिसे लिखने की इच्छा है वो अपना वो डिप्लोमा एक साल का कोर्स है वो कर सकता है. इस तरह की अगर चाहत हो तो इग्नू के पास कोई ना कोई आंसर है, उनके लिए कोई ना कोई कोर्स है
1: जी.
0: करने के लिए. खासकर जैसे अभी बच्चे बैंकिंग वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, कभी कभी उनके पास आता है कि आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है या नहीं, इंग्लिश नॉलेज है या नहीं. वैसे भी 6-6 महीने के कोर्सेज हैं हमारे पास, CIT कंप्यूटर प्रोग्राम्स है, CIT के या CFE फंक्शनल इंग्लिश के प्रोग्राम्स है. इस तरह के कोर्सेज जो है वो बच्चे कर सकते हैं. सब जाते हैं इंग्लिश की कोचिंग करने, मगर अगर वो एक गवर्नमेंट की तरफ सर्टिफिकेट उनको मिलता है तो शायद उनके आगे भी जॉब्स के लिए भी अच्छा होगा उनके लिए. इसलिए जहाँ चाह है किसी चीज की पढ़ाई करने के लिए, इग्नू के पास कोई ना कोई जवाब है, उसके लिए कोर्स है जहाँ वो आकर के जुड़ सकता है.
1: क्योंकि ये एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है तो हम इसे कहें कि इसकी मान्यता तो हर क्षेत्र में
0: जी,
1: है
0: जी, जी.
1: और इसमें जितने भी छात्र आते हैं वे उससे लाभान्वित होते हैं, जिस पाठ्यक्रम से भी वो जुड़ते हैं. लेकिन कुछ एक कठिनाइयां फिर भी इग्नू के पाठ्यक्रमों में या हम कह लें कि इसके जो शिक्षण प्रणाली में गाहे बगाहे दिखती हैं. क्या क्या कुछ ऐसी समस्याएं?
0: दूरस्थ शिक्षा की बात हम जब करते हैं तो उन्हें लगता है कि हम बहुत आसान हैं. ऐसा है नहीं. अगर आप हमारे पाठ्यक्रम को देखेंगे तो हर पाठ्यक्रम क्रेडिट में बटा हुआ है. तो एक अगर मान लीजिए कि एक क्रेडिट क्या है, एक क्रेडिट का मतलब कि 30 घंटे की पढ़ाई
1: जी.
0: तो अगर कोई कोर्स या कोई पेपर अगर 4 क्रेडिट का है तो सोचिए उस बच्चे को उस पेपर में 120 घंटे देने हैं
1: जी.
0: चाहे वो असाइनमेंट बनाते वक्त या अपना जो कोर्स मटेरियल इग्नू प्रोवाइड करती है उसको पढ़ते वक्त, या काउंसलिंग सेशन सब अटेंड करते वक्त, प्रैक्टिकल अगर है प्रैक्टिकल अटेंड करते वक्त, यानी उसे वो 4 क्रेडिट का अगर है तो उसे 120 घंटे देने हैं. तो वो विधिवत कोई बच्चा टाइम टेबल अपना प्लान करेगा तो उसे कोर्स कंप्लीट करने में हर आसानी होगी. इवन हमारे जो स्टडी मटेरियल आप देखेंगे तो हर चैप्टर या हर पेज के बाद छोटी छोटी एक्टिविटीज हैं करने के लिए, क्योंकि हम जो अपने मटेरियल्स को जो स्टडी मटेरियल्स में सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स कहते हैं, आप उनकी भाषा को देखेंगे ऐसा लगेगा कोई आपको बता रहा है, कोई पढ़ा रहा है. इस तरह से हर 4 पैराग्राफ के बाद, एक पेज के बाद कुछ एक्टिविटी है जिसे आप करेंगे तो क्या आपने पढ़ा वो समझ पाएंगे. हमारे जो सेल्फ इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में मार्जिन्स देखेंगे काफी है ताकि आप अपना भी कुछ नोट कर सकें. तो विधिवत पढ़ाई के बाद अगर कोई करता है बच्चा, वो ये नहीं कि आराम से घर में बैठ के पढ़ना है या काउंसलिंग सेशंस जो हमारे यहाँ संडेज को ऑर्गेनाइज होते हैं उसमें ना भी जाए तो ऐसा कुछ
1: होते हैं वहाँ पे
0: वहाँ पे संडेज को हमारे यहाँ काउंसलिंग सेशंस होते हैं. बच्चों को चाहिए कि हर चीज विधिवत करें. हमारे यहाँ सारा कुछ शेड्यूल्ड है, हर प्रोग्राम शेड्यूल्ड है. आप एडमिशन लेते हैं आपको इंडक्शन प्रोग्राम में जाना चाहिए जहाँ पे आपको बताया जाएगा कि इग्नू में आपको पढ़ाई कैसे करनी है, क्या करनी है, कब कब क्या करना है, वो चीज़ बताई जाएंगी. उसके अलावा कि आपको जो भी स्टडी मटेरियल दे जा रहा है उसमें भी प्रोग्राम गाइड होता है, उसमें भी बताया जाता है कि कैसे कैसे आपको पढ़ना है. हमारे यहाँ एग्जाम्स साल में 2 बार होते हैं, जैसे एडमिशन 2 बार होते हैं जनवरी एंड जुलाई, वैसे हमारे यहाँ एग्जाम जून एंड दिसंबर में होते हैं. तो एक बच्चा मान लीजिएगा अगर 6 महीने का कोर्स सर्टिफिकेट प्रोग्राम कर रहा है, जनवरी सेशन में एडमिशन लिया है तो जून में वो एग्जाम देगा, मार्च तक उसे अपने सारे असाइनमेंट्स जमा कर देने हैं और एग्जाम फॉर्म भरना है ताकि वो जून में एग्जाम दे सके. इसी तरह से जैसे BA का है कोई छात्र, एक्चुअली वो 3 साल का कोर्स है, जनवरी में उसने अगर एडमिशन लिया है तो उसका 1 साल जो होगा BA फर्स्ट ईयर, अगर है BA में उसने एडमिशन लिया है तो फर्स्ट ईयर का एग्जाम वो दिसंबर में देगा. तो सितंबर में उसे अपने सारे असाइनमेंट्स अपने स्टडी सेंटर पे जमा करने हैं, अपना एग्जाम फॉर्म भरना है, इवन सेकंड ईयर की फीस भी उसे सितंबर में ही जमा कर देना है ताकि दूसरे सेकंड ईयर के जनवरी तक उसके पास सारी बुक्स हो जाए जब उसका सेकंड ईयर शुरू हो. और इसमें बड़ी अच्छी बात
1: है उसने फर्स्ट ईयर क्लियर नहीं कर,
0: हाँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हमारा तो आगे बढ़ते जाता है. मान लीजिए कि अगर BA फर्स्ट ईयर में उसके पास 5 पेपर्स है, जनवरी 18 में उसने एडमिशन लिया है तो नेचुरली उसे एग्जाम देना है दिसंबर 18 में. सितंबर 18 में उसने फॉर्म भर दिया, एग्जामिनेशन फॉर्म भर दिया, उन 5 पेपर्स का असाइनमेंट जमा करने के बाद अपने एग्जाम सेंटर पे उसने सेकंड ईयर की फीस भी जमा कर दी, एग्जाम फॉर्म भी जमा कर दिया. इसलिए कह रहे

0: फीस का कि वो रेगुलर पढ़ाई हो जाए, क्योंकि 3 साल का आप अगर हमारे प्रोग्राम्स को देखेंगे तो हर में उसका एकेडमिक सेशंस हैं, वैलिडिटी पीरियड, यानी अगर 3 साल में अगर आप बीए करते हैं, कोई भी यूजी प्रोग्राम करता है, उसकी वैलिडिटी 6 साल है, यानी उस फीस में जो उसने 3 साल पे किया है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में, उसको वो पूरा कर सकता है 6 साल में
1: भी।
0: उसमें भी अगर उसके 1-2 पेपर्स बच जाते हैं तो पेपर वाइज वो री एडमिशन लेगा, जो भी फीस होगी उसकी उसको जमा करेगा, और उसके बाद उसके एक्सटेंशन हो जाएगी उसके वैलिडिटी एडमिशन के, यानी 2 साल और एक्सटेंड हो गए, यानी ये जो बीए जो 3 साल का था वो 6 साल प्लस 2 साल यानी 8 साल वो बीए कर सकता है। तो कोई भी इतना व्यस्त आदमी भी होगा तो आराम से वो निकाल सकता
1: जी,
0: है।
1: ये बात तो सही है।
0: और फिर भी अगर इन 8 सालों के बाद भी नहीं अगर पूरा कर पाता है तो इग्नू उसे फिर चांस देती है आगे पढ़ने की, वो फ्रेश एडमिशन लेगा, जो पेपर्स अगर वो 32 क्रेडिट से कम का है तो विद इन 1 ईयर उसको कंप्लीट कर सकता है, फिर से एग्जाम दे करके और असाइनमेंट जमा करके, और अगर 32 क्रेडिट से ज्यादा है तो उसको जो भी 3 साल का वक्फा है जैसे पहले उसने किया था वैसे ही वो चलेगा। तो सोचिए कि इग्नू कितना प्रोवाइड कर रही
1: जी,
0: है
1: जी।
0: सब बच्चों को। और हमारे जो दूरस्थ शिक्षा है, तो अगर आप इंडिया को देखें, हमारे तो इंडिया में और इंटरनेशनली भी हमारे सेंटर्स हैं जहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो शिक्षा वहाँ तक हम इग्नू पहुँचाने की कोशिश करें जहाँ से तक कोई पहुँच नहीं पा रहा।
1: जी जी,
0: यही इग्नू का उद्देश्य
1: जी,
0: भी
1: जी, बिल्कुल। ये तो जानकर के बहुत ही अच्छा लगा कि बहुत ही विस्तृत ये जो प्रबंध है, बावजूद इसके एक समस्या ड्रॉप आउट की भी देखने सुनने में आती है, ये क्यों ऐसा होता है?
0: ड्रॉपआउट्स की आती हैं क्योंकि बच्चे जुड़ नहीं पाते, उन्हें लगता है कि वो आराम आराम से करने में वो आराम से ही रह जाता है। तो जो बच्चे सिंसियर,
1: कठिन होती है,
0: कठिन कहीं पे नहीं है, कठिनाई कहीं पे नहीं है, सिर्फ अगर आप अपने शेड्यूल्स के हिसाब से चलेंगे।
2: विशेष भेंट वार्ता कार्यक्रम में अभी आप डॉक्टर सारा नसरीन से ली गई पूर्व प्रसारित भेंट वार्ता सुन रहे थे। दूरस्थ शिक्षा और इग्नू, इनसे बातचीत कर रही थी नौमी शांति हेमरम।
3: इट्स रेनिंग ऑफर्स ऑन द न्यू एज बलेनो दिस सीजन। अपग्रेड टू द बोल्ड एंड टेकी न्यू एज बलेनो एंड गेट अमेजिंग बेनिफिट्स, इजी फाइनेंस ऑप्शंस एंड इनक्रेडिबल एक्सचेंज डील्स। Rush to your nearest Nexa showroom today and take home the new age Baleno with amazing offers and a 1 lakh kilometer or 3-year warranty. TNC apply.
2: Nexa. आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। थोड़ी देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे आकाशवाणी के पटना केंद्र से।
4: While some just go through the day, you could live the grand life with the Grand Vitara. As you move from city streets to open escapes, the strong hybrid keeps up seamlessly. No matter where the road takes you, you're always breathing in freshness with auto purify and PM2.5 display. And when every moment feels this grand, safety comes standard with 6 airbags. Visit your nearest Nexa showroom to live the grand life with the Grand Vitara Strong Hybrid. Nexa.

0: अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल और खेती गृहस्थी। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट

0: aakashwani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: इधर आइए, इधर।
2: इधर?
1: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
3: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
2: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
3: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
2: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222205042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
3: शुभ वाणी,
2: लाभ वाणी,
3: आकाशवाणी।
4: और इस गीत के बाद
3: छाया गीत।

This is All India Radio. The news read by Anuja Kumar.

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप समी अहमद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली और सीवान में ग्रामीण एसपी के पद सृजन की मिली मंजूरी। पश्चिमी एशिया में जारी तनाव से गहराते ऊर्जा संकट के बीच प्रधानमंत्री ने देशवासियों से ऊर्जा संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की अपील की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज 12वीं की बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी किया। और जनगणना में मकान सूचीकरण के तहत दर्ज गलत जानकारी को संशोधित किया जा सकता है। जनगणना निदेशक रंजीता ने साइबर फ्रॉड से सतर्क रहने की अपील की। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 18 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। प्रमुख एजेंडों में गृह विभाग की आरक्षी शाखा के तहत राज्य के 5 और जिलों में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पद को सृजन का निर्णय शामिल है। इन जिलों को अपराध और सांप्रदायिक रूप से अत्यंत संवेदनशील बताया गया है। मंत्रिमंडल सचिवालय के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने इस बारे में विस्तृत जानकारी दी है।
1: गृह विभाग का एजेंडा था जिसमें 5 जिलों पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली एवं सिवान में, जो कि अत्यंत संवेदनशील जिले हैं, इनमें ग्रामीण पुलिस अधीक्षक के एक एक पद, कुल 5 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।
0: श्री चौधरी ने कैबिनेट में सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ोतरी की जानकारी देते हुए बताया कि 7वें वेतनमान वाले कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता 58% से बढ़ा।

0: बढ़ाकर 60% कर दिया गया है।
1: राज्य के सरकारी सेवकों एवं पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता एवं राहत के दर में वृद्धि की गई। पंचम वेतनमान वाले में 474% से बढ़ाकर 483% महंगाई भत्ता कर दिया गया। षष्ठम के मामले में 257% के स्थान पर 262% और सप्तम वेतनमान के मामले में 58% के स्थान पर 60% महंगाई राहत का भुगतान की स्वीकृति दी गई। यह 1 जनवरी 2026 के प्रभाव से लागू होगी।
0: इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इन वाहनों की खरीद पर सब्सिडी देने की योजना बनाई है। श्री चौधरी ने बताया है कि इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 के तहत महिलाओं समेत अन्य वर्गों को DBT के माध्यम से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
2: परिवहन विभाग का एजेंडा था जिसमें मुख्यमंत्री बिहार पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना का गठन और उसके क्रियान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए कुल 110 करोड़ रुपए मात्र की स्वीकृति दी गई। बिहार इलेक्ट्रिक वाहन संशोधन नीति 2026 की स्वीकृति दी गई अगले एजेंडा में।
0: इधर प्रदेश की सरकार ने किशनगंज में CISF ट्रेनिंग सेंटर के लिए 110.12 एकड़ जमीन केंद्रीय गृह मंत्रालय को मुफ्त हस्तांतरित करने की मंजूरी दी है। उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य के महाविद्यालयों में 132 नए पदों के सृजन की मंजूरी भी मिली है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और वैश्विक स्तर पर गहराते ऊर्जा संकट की आशंकाओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से ईंधन की खपत कम करने और ऊर्जा संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की अपील की है। प्रधानमंत्री के इस आह्वान के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत को लेकर ठोस कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इस बीच केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्पष्ट किया है कि देश में किसी भी पेट्रोलियम उत्पाद की कोई कमी नहीं है। दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत के पास 60 दिनों का कच्चे तेल का भंडार, 60 दिनों की LNG तथा 45 दिनों का LPG भंडार उपलब्ध है।
3: किचन में इस्तेमाल होने वाली LPG सिलेंडर गैस का लगभग 60% पहले हॉर्मुज क्षेत्र से आता था। अब हमें इसके लिए नई व्यवस्थाएं करनी पड़ी। संकट से पहले हमारी घरेलू LPG उत्पादन क्षमता लगभग 35,000 या 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन थी। हमने अपने घरेलू उत्पादन को 36,000 से बढ़ाकर 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन कर दिया है।
0: प्रधानमंत्री की अपील के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी प्रदेश में ऊर्जा संरक्षण को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।
4: मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कारकेड में वाहनों की संख्या न्यूनतम करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही मंत्रीगण, निगम बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्य, पदाधिकारी तथा जनप्रतिनिधियों से बिना अतिरिक्त वाहनों के सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होने की अपील की गई है। मुख्यमंत्री ने राज्य की जनता से मेट्रो, बस, ऑटो और अन्य सार्वजनिक परिवहन के अधिकाधिक उपयोग का आग्रह किया है। राज्य सरकार के सभी विभागों को सरकारी बैठकों और कॉन्फ्रेंस को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित करने का भी निर्देश दिया गया है। इसके अलावा सरकारी कैंटीनों में पाम ऑयल के कम इस्तेमाल, सरकारी एवं निजी कार्यालय में वर्क फ्रॉम होम संस्कृति को बढ़ावा देने तथा सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे मनाने की अपील भी की गई है। आकाशवाणी समाचार से मैं निधिश्री।
0: उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने प्रधानमंत्री की पहल को स्वागत योग्य और प्रशंसनीय बताते हुए कहा कि बचत की मानसिकता विकसित करना समय की आवश्यकता है।
5: प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ बातें सलाह या सुझाव के तौर पर देश के नागरिकों को दी है वो न सिर्फ सराहनीय है बल्कि प्रशंसनीय है। लगभग 25% विदेशी मुद्रा जो खर्च होती है सरकार की वो पेट्रोलियम पदार्थों के आयात पर होती है, तो उन्होंने कहा है कि इसका खर्चा कम करिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोलियम उत्पादों को बचाने और एक वर्ष तक सोना नहीं खरीदने की अपील का प्रदेश में आम लोगों ने स्वागत कर सहयोग करने की बात कही है।
6: मैं राहुल कुमार मधेपुरा से। वैश्विक संकट के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिए गए बयान का हम सभी समर्थन करते हैं। जिस प्रकार से तेल, पेट्रोल और गैस में किल्लत हुई

0: है वो वैश्विक स्तर पर है और उसका हम सभी कैसे सहयोग करके भारत को इस संकट से बचा सकते हैं।
1: मैं सुरेश शेखर शिवहर का निवासी हूँ। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आम जनता से अपील की है वह एक दूरदर्शी और सराहनीय पहल है। हम सभी नागरिकों को उनके इस सलाह का पालन करना चाहिए।
2: मेरा नाम उपेंद्र प्रसाद। प्रधानमंत्री कह रहे हैं मान लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारे भविष्य की बात उन्होंने की, इसलिए वो जो कहे हैं एकदम सही कहे हैं और इसको हम लोग को मानना चाहिए।
3: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
4: कहाँ चलती है? इधर तो आओ।
5: इधर आइए। इधर
6: इधर
5: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
7: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
6: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
7: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
6: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222205042। हमारा ईमेल एड्रेस है patna@gmail.com।
7: शुभ वाणी,
6: लाभ वाणी,
7: आकाशवाणी।
3: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इस परीक्षा में 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी शामिल हुए थे, इनमें से 15,07,000 से अधिक उत्तीर्ण हुए। 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक आयोजित की गई इस परीक्षा में 88.86% छात्र और 82.13% छात्राएं उत्तीर्ण हुई। छात्र रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट DigiLocker और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। जनगणना 2027 का पहला चरण 2 मई से 31 मई तक चलेगा। इसके अंतर्गत मकान सूचीकरण का कार्य किया जा रहा है। जनगणना कार्य निदेशालय की मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी सह निदेशक रंजीता ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि मकान सूचीकरण के तहत प्रगणक स्वगणना के दौरान दर्ज गलत जानकारी को संशोधित कर सकेंगे। उन्होंने लोगों से इस बीच साइबर फ्रॉड को लेकर भी सतर्क रहने की अपील की।
8: कोई भी जनगणना करने आपके घर आते हैं तो वो आपसे वित्तीय जानकारी या किसी प्रकार का दस्तावेज उसकी मांग नहीं करते। तो अगर कोई भी इस प्रकार का मैसेज आता है या कोई व्यक्ति आपको इसके लिए संपर्क करता है तो आपको सावधान हो जाने की आवश्यकता है और साइबर हेल्पलाइन 1930 उस पर संपर्क कर सकते हैं या जो हमारा टोल फ्री नंबर है 1855 उस पर संपर्क कर सकते हैं। नजदीकी थाने में इसकी सूचना दे सकते हैं या जिला प्रशासन स्थित शिकायत प्रकोष्ठ में इसकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
3: केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 37,500 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ सतही कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने की योजना को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी देते हुए कहा कि भारत में प्रचुर मात्रा में कोयला उपलब्ध है।
9: भारत में प्रचुर मात्रा में कोयला उपलब्ध है, तो उस कोयले का उपयोग करके क्या हम गैस बना सकते हैं, इस विषय पे एक अच्छा प्रयास चल रहा था, उसका आज फैसला लिया गया है और बहुत ही सामयिक फैसला है, बहुत ही टाइमली फैसला है। कोल गैसिफिकेशन की स्कीम 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3,00,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसिफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
3: केंद्र सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सोने और चांदी पर 5% और प्लैटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। राजधानी पटना, अररिया

0: और कटिहार समेत प्रदेश के 6 जिलों में कल ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। मॉक ड्रिल के तहत कल शाम 7 बजे से 7:10 तक पूर्व निर्धारित नागरिक सुरक्षा अभ्यास के तहत ब्लैकआउट किया जाएगा। पटना के जिलाधिकारी त्यागराजन एसएम ने बताया कि इस दौरान आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी सार्वजनिक लाइटें बंद कर दी जाएंगी। जिलाधिकारी ने लोगों से अपने घर, दुकान और औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सभी लाइटें बंद रखने की अपील की है। मौसम विभाग ने आज जमुई, बांका, खगड़िया, बेगूसराय, दरभंगा, समस्तीपुर और सहरसा सहित कई जिलों में बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया है। इस दौरान धूल भरी आंधी चलने की भी चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि इस वर्ष मानसून का आगमन निर्धारित समय से पहले होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि अगले 24 घंटे के दौरान राज्य के उत्तर पूर्व जिलों में तेज हवा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा से रफ्तार से चल सकती है। साथ ही मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ बारिश होने की भी संभावना है।
1: दिनांक 14 मई राज्य के उत्तर पूर्व भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में खरीफ सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्री चिराग पासवान ने सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी जानकारी देते हुए बताया कि सूरजमुखी बीज के MSP में सबसे अधिक 622 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। इसके अलावा कपास पर 557 रुपये, राम तिल पर 515 रुपये तथा तिल पर 500 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। पटना जिले के बिहटा थाना क्षेत्र में कल देर रात STF और पटना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 3 वांछित अपराधी को गिरफ्तार किया गया। ये अपराधी किसी बड़े आपराधिक घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। अरवल जिले की अग्निशमन पदाधिकारी रश्मि की अध्यक्षता में 36 जगहों पर मॉक ड्रिल और नुक्कड़ नाटक आयोजित किए गए। इस दौरान आग से बचाव को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सीतामढ़ी में सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के आवास पर नेताओं और समर्थकों से मुलाकात की। श्री कुमार ने समर्थकों को संबोधित करते हुए पिछली सरकार पर काम न करने का आरोप लगाया। दरभंगा शहर के रामबाग किला घाट के पास आज सुबह चेन छिनते की घटना का विरोध कर रहे एक युवक की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली और सीवान में ग्रामीण SP के पद सृजन की मिली मंजूरी। पश्चिमी एशिया में जारी तनाव से गहराते ऊर्जा संकट के बीच प्रधानमंत्री ने देशवासियों से ऊर्जा संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की अपील की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज 12वीं की बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी किया। और जनगणना में मकान सूचीकरण के तहत दर्ज गलत जानकारी को संशोधित किया जा सकता है। जनगणना निदेशक रंजीता ने साइबर फ्रॉड से सतर्क रहने की अपील की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: और इस गीत के बाद

0: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है औरंगाबाद जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता कमल किशोर।
1: औरंगाबाद जिले के बड़े भूभाग को सिंचित करने के उद्देश्य से निर्माणाधीन उत्तर कोयल नहर परियोजना के काम में तेजी आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल के बाद 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से लगातार अनुश्रवण किया जा रहा है। बिहार सरकार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत प्रत्येक सप्ताह जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के अलावा निर्माण कंपनी के अभियंताओं के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। उत्तर कोयल नहर परियोजना झारखंड से प्रारंभ होकर जिले के नबी नगर, कुटुम्बा, देव, मदनपुर और औरंगाबाद प्रखंडों से होकर गया जिले में प्रवेश करती है। परियोजना कार्य पूरा होने से 1,11,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। इसका अधिकांश हिस्सा बिहार में है। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने उत्तर कोयल नहर के निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया और किसानों के हित में इसे जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। औरंगाबाद के पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह ने उत्तर कोयल नहर परियोजना के कार्यों में तेजी आने पर प्रसन्नता जाहिर की है और कहा है कि इस परियोजना के पूरा होने से औरंगाबाद तथा गया जिले के असिंचित इलाके में खुशहाली आएगी। भारत की जनगणना 2027 का कार्य जिले में सुचारू रूप से चल रहा है। जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा जनगणना कार्य की लगातार समीक्षा कर रही हैं। इसके तहत 2 मई से जिले में हाउस टू हाउस सर्वे का कार्य चल रहा है। इस कार्य में जिले के लगभग 5,031 प्रगणक सक्रिय रूप से अपने अपने क्षेत्र में घर घर जाकर सर्वेक्षण कर रहे हैं। मकान का चिन्हांकन और सूचीकरण का कार्य 31 मई तक चलेगा। जिलाधिकारी ने जनगणना कार्य में जिले वासियों से सहयोग करने की अपील की है। पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव में भाजपा की शानदार जीत पर औरंगाबाद में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह, विधायक त्रिविक्रम नारायण सिंह, पार्टी के महामंत्री सतीश कुमार सिंह, अनिल कुमार सिंह ने इस सफलता का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और सरकार के जनहित में किए गए कार्यों को दिया है। आम नागरिकों की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए जिले में पंचायत स्तर पर सहयोग शिविर का आयोजन किया जाएगा। जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा ने बताया कि 19 मई 2026 को जिले के सभी प्रखंडों के चुने हुए पंचायत में सहयोग शिविर का आयोजन होगा। शिविर में आम नागरिकों से प्राप्त आवेदनों के आधार पर उनका त्वरित निष्पादन सुनिश्चित किया जाएगा। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर जिले के लॉर्ड बुद्धा पब्लिक स्कूल में भगवान बुद्ध की जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। लॉर्ड बुद्धा शैक्षिक विकास संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर धनंजय कुमार ने इसका उद्घाटन किया। डॉक्टर कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि आज के प्रति स्पर्धात्मक और तनावपूर्ण युग में बुद्ध के सत्य, अहिंसा और करुणा के सिद्धांत पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गए हैं। पुलिस अधीक्षक अम्बरीश राहुल ने मासिक अपराध गोष्ठी में पुलिस अधिकारियों को अपराध के मामलों में तत्परता से कार्य करने को कहा है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। 9 मई को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव रंजन कुमार, परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश अरुण कुमार और पुलिस अधीक्षक अम्बरीश राहुल ने संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया। इसमें 2015 मामलों का निस्तारण किया गया, 5 करोड़ से अधिक का समझौता भी किया गया। जिले के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान सच्चिदानंद सिन्हा महाविद्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। प्राचार्य डॉक्टर सुधीर कुमार मिश्रा ने कहा कि सफलता की एकमात्र पूंजी कठिन परिश्रम और ईमानदारी है। भारतीय रेल और एनटीपीसी लिमिटेड के संयुक्त उपक्रम भारतीय रेल बिजली कंपनी की नबी नगर स्थित परियोजना के विस्तार की पहल की गई है। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक रंजन देहुरी ने बताया कि यहां 800 मेगावाट बिजली उत्पादन की एक इकाई स्थापित किए जाने को लेकर प्रारंभिक प्रक्रिया शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि इस परियोजना विस्तार से भारतीय रेल बिजली कंपनी की विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़कर 1800 मेगावाट हो जाएगी। विश्व रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर जिला रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा, रेड क्रॉस के अध्यक्ष सतीश कुमार सिंह, ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर रवि रंजन ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर रेड क्रॉस के अध्यक्ष सतीश कुमार सिंह ने कहा कि रक्तदान जीवन दान के समान है। एनटीपीसी लिमिटेड की नबी नगर परियोजना में इस वर्ष आयोजित होने वाले बालिका सशक्तिकरण अभियान की तैयारी शुरू हो गई है। कंपनी के कार्यकारी निदेशक एलके बेहरा ने बताया कि अभियान के तहत 60 बालिकाओं का चयन कर 12वीं कक्षा तक उन्हें निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की ओर से बेरोजगारों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मदनपुर में पत्तल निर्माण उद्योग की स्थापना की गई है। इसका उद्घाटन नाबार्ड के उप महाप्रबंधक सुशील कुमार सिंह और जिला विकास प्रबंधक कृष्ण कुमार ओझा ने संयुक्त रूप से किया।
0: अभी आप सुन रहे थे औरंगाबाद जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता।

0: तथा कमल किशोर।
1: आकाशवाणी पटना से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र।
2: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है, प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम सुरलहरी। कलाकार हैं अभिजीत आनंद। आरंभ में सुनिए इनसे तुलसीदास का ये भजन।

तू दयाल दीन। आपने अभी तुलसीदास का ये भजन सुना अभिजीत आनंद के स्वर में। और आइए सुनते हैं वसीर वद्र का लिखा ये कलाम, इसे गाया है अभिजीत आनंद ने।

सुलहरी कार्यक्रम में अभी आप अभिजीत आनंद का गाया भजन और गीत सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। पेश है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा।

रजनीगंधा कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं हम आरजू फिल्म के इस गाने से। इस गाने को गाया है अलका याग्निक और साथियों ने। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार अनु मलिक।

आदमी खिलौना है। आइए सुनते हैं इस फिल्म का गाना अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज की आवाजों में। गीत लिखा है समीर ने, धुन बनाई है नदीम श्रवण ने।

आकाशवाणी भागलपुर से आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। आइए सुनते हैं बाजीगर फिल्म का ये गाना विनोद राठौड़ की आवाज़ में। रानी मलिक का लिखा गीत है और अनु मलिक का संगीत।

आप सुन रहे थे बाजीगर फिल्म का ये गाना विनोद राठौड़ की आवाज़ में। और आइए सुनते हैं दीवाना फिल्म का ये गाना कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में। समीर का लिखा गीत है और धुन बनाई है नदीम श्रवण ने।

और आइए सुनते हैं कार्यक्रम के अंत में बत्ती गुल मीटर चालू, इस फिल्म का ये गाना राहत फतेह अली खां की आवाज में।

इसी गीत के साथ रजनीगंधा कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप समाचार संध्या का अंक सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ देर प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। और गुजरात के गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारत्तोलन चैंपियनशिप में ज्ञानेश्वरी यादव ने 2 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के लिए क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को देश के करोड़ों किसानों को अपने उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि इस निर्णय से देश के किसानों के जीवन में समृद्धि आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं की संवर्धन योजना से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार सृजित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। CBI ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। CBI इस मामले में शुरुआती जांच करने वाले राजस्थान के विशेष कार्यबल के भी समन्वय में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन की खपत कम करने की अपील का बड़ा प्रभाव पड़ा है और पेट्रोल तथा डीजल का उपयोग कम हुआ है। प्रधानमंत्री ने अपने काफिले का आकार काफी कम करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह सहित भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी ऐसा ही कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने वाहनों के बेड़े में तत्काल कमी करने का निर्देश दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों की हवाई यात्राओं में 50% की कटौती का आदेश दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्रियों विधायकों के सरकारी वाहनों की संख्या सीमित करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों, ऊर्जा सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श होगा।
2: During the visit, यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
3: People to people connect.
1: श्री जॉर्ज ने बताया कि 4 यूरोपीय देशों की यात्रा के दौरान श्री मोदी 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
3: The visit to the 4 European countries.
2: 4 यूरोपीय देशों की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते को इसी वर्ष अंतिम रूप दिया गया है। इस दौरान 3रा

0: भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। भारत इन देशों को मेक इन इंडिया अभियान के अहम साझेदार के रूप में देखता है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य व्यापार और निवेश, हरित प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्टार्टअप्स और आपसी जनसंपर्क को मजबूत करने का रहेगा।
1: पीपल टू पीपल कनेक्ट।
2: संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अमरीका के स्मिथसोनियन राष्ट्रीय एशियाई कला संग्रहालय से 3 भारतीय प्राचीन वस्तुओं की वापसी का उद्देश्य भारत की चोरी हुई सांस्कृतिक विरासत को पुनः स्थापित और संरक्षित करना है। नई दिल्ली में श्री शेखावत ने कहा कि देश की विरासत जिसे अनैतिक तरीकों से देश से बाहर ले जाया गया था अब वापस लाई जा रही है।
3: ऐतिहासिक एंटीक्विटीज को जो भारत लाने का क्रम पिछले वर्षों से चल रहा है उस दिशा में हम आज ऑस्ट्रेलिया से 11 और अमेरिका से 3 और मूर्तियों को भारत में लाने में सफल हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी 657 एंटीक्विटीज को आइडेंटिफाई करके हमने अमेरिका के साथ चर्चा की। यूएस एनफोर्समेंट एजेंसीज ने उनको भारत के दूतावास को अमेरिका में सुपुर्द कर दिया है। उनको लाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ होगी। 657 एंटीक्विटीज उसके बाद में भारत आएंगे।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल होने वाले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन से पहले आज नई दिल्ली में रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और मालदीव के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि सभी देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई और आपसी हित के बहुपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। ये फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। ये कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंपने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार ने इन मामलों में भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतरराज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। असम सरकार 26 मई को समान नागरिक संहिता विधेयक विधानसभा में पेश करेगी। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद ये घोषणा की। डॉ. शर्मा ने बताया कि प्रस्तावित विधेयक विवाह की कानूनी उम्र, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों सहित कई मुद्दों पर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि धार्मिक प्रचलन इस विधेयक के दायरे से बाहर रहेंगे।
4: इसे असम की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया है। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। साथ ही राज्य के लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली सभी रस्मों, परंपराओं और रीति रिवाजों को भी इससे बाहर रखा गया है।
5: आउटसाइड द स्कोप ऑफ यूनिफॉर्म सिविल को।
2: पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने 5वीं बार पद ग्रहण करने के बाद स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, शिक्षा, खेल और औद्योगिक विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसमें गरीबी रेखा से ऊपर के राशन कार्ड धारकों को 3 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना, इंदिरा गांधी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय और मॉडल विद्यालय स्थापित करना शामिल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त नरसिंहपुर जिले के ग्राम मुंगवानी से जारी की। उन्होंने 1,25,00,000 से अधिक लाडली बहनों के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा नगर निगम चुनावों में भाजपा की जीत पर लोगों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत ने फिर स्पष्ट कर दिया है कि जनता ने भाजपा NDA सरकार की विकास और सुशासन नीतियों पर अटूट विश्वास व्यक्त किया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 50 अंक बढ़कर 74,609 पर बंद हुआ।

जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 33 अंक की बढ़त के साथ 23,413 पर स्थिर हुआ। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया एक डॉलर के मुकाबले 60 पैसे

0: जीता है। उन्होंने स्नैच में रजत पदक और कुल 194 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। उधर थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु, मालविका बंसोड़, देविका सिहाग, लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं। महाराष्ट्र में आज नाशिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेले के लोगों का अनावरण किया गया। इसमें त्रिशूल दर्शाया गया है और गोदावरी नदी को शिवलिंग के रूप में चित्रित किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये लोगो भारत की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और राष्ट्रीय एकता का सशक्त संदेश देता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतरराज्यीय प्रतिबंध हटाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Union Cabinet increases minimum support prices MSP of 14 kharif crops for marketing season 2026-27. Cabinet also gives nod for promotion of surface coal and lignite gasification projects worth 37,500 crore rupees. CBI arrests 5 persons in connection with NEET UG 2026 paper leak case. Raids continue in several states. Prime Minister Narendra Modi reduces his convoy size, prompting BJP chief ministers and other leaders to adopt austerity measures. West Bengal government decides to hand over recruitment scam probes to CBI, lifts all interstate restrictions on the movement of essential products. And in weightlifting, India's Gyaneshwari Yadav bags a silver and bronze at Asian Senior Championships in Gandhinagar. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved increase in minimum support price, MSP, of 14 kharif crops for marketing season 2026-27. Addressing media after the Union Cabinet meeting in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the government has increased the MSP of kharif crops to ensure remunerative prices to the growers for their produce. He said for the Kharif season, the estimated payout to the farmers will be 2,60,000 crore rupees. He said an estimated over 824 lakh metric tons of crops will be procured during the season.
2: किसानों के लिए आज एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया। टुडे अ मेजर डिसीजन वाज टेकन फॉर फार्मर्स फॉर ऑल खरीफ क्रॉप। द एमएसपी हैज बीन फिक्स्ड एट कॉस्ट प्लस 50% और इवन हायर। विद दिस डिसीजन फार्मर्स विल रिसीव अ टोटल पे आउट ऑफ 2,60,000 करोड़ रुपीज। द एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट फॉर दिस ईयर विल बी 824 लाख मेट्रिक टन।
3: खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन।
1: Mr. Vaishnav said the highest increase of 622 rupees per quintal in MSP has been recommended for sunflower seed, followed by 557 per quintal for cotton and 500 rupees per quintal for sesame. He said for grade A paddy, the MSP will be 2,461 rupees per quintal. For Jowar hybrid, it will be 4,023 rupees per quintal. For Bajra, the MSP will be 2,900 rupees. And for Tur, it will be 8,450 rupees per quintal.

0: The Union Cabinet has also approved a scheme for promotion of surface coal and lignite gasification projects with a financial outlay of 37,500 crore rupees. Addressing media, Union Minister Ashwini Vaishnav said the scheme marks a major step towards accelerating India's coal and lignite gasification program.
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के रिजर्व्स हैं।
2: इंडिया हैज नियरली 400 बिलियन टन्स ऑफ कोल रिजर्व बाय मेकिंग मैक्सिमम यूज ऑफ दिस कोल वी कैन कन्वर्ट इट इनटू गैस एंड देन यूज दैट गैस इन फर्टिलाइजर्स एंड अदर सेक्टर्स दिस विल हेल्प टू रिड्यूस द एलएनजी इंपोर्ट्स रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजर प्रोडक्शन एन आउटले ऑफ 37,500 करोड़ रुपीज हैज बीन एलोकेटेड फॉर दिस स्कीम द टोटल इन्वेस्टमेंट इन दिस प्रोजेक्ट विल बी अराउंड 3 लाख करोड़ रुपीज and projects will be set up to gasify 75 million tons of coal.
1: Coal ko isme gasify karne ke liye projects lagenge.
0: The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved Ahmedabad Sarkhej Dholera semi-high-speed double line project with a total cost of nearly 20,667 crore rupees. The Union Minister said, as India's first semi-high-speed rail project, the project will serve as a pioneer project, acting as a reference model for the phased expansion of semi-high-speed rail across the country. The project would be completed by 2030-31. The Union Cabinet has also approved upgradation and modernization of Nagpur International Airport through long-term license involving private partner and a public-private partnership. GMR Nagpur International Airport Limited will take up the

0: Prime Minister Narendra Modi will embark on a six-day visit to the United Arab Emirates UAE, the Netherlands, Sweden, Norway and Italy on Friday. Briefing media in New Delhi this evening, Secretary West in the Ministry of External Affairs, Sibi George, informed that on the first leg of his five-nation visit, Mr. Modi will reach the UAE on Friday, where he will meet President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. He said the two leaders will exchange views on bilateral issues, in particular energy cooperation, as well as regional and international issues of mutual interest.
1: Prime Minister will begin his visit from the UAE on 15 May, where he will meet the President of the UAE, His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, and exchange views on bilateral relations, in particular energy cooperation, as well as regional and international issues of mutual interest. During the visit, both the leaders will discuss avenues to further deepen our bilateral ties in areas including trade, investment, energy, technology, culture, and people-to-people connect.
0: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar met his Maldivian counterpart Irutisha Madam in New Delhi today on her first official visit to India. In a social media post, Dr. Jaishankar said during their meeting they underlined the neighbourhood first policy and reviewed bilateral cooperation. Dr. Jaishankar reiterated India's commitment to the Maldives' progress and development. Dr. Jaishankar also met his Brazilian counterpart Mauro Vieira and exchanged views on bilateral, regional and global issues. The External Affairs Minister said India values Brazil's support and perspectives on India-BRICS chairship. Senior officials from Iran, Kazakhstan, Nigeria and Uzbekistan have arrived in New Delhi to attend the two-day BRICS foreign ministers meeting beginning tomorrow. US President Donald Trump arrived in Beijing today for a high-stakes summit with his Chinese counterpart Xi Jinping. During their two-day talks beginning tomorrow, the two leaders are expected to discuss a range of critical issues, including the war involving Iran, U.S. arms sales to Taiwan, trade and artificial intelligence, and tariff amid growing economic and technological rivalry between the world's two largest economies. The U.S. president has brought along several top business and technology executives on his visit to China, underscoring the importance of economic and technological issues in bilateral relations. In weightlifting, India's Gyaneshwari Yadav bagged two medals, a silver and a bronze, at the Asian Senior Championships in Gandhinagar today. Gyaneshwari won a silver in the snatch section in the 53-kilogram category and then an overall bronze medal in the event with a combined lift of 194 kilograms. In Thailand Open Badminton, star shuttlers PV Sindhu, Lakshya Sen and Kidambi Srikanth progressed to the pre-quarterfinals of singles events in Bangkok. In women's singles, the two-time Olympic medalist PV Sindhu defeated Tung Siu Tong of Chinese Taipei 21-9, 21-12. She will take on Amalie Schultz of Denmark in the round of 16 tomorrow. Young Devika Sehag outclassed world number 26, Natsuki Nedera of Japan. She will meet Thai player Pichamon Opatniput. In another match, Malvika Bansod beat Wen Yu Tsang of Canada. She will meet Chan Yufei of China. The India Meteorological Department, IMD, has forecast heat wave to severe heat wave conditions over West Madhya Pradesh and West Rajasthan for the next 2 days. East Rajasthan, Gujarat and Maharashtra are expected to reel under heat wave conditions tomorrow. The weather agency also predicted heavy to very heavy rainfall over Arunachal Pradesh, Assam and Meghalaya tomorrow. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Union Cabinet increases minimum support prices, MSP of 14 Kharif crops for marketing season 2026-27. Cabinet also gives nod for promotion of surface coal and lignite gasification projects worth 37,500 crore rupees. CBI arrests 5 persons in connection with NEET UG 2026 paper leak case. Raids continue in several states. Prime Minister Narendra Modi reduces his convoy size, prompting BJP chief ministers and other leaders to adopt austerity measures. West Bengal government decides to hand over recruitment scam probes to CBI, lifts all interstate restrictions on the movement of essential products. And in weightlifting, India's Gyaneshwari Yadav bagged silver and bronze at Asian Senior Championships in Gandhinagar. That is all in the news at 9. Good night.
2: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं मोहम्मद अम्मार। मरकजी काबीना ने मार्केटिंग सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों की कम अज कम इमदादी कीमत में इजाफा किया है। काबीना ने कोयले और लिग्नाइट को गैस में तब्दील करने से मुताल्लिक 37,500 करोड़ रुपए मालियत के प्रोजेक्टों को फरोग दिए जाने को भी मंजूरी दी है। CBI ने नीट UG 2026 के पेपर लीक के सिलसिले में 5 अफराद को हिरासत में लिया है। मुख्तलिफ रियासतों में छापों की कार्रवाई जारी है। वजीर आजम मोदी ने अपने काफिले से गाड़ियों की तादाद को कम कर दिया है, जिसके बाद BJP के वज़राए आला और दीगर रहनुमाओं ने भी अखराजात को कम करने से मुताल्लिक इकदामात किए हैं। मगरबी बंगाल हुकूमत ने भर्ती के सिलसिले में घपलों की तहकीकात CBI को सौंपने का फैसला किया है। उसने ज़रूरी सामान की नकल व हमल पर सभी बैन रियासती पाबंदियाँ ख़त्म कर दी हैं। और वेट लिफ्टिंग में गांधीनगर में एशिया सीनियर चैंपियनशिप में भारत की ज्ञानेश्वरी यादव ने चांदी और कांसे का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। इक्तिसादी उमूर से मुताल्लिक काबीना कमेटी ने मार्केटिंग सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों की कम अज कम इमदादी कीमत में इजाफे को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मरकजी काबीना मीटिंग के बाद मीडिया से खिताब करते हुए इत्तिलात नशियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हुकूमत ने खरीफ फसलों की MSP में इसलिए इजाफा किया है ताकि किसानों को उनकी पैदावार की माकूल कीमत को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि खरीफ सीजन के लिए किसानों को दी जाने वाली तखमीना रकम 2,60,000 करोड़ रुपये रहेगी। उन्होंने कहा कि इस सीजन के दौरान 824 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा फसलों के अंदाजन सरकारी खरीद की जाएगी। जनाब वैष्णव ने कहा कि सूरजमुखी के बीज के लिए सबसे ज्यादा 622 रुपए फी क्विंटल कम अज कम इमदादी कीमत की तजवीज पेश की गई है, जिसके बाद कपास के लिए 557 रुपए फी क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए फी क्विंटल की तजवीज है।
3: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
2: मरकजी काबीना ने 37,500 करोड़ रुपए के खराजात से जमीन की सतह के करीब पाए जाने वाले कोयले और लिग्नाइट को गैस में तब्दील करने के प्रोजेक्टों को फरोग देने की एक स्कीम को मंजूरी दी है। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए इत्तिलात नशियात के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि स्कीम भारत के कोयला और लिग्नाइट से गैस की पैदावार के प्रोग्राम को तेज रफ्तारी से आगे बढ़ाने की जानिब एक बड़ा कदम है।
3: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नॉन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3,00,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
2: जनाब वैष्णव ने कहा कि स्कीम सिर्फ कानकरनी के शोबे से सालाना 6,300 करोड़ रुपए की आमदनी पैदा करेगी और मौजूदा जोग्राफियाई और सियासी हालात के दौरान आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया मुहिम को भी मजबूत करेगी। उन्होंने मजीद कहा कि इस स्कीम से कोयले की पैदावार वाले इलाकों में तकरीबन 50,000 रोजगार के मौके पैदा होने की तवक्को है। मरकजी काबीना ने सरकारी व निजी शराकत दारी के तहत निजी शराकत दार के जरिए तवील मुद्दती लाइसेंस हासिल करके नागपुर बैन अक्वामी हवाई अड्डे की जदीदकारी और तजीमकारी की मंजूरी दी है। काबीना की मीटिंग के बाद नामनिगारों से बात करते हुए इत्तिलात नशियात के मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि यह कदम नागपुर हवाई अड्डे को इलाकाई हवाबाजी के मरकज में तब्दील करने की खातिर एक अहम संग मील है। इस काम को मल्टी मॉडल इंटरनेशनल कार्गो हब एंड एयरपोर्ट एट नागपुर MIHAN प्रोजेक्ट के तहत मुकम्मल किया जाएगा। GMR नागपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड GNIL नागपुर के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बैन अक्वामी हवाई अड्डे को आलमी मेयार की सहूलतों में तब्दील करेगी। मरहलावार तरक्याती प्रोजेक्ट के तहत मस्कूरा हवाई अड्डे की सालाना मुसाफिरों को संभालने की गुंजाइश 3 करोड़ तक पहुंचाने का हदफ रखा गया है, जिससे ये वस्ती भारत का एक अहम हवाई अड्डा साबित होगा। वजीर आजम मोदी

0: दुनिया की नब्ज पश्चिमी एशिया के तेल कुओं की धड़कनों से जुड़ी है। जब इन धड़कनों में युद्ध का शोर सुनाई देने लगे तो वैश्विक बाजार की सांसें फूलने लगती हैं। लाल सागर की लहरों से लेकर तेल के टैंकरों के बदलते रास्तों तक आज एक बार फिर दुनिया ब्लैक गोल्ड यानी कच्चे तेल की अस्थिरता के मुहाने पर खड़ी है। जब हॉर्मुज की जलधारा में हलचल होती है तो दिल्ली, मुंबई और हर भारतीय शहर की सड़कों पर उसकी गूंज सुनाई देती है। लेकिन 2026 का भारत कल की तुलना में कहीं अधिक सजग है। आज हम केवल तेल के दाम गिरने का इंतजार नहीं करते, बल्कि ऊर्जा के नए विकल्पों और सामरिक भंडारों से अपनी सुरक्षा की दीवार ऊंची कर रहे हैं। नमस्कार, चर्चा का विषय है कार्यक्रम के आज के अंक के साथ मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। आज हम चर्चा करेंगे पश्चिम एशिया संकट और ऊर्जा बाजार, उभरती चुनौतियों के बीच भारत की तैयारियों पर। आज के कार्यक्रम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत पश्चिम एशिया के इस झटके को सहने के लिए तैयार है और कैसे हमारी एनर्जी डिप्लोमेसी वैश्विक राजनीति के नए समीकरण लिख रही है। कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो बेहद खास मेहमान, पूर्व सीएमडी ओएनजीसी के सुभाष कुमार और ऊर्जा विशेषज्ञ नरेंद्र तनेजा। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू।
2: थैंक्स आनंद।
0: सुभाष जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। और हम सब जानते हैं कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का लगभग 85% आयात करता है। जो इस समय हॉर्मुज की मौजूदा स्थिति है उसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि भारत की जो सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन की रणनीति है, जिसमें रूस, इराक और अमेरिका के बीच जो संतुलन भी है, कितना प्रभावी सिद्ध हो रही है?
2: आनंद जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। एक्चुअली आज के दिन में भारत जो है अपनी सप्लाई के लिए हॉर्मुज पे ओवरली डिपेंडेंट है। इनफैक्ट यदि हम तेल का देखें तो लगभग 80% से ऊपर वो हॉर्मुज से आता है और 40-50% तो गल्फ स्टेट से आता है। एलपीजी का भी इसी हिसाब से देखें तो लगभग सारी एलपीजी इस प्रॉब्लम से पहले गल्फ स्टेट से ही आती थी। तो अब इस हालात में एक्चुअली जो एनर्जी एक का चीज है, एक और एक एस्पेक्ट है कि इस क्षेत्र में, खाड़ी क्षेत्र में, ना केवल एनर्जी के लिए इम्पोर्टेंट है बट यहाँ पे लगभग 1 करोड़ इंडियंस भी रहते हैं और जो कि इंडिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉरेन एक्सचेंज रिमिट करते थे। तो आज की डेट में गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिए हैं उसमें उन्होंने जो क्रूड जो सोर्सिंग है वो डाइवर्सिफाई की है और इस डिफिकल्ट सिचुएशन में किसी तरह मॉलिक्यूल्स पे की सप्लाई को कंटिन्यू करने के लिए अमेरिका, लैटिन अमेरिका, रशिया और अफ्रीका से भी तेल जो है इंपोर्ट किया है। तो ये जो सारा एक्शन है ये अभी तक काफी सक्सेसफुल रहा है क्योंकि यदि पूरा इफेक्ट इस डिसरप्शन का पड़ता तो शायद सिर्फ इसके भरोसे एक्चुअली इंडिया में तेल और तेल के प्रोडक्ट्स की किल्लत हो सकती थी।
0: पश्चिमी एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से आह्वान किया है कि रोजमर्रा के जीवन में वो कैसे बदलाव लाकर इस संकट के समय देश और सरकार को बेहतर करने में मदद कर सकते हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या अपील की है।
3: मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। जिनके पास कार है वे एक गाड़ी में ज्यादा लोगों को साथ लेकर चलें, जिनके पास ईवी है वे भी दूसरों की मदद के लिए आगे आए। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। साथियों, सिर्फ ईंधन ही नहीं, खाने के तेल पर भी देश की बड़ी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। अगर हम थोड़ा संयम बरते, तेल की खपत कम करें खाने के तेल, तो इससे देश और हमारी शहर दोनों को लाभ होगा।
0: नरेंद्र जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि जब भी बात ऊर्जा की होती है और भविष्य की तरफ हम देखते हैं तो स्ट्रैटेजिक रिजर्व यानी एसपीआर की भी चर्चा होती है और कई सारे मंत्रालय की तरफ से ये बयान दिया गया कि भारत के पास 74 दिन, 80 दिन, 60 दिन के आसपास का रिजर्व है। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा हम विश्लेषण के नजरिए से देखें तो विशाखापत्तनम

0: मैंगलोर और पादूर में भारत ने जो अपने नए रिजर्व की खोज की है, क्या आपको लगता है कि अगर युद्ध लंबा चला तो भारत के लिए ये तीन सेंटर्स या कुछ और सेंटर्स एनर्जी शॉक से बचाने के लिए पर्याप्त हैं?
1: देखिए, हमको देखना होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था का साइज क्या है। आज हम दुनिया की अगर जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, जो लार्ज इकोनॉमी, उनमें फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। और किसी भी अर्थव्यवस्था का, खास तौर से अगर आप विकासशील अर्थव्यवस्था है जो भारत है, उसकी जो बैकबोन होती है, उसकी जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो ऊर्जा होती है। बिना ऊर्जा के अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ती है। और जब विकासशील अर्थव्यवस्था जैसी होगी, खासतौर से भारत जैसी, वहां ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा होती है। हमारे देश में तेल की खपत जो है वो लगभग 3.5% से 4% प्रति वर्ष बढ़ रही है, क्योंकि देश का विकास हो रहा है, क्योंकि प्रगति हो रही है, क्योंकि ज्यादा लोग जो है वो जो गरीबी से बाहर आ रहे हैं, मिडिल क्लास के अंदर आ रहे हैं, तो इसलिए उसकी खपत बढ़ रही है। हम आज की तारीख में लगभग 57 और 58 लाख बैरल तेल प्रतिदिन उसकी हमारे यहाँ खपत है, 5.8 मिलियन रफली बैरल्स पर डे। और उसका भारी बहुत भारी मात्रा में लगभग 53 लाख बैरल हम आयात करते हैं लगभग 42 अलग अलग देशों से। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारे सामने जो है दुविधा ये होती है, क्या हम जो विकास की गति है उसको रोकें, या वो लोग जिनको अभी भी और ऊर्जा की आवश्यकता है, क्या उनको हम रोक सकते हैं, या किस हिसाब से हम ऊर्जा का इस तरह का प्रयोग करें जिससे कि हमारे को दिक्कत ना हो। जहां तक अब युद्ध जो है, ये भारत ने तो शुरू नहीं किया, जैसे जो कोविड था, कोविड की शुरुआत चाइना से हुई थी, ये युद्ध तो फारस की खाड़ी से शुरू हुआ है, खासतौर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो है सबसे बड़ी दिक्कत वहां से आ रही है। तो ऐसे में भारत जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल का उपभोक्ता है, ऊर्जा का उपभोक्ता है, दूसरा सबसे बड़ा आयातक है, और भारी तेजी से जो आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, तो हमारे सामने चुनौती ये हो जाती है हम इसको कैसे देखें। जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स की आपकी बात करी गई, स्ट्रेटेजिक रिजर्व इसलिए बनाए जाते हैं कभी कोई ऐसे हालात पैदा हो जाए कि देश के अंदर जो तेल लाने में जो है डिस्ट्रप्शन हो जाए, मतलब विदेशों से तेल लाने में दिक्कत हो, तो हम उसका प्रयोग कर सकें। लेकिन हमारा इतना विशाल देश है और हम इतनी तेजी से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है कि हमारी जो जरूरत है वो बहुत ज्यादा है। हालांकि हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व, जिनको SPRs बोलते हैं, वो हैं, लगभग 25 से 28 दिन के रिजर्व हमारे पास वो हैं। इसके अलावा जो तमाम रिफाइनरीज हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके जो है ऑयल टैंक फार्म्स होते हैं, उनके अंदर भी हमेशा क्रूड ऑयल जो है और प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर हम उन दोनों को जोड़ लें तो हमारे पास 50 से लेकर के 55 दिन के रिजर्व तो होते हैं। और दूसरा ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी पूरी दुनिया के अंदर ऐसे अच्छे रिलेशंस हैं, खासतौर से जो तेल के निर्यातक हैं, ऊर्जा के निर्यातक हैं, कि हमने जो है कहीं ना कहीं से हम तेल का इंतजाम हो रहा है। और आज भी भारत उन गिने चुने देशों के अंदर है जहां पर पेट्रोल या डीजल की कहीं कोई किल्लत नहीं है, उपलब्ध है, हर जगह उपलब्ध है।
0: जी
1: और दाम भी भारत में अगर आप देखें अन्य देशों के मुकाबले तो काफी हुए। तो चूंकि हमारे अच्छे रिलेशनशिप हैं, और दूसरी बात, एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा, चूंकि हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल के उपभोक्ता हैं
0: जी
1: और दूसरे सबसे बड़े आयातक, हमारे लिए एनर्जी सिक्योरिटी होती है टू सिक्योर सप्लाई। लेकिन जो तेल के बड़े निर्यातक हैं, सऊदी अरब हो गया, अमेरिका हो गया, कुवैत हो गया, ईरान, इनके लिए आवश्यक होता है भारत से अच्छे संबंध रखें, क्योंकि उनकी एनर्जी सिक्योरिटी डिमांड से ताल्लुक रखती है। और डिमांड कहाँ सबसे ज्यादा पैदा हो रही है, वो भारत में। पूरी दुनिया में ऑयल की डिमांड का लीडर आज कौन है, वो भारत है। तो वो भी भारत से अच्छे संबंध रखना चाहते हैं, इसलिए ये भी हमको सिक्योरिटी देता है। आपने जिक्र किया एनर्जी डिप्लोमेसी का, साथ में मैंने आपको ये बताया कि हिसाब से उनके लिए भारत एक हम बाजार है, इसलिए आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। और हमारा अभी तक जो देखा जाए, अब बहुत लंबा युद्ध चलता है, डिस्ट्रप्शन बहुत बड़ा हो जाता है, वो तो भविष्य के गर्भ में है, उस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। लेकिन आज के धरातल पे जब मैं देखता हूं, ठीक है, तैयारी हमको चाहिए, कंजर्वेशन हमको करना है, तेल को हमको वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन पैनिक बटन दबाने की कोई जरूरत नहीं है।
0: जी बिल्कुल, आपने जिस तरफ चर्चा को आगे बढ़ाया कि भारत के पास अभी पैनिक बटन दबाने की जरूरत नहीं है, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा कि भारत के पास आने वाले कुछ महीनों के लिए रिजर्व मौजूद हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: Our LPG, the cylinder gas which you use in kitchens, about 60% used to come from the Strait of Hormuz. Now we had to make arrangements. I am amazed at what we were able to do. Our domestic production of LPG prior to the crisis was 35,000 or 36,000 metric tons per day. We ramped up our domestic production from 36 to 54,000 metric tons. This by itself is a mind-boggling thing.
0: सुभाष जी, भारत सरकार लगातार कुछ नए प्रयोग कर रही है और इसी दिशा में आज कैबिनेट ने एक अहम फैसला लिया कि जो कोल गैसीकरण परियोजना है उसको बढ़ावा देने के लिए 37,500 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत स्वच्छ

0: कोयला उपयोग, ऊर्जा सुरक्षा और आयात पर निर्भरता कम होगी। हम सब जानते हैं कि आज के समय में जब तेल बिल्कुल अस्थिर हो गया है, उसकी कीमतें और रिसोर्सेस कम होते जा रहे हैं, तो ऐसे में दूसरे विकल्पों पर हम ध्यान दे रहे हैं। कैसे देखते हैं इस पहल को जो आज कोल गैसीकरण योजना को मंजूरी दी गई है?
1: जैसे कि तनेजा जी ने पहले ही बताया था कि भारत एक तेजी से विकसित होती हुई इकोनॉमी है और लगभग थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है ऑयल और गैस का। तो इंडिया का जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो एक बहुत ही तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी का है, और इकोनॉमी को यदि ग्रो करना है तो उसके लिए एक असेंशियल रिक्वायरमेंट है, वो है एनर्जी। और लकीली इंडिया में कोयले के काफी विशाल भंडार हैं, तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छी पहल है कि हम कोल गैसिफिकेशन अपने इंटरनल जो रिसोर्सेज हैं उसको किसी तरह इकोनॉमिकली सस्टेनेबल मैनर में यूज कर पाए। बिकॉज कोल के साथ जनरली ये कहा जाता है कि उससे एनवायरमेंटल इंप्लीकेशन जो है वो बहुत ज्यादा होती है, एमिशन रेट इज वेरी हाई। बट यदि कोल गैसिफिकेशन होता है इंस्टीट्यूट तो आपको ना तो बड़ी बड़ी खदानें खोदनी पड़ेंगी और ना ही उसका जो एमिशन है वो एक पॉइंट के बियॉन्ड जाएगा। इनफैक्ट उससे ये होगा आपको दोनों एक टाइमली एनर्जी भी मिल जाएगी और एमिशन लेवल जो है ग्रोथ के लिए जो इंडिया अगेन हैज कमिटेड टू कंफर्म विद द ग्लोबल कमिटमेंट्स टू फॉर ए क्लीन एनवायरनमेंट, तो उसको भी अचीव करने में एक सहायता मिलेगी। तो इंडिया को एक्चुअली चाहे वो बायोफ्यूल हो, चाहे वो कोयला हो, चाहे वो जो पोटेंशियल सीबीजी का हो, वो सब कुछ हार्नेस करना पड़ेगा बिकॉज हमारी आवश्यकताएं आज ही बहुत बड़ी हैं और आगे आने वाले दिनों में जबकि हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं 25 से 30 ट्रिलियन इकोनॉमी जो कि 6 गुना के बराबर होती है आज के स्तर से, तो उसके लिए ये सब तरह के साधन और यदि डोमेस्टिक है तो ये सोने पे सुहागे की तरह है।
0: हम अपने श्रोताओं को बता दें कि कोयला गैसीकरण आपके लिए अगर नई चीज है तो ये होता क्या है। ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें कोयले को उच्च तापमान और दबाव पर ऑक्सीजन और पानी के साथ प्रतिक्रिया कराई जाती है। इससे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से युक्त सिनी गैस प्राप्त होती है जिसे औद्योगिक उपयोग के लिए संसाधित किया जा सकता है। ये पहल भारत की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत प्राकृतिक गैस, उर्वरक और रसायनों के आयात पर निर्भरता को कम कर आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाना है। इस योजना के तहत प्रोजेक्ट का चयन एक पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना है, और इसी पर और जानकारी दी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: आज हम सब जानते हैं कि गैस का जितना रिक्वायरमेंट है और दुनिया भर में जिस तरह की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उस हिसाब से हम आत्मनिर्भर कैसे बने। भारत में प्रचुर मात्रा में कोयला उपलब्ध है, करीब करीब अगर देखें तो आगे के 200 साल के लिए जितना कोयला चाहिए उतना भारत में ऑलरेडी उपलब्ध है। तो उस कोयले का उपयोग करके क्या हम गैस बना सकते हैं, इस विषय पे एक अच्छा प्रयास चल रहा था, उसका आज फैसला लिया गया है और बहुत ही सामयिक फैसला है, बहुत ही टाइमली फैसला है कोल गैसिफिकेशन की स्कीम। इस गैस से आगे उस गैस को जला के पावर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, उस गैस से एलपीजी का इक्विवेलेंट फॉर्म भी बना सकते हैं और उस गैस से हम फर्टिलाइजर का मैन्युफैक्चरिंग हो, कई सारे जो पेट्रोकेमिकल्स के माने जो एक रिफाइनरी में बाय प्रोडक्ट्स होते हैं उसी तरह के बाय प्रोडक्ट्स यहाँ पर भी निकाले जा सकते हैं। तो एक तरीके से कोयले से गैस, गैस से फर्टिलाइजर, कोयले से गैस, गैस से पावर, कोयले से गैस, गैस से कई तरह के केमिकल्स, ये बनाने की ये प्रोसेस है और ये बहुत बड़ा फैसला है क्योंकि इस युग में हमें जितना आत्मनिर्भर बने उतना अच्छा है और उतना ही देश के लिए भविष्य का बड़ा इंश्योरेंस बनता है।
0: नरेंद्र जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आपसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि भारत सरकार ने हाल ही में इथेनॉल ब्लेंडिंग और ग्रीन हाइड्रोजन पर जोर दिया है। क्या ये ग्रीन फ्यूल्स आने वाले समय में, चाहे शॉर्ट टर्म की ही हम बात करें, कच्चे तेल की कीमतों के झटके को सहने में हमारी मदद कर सकते हैं?
3: ये हम बहुत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, जैसे मैंने पहले कहा, और हमारी अर्थव्यवस्था जो है कुल मिलाकर के फॉसिल फ्यूल इकोनॉमी है। फॉसिल फ्यूल का मतलब हुआ तेल, गैस और कोयला, कोयला भी फॉसिल फ्यूल होता है। पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था 80% आज की तारीख में भी वो फॉसिल फ्यूल इकोनॉमी है, लेकिन क्योंकि हमारी निर्भरता तेल पे, गैस पे बहुत ज्यादा है अन्य देशों के मुकाबले अगर आप देखें तो, इसलिए हमारी कोशिश ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा ऐसे रिसोर्सेज को ढूंढें जिससे हमारी आयात पर निर्भरता कम हो सके। हालांकि ये अलग बात है कि हमारी आयात पर निर्भरता एकदम कम होने वाली नहीं है, इसलिए क्योंकि हम बहुत तेजी से हमारा विकास हो रहा है, हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत तेजी से उसका विस्तार हो रहा है।

0: दूसरी आने वाले समय में हमारे देश में तेल की जो जरूरत है वो भी बढ़ने वाली है, गैस की भी बढ़ने वाली है और कोयले की भी बढ़ने वाली है। लेकिन साथ में जो है हमने इथेनॉल जो ब्लेंडिंग करके उसमें जो लगभग 20% पेट्रोल में अभी वो किया जाता है, डीजल में नहीं किया जाता, पर उससे हमने आयात में थोड़ी सी निर्भरता जो है कम करी है। ठीक उसी तरीके से जो देश होता है वो भविष्य की तरफ भी देखता है और जिसमें हाइड्रोजन को एक ऐसी ऊर्जा माना जाना है कि आने वाले समय के अंदर जो हमारा मिशन है कि एनर्जी इंडिपेंडेंस मतलब ऊर्जा की स्वतंत्रता हमको चाहिए 2047 तक, 2047 तक, उसमें हाइड्रोजन जो है एक फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी जो है और उसमें बड़ी भूमिका वो निभाएगा। लेकिन ये दोनों चीजें जिसका अभी मैंने जिक्र किया, इसका जो ये भविष्य के बारे में ज्यादा है, भविष्य का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि 100 साल बाद, लेकिन अभी इनको थोड़ा समय लगने वाला है, हाइड्रोजन का को भी समय लगने वाला है, लेकिन ये है कि देश उस तरफ बढ़ रहा है। लेकिन जो सबसे जरूरत चीज ये है वो है कि इस समय हमारी सरकार की कोशिश कि जो ऊर्जा की गरीबी के नीचे के लोग हैं उनको कैसे ऊर्जा उपलब्ध कराया जाए, उसके तहत एलपीजी हर एक को दी गई उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत। साथ में भी ये कोशिश है कि जो चाहे वो डोमेस्टिक कंज्यूमर हो या वो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हो या जो हमारी ऊर्जा एनर्जी की आवश्यकता है उसके लिए हमको क्या करना है, क्योंकि युद्ध जो है कब खत्म होगा ये कोई नहीं जानता, और खत्म भी हो जाएगा फिर भी उसका जो असर है हमारी अर्थव्यवस्था पे, विश्व की अर्थव्यवस्था पे, वो एक लंबे समय तक रह पाएगा। तो एक तरफ तो सरकार जो है इस बात की तैयारी कर रही है, फ्यूचर के लिए तैयारी हो रही है, भविष्य की तैयारी हो रही है, लेकिन साथ में जो वर्तमान है, वर्तमान में भी पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां से जो है तेल लेके आया जा सकता है, प्राकृतिक गैस लेके आया जा सकती है, उसको लाया जा रहा है। उसके लिए दो चीजों का प्रयोग करा जा रहा है, एक तो ये कि हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, जो हमारी गुडविल है, जो G20 में हमारा दबदबा है, और इसके अलावा विकसित देशों में भी जो हमारा अच्छे संबंध जैसे क्वाड के अंदर है उसको, साथ में इसके अलावा ब्रिक्स के अंदर है, आपको पता है ब्रिक्स की मीटिंग विदेश मंत्री की जा रही है, जहां भी एक विषय रही रहने वाला है, उस सबका यूज करा जा रहा है जिससे कि जो तेल की जो सप्लाई है उसमें किसी तरह की बाधा ना आए। जो इस समय सरकार का सबसे बड़ा फोकस है कि सप्लाई डिसरप्शन नहीं होना चाहिए, और भारत तो उन गिने चुने देशों में है खासतौर से विकासशील दुनिया में या ग्लोबल साउथ में जहां अभी तक सप्लाई का डिसरप्शन आपने नहीं देखा है, खासतौर से तेल को लेकर के। एलपीजी में थोड़ी चुनौतियां आई हैं लेकिन उसको भी काफी हद तक एड्रेस कर दिया गया है, काफी हद तक। तो मेरा यह मानना है कि हमको दो चीजें, एक तो प्रेजेंट और एक साथ में मीडियम टू लॉन्ग टर्म, और दूसरा फ्यूचर, ये तमाम चीजें जिसमें हमने जो कोल गैसिफिकेशन की बात करी ये जो है मीडियम टारगेट्स में ज्यादा आती हैं और लॉन्ग टर्म की तैयारी में आती है कि आज से अगर 15 साल बाद 10 साल बाद वो हालात पैदा जो आज हैं तो हम जो है काफी हद तक उसमें बिना किसी घबराहट के उसका जो है जो सोल्यूशन है वो देश के अंदर ही ढूंढ पाए। देखिए हमको ध्यान रखना पड़ेगा जो ऊर्जा सुरक्षा है, एनर्जी सिक्योरिटी, वो आर्थिक सुरक्षा या इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बुनियाद होती है, और इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो है वो नेशनल सिक्योरिटी की बुनियाद होती है। अगर आप तीनों सिक्योरिटीज को देखते हैं सबके बॉटम में या बुनियाद में वो एनर्जी सिक्योरिटी होती है। एनर्जी के बिना कुछ नहीं मूव करता, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वो परिवार हो या समाज हो, मोहल्ला हो, शहर हो, देश हो, बिना एनर्जी के कुछ नहीं चलता। और इसलिए सरकार की पूरी कोशिश है कि दुनिया में चुनौतियां आती रहती हैं, ये तो सुनामी जैसी चुनौती है, तमाम अर्थशास्त्री इसको जो है एनर्जी कोविड के नाम से बुला रहे हैं, यूरोप में कुछ अर्थशास्त्री इसको जो है इकोनॉमिक कोविड के नाम से बुला रहे हैं, लेकिन भारत ने जिस जिम्मेदारी और मुस्तैदी से इसका जवाब दिया है, देश को तैयार किया है, और अब अगर प्रधानमंत्री की स्पीच को देखें तो प्रधानमंत्री ने आम जनता से संवाद किया है, ब्रेन स्टॉर्मिंग करी है खुले प्लेटफॉर्म पर, प्रधानमंत्री की ब्रेन स्टॉर्मिंग और संवाद यह है दुनिया में ऐसा ऐसा हो रहा है और हमको उसके लिए क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। हो सकता है इतनी जरूरत ना पड़े लेकिन प्रधानमंत्री वो देश से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं खुल के, जैसे डेमोक्रेसी में होना चाहिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं कि दुनिया के हालात क्या है और हम जो है कैसे कैसे हमने जो है इसकी तैयारी करनी चाहिए, उनके विचार जो है वो आम आदमी से साझा कर रहे हैं, इसी को लोकतंत्र कहते हैं।
1: जी हाँ बिल्कुल, और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में भारत ने काफी प्रगति की है और आने वाले वर्षों में हमें इसमें और सफलता मिलने की उम्मीद है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: ग्रीन हाइड्रोजन इज द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। ग्रीन हाइड्रोजन विल अल्टीमेटली सक्सीड वेयर देयर इज लोकल डिमांड, देयर इज लोकल प्रोडक्शन एंड देयर इज लोकल कंजम्पशन, एंड देयर आर नॉट मेनी प्लेसेस इन द वर्ल्ड एज यूनिकली क्वालिफाइड as India is to make that happen. We set ourselves a target of producing 5 million tons of green hydrogen annually by 2030, supported by strong policy frameworks and a significant financial outlay.
1: सुभाष जी, आपसे ये समझना चाहेंगे, जब पश्चिम एशिया का संकट है और दुनिया के कई देश प्रभावित हो रहे हैं और भारत भी इससे अलग नहीं है, ऐसे में ऊर्जा सुरक्षा को लेकर आने वाले समय में आप और किस तरह की पहल की उम्मीद कर रहे हैं, चाहे वो सरकार की तरफ से हो या निजी कंपनियों की तरफ से?

0: ये आपने बहुत अहम मुद्दा उठाया। एक्चुअली जहां तक ऊर्जा सुरक्षा की बात है और जिस तरह का ये क्राइसिस है उसमें सबको आगे आना पड़ेगा। गवर्नमेंट जो अपने स्तर पे इमीडिएट बेसिस पे कर सकती थी वो कर रही है और आगे भी करती रहेगी। अभी क्योंकि देश को आगे बढ़ना है और उसके लिए बड़ी क्लैरिटी है कि अगले 25 साल में कहाँ जाना है और 2070 तक कहाँ जाना है, वो क्लैरिटी है। तो इसके लिए मैं जो कुछ चीजें समझता हूँ कि बहुत जरूरी हैं, एक तो जो एनर्जी एफिशिएंसी है, टू बी एबल टू, जो एग्जिस्टिंग एनर्जी जितनी कंज्यूम हो रही है उससे जितना ज्यादा से ज्यादा वर्क या आउटपुट ली जा सके, दैट शुड बी आइटम ऑन प्रायोरिटी। जो दूसरा इशू है वो जो डोमेस्टिक एंडोमेंट्स है, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, उनको किसी तरह यूज करके यदि हम अपनी जो ऊर्जा की सप्लाई है उसको बढ़ा पाए। और इसमें मिसाल जैसे आपने एथेनॉल की दी, मैं एक्चुअली उससे एक स्टेप और आगे जाऊंगा। सीबीजी एक ऐसा पोटेंशियल है जो आइडेंटिफाइड है और 15 मिलियन टन का गवर्नमेंट ने ऑलरेडी सतत प्रोग्राम एनविसेज किया था। टोटल पोटेंशियल जो है वो लगभग 62 मिलियन टन का है। तो अब क्योंकि इस तरह की स्थिति में वो एक एरिया होगा जहां हम ट्रिगर करें और जो सीबीजी का पूरा पोटेंशियल है उसके यूज करें, और ये सबसे लो कॉस्ट ऑप्शन होगा फॉर द रीजन के सारा कंट्री लकीली सीजीडी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। तो आपको सेपरेट सप्लाई चेन्स नहीं बनानी है, सप्लाई चेन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। यदि आप डोमेस्टिक सप्लाई को बढ़ा सकते हैं तो देश को ही जो किसान है और जो गांव है हमारे, क्योंकि सीबीजी लार्जली उन एरियाज में प्रोड्यूस होगी, तो उसके लिए बहुत बड़ा एक साधन बनेगा। तीसरा जो है, जो देश में बाकी जितने साधन है, चाहे वो हाइड्रोजन की बात हो रही है, आपकी सोलर की बात है, या इवन थर्मल पावर की बात है, सब जो है वो इस टाइम ट्रिगर करने के लिए एक दीर्घकालीन प्रोग्राम बनाना पड़ेगा और उसको फॉलो करना पड़ेगा, जिससे कि आगे कोई इस तरह का डिसरप्शन आता है। ऑफ कोर्स इस बार भी इंडिया ने उसको बड़ा बखूबी फेस किया है, पर क्योंकि आने वाले समय में 10 साल बाद लेट से यदि इकोनॉमी 2.5-3 गुना हो जाती है तो उस स्थिति में आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट भी कम से कम दुगनी होगी, और यदि वो दुगनी होगी तो आप डोमेस्टिकली कितनी प्रोड्यूस कर सकते हैं वो होना चाहिए। और एक जो बात है, जो पिछले कुछ सालों में अच्छा भला देश ने काफी ऑयल और गैस प्रॉपर्टीज भी काफी एक्वायर की थी दुनिया में, और वो एक बहुत बड़ा कुशन की तरह काम कर सकती है। तो हमें स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन ऑफ एसेट्स जो है वो कंटिन्यू करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। मतलब यदि आप कोशिश करिए कि आपका अपने रिसोर्सेज हो, पर यदि वो बाई चांस आपके वो एडिक्वेट नहीं है तो कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट आपको ग्लोबली इतनी ओनरशिप है कि जब जरूरत पड़े तो आप इंडिया को भेज सकें। तो
1: जी
0: और कोल गैसिफिकेशन तो एक बहुत ही बढ़िया कदम है जो उठाया जा रहा है, और यदि इसका ही भी पोटेंशियल और कंट्रीब्यूशन काफी रहेगा।
1: जी
0: तो मैं
1: बिल्कुल
0: सोचता हूँ ये 4-5 चीजें डेफिनेटली गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में होंगी, और काम ऑलरेडी चल रहा है तो ये काफी कंट्रीब्यूट करेंगी एनर्जी सिक्योरिटी की तरफ।
1: और हम बात कर रहे हैं ऊर्जा सुरक्षा की और देशवासियों की चिंताओं को लेकर लगातार अंतर मंत्रालयीय संवाददाता सम्मेलन हो रहे हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि भारत की क्या स्थिति है ऊर्जा को लेकर।
2: वेस्ट एशिया क्राइसिस के चलते जैसा आप जानते हैं कि ऊर्जा आपूर्ति वर्ल्ड सप्लाइड डिस्ट्रप्शंस हुए हैं ऊर्जा आपूर्ति में, और इंटरनेशनल मार्केट में भी काफी प्राइस वॉलेटिलिटी देखी जा रही है। परंतु भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि आम उपभोक्ता को कम से कम असुविधा के साथ फ्यूल सप्लाई की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। और इन सभी जो स्टेप्स लिए हैं उनके फलस्वरूप हमारी क्रूड इन्वेंट्री मेंटेन है, टाइड अप है, हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम लेवल पर ऑपरेट कर रही हैं, किसी रिटेल आउटलेट पर कोई ड्राई आउट नहीं है, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर भी कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है, पेट्रोल और डीजल के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं, और घरेलू कुकिंग के लिए एलपीजी की आपूर्ति की जा रही है।
1: नरेंद्र जी, कार्यक्रम में समय बहुत ज्यादा नहीं है, आपसे एक सवाल पर संक्षिप्त टिप्पणी आपसे चाहेंगे कि तेल की कीमतों में जो अस्थिरता का असर हो रहा है भारतीय रुपए और करंट अकाउंट डेफिसिट पर, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं कि तेल व्यापार के लिए रुपया पेमेंट मैकेनिज्म, जिसकी चर्चा कुछ समय से चल रही है, इसको और प्रभावी बनाने से कुछ राहत मिल सकती है?
3: नहीं, अच्छा प्रश्न है और काफी इसकी चर्चा भी है, लेकिन ये जो हमारे जो कुल मिला के संबंध है पूरी दुनिया के बड़े बड़े देशों से, उन पर डिपेंड करेगा हम उसको कैसे बैलेंस करते हैं। अमेरिका से हमारे बड़े अच्छे संबंध है, सामरिक संबंध है और लॉन्ग टर्म संबंध है, हम क्वाड के मेंबर हैं और अमेरिका को हम चाहते हैं या ज्यादा और निवेश करे, और वो जो फ्री वर्ल्ड जिसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक वर्ल्ड, उसका अमेरिका काफी उसमें दबदबा है, और अमेरिका जो है वो पेट्रो डॉलर को मजबूत रखना चाहता है, वो बड़ी आपत्ति करता है अगर कोई लोकल करेंसीज में तेल खरीदता है, लेकिन हमको अपने राष्ट्रीय हित देखने हैं, और पिछले दिनों को हमने रूस के साथ तमाम जो डील हुई है उसमें रुपए की बड़ी भूमिका रही है, और इस तरीके की बातचीत कुछ अन्य देशों से भी चल रही है, लेकिन कुल मिलाकर के हमको बैलेंस बना के चलना होता है राजनीति के अंदर, क्योंकि तेल के बारे में कहा जाता है तेल 90% जियोपॉलिटिक्स है, तो उसमें हमको उसको भी बैलेंस रख के चलना है, लेकिन साथ साथ मुझे लगता है आवश्यक हमारे लिए यह है कि हम एक लॉन्ग टर्म जो हमारा प्लान रहेगा उस पर और थोड़ा जोर डालें, देश के अंदर जो तेल का खनन है उत्पादन है उसको और इंसेंटिवाइज करें, विदेशों में जाकर के जहां भी तेल के भंडारों में हम हिस्सेदारी खरीद सकते हैं उसको थोड़ा और एग्रेसिवली खरीदें, और साथ में जो रिन्यूएबल एनर्जी को हम काफी जोर दे ही रहे हैं, लेकिन हमको यह भी साथ में समझना पड़ेगा कि हमारी देश का जो प्रगति है जो हमारा विकास उससे तो हम समझौता कर नहीं सकते, और आने वाले समय के अंदर हमें और तेल की जरूरत पड़ेगी हमारी अर्थव्यवस्था को, और गैस की भी जरूरत पड़ने वाली है, और ये सारा कुछ सौभाग्य से हमारे आसपास के देशों में उपलब्ध है, खासतौर से खाड़ी के देशों में। एक नया वेस्ट एशिया बनेगा ये जब भी युद्ध समाप्त होता है, ईरान की अर्थव्यवस्था शायद खुलेगी, यूनाइटेड अरब एमिरेट से जो है वहां नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, सऊदी अरब का रवैया जो बड़ा कड़ा रहा है वो थोड़ा नरम पड़ेगा, तो मुझे लगता है हमारे देश के आसपास ही नई संभावनाएं जो है उनका शीघ्र जन्म होगा, और हमको देखना पड़ेगा क्या वहां से हम पाइपलाइन बना सकते हैं या हम अपने एलएनजी टैंकर बना सकते हैं, अपने टैंकर्स बना सकते हैं, बहुत सारी इसमें चीजें हैं, तो मुझे लगता है युद्ध तो है लेकिन युद्ध में हमको देखना है कि अवसर क्या है, और हमारे इतने अच्छे संबंध हैं तमाम देशों से जो तेल के बड़े निर्यातक हैं, और साथ में हमारी जो भारत की जो लीडरशिप है पॉलिटिकल लीडरशिप है अपने विजन में बिल्कुल क्लियर है, तो मुझे लगता है कि हमको चिंता का विषय नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि समय के साथ साथ जरा थोड़ा हमको इस दिशा में खासतौर से एनर्जी सिक्योरिटी और एनर्जी इंडिपेंडेंस की तरफ थोड़ा और स्मार्टली और तेजी से बढ़ना पड़ेगा।
1: जब हमारे आपके परिवार पर संकट आता है तो हम अपने अभिभावकों की तरफ देखते हैं और उनके दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी समझते हैं। जब पश्चिम एशिया में संकट है तो भारत के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नागरिकों से अपील की है कि वो टीम इंडिया की तरह एकजुट होकर इसका सामना करें। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
4: देश का हित, देश के लोगों का हित, ये हमारे लिए सर्वोपरि है। आप देख रहे हैं कि इस समय वैश्विक स्तर पर किस तरह की चुनौतियां हैं। वेस्ट एशिया में संकट की स्थितियां लगातार बनी हुई है। युद्ध के इस माहौल का बहुत नकारात्मक असर पूरे विश्व पर पड़ा है।

0: खड़ा होना ही होगा।
1: कहते हैं संकट ही समाधान की जननी है। पश्चिम एशिया की ये चुनौतियां भारत को याद दिलाती हैं कि हमारा रास्ता आत्मनिर्भरता की ओर ही जाता है। चाहे वो हमारी सड़कों पर दौड़ती इलेक्ट्रिक गाड़ियां हों, रेलवे का सोलर विजन हो या फिर रेगिस्तानों के नीचे छुपा हमारा सामरिक तेल भंडार, भारत अपनी सुरक्षा की कहानी खुद लिख रहा है। पश्चिम एशिया की रेत में भले ही हलचल हो, लेकिन भारत का संकल्प अडिग है। हम न केवल इस संकट से उबरेंगे बल्कि ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया को एक नई राह भी दिखाएंगे। सुभाष जी आपका, नरेंद्र जी आपका आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और श्रोताओं के साथ विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
2: थैंक यू,
3: धन्यवाद।
1: आप ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं।
4: चर्चा का विषय है आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। पेश है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। इसमें आज हम आपको धर्मवीर फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं। दोस्तों, कहते हैं दोस्ती कोई खोज नहीं होती, दोस्ती कोई खोज नहीं होती, ये हर किसी से हर रोज़ नहीं होती। अपनी ज़िंदगी में हमें बेमतलब ना समझना, क्योंकि आँखों में पलकें भी बेमतलब नहीं होती। दोस्त तो बहुत बनते हैं इस ज़िंदगी में, पर कुछ दोस्त दिल में बस जाते हैं निशानी बनकर।

कहते हैं इंसान के जीवन में भावनाओं का विशेष स्थान होता है और उनमें सबसे गहरी भावना होती है चाहत की। चाहत सिर्फ किसी इंसान को पाने की इच्छा ही नहीं होती, यह एक एहसास है जो दिल से जुड़ा होता है।

जी हाँ, चाहत, प्यार, इश्क, मोहब्बत, जाने कितने नाम दिए गए हैं, लेकिन ये सारे एहसास बड़े मीठे होते हैं। कहते हैं ना, इश्क की मिठास होती है, इंतज़ार का दर्द भी बड़ा प्यारा लगता है, और मोहब्बत दिल से निकले उन जज्बातों को बयां करती है जो अक्सर जुबां तक नहीं पहुंच पाते। किसी की मुस्कान में सुकून ढूंढना, उसकी हर खुशी में अपनी खुशी ढूंढना, और उसकी हर बात को अपनी आदत बना लेना, यही तो सच्ची मोहब्बत है। जब कोई इंसान किसी के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो, तो वो चाहत बेपनाह हो जाती है।

इश्क में विरह और मिलन के गीत सदियों से गाए जाते हैं, लेकिन विरह प्रेम भी वह अवस्था है, विरह जो है वो प्रेम की वह अवस्था है जिसमें हर पल बिछड़े हुए अपने महबूब की आहट सुनाई देती है। अपने दिल की बातों को इजहारे दिल कुछ इस तरह उद्गार करते हैं कि उनकी नाराज़गी भी जग जाहिर हो जाती है। कहते हैं दिल की हर बात जमाने को बता देते हैं, अपने दिल के हर राज से हम पर्दा उठा देते हैं। आप हमें चाहें ना चाहें इसका गिला नहीं, हम जिसे चाहते हैं उस पर दिलो जान लुटा देते हैं।

अभी आप सुन रहे थे धर्मवीर फिल्म का ये गाना। आपने एक ही फिल्म में धर्मवीर फिल्म के गानों को सुन रहे थे। गायक कलाकार थे मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, किशोर कुमार और लता मंगेशकर।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम एक ही फिल्म से, आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। थोड़ी देर में आप हमारा अगला प्रसारण सुनेंगे।

आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। पेश है कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। पुरानी फिल्मों के गानों में आइए सुनते हैं नूरी फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में।

और आइए सुनते हैं हंसते जख्म, इस फिल्म का गाना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। आइए सुनते हैं हंसते जख्म फिल्म का ये गाना।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से, आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे, पहले हिंदी में तत्पश्चात अंग्रेजी में। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रति वर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धौलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धौलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। CBI ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंपने का निर्णय लिया है। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव CB जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आज ये मंजूरी दी। प्रवीण सूद का वर्तमान कार्यकाल इस महीने की 24 तारीख को समाप्त हो रहा था। IPL क्रिकेट में रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 193 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 6 ओवर में 1 विकेट पर 66 रन बना लिए हैं। कोलकाता की ओर से अंग कृष्ण रघुवंशी ने 71 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is आकाशवाणी। The news read by R.S. Raghu. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved increase in minimum support prices, MSP, for 14 kharif crops for marketing season 2023.